सुप्रभात। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948, ज्येष्ठ मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 1 जून 2026, सवेरे के 5:55 हुए हैं। हमारी आज की पहली सभा मीडियम वेव और FM पर एक साथ आरंभ हो रही है।

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। कुछ ही समय में प्रातः के 6 बजने को हैं। अब हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में रिले किए जाएंगे।

समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने

0: राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान और मतगणना 18 तारीख को होगी। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति ने विधान परिषद चुनाव के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंदतेग चेगलिंग मठ में अरहत सारिपुत्र और अरहत महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL खिताब जीत लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। हे कान्हा, जिंदगी लहर थी, आप साहिल हुए, न जाने कैसे हम आपके काबिल हुए, न भूलेंगे हम उस हसीन पल को जब आप हमारी छोटी सी जिंदगी में शामिल हुए।

जब दिल टूटा तो दुआ ने सहारा दिया, जब दिल टूटा तो दुआ ने सहारा दिया, अल्लाह ने हर दर्द को प्यारा किया, ईमान की रोशनी में जो चला उसने हर अंधेरे को किनारा किया।

हे मेरे वाहे गुरु जी, उम्मीदों के आगे टूट जाना अच्छा नहीं लगता। किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। मुझे देने वालों की कतार में रखना, ऐ मेरे मालिक, तेरे दर के सिवा किसी दर पर सिर झुकाना अच्छा नहीं लगता।

हजारों गम हो फिर भी मैं खुशी से भूल जाता हूँ। हजारों गम हो फिर भी मैं खुशी से भूल जाता हूँ। जब हँसती है मेरी माँ मैं हर गम भूल जाता हूँ।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। कलाकार थे देवाशीष दास गुप्ता, अनुराधा पौडवाल, जाफर हुसैन, रविंद्र सिंह, रागी नरेंद्र चंचल।

0: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज का चिंतन। विषय है परिभाषा परिवार की। प्रस्तुति संजीव आकांक्षी की है।
1: परिवार, यह शब्द जैसे ही जहन में आता है बहुत सारे चेहरे आंखों के सामने तैर जाते हैं। माँ, पिता, पत्नी, बच्चे, दादा, दादी, नाना, नानी, बहन और इन सब का महत्वपूर्ण योगदान प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होता है। परिवार, जैसे ही ये शब्द जहन में आता है तो ऐसा लगता है कि मैं बड़ा समृद्ध हूं, मेरे परिवार में इतने सारे लोग हैं। क्योंकि जीवन में कभी ना कभी ऐसी स्थिति अवश्य आती है कि जब आप सब जगह से टूटे हुए होते हैं तो आपको कुछ ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जहां आप अपने मन की हर बात कह सकें। हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे छुपे हुए पहलू होते हैं। हर पहलू के लिए चुनिंदा मित्र होते हैं। हर मित्र से हर बात नहीं की जा सकती, हर सहयोगी से हर बात शेयर नहीं की जा सकती, लेकिन परिवार के सदस्य एक ऐसा रिश्ता है जिससे ऑफिस का तनाव हो, व्यापार की दिक्कतें हो, अंदर उठता हुआ ज्वारभाटा हो या अंतःकरण में जागृत होती कोई सात्विक ऊर्जा, इन सभी के विषय में अगर आप कहीं बात कर सकते हैं तो अपने परिजनों से। आज के दौर में नौकरी करने वाले युवक, उनकी पत्नियां कहीं ना कहीं परिवार से दूर हो रहे हैं। उन्नति सबके लिए आवश्यक है। अगर हम उन्नति की ओर नहीं देखेंगे, उन्नति की ओर नहीं बढ़ेंगे तो केवल हम ही पीछे नहीं रहेंगे, हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा देश भी पीछे रह जाएगा। देश के, समाज के कल्याण के लिए हमें ऐसे व्यवसायों में जुड़ने की तो आवश्यकता है, लेकिन इसके लिए कहीं परिवार तो नहीं टूट रहा। केवल मनुष्य ही ऐसा है जो इतनी सामर्थ्य रखता है कि वो व्यवसाय में भी आगे बढ़े, अपने कैरियर को भी आगे बढ़ाए और परिवार को ना टूटने दे। आप महसूस कीजिए, शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसे जीवन में कभी ना कभी अपने परिवारों के इन रिश्तों की आवश्यकता हो। और वास्तव में कभी महसूस करना, आप कितनी भी बड़ी पीड़ा में हो, मां के पास बैठ जाना, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। पिता जब कंधे पर हाथ रखते हैं ना तो लगता है कि हां, मेरे पीछे कोई है। आप कितने भी बड़े हो जाएं, कितना भी धन कमा लें, लेकिन अगर आपके कंधे पर पिता का हाथ है तो आपसे बड़ा समृद्ध व्यक्ति दूसरा नहीं होता। आप जीवन की किसी भी अवस्था में मां की गोदी में अगर सिर रख करके लेट जाएंगे तो मां वैसे ही दुलार करेगी जैसे आप बच्चे थे और मां आपको दुलार करती थी। यही तो परिवार है। आप ऑफिस का कितना भी बड़ा तनाव लेकर के घर आए हैं, पत्नी से आपने कितने भी गर्म मिजाज में बात करी, हो सकता है पत्नी भी आपकी जॉब करती हो, ना सुनती हो आपकी, वो भी पलट के जवाब दे देंगी, लेकिन ये कुछ क्षणों का होता है। कुछ मिनटों के बाद, कुछ घंटों के बाद सब सामान्य हो जाता है। आकलन करना, क्या ऑफिस में अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने बॉस को पलट के जवाब दे सकते हो? बल्कि अपने अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारी को भी आप डांट करके बात नहीं कर सकते। जो आपको जवाब मिलेगा वो आपको अंदर तक तोड़ देगा। और ये सारी पीड़ाएं लेकर के आप घर जाते हैं, पत्नी से आप किसी भी टोन में बात कर लीजिए, कुछ समय बाद वो सारी स्थिति सामान्य होती है। बच्चों को भी लगता है कि पापा आज बहुत गुस्से में है। बच्चे उस समय सहम जरूर जाते हैं, लेकिन जब आप बच्चों से पुचकार करके बात करते हैं तो केवल आप अपने ही मन को हल्का नहीं करते, बच्चों में भी एक संस्कार डालते हैं। यही तो है परिवार। हमारी भारतीय सनातन परंपरा में संयुक्त परिवारों की कल्पना थी और उन संयुक्त परिवारों से ही ये संस्कार जागृत होते हैं। अपने परिवार का ख्याल रखिएगा।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज का चिंतन। विषय था परिभाषा परिवार की। प्रस्तुति संजीव आकांक्षी की थी। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: अतुलनीय है हमारा भारत देश।
1: हम भारतीयों में कदापि नहीं है
0: छल कपट दंभ और द्वेष।
2: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश, जानकारी शरीर के लिए पानी का महत्व। प्रस्तुति डॉक्टर विनय वर्मा की है।
3: स्वास्थ्य संदेश कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, मनुष्य ही नहीं बल्कि संपूर्ण चराचर जगत में जल तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानव शरीर की उत्पत्ति जिन पंच तत्वों से हुई है उसमें जल का महत्वपूर्ण स्थान है। जल ही मानव जीवन की उत्पत्ति का मुख्य आधार है। जल के कारण ही मनुष्य में बुद्धि का विकास हुआ है और वह आदि युग से परमाणु युग तक पहुंच पाया है। पृथ्वी पर होने वाली अधिकांश विनाशकारी घटनाओं के पीछे जल ही कारण होता है। इसके विपरीत जब पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति होती है तो जीवों का जीवन पानी से ही शुरू होता है। जिस तरह संसार

0: वायु समाप्त होने से संसार व जीवन का मूल नष्ट हो जाएगा, उसी तरह संसार से पानी समाप्त होने से संसार व जीवन का मूल नष्ट हो जाएगा। इस संसार में मौजूद सभी जीवों को जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन उपलब्ध रहे इसके लिए पेड़ पौधों का होना जरूरी है। अब यदि पेड़ पौधों को पंच तत्व में से चार तत्व मिलते रहे पर जल न मिले तो वे नष्ट हो जाएंगे और सभी जीवों का जीवन संकट में आ जाएगा। इस भूमंडल में पृथ्वी का भाग एक चौथाई है और जल का भाग तीन चौथाई है। मानव शरीर में भी 70% जल है और 30% में शेष सब हाड़ मांस आदि है। इस अनुपात को देखकर ही जल की महत्ता और उपयोगिता का पता चल जाता है। हमारे शरीर में जल तत्व का भाग शेष चार तत्वों से बहुत ज्यादा है, इसलिए शरीर और स्वास्थ्य की दृष्टि से हमें जल के विषय में विशेष रूप से सतर्क और सचेत रहना होगा। शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए जल की आवश्यकता होती है। रक्त हमारी त्वचा पर अवस्थित रक्त वाहिनियों के माध्यम से प्रसारित होता रहता है। यह रक्त शीतल होकर शरीर के आंतरिक भागों में संचारित होता है। पसीने के रूप में जल त्वचा से उड़कर वातावरण में चला जाता है और इस तरह शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। रक्त के प्लाज्मा में 90% जल होता है। यह प्लाज्मा रक्त के पीएच स्तर को बनाए रखता है। रोग प्रतिरोधक तंत्र द्वारा निर्मित एंटीबॉडीज को संपूर्ण शरीर में प्रसारित करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। यह हमारे द्वारा ग्रहण किए गए आहार से प्राप्त पोषक तत्वों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का भी कार्य करता है। पूरे शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में पानी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आहार के पाचन में मदद करने के साथ साथ शरीर का आंतरिक अंगों की सफाई करना, विजातीय द्रव्यों को शरीर से निष्कासित करना तथा चयापचय से उत्पन्न अनुपयोगी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम भी जल ही करता है। यह नाक, कान, आंख, गला, आंतों इत्यादि की श्लेष्मिक कला की नमी को बनाए रखता है। पानी शरीर के पाचक अंगों के संचालन के लिए श्रेष्ठ द्रव्य है। हमारी लार में अवस्थित पानी भोजन को चबाने व निगलने में मदद करता है। अस्थियों के जोड़ को चिकनाई प्रदान करने वाला जल का सेवन कम करने से गर्दन दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द आदि समस्याएं हो जाती हैं। सामान्य अवस्था में मनुष्य शरीर के मस्तिष्क में 95%, रक्त में 82% और फेफड़ों में 90% पानी होता है। इसलिए शरीर में पानी की कमी से शरीर थका हुआ महसूस होता है। यदि पर्याप्त मात्रा में और सही विधि से जल का सेवन किया जाए तो स्तन, आंतों व मूत्राशय के कैंसर होने की संभावना में कमी आती है, क्योंकि शरीर की आंतरिक सफाई होने से कैंसर उत्पन्न करने वाले तत्व कार्सिनोजेंस शरीर में एकत्रित नहीं हो पाते हैं। पानी के पर्याप्त सेवन से त्वचा में निखार व नमी रहती है तथा त्वचा कोमल व झुर्रियां मुक्त रहते हुए स्वस्थ बनी रहती है। पानी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वैज्ञानिक भी अंतरिक्ष में किसी ग्रह पर जल को खोजते हैं, क्योंकि यदि जल होने के सबूत मिल जाए तो उस ग्रह पर जीवन होने की संभावना हो सकती है। जल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य की नींव मजबूत करता है तथा इसी की सहायता से भोजन द्वारा ग्रहण किए गए विभिन्न पोषक तत्व अपने गंतव्य तक पहुंचकर शरीर को पोषण प्रदान करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जल जीवन का आधार है। जल की महत्ता इसी से सिद्ध हो जाती है कि तीव्र प्यास लगने पर यदि जल न मिले तो प्राण व्याकुल हो जाते हैं। एक बार अन्न के बिना व्यक्ति जी भी सकता है, तत्काल मर नहीं जाता, पर पानी के बिना जीना मुश्किल हो जाता है। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में जानकारी बस यहीं तक। अगले कार्यक्रम में पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश के अंतर्गत जानकारी शरीर के लिए पानी का महत्व, प्रस्तुति डॉक्टर विनय वर्मा की थी। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 6:40 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

अब से कुछ ही देर के बाद 6:45 पर सुनिएगा श्री रामचरित मानस गान भाग संख्या 315। कलाकार होंगे ए हरिहरन, रविन्द्र साठे, संगीत निर्देशक होंगे सतीश भाटिया। सात बजे सुनिएगा कार्यक्रम सेहत नामक के अंतर्गत तंबाकू सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। डॉक्टर विनय वर्मा की बात होगी इसी विषय पर डॉक्टर शहजाद खान से। सात बजकर 31 पर सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम सुबह सवेरे फिल्मी गीतों का इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम। हंड्रेड एंड 2.9 मॉर्निंग हिट्स 8:45 पर आप सुन सकेंगे। 9:25 पर कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग में अकबर इलाहाबादी के जीवन के कुछ प्रेरक प्रसंग आप सुनेंगे। 9:50 पर उप शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत तीन ताल में लयबद्ध पखावज वादन आप सुनेंगे। कलाकार होंगे चितरंजन देव शुक्ल। दस बजे सुनिएगा कार्यक्रम आपके अनुरोध पर 10:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग पेश किया जाएगा। 11 सुनिएगा सुनते सुनाते 90 भाग एक। ग्यारह बजकर तीस मिनट पर सुनिएगा कार्यक्रम मन भावन में एक ही गायक जगजीत सिंह के गाए कुछ गीत। 12:10 पर गीत आपके नाम ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा। 1:15 पर कार्यक्रम धरती गाती है में सुनिएगा कुछ लोकगीत। कलाकार होंगे तेज राम गंगवार व साथी। 2:30 पर कार्यक्रम सुनहरा दौर के अंतर्गत सुनिएगा 60 के दशक के फिल्मी नगमे।

0: ये था संक्षिप्त विवरण हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। छह बजकर 45 मिनट हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम श्री रामचरित मानस गान, भाग संख्या 315। कलाकार हैं ए हरिहरन, रविंद्र साठे, संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया।
1: एपिसोड नंबर 315, 315।

अपने बल का आभास देने के लिए रावण की सभा में अंगद ने पृथ्वी पर जो पैर रोपा तो मेघनाद समेत अनेक योद्धाओं ने अपनी सारी शक्ति लगा दी।

भला कौन डिगा सकता है। अंगद ने एक बार फिर नीतिपूर्ण वचन कहकर रावण को सद्बुद्धि देनी चाही, किंतु उसका कोई प्रभाव न होता देख रणभूमि में उसका वध करने की धमकी देकर श्री राम के शिविर में वापस लौट गए। रात्रि में मंदोदरी ने रावण को फिर समझाने का प्रयास किया। जो श्री राम के छोटे भाई द्वारा खींची गई एक रेखा तक नहीं लांग सका, वो स्वयं जगदीश्वर से किस प्रकार पार पा सकेगा।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान भाग संख्या 315। कलाकार थे ए हरिहरन, रविंद्र साठे, संगीत निर्देशक थे सतीश भाटिया। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 6:55 होने को हैं। अब संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिना यू मिन आंग ह्लाइंग इत्यनेन सह चर्चां करिष्यति। उभयोः देशयोः मध्ये ऐतिहासिकानां सभ्यतानां च सम्बन्धान् इतोपि सुदृढीकरणाय वार्तालापः भविष्यति। वार्तालापावधौ म्यांमार भारतयोः मध्ये सुरक्षा सम्पर्कौ च समेत्य सम्पूर्णेषु विभिन्नेषु विषयेषु चर्चाः भविष्यन्ति। राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदः अजीत डोभालः गतरात्रौ दिल्ल्याम् अतिथिगणमान्यैः सह मेलनं विहितवान्। अवधेयं यत् म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः शनिवासरे भारतस्य पञ्चदिवसीय यात्रायां बिहारस्य गयानगरं सम्प्राप्तवान् आसीत्। म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतेः भारतस्य आधिकारिक यात्रायाः कारणात् उभयोः देशयोः मध्ये बहुपक्षीय सम्बन्धः इतोपि सुदृढः भविष्यति इत्यपेक्षास्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रकृतिसंरक्षणे, स्थानीयसमाह्वानानां निराकरणे, अन्यसामाजिककार्येषु च तेषां प्रेरक उपक्रमाणाम् उपलब्धीनां च विषये अनेकेषां नागरिकाणाम् उत्कृष्टयोगदानाय प्रशंसा कृता। आकाशवाण्याः स्वकीये मासिक कार्यक्रमे मन की बात इत्यनेन कार्यक्रमेण राष्ट्रम् अभिसंबोधयन् श्रीमोदी झारखण्ड राज्यस्य रांचीनगरे आयोजिते राष्ट्रिय वरिष्ठ एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धायां उदयोन्मुख क्रीडकानां उत्कृष्ट प्रदर्शनस्य प्रशंसाम् अकरोत्। प्रवर्तमानायाः उष्णतरङ्गस्य स्थितिं प्रति चिन्तां प्रकटयन् प्रधानमन्त्रिणा जनान् अधिकृतान् उपदेशान् अनुसृत्य सुरक्षितं स्थातुं पूर्वसूचनानुसारं कार्यं च कर्तुम् उद्बुद्धवान्।
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: पश्चिम बंगाल राज्यस्य मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अद्य स्वमंत्रिमंडलस्य विस्तारं करिष्यति। 35 नूतनाः मन्त्रिणः मन्त्रिमण्डले समाविष्टाः भविष्यन्ति। शपथग्रहणं प्रातः 11 लोकभवने भविष्यति। नूतनेन समावेशेन शुभेंदु प्रशासने महत्वपूर्णरूपेण संवर्धनं भविष्यति, येन मई मासस्य 9 दिनांके पञ्चमन्त्रिभिः सह कार्यभारं स्वीकृतमासीत्। अनेन विस्तारेण राज्यमन्त्रिमण्डलस्य मन्त्रिणां कुलसंख्या 41 यावत् वर्धिता भविष्यति। निर्वाचनायोगेन 10 चतुर्विंशतिः राज्यसभासदस्यानां द्विवार्षिक निर्वाचनस्य कार्यक्रमस्य घोषणा अद्य क्रियते। भूतपूर्वः प्रधानमन्त्री HD देवगौड़ा, केन्द्रीयमन्त्रिणौ जॉर्ज कुरियन तथा रवनीतसिंहश्च तेषु सदस्येषु अन्तर्भवन्ति। आन्ध्रप्रदेशे, गुजराते तथा कर्णाटके प्रत्येकस्मिन् राज्ये 44 आसनानि सन्ति। राजस्थाने तथा मध्यप्रदेशे प्रत्येकस्मिन् राज्ये 3 आसनानि सन्ति। झारखण्डे 2 आसने स्थः, मणिपुरे, मेघालये, अरुणाचलप्रदेशे च, मिजोरमे च प्रत्येकस्मिन् राज्ये 1 आसनं रिक्तमस्ति। आयोगस्यानुसारं जूनमासस्य 18 मतदानं भविष्यति। मतगणना अपि तस्मिन्नेव दिने भविष्यति। महाराष्ट्रस्य, तमिलनाडुराज्यस्य, ओडिशाराज्यस्य च प्रत्येकस्य 1 आसनस्य कृते राज्यसभायाः उपनिर्वाचनस्य कार्यक्रमस्य अपि आयोगेन घोषणा क्रियते। एतत् निर्वाचनमपि अग्रिममासस्य 18 भविष्यति। एकोननवति वर्षीया प्रख्यात गायिकायाः सुमन कल्याणपुरस्य मुंबई नगरे स्वनिवासस्थाने मृत्युः अभवत्। 50-29 शततमाद् वर्षात् 70-29 शततमं वर्षं यावत् चलचित्र संगीतस्य स्वर्णयुगे नैकासु भारतीय भाषासु कृत कार्याणां कृते एषा वयोवृद्ध गायिका प्रसिद्धा आसीत्। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे अंतिमस्पर्धायां गुजरात टाइटन्स दलं 5 पराजित्य गतविजेतृदलेन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इत्यनेन अस्य वर्षस्य श्रृंखलापि विजिता इति वार्ताः।
0: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 7 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सेहत नामा। तंबाकू सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर शहजाद खान। प्रस्तुति डॉक्टर विनय वर्मा की है।
3: आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न बीमारियों के बारे में हम चर्चा करते हैं और शरीर पर उनके क्या हानिकारक प्रभाव है उसके बारे में बताते हैं। आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। विषय है तंबाकू का शरीर पर हानिकारक प्रभाव। समाज में बहुत सारे लोग विभिन्न रूपों में तंबाकू का सेवन करते हैं। क्या इसके साइड इफेक्ट है, क्या इसका प्रभाव पड़ता है, कैसे इसे रोका जा सकता है, इस बारे में विस्तार से हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर शहजाद खान, जो कि सलाहकार है तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ जनपद रामपुर के। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
4: धन्यवाद सर।
3: डॉक्टर साहब, तंबाकू का सेवन बहुत पुराने समय से चल रहा है और अभी भी जारी है, किन किन रूपों में इसका सेवन समाज में लोग करते हैं?
4: जी बिल्कुल, बहुत पुराने समय से चल रहा है और अभी भी हमारे मध्य में इसका प्रयोग किया जा रहा है। मुख्यतः तंबाकू दो तरीके से प्रयोग होता है, एक जलाने वाला तंबाकू जैसे हम कहेंगे बीड़ी सिगरेट या हुक्का, और एक दूसरा तंबाकू जो मुंह में रखकर इस्तेमाल किया जाता है जैसे खेनी गुटखा, या इस समय एक मंजन के तौर पर गुलमंजन जो कि तंबाकू ही है उसका भी प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः ये कुछ फॉर्म है तंबाकू की जो हमारे द्वारा इस्तेमाल की जाती है समाज में।
3: इसकी आदत क्यों पड़ जाती है, कैसे पड़ जाती है, क्या खाने में रुचिकर होता है या क्या मामला है?
4: जी देखिए, इसमें ना निकोटीन नाम का एक तत्व होता है, निकोटीन से हमें इसका एडिक्शन होता है, हमें इसकी आदत पड़ जाती है।

0: लत पड़ जाती है। करीब 70% लोग इस निकोटीन के कारण ही इसे नहीं छोड़ पाते हैं। निकोटीन एक मादकता देने वाला तत्व है
1: जी,
0: जिसके कारण लोग इसे नहीं छोड़ पाते हैं।
1: और अब बात आती है कि किस उम्र के लोग ज्यादा इससे प्रभावित है, यानी
0: देखिए, अगर हम देखें तो इसमें तो बच्चों में भी हमने काफी लोग बच्चे हमें इस तरीके के मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन युवा वर्ग विशेष तौर पर हमारा इससे ज्यादा प्रभावित है। हमारे यहाँ एक सर्वे हुआ था जिसे ग्लोबल टोबैको सर्वे कहा गया था, उसमें देखा गया था करीब 34% भारतीय विभिन्न प्रकार के तंबाकुओं का इस्तेमाल करते हैं। इस सर्वे में जो एज देखा गया था, जिसको माना गया था 15 वर्ष से ऊपर का माना गया था, तो उसमें चेक किया गया था, तो उसमें 34% भारतीय विभिन्न प्रकार के तंबाकुओं का सेवन कर रहे हैं।
1: ये हमारे शरीर के लिए किस प्रकार से हानिकारक है?
0: देखिए, बहुत ही हानिकारक है तंबाकू। तंबाकू की कोई भी किस्म, चाहे वो मुंह में रखने वाली किस्म हो या धुएं के रूप में लेने वाली किस्म हो, हर तरीके के तंबाकू और किसी भी मात्रा में भी ये सुरक्षित नहीं है। एक अत्यंत कम मात्रा में लेने वाले भी उसी प्रकार हानिकारक हैं जैसे ज्यादा मात्रा में लेने वाले। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि शरीर में मुख्यतः जिसको माना जाता है कैंसर या और बहुत सारी हृदय संबंधी रोग हैं या फेफड़े संबंधी रोग हैं, मुख्यतः 40% कारण तंबाकू बढ़ा देता है शरीर में कैंसर होने के। और जो मुंह में रखने वाली तंबाकू है, जिसे हम गुटखा या खैनी के नाम से जानते हैं, वो 95% कारण होता है मुंह के कैंसर का। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कैंसर का। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के हृदय रोग, जैसे हृदयघात होना या धमनियों में ब्लॉकेज हो जाना, मस्तिष्क में कहीं ब्लॉक हो जाना, ये बहुत सारी पक्षाघात हो जाना, ये सारी बीमारियां तंबाकू के कारण हो सकती हैं।
1: शुरुआत में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं कि इसके साइड इफेक्ट क्या है, इससे शरीर पर क्या नुकसान होता है। बाद में जब वो समझते हैं तो छोड़ने का प्रयास करते हैं, और फिर उनका कहना ये होता है कि हम छोड़ नहीं पाते हैं।
0: जी बिल्कुल, इसको निकोटीन, जैसे मैंने आपको बताया, निकोटीन हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में निकोटीन रिसेप्टर होते हैं। जब वो एक बार एक्टिवेटेड हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, तो वो शरीर से मांग करते हैं निकोटीन की, इसीलिए इसे छोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें दृढ़ निश्चय होना बहुत आवश्यक है। आपको जैसे छोड़ना है तो एक दृढ़ निश्चय कीजिए इसको छोड़ने के लिए। और कोई भी शारीरिक कष्ट आता है, जैसे कुछ लोग बताते हैं पेट खराब रह रहा है या घबराहट होती है या नींद नहीं आती है, तो इसमें चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं और उस पे इसके लिए सलाह लें।
1: ये भी कहा जाता है कि कई स्वास्थ्य केंद्रों पर ऐसे कुछ प्रकोष्ठ बनाए गए हैं जहां पर नशा या इस प्रकार की प्रवृत्ति से जुड़े लोगों को छुड़ाने के लिए उन्हें सलाह दी जाती है या कुछ दवाइयां भी दी जाती हैं।
0: जी बिल्कुल, समस्त चिकित्सा अधिकारी इसके लिए सक्षम है इसकी सलाह देने के लिए। और विशेष तौर पर जितने भी चिकित्सालय हैं हमारे, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो या जिला चिकित्सालय हो, यहाँ काउंसलर्स की व्यवस्था की गई है जो कि इसके लिए काउंसलिंग करते हैं, और जिन लोगों को मेडिसिन की जरूरत है उनको चिकित्सक द्वारा उचित परामर्श दिया जाता है।
1: तंबाकू से बने हुए कई ऐसे उत्पाद हैं जिन पर यह सावधानी भी लिखी होती है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बहुत ही नुकसानदायक है। इसके बावजूद भी इसके सेवन करने वालों में मतलब अच्छी खासी कमी देखने को भी नहीं मिली है जितनी उम्मीद की जाती है।
0: जी बिल्कुल, इसमें कोई भी तंबाकू उत्पाद तब तक भारतवर्ष में नहीं बेचा जा सकता जब तक उस पर वैधानिक चेतावनी ना हो। वैधानिक चेतावनी के अंदर एक कैंसर के मरीज का फोटो है और अब एक टोल फ्री नंबर भी है जो तंबाकू छोड़ना चाहते हैं उस पर टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और उसके तंबाकू छुड़ा सकते हैं। थोड़ा धीरे धीरे इसमें वृद्धि हो रही है, इस टोल फ्री नंबर पर कई सारे रजिस्ट्रेशन होते हैं, और एक अच्छी बात यह है कि अपने उत्तर प्रदेश से भी काफी अधिक रजिस्ट्रेशन होते हैं जिस पर हमारे काउंसलर्स उनको सलाह और सहायता उपलब्ध कराते हैं।
1: जनपद रामपुर के जो तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ है उसके आप सलाहकार हैं, किस प्रकार से आप लोगों को सलाह देते हैं या किस प्रकार से ऐसी जो आपके प्रकोष्ठ की गतिविधियां हैं जिससे इस समस्या से निजात मिल सके?
0: देखिए, इस पे विभिन्न स्तर पर हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने अभी बात की कि कितने लोग प्रभावित होते हैं, जैसे हम आंकड़े देखें तो करीब 5,500 लोग भारत में प्रतिदिन नए तंबाकू वाले जुड़ते हैं। तो इसे रोकने के लिए हमारा विद्यालय जागरूकता कार्यक्रम होता है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि नया युवा वर्ग जो अभी इसका सेवन नहीं कर रहा है उन्हें पहले से ही इसके बताएं और इसकी चेतावनी दें, और वो अपने घर पर भी जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें रोका जाए। दूसरा तरीका है कि जो सार्वजनिक स्थल, जैसे सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है तो वहां जुर्माना अभियान चलाकर, और जो लोग तंबाकू विक्रेता हैं उनके लिए भी कुछ नियम हैं जिनके तहत वो तंबाकू बेच सकते हैं, उन नियमों को सख्ती से लागू कराया जाए। जैसे 18 साल से कम आयु के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचेंगे, इस चीज को हम लोग समय समय पर चेक करते रहते हैं। और ऐसे विक्रेता जो जिनसे ऐसी शिकायतें मिलती हैं, जो लोग ऐसे छोटे बच्चों को ऐसे बेचते हैं, तो उनको तत्काल उन पर कार्रवाई की जाती है, पुलिस द्वारा भी कार्रवाई की जाती है।

0: और जो लोग तंबाकू के लती हो गए हैं,
1: जी
0: एडिक्ट हो गए हैं, तो उनके लिए हमने अपने तंबाकू उन्मूलन केंद्र खोल रखे हैं। उन पर वो लोग आते हैं तो उनको उचित सलाह दी जाती है। और विशेष तौर पर जैसे हमारे जिला चिकित्सालय में या और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई भी मरीज आता है किसी भी परेशानी के दिखाने के लिए, तो उससे एक सवाल ये ज़रूर पूछा जाता है, आप किसी प्रकार की तंबाकू का सेवन कर रहे हैं? यदि अगर वो बताता है कि हाँ सेवन कर रहे हैं, तो जिस बीमारी के लिए आए उसका तो इलाज होता ही होता है, उसको तंबाकू उन्मूलन केंद्र भी भेजा जाता है।
1: जी बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए ये भी कहा जाता है कि जो लोग इसका सेवन करते हैं वो परोक्ष रूप से तो प्रभावित होते ही होते हैं, अपरोक्ष रूप से भी कुछ अन्य लोग भी प्रभावित होते हैं जो इनके संपर्क में आते हैं। वो किस प्रकार से होता है और वो कितना नुकसानदायक होता है?
0: देखिए वो भी उसी प्रकार नुकसानदेह है। अप्रत्यक्ष धूम्रपान या इनडायरेक्ट धूम्रपान
1: जी
0: जैसे हम कहें, ये समझ लीजिएगा अगर इस कक्ष में हम और आप बैठे हुए हैं और यहाँ मैं एक सिगरेट पीता हूँ,
1: जी
0: तो जो सिगरेट का धुआं मेरे अंदर जा रहा है वो जितना मुझे प्रभावित करेगा, अप्रत्यक्ष तौर पर आप भी इसी वातावरण में सांस ले रहे हैं तो आप भी उससे प्रभावित होंगे।
1: जी
0: सेकेंड हैंड स्मोक भी बहुत बड़ा कारण है विभिन्न प्रकार के रोग होने का, जो तंबाकू जनित रोग हैं। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि प्रतिवर्ष अपने भारत में करीब 1 लाख लोग असमय मृत्यु का शिकार होते हैं इस अप्रत्यक्ष धूम्रपान के कारण।
1: जी
0: ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है कार्यालयों में जहाँ हम लोग काम करते हैं वहाँ, या अपने घर पे अपनी फैमिली में।
1: जी
0: अगर हम घर पे किसी प्रकार का धूम्रपान करते हैं, वहाँ छोटे बच्चे भी हैं और हमारे घर पे बुजुर्ग भी हैं जो सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं।
1: बहुत अच्छी सलाह है कि इसे छोड़ना चाहिए। और चूंकि व्यक्ति विशेष प्रभावित होता ही है, साथ ही साथ दूसरे लोग या सार्वजनिक स्थान पर दूसरे लोग जो जुड़े होते हैं वो भी प्रभावित होते हैं, तो आप प्रकोष्ठ के सलाहकार के नाते अन्य लोगों से भी क्या कहना चाहेंगे कि वो किस प्रकार से जो समाज की एक प्रवृत्ति है या समस्या है इससे दूर करने के लिए, निजात पाने के लिए वो प्रयास क्या कर सकते हैं?
0: देखिए मैं आपके माध्यम से सबको ये संदेश देना चाहूँगा कि कम से कम अपने जीवन में आप एक व्यक्ति की तंबाकू ज़रूर छुड़ाएं। आप स्वयं भी कभी किसी का प्रकार का सेवन ना करें, और अगर सेवन कर रहे हैं तो तत्काल इसकी सहायता लें और कम से कम एक व्यक्ति की तंबाकू ज़रूर छुड़ाएं। आप सिर्फ एक व्यक्ति की तंबाकू नहीं छुड़ा रहे हैं जबकि एक व्यक्ति को कैंसर या टीबी होने से बचा रहे हैं जो
1: जी
0: कि बहुत भयंकर रोग है।
1: बिल्कुल
0: आप अपने घर पर अपने परिवार में अगर कोई सदस्य किसी प्रकार का तंबाकू सेवन करता है, तो जैसे आप किसी और बीमारी के होने के लिए परेशान होते हैं, अगर आपके घर में कोई और बीमार हो जाता है, जैसे आप उसको डॉक्टर को दिखाते हैं, प्रॉपर दवाई करते हैं, जो परहेज होता है वो करते हैं, तो इतना ही आप इसको भी संजीदगी से लीजिए, इसको भी आप उतना ही सीरियस लीजिए और तंबाकू ज़रूर छुड़वाइए। कोशिश करिए कि आपके आसपास और आपके दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में, आपके परिवार में कोई भी किसी प्रकार का तंबाकू का सेवन ना करे। कोई छोटी सी मात्रा भी इसके लिए हानिकारक हो सकती है।
1: बहुत अच्छी बात है कि ये व्यक्तिगत बुराई तो है ही है, एक सामाजिक बुराई भी है, इसलिए सभी लोगों को सहयोग करने की जरूरत है, तभी हम इस समस्या से, समाज से, या लोगों को मुक्त कर पाएंगे। डॉक्टर शहजाद खान जी, आप हमारे कार्यक्रम आए और तंबाकू का शरीर पर हानिकारक प्रभाव क्या है इस पर विस्तार से बातचीत की। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोता जो सुन रहे होंगे वो निश्चित रूप से यदि इसका सेवन कर रहे होंगे तो छोड़ेंगे और दूसरों को इससे छुड़ाने में भी मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम आने के लिए।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सेहत नामक के अंतर्गत तंबाकू सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। इस विषय पर डॉक्टर शहजाद खान से डॉक्टर विनय वर्मा की बात। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।

0: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो न जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो।
1: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं।

0: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो ना जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो।
1: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं।
2: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 7:15 होने को है। अब अगला प्रसारण हमारे लखनऊ केंद्र से कुछ ही क्षणों में रिले किया जाएगा।

0: अतुलनीय है हमारा भारत देश।
1: हम भारतीयों में कदापि नहीं है
0: छल कपट दंभ और द्वेष।
1: सरल और सौम्य है हमारा वेश।
0: संपूर्ण जगत में एक ही है ऐसा देश
1: हमारा भारत देश।

0: की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो ना जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो।
1: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में 7:18 होने को हैं। अब अगला प्रसारण हमारे लखनऊ केंद्र से कुछ ही क्षणों में रिले किया जाएगा।

0: अपील है कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से भीषण गर्मी के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील की। सरकार के अलग अलग विभागों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने पर दिया जोर। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने प्रदेश के दशहरी और लंगड़ा आम की किस्मों सहित गंगा डॉल्फिन बचाओ अभियान की भी चर्चा की। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। मुख्यमंत्री ने नागरिक सुरक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। कहा, आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण। और प्रदेश के स्थायी पुलिस महानिदेशक बने वरिष्ठ IPS अधिकारी राजीव कृष्ण। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। इस दौरान श्री मोदी ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की।
3: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले।

0: इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फाजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
0: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जर्दालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण भी होता है। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है, यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सके।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के आकाश गुप्ता का भी जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की मनोरमा नदी को साफ किया है। श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें।
0: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
1: आकाश गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में नाम लिए जाने से और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिली है।
2: आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं, नदी के पास जितने भी गांव हैं, हम चाहेंगे सब युवा हमसे जुड़े और इस काम को एक अभियान बनाए, जिससे कि नदी पूरा साफ हो सके। क्योंकि हम 5 से 6 लोग 7 लोग नदी को पूरा साफ नहीं कर सकते जब तक कि सब लोग एक साथ ना जुड़े।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मन की बात कार्यक्रम में गंगा डॉल्फिन बचाओ और बस्ती के आकाश गुप्ता का उल्लेख किए जाने पर एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया है। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग ने कल गौतम बुद्ध नगर में एनटीपीसी लिमिटेड की अनुसंधान एवं विकास इकाई एनटीपीसी एनर्जी टेक्नोलॉजी रिसर्च अलायंस का दौरा किया। उनके साथ म्यांमार का मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि वह अपने सेवा प्रदाता के ऑन मार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में नागरिक सुरक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों

0: को आवश्यक निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिक सुरक्षा विभाग को जन सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मजबूत, आधुनिक और सक्षम संस्था के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में नागरिक सुरक्षा की भूमिका केवल युद्धकालीन परिस्थितियों तक सीमित नहीं है, बल्कि आपदा प्रबंधन, राहत एवं बचाव, जन जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता तथा आपात परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा है कि राहत एवं बचाव, अग्निशमन, प्राथमिक चिकित्सा, खोज एवं बचाव तथा आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में विभाग की क्षमताओं को और मजबूत किया जाए। स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण आधुनिक सुविधाओं के अनुरूप किया जाए। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: उधर उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स विभाग की एक अन्य बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि होमगार्ड संगठन प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन तथा जन सेवा का महत्वपूर्ण स्तंभ है। बदलते समय और नई चुनौतियों के अनुरूप इस संगठन को अधिक सक्षम, प्रशिक्षित, तकनीकी रूप से दक्ष और आधुनिक बनाया जाना चाहिए। 1991 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को राज्य का स्थायी पुलिस महानिदेशक बना दिया गया है। श्री राजीव कृष्ण अभी तक कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर कार्य कर रहे थे। संघ लोक सेवा आयोग से मंजूरी मिलने के बाद गृह विभाग ने श्री कृष्ण की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया। वह जून 2029 तक इस पद पर बने रहेंगे। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश में कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। विभाग द्वारा कहीं कहीं बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवा चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कई जिलों में तूफान, बारिश, ओले गिरने और बिजली गिरने की घटनाओं के पीड़ितों के त्वरित सहायता के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और नागरिकों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से भीषण गर्मी के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील की। सरकार के अलग अलग विभागों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने पर दिया जोर। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने प्रदेश के दशहरी और लंगड़ा आम की किस्मों सहित गंगा डॉल्फिन बचाओ अभियान की भी चर्चा की। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। मुख्यमंत्री ने नागरिक सुरक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। कहा, आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण। और प्रदेश के स्थायी पुलिस महानिदेशक बने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
3: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
4: कार्यक्रम ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 7:31 हुए हैं। कार्यक्रम सुबह सवेरे बस अब से कुछ ही देर के बाद।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ, 5,000 बच गए।
2: तो नई साड़ी ले ले।
1: ना, पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और
1: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़िया,
1: जाओ भाई।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: कार्यक्रम सुबह सवेरे सुनने वाले हमारे सभी रेडियो श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। कीजिए स्वीकार तरुण का प्यार भरा आदाब व नमस्कार। श्रोताओं, दूध संपूर्ण पोषक तत्वों का खजाना है, या कैल्शियम उच्चतम गुणवत्ता वाले प्रोटीन और विटामिन डी का एक प्रमुख स्रोत है, जो मजबूत दांतों, मांसपेशियों एवं हड्डियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके नियमित सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और दिन भर ऊर्जा मिलती है। इसमें कैल्शियम और विटामिन डी का उच्च स्तर होता है, जो मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, साथ ही ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों की कमजोरी के खतरे को कम करने में सहायक होता है। इसमें मौजूद प्रोटीन मांसपेशियों की मरम्मत और बेहतर वृद्धि में मदद करता है। इसमें विटामिन ए, डी और जिंक मौजूद होता है, जो हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करता है तथा हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है। और श्रोताओं, हम स्वस्थ होंगे, हमारा परिवार स्वस्थ होगा तो बीमारियों का हमारे घर में आना कम हो जाएगा। और जब दुख तकलीफें बीमारियां कम होंगी तो हर घर में खुशी का माहौल होगा। क्योंकि दोस्तों, ये जिंदगी ऐसी है कि हर इंसान एक मुसाफिर है, और जितनी ही खुशी के साथ इस जिंदगी की सड़कों पर वो चलता जाएगा, मजबूती के साथ, हौसले के साथ, उतना ही उसके लिए बेहतर होगा। क्योंकि ये दुनिया आज है, कल नहीं होगी।

श्रोताओं, अब जानते हैं वो घटनाएं और दिन जो इतिहास में दर्ज हो गए और सदा के लिए इतिहास के पन्नों पर एक अमिट छाप छोड़ गए। 1992 में आज ही के दिन भारत एवं इजराइल के बीच हवाई समझौता हुआ। 1999 में मध्य चीन के हुयुबी प्रांत में 770 से 256 ईसा पूर्व के 300 प्राचीन कब्रों की खोज की गई। 2004 में इराकी प्रशासकीय परिषद के प्रमुख नेता गाजी मशाल अजीज अल यावर ईरान के नए राष्ट्रपति बने। 2005 में आपा शेरपा ने माउंट एवरेस्ट की 15वीं बार सफल चढ़ाई की। 2006 में चीन के दक्षिण पूर्वी जियांगशी प्रांत के शागीपन गांव में आदिमानव का पदचिन्ह मिला। 2008 में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। 1819 में बंगाल में सेरमपुर कॉलेज की स्थापना की गई। 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज ने कामकाज शुरू किया। 1874 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया गया। 1929 में फिल्म मदर इंडिया में अपने अभिनय की अमिट छाप छोड़ने वाली मां की भूमिका निभाने वाली नरगिस दत्त का जन्म हुआ। 1930 में भारत की पहली डीलक्स रेलगाड़ी डक्कन क्वीन को बॉम्बे बीटी से पुणे के बीच शुरू किया गया। 1979 में इसी दिन रोडेशिया में 90 साल बाद अल्पसंख्यक श्वेत लोगों के शासन का अंत हुआ था और घोषणा हुई।

ही की। अब देश को जिम्बाब्वे के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, अब जानते हैं आज के दिन हुए कुछ निधन के बारे में। 1 जून को आज ही के दिन 1970 में जन्मे आर माधवन तमिल और हिंदी फिल्मों के लोकप्रिय अभिनेता, निर्देशक और लेखक हैं, जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ है। 1911 में भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और निर्माता अशोक कुमार का जन्म हुआ। 1842 में सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय ICS अधिकारी और गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ है। अब जानते हैं कुछ निधन के बारे में। 1996 में नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति थे, जिनका निधन आज के दिन हुआ है। 1968 में हेलन केलर अमेरिका की प्रसिद्ध लेखिका, विकलांगता अधिकार कार्यकर्ता और लेक्चरर, जिनका निधन आज ही के दिन हुआ। और दोस्तों, आज ही के दिन निधन हुआ है सुमन कल्याणपुर का। इन सभी जानकारियों के बाद आज आपको बताते हैं कि 1 जून को हम कौन कौन सा दिवस मना रहे हैं। विश्व दुख दिवस, वैश्विक अभिभावक दिवस, ये दिवस आज के दिन मनाया जाता है। इन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के बाद आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन कार्यक्रम सुबह सवेरे अपनी रेडियो साथी तरन्नुम के साथ। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। श्रोताओं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आकाशवाणी अपनी स्थापना के 90 वर्ष पूरे करने जा रहा है। इसी अवसर पर हमने बात की अपने एक बहुत ही पुराने श्रोता से। आइए सुनते हैं उनकी और आकाशवाणी से उनके रिश्ते की कहानी, उनकी जुबानी।

0: कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं गुजरात गांधी ग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी बोल रहा हूँ।
0: जी। रेडियो से आप कब से जुड़े हुए हैं, हमारे श्रोताओं को बताइएगा।
1: रेडियो से तो हम 1980 से जुड़े हुए हैं।
0: अच्छा, एकदम
1: जी। मैं अपने चाचा के यहाँ काम करता था, वो बहुत रेडियो के शौकीन थे।
0: जी सर।
1: वहीं से लत लग गई, मैं टीवी देखता ही नहीं, रेडियो सारा दिन सुनता रहता हूँ।
0: अच्छा, तो सर कितनी पुरानी बात है ये?
1: हाँ, 85।
0: अच्छा, काफी टाइम हो गया फिर तो।
1: काफी टाइम हो गया, बहुत सभी को मालूम भी है ये रेडियो का शौकीन है, टीवी नहीं देखेगा वो, उसकी जेब में छोटा सा रेडियो होगा, आपको मोबाइल आ गया है।
0: जी जी,
1: बहुत ही अच्छा रहता है, सभी को मालूम है उसके जेब में रेडियो है।
0: जी हाँ, तो मोबाइल ऐप पर भी अब आ गया है आकाशवाणी। जी,
1: बहुत सुविधा हो गई है, जब पहले लेटर लिखते थे, अब तो मोबाइल ऐप पे आ गया, ईमेल आ गया है।
0: जी,
1: ईमेल करना भी सीख गए हैं।
0: जी,
1: रामपुर में मैं भेजता हूँ, गीत आपके नाम में बहुत भेजता हूँ ईमेल।
0: अच्छा सर,
1: शामिल भी होता है, बहुत अच्छा लगता है कार्यक्रम।
0: जी
1: एकदम, बिल्कुल रोज 12-10 के रोज सुनते हैं। जी।
0: अच्छा सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आकाशवाणी के साथ अपना अनुभव साझा करिए आप, रेडियो के साथ आपके कैसे कैसे अनुभव हैं ये साझा करिएगा हमारे श्रोताओं के साथ।
1: रेडियो तो हम जब भी कहीं भी आकाशवाणी पे जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हम चार धाम की यात्रा करके आ गए।
0: आकाशवाणी में काफी सारे कार्यक्रम आते हैं, हमारे कौन कौन से कार्यक्रम हैं जो आप बहुत ज्यादा सुनना चाहते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं आपको, पसंद आते हैं?
1: फार्मेसी कार्यक्रम ज्यादा सुनता हूँ मैं, जब भी फार्मेसी कार्यक्रम आता है ना।
0: अच्छा, फिल्मी गीतों का?
1: हाँ, फिल्मी गीतों का, फार्मेसी कार्यक्रम।
0: अच्छा,
1: बहुत अच्छा लगता है और सुनता भी हूँ मैं, मोबाइल ऐप पे अब तो आ गया है, मोबाइल ऐप।
0: जी, अब तो मोबाइल ऐप भी है और ईमेल से भी आप अपना फौरन, जैसे आपने प्रोग्राम अभी सुना और उसका फौरन आप अपना रिव्यू भेज सकते हैं ईमेल के जरिए भी। जी
1: बिल्कुल, पहले से खत बहुत लिखता था, 1000 बंडल अभी तक मेरे पास पड़ा है।
0: अच्छा सर,
1: लेकिन ईमेल आ गया ना तो थोड़ी आलस आ जाती है, इसलिए नहीं लिखता।
0: अब ईमेल से आसानी हो गई कि आप बस टाइप कर

0: और सेंड कर दिए, हम तक पहुंच जाएगा। पहले से अब के समय में, पहले जैसे आपने बताया कि 85 से आप रेडियो सुनते आ रहे हैं, तो पहले से अब के समय में जो परिवर्तन आप महसूस करते हैं टेक्नोलॉजी के आ जाने से आकाशवाणी में, उसको बताइए जरा आप।
1: अरे एकदम आसान हो गया है, कहीं भी हम सुन सकते हैं। पहले तो भेजना पड़ता था रेडियो के साथ, अब तो कहीं भी हम कहीं भी जाओ, बाइक में जाओ, कार में जाओ, कहीं भी रेडियो सुन सकते हैं। बहुत टेक्नोलॉजी हो गई है, बहुत अच्छा लगता है।
0: जैसे कि आप जानते हैं कि आकाशवाणी अपने 90 साल पूरे करने जा रहा है, तो इन 90 सालों में एक बहुत लंबा समय होता है 90 साल, तो आप क्या अनुभव साझा करना चाहेंगे और क्या शुभकामनाएं हैं आकाशवाणी के लिए? कि
1: अरे बहुत बहुत शुभकामना है हमारी
0: जी
1: आकाशवाणी। तो मैंने कहा ना, चार धाम की यात्रा लगती है हमको।
0: जी सर,
1: इसलिए क्या शुभकामना तो बहुत है हमारी, बस सुनते रहता हूँ मैं।
0: अच्छा सर,
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुभकामना है हमारी और सभी के कार्यक्रम, हमारे सभी भाइयों दोस्तों हमारी फरमाइश पूरी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
0: अच्छा। और धन्यवाद आपका भी कि आप जो है आकाशवाणी से इतने जुड़े हुए हैं। और आपके परिवार में किसी को शौक है रेडियो सुनने का?
1: हाँ जी जी, मेरी बीवी है ना कलावती सोनी है, दोनों बहुएं हैं।
0: अच्छा।
1: हमारी बहन भी है, हमारी दोनों बहन है। जब भी हम भाई दोस्त को जाते हैं खाना खाने
0: जी,
1: तो उसको रेडियो देते हैं।
0: अच्छा।
1: रेडियो भेंट करते हैं, बोले याद करो भैया। अच्छा। वो भी रेडियो सुनने के लिए, दो बहन है हमारी।
0: अच्छा, तो वही गुजरात में ही रहती वो भी?
1: हाँ गुजरात में ही रहते है, कंडला बंदर कच्छ में रहती है, कंचन कुसुम।
0: अच्छा अच्छा,
1: नाम भी देखता हूँ मैं, जगदीश जोहरी हमारा बड़ा भाई, वो भी बहुत शौकीन है।
0: अच्छा,
1: रेडियो के पूरा खानदान हम शौकीन है, दो बेटे हैं, दो बहुए हैं।
0: अच्छा सर,
1: पोते भी है।
0: जी।
1: हम तो न्यूज़ सुनते हैं, रेडियो रामपुर सुनते रहते हैं
0: जी,
1: बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा, चलिए आपने अपने अनुभव हमसे साझा करे और हमसे बात करी आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने की खुशी में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहिए और इसी तरह हंसते खिलखिलाते रहिए, हमेशा जो है खुश रहिए।

कार्यक्रम के इसी अंतिम गीत के साथ सुबह सवेरे संपन्न करने की अपनी रेडियो साथी तरन को दीजिए इजाजत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। कुछ ही क्षणों में सुबह के 8 बजने को है। अब अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से कुछ ही क्षणों में रिले किया जाएगा।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल
0: घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन से वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
4: म्यांमा के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकन वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमा भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमा के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा।
5: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
6: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
6: वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रूपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रूपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
8: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही है वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही है, किसान के हित में रही है। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रूपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया किस टाइम की जो एज के हिसाब से।
6: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। एक श्रद्धांजलि।
1: कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों और गायकों विशेष रूप से मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार शामिल है।

सुमन कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। इस तुलना के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सधी हुई गायकी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनके निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है।

0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा, सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी, बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन, राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। वो 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी गए। कागिसोर अबाडा ने सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। मनीष पांडे को बैकवर्ड पॉइंट पर टिम डेविड का शानदार कैच लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 75 चौके लगाए। वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी, 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुनीश शर्मा।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिए देसी पेय। ये खबर जनसत्ता समेत सभी अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने कीर्तिमानों की सराहना की है। भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू, भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में 5वां FTA, पश्चिम एशिया संकट के बीच 2 गुना होगा द्विपक्षीय कारोबार। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिंदुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी। सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत में 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी काफी घटती जा रही है। रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने और हवा में सुधार पर अमर उजाला ने सचित्र देते हुए लिखा है कि उत्तर पश्चिम में भारत में आंधी तूफान और बारिश के आसार। जबकि नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली वालों के लिए राहत वाली हवा, 2018 के बाद तीसरी बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान पत्रिका लिखता है, 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन के साथ वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के सदर ऊ मिंट लांग से बातचीत करेंगे। राज्यसभा के दो साल में एक बार होने वाले इंतखाबात के तहत 10 रियासतों की 24 सीटों के इंतखाबात का नोटिफिकेशन आज सुबह जारी किया जाएगा। मरकज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का आगाज करेगा। एक माह तवील इस मुहिम का मकसद कीमियावी खादों के सही इस्तेमाल को फरोग देना है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी 35 वजीरों को अपनी काबीना में शामिल करेंगे। मारूफ गुलूकारा सुमन कल्याणपुर का मुंबई में इंतकाल हो गया। और क्रिकेट में अहमदाबाद में आईपीएल के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के सदर ऊ मिंट आउलोंग से बातचीत करेंगे। ये बातचीत दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और तहजीबी रिश्तों को मजीद मुस्तकम बनाने और ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे पर की जाएगी, जिसमें हिफाजत और राबते भी शामिल हैं। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने कल शाम नई दिल्ली में मेहमान शख्सियत से मुलाकात की थी। सदर ऊ मिंट आउलोंग ने म्यांमार भारत तजारत फोरम से भी खिताब किया। म्यांमार के सदर भारत के 5 रोजा दौरे पर हफ्ते के रोज बिहार के शहर गया पहुंचे थे। उनके हमरा एक आला सतह का वफ भी है, जिसमें बहुत से काबीना वजरा, सीनियर अफसरान और सरकर्दा ताजिर शामिल हैं। जनाब ऊ मिंट का सदर की हैसियत से भारत का ये पहला दौरा है। वो तिजारत और सनत की सरकर्दा शख्सियतों से बातचीत करेंगे और बहुत सी जगहों का दौरा करने के लिए कल मुंबई जाएंगे। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: म्यांमार के सदर आज शाम राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। वो कौमी राजधानी में राय पिथौरा सकाफती मरकज में लाइट एंड लोटस एक जागे हुए शख्स की बाकियात की नुमाइश से भी महजूज होंगे। इस नुमाइश में गौतम बुद्ध से वाबस्ता मुकदस पिपरावा बाकियात और नादिर अशिया को नुमाया किया जा रहा है। म्यांमार भारत की पड़ोसी मुकदम एक्ट ईस्ट और महासागर पॉलिसियों में शामिल है। उम्मीद है कि सदर ऊ मिंट के भारत के इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान कसीर जहती ताल्लुकात में मजीद इस्तेहकाम और गहराई पैदा होगी। न्यूज डेस्क से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: राज्यसभा के दो साल में एक बार होने वाले इंतखाबात के तहत 10 रियासतों की 24 सीटों के इंतखाबात का नोटिफिकेशन आज सुबह जारी किया जाएगा। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट के लिए चुनाव होंगे। साबिक वजीर आजम और जेडीएस के रहनुमा एचडी देवेगौड़ा, मरकजी गुजरा और बीजेपी रहनुमा जॉर्ज कुरियन नीज रवनीत सिंह, राज्यसभा में अपोजिशन रहनुमा और कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे उन अरकान में शामिल हैं जिनके ओहदे की मुद्दत इस माह खत्म हो रही है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए भी नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। ये सीटें महाराष्ट्र के नायब वजीर आला सुनेत्र अजीत पवार और तमिलनाडु से एआईएडीएमके मेंबर पार्लियामेंट सीवी शनमुगम के हाल ही में रियासती असेंबली में मुंतखब हो जाने की वजह से खाली हो गई थी। ओडिशा के बीजेडी मेंबर पार्लियामेंट देवाशीष सामंतरे ने भी इस्तीफा दिया था। इन इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। पोलिंग इस माह की 18 तारीख को होगी और वोटों की गिनती उसी रोज की जाएगी। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश में रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का आगाज करेंगे। एक महीना तवील यह मुहिम 30 जून तक जारी रहेगी। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: इस मुहिम का मकसद सरई जमीन का तहफ्फुज़ और किसानों में साइंसी तर्ज की ज़राअत के बारे में बेदारी पैदा करना है। इस मुहिम में ज़राअत से मुतालिक यूनिवर्सिटीज, ज़रई तहकीक की भारतीय काउंसिल, कृषि विज्ञान केंद्र और अवामी नुमाइंदे हिस्सा लेंगे। किसानों को मिट्टी की जांच, कुदरती ज़राअत, कीमियावी खादों के सही इस्तेमाल और पानी की बचत के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्हें नकली कीमियावी खादों, बीजों और जरासीम कुश दवाओं की शिनाख्त भी बताई जाएगी। मुहिम के दौरान पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा स्कीम, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी स्कीमों, नीज, खेतों में मशीनों से कामकाज किए जाने के फायदे से भी किसानों को वाकिफ कराया जाएगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए नीतिका त्यागी।
0: मगरबी बंगाल के वजीरा शुभेंदु अधिकारी आज अपनी काबीना में तौसी करेंगे। वजीरों की इस काउंसिल में 35 नए वजीर शामिल किए जाएंगे। हलफबरदारी की तकरीब लोक भवन में दिन के 11 बजे मुनाकद होगी। शुभेंदु अधिकारी ने बुनियादी तौर पर 5 काबीना वजीरों के साथ 9 मई को हलफ लिया था। इस तौसी के बाद रियासती काबीना के वजीरों की तादाद 41 हो जाएगी, जो 294 रुकनी मगरबी बंगाल असेंबली का आईनी उसूल के तहत 15% है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के नायब वजीर आजम और वजीर दिफा रिचर्ड मार्लिस आज नई दिल्ली में दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया दिफाई वुजराय डायलॉग की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। वजारत दिफा ने बताया कि इस डायलॉग के दौरान बातचीत में दिफा और सिक्योरिटी से मुतालिक तआवुन को मुस्तहकम बनाने, फौजी इंटर ऑपरेबिलिटी और मुश्तरका तरक्की और मौकों की मुश्तरका पैदावार समेत सनती इश्तराक पर खास तवज्जो दी जाएगी। तवक्को है कि इस मीटिंग से दोतरफा दिफाई ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे, स्ट्रेटेजिक एतमाद और बाहमी तआवुन में इजाफा होगा, भारत बहरुल काहिल खित्ते में इस्तेकाम और सिक्योरिटी को फरोग हासिल होगा और दिफा और सिक्योरिटी मामलात में इश्तराक के नए मौकों को उजागर किया जाएगा। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मिसाली क्यादत में गुज़श्ता 12 साल में भारत में नुमाया तब्दीली रूनुमा हुई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का उसूल इस तब्दीली का मुहर्रिक रहा है। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों पर मरकूज मुतअद्दिद पहलुओं का आगाज और नफाज किया है। आकाशवाणी न्यूज गुज़श्ता 12 साल में कलीदी शोबों में किए गए हुकूमत के इकदामात पर एक खसूसी सीरीज पेश कर रहा है। आज हम किसानों की फलाह बहबूद के लिए किए गए इकदामात पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं।
1: नरेंद्र मोदी हुकूमत ने गुज़श्ता 12 साल में किसानों की बहबूद और उनकी आमदनी में इजाफा करने के लिए मुतअद्दिद पहल कदमियों का आगाज किया है। इन इकदामात में सबसे नुमाया पीएम किसान स्कीम का आगाज रहा है, जो मुल्क में फलाह बहबूद से मुतालिक सबसे बड़ी पहलों में से एक है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बेहद सूदमंद है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
1: फसल बीमा योजना से तकरीबन 23 करोड़ किसानों 1,92,000 करोड़ रुपए मालियत के बीमा दावों से मुस्तफीद हुए हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के छोटे और हाशिर बरादर किसानों को 3,000 रुपए की यकीनी माहाना पेंशन मिल रही है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के एक रिहायशी ने कहा कि मजकूरा स्कीम से किसानों को रोजगार में मदद मिलेगी।
4: मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं, वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से,
1: कम से कम इमदादी कीमत MSP किसानों के लिए लाइफलाइन बन गई है, क्योंकि हुकूमत ने MSP को पैदावार से मुतालिक अखराजात का 1.5 गुना कर दिया है। आकाशवाणी न्यूज से दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: मशहूर मारूफ गुलुकारा सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई में उनकी रिहायशगाह पर इंतकाल हो गया। वो 89 बरस की थी। उन्हें 1950 से 1970 की दहाई के दरमियान, जिसे फिल्म मौसीकी का सुनहरा दौर कहा जाता है, हिंदी, मराठी और बहुत सी दीगर भारतीय जबानों में उनकी गुलुकारी के सबब जाना जाता है। सुमन कल्याणपुर के बारे में कुछ तफसील।
2: सुमन कल्याणपुर 28 जनवरी साल 1937 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पैदा हुई थीं। उन्होंने हिंदी फिल्मों में पहली बार 1950 की दहाई के वस्त में गाना गाया था। उनकी आवाज लता मंगेशकर की आवाज से काफी मिलती जुलती थी। उन्होंने अपनी बेहद खूबसूरत आवाज में दिल को छू लेने के अंदाज में तारीख साज मौसीकारों, गुलुकारों, खासतौर पर मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गाने गाए। उनके मकबूल तरीन गानों में से कुछ गाने ये हैं।

0: महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा, वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे और सुनेत्र पवार, नीज मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के इंतकाल पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है और अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में मौसीकी के मैदान में उनके तआवुन को उजागर किया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जिला इंतजामिया, रिलीफ कमिश्नर दफ्तर और मुतालिका महकमों को हिदायत दी है कि वो रियासत के कई अजला में तूफान, बारिश और इंतहाई खराब मौसमी हालात पर मुसलसल नजर रखे, किसी भी हादसे की सूरत में फौरी इकदाम को यकीनी बनाए। कल राजधानी लखनऊ समेत कई अजला में मौसम में तब्दीली आई जिससे लोगों को शदीद गर्मी से कुछ राहत मिली। मौसमियात महकमे ने रियासत के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसराइली फौज ने जनूबी लबनान में दिफाई एतबार से अहम ब्यूफोर्ट कासल इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। इसराइल की दिफाई फौजों ने बताया कि ब्यूफोर्ट रिज और वादी अल सलूकी में फौजी दाखिल हुए और इन इलाकों पर कब्जा कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया है जिनमें यह कहा गया है कि ईरान के साथ उनके मुजवजा माहदे में न्यूक्लियाई मामलात का जिक्र नहीं है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप ने बताया कि इस माहदे में वाजे किया गया है कि ईरान को न्यूक्लियाई हथियार हासिल करना नहीं दिया जाएगा और इस माहदे में न्यूक्लियाई सरगर्मियों से मुतालिक तफसीली कवानीन शामिल हैं। क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब जीत लिया। बीसीसीआई सदर मिथुन मन्हास और सेक्रेटरी देवजीत साइकिया ने आईपीएल 2026 की बाबकार ट्रॉफी आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार को पेश की। तफसील हमारे नमानिगार से।
1: For a second time running, Royal Challengers Bengaluru back-to-back winners of the Tata IPL.
2: कल रात उस वक्त आरसीबी के हर फैन का ख्वाब पूरा हो गया जब विराट कोहली ने गेंद को हिट करके बाउंड्री से बाहर पहुंचाकर टीम को जीत दिलाई। गुजरात टाइटंस की तरफ से दिए गए 156 रन के निशाने को आरसीबी ने विराट कोहली के 42 गेंद पर 75 रन की मदद से बआसानी हासिल कर लिया। उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने 8 विकेट के नुकसान पर महज 155 रन बनाए। गुजरात टाइटंस की तरफ से वॉशिंगटन सुंदर सबसे ज्यादा 50 रन बनाकर नॉट आउट रहे। दिल्ली से चिराग झा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कोनेन हैदर।
0: आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नशर होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे शदीद गर्मी के दौरान महफूज

0: 102.9 मॉर्निंग हिट सुनने वाले सभी रेडियो श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। कीजिए स्वीकार तरन्नुम का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: की गिनती देश की शान जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना फिल्म बधाई हो से। गायक कलाकार थे आयुष्मान खुराना और नेहा कक्कड़। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू से आतिफ असलम की आवाज़ में मनोज मुंतशिर के लिखे इस खूबसूरत से गीत को।

कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म भारत से अभिजीत श्रीवास्तव की आवाज में विशाल शेखर के संगीत से सजे इस खूबसूरत से गीत को।

कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दबंग 3 से शबाब साबरी और दिव्या कुमार की आवाज में साजिद वाजिद के संगीत से सजे इस गीत को।

माफ कीजिएगा, कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म पागलपंती से आशीष कौर जुबिन नौटियाल की आवाज में इस गीत को, संगीत तनिष्क बागची का है।

कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कबीर सिंह से अरिजीत सिंह की आवाज में मिठुन के संगीत से सजे इस गीत को।

कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म दबंग 3 से शबाब साबरी और दिव्या कुमार की आवाज में साजिद वाजिद के संगीत से सजे इस गीत के साथ।

कार्यक्रम के इसी अंतिम गीत के साथ 102.9 संपन्न करने की अपनी रेडियो साथी तरन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे 102.9 मॉर्निंग हिट्स। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में 9:15 होने को हैं। अब अगला प्रसारण हमारे लखनऊ केंद्र से कुछ ही पलों में रिले किया जाएगा।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए चित्रकूट और मैनपुरी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं चित्रकूट जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अजय प्रताप सिंह का।
1: प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत जनपद चित्रकूट में आवासहीन एवं जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। मार्च 2026 तक जनपद के समस्त नगर निकायों से कुल 13,835 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 7,067 आवेदनों की जांच प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। जांच उपरांत 4,663 आवेदक आयोजना हेतु पात्र पाए गए। पात्र लाभार्थियों में से 3,547 आवेदकों का DPR तैयार कर मुख्यालय प्रेषित किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा जनपद चित्रकूट में कुल 1,932 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें नगर पालिका परिषद चित्रकूट धामकर भी 935 आवास, नगर पंचायत राजापुर 553 आवास, नगर पंचायत मऊ 414 आवास, नगर पंचायत मानिकपुर 30 आवास शामिल हैं। स्वीकृत 1,932 आवासों में से 1,603 लाभार्थियों के खातों में प्रथम किस्त की धनराशि 1,00,000 प्रति लाभार्थी की दर से हस्तांतरित की जा चुकी है तथा लाभार्थियों द्वारा आवास निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1 के अंतर्गत पूर्व में स्वीकृत 7,911 आवासों में से 7,665 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। जनपद प्रशासन द्वारा पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से योजना का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने बताया कि जनपद में लगातार बढ़ रही गर्मी और हीट वेव के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अस्पतालों में आने वाले मरीजों और तीमारदारों को गर्मी से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं, साथ ही ORS ग्लूकोज और जिंक टेबलेट का वितरण भी किया जा रहा है। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में आवश्यक दवाओं, ORS और ठंडे पानी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। हीट वेव प्रभावित मरीजों के उपचार हेतु विशेष वार्ड भी आरक्षित किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि बच्चों को हल्के एवं सूती कपड़े पहनाएं, पर्याप्त पानी पिलाएं और तेज धूप से बचाएं। जनपद वासियों से अपील की गई है कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अनावश्यक रूप से धूप में बाहर न निकलें, पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थ लेते रहें तथा सिर ढककर ही घर के बाहर जाएं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार लोगों को जागरूक करने में जुटी हुई हैं। भीषण गर्मी और बदलते मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों को राहत देने और समय रहते अलर्ट करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। जनपद में मौसम संबंधी रियल टाइम डाटा उपलब्ध कराने के लिए 6 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और 6 ऑटोमेटिक रेन गेज स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इन स्टेशनों के जरिए तापमान, वर्षा और मौसम में होने वाले बदलावों की लगातार निगरानी की जा रही है। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग का कहना है कि अब लोग घर बैठे मौसम की सटीक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और उसी अनुसार बाहर निकलने या जरूरी कार्यों की योजना बना सकेंगे। यह व्यवस्था खास तौर पर भीषण गर्मी, लू और मौसम बदलने जैसी स्थितियों में काफी मददगार साबित होगी। जनपद में नवीन मंडी और मंडी परिसर, करवी, मऊ, राजापुर व मानिकपुर तहसील परिसर समेत विभिन्न स्थानों पर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाए गए हैं। वहीं खो पुलिस लाइन, सीतापुर माफी, PG कॉलेज, पहाड़ी ब्लॉक और बड़गढ़ थाना सहित अन्य स्थानों पर ऑटोमेटिक रेन गेज स्थापित किए गए हैं। इनसे मिलने वाला रियल टाइम डाटा राहत आयुक्त कार्यालय उत्तर प्रदेश शासन के पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। बुंदेलखंड में जल संकट और जल जीवन मिशन की पेयजल योजनाओं पर उठते सवालों के बीच सरकार ने निगरानी व्यवस्था को तकनीक से मजबूत कर दिया है। अब गांव में रोज कितना पानी सप्लाई हुआ, कितनी जरूरत थी और वास्तविक आपूर्ति कितनी हुई, इसकी जानकारी आम जन जन प्रतिनिधि और अधिकारी भी ऑनलाइन देख सकेंगे। इसके लिए जल जीवन मिशन का ऑटोमेशन पोर्टल शुरू किया गया है। जनपद की चांदी, बांगर, सिलौटा, मुस्तकिल और रायपुरा ग्राम समूह पेयजल योजनाओं को आधुनिक ऑटोमेशन प्रणाली से जोड़ दिया गया है। इन योजनाओं के ओवरहेड टैंक, पंपिंग स्टेशन, अन्य महत्वपूर्ण उपकरण अब ऑनलाइन मॉनिटरिंग से संचालित हो रहे हैं। इससे जलापूर्ति व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ने के साथ जवाबदेही भी तय होगी। अब किसी गांव में प्रतिदिन कितनी मात्रा में पानी पहुंचा, वहां अनुमानित जल मांग कितनी थी और उसके मुकाबले कितनी आपूर्ति दी गई, यह सब पोर्टल पर देखा जा सकेगा। इसके अलावा ओवरहेड टैंक में पानी का स्तर, पंप संचालन की स्थिति और उपकरणों की कार्यशीलता जैसी तकनीकी जानकारी भी उपलब्ध रहेगी। अधिशासी अभियंता उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण आशीष कुमार भारती ने बताया कि ओवर की ऑटोमेशन व्यवस्था लागू होने से योजनाओं की निगरानी अधिक प्रभावी हुई है। किसी भी गांव में जलापूर्ति कम होने, तकनीकी खराबी आने या संचालन में बाधा की स्थिति में तत्काल जानकारी मिल जाएगी। इससे संबंधित एजेंसियां तेजी से सुधारात्मक कार्रवाई कर सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में लंबे समय से पानी सप्लाई को लेकर शिकायतें सामने आती रही हैं। कई गांवों में लोगों को यह पता नहीं चल पाता था कि पानी कम क्यों पहुंचा। अब पोर्टल के जरिए पूरी व्यवस्था सार्वजनिक होने पर ग्रामीण खुद भी निगरानी कर सकेंगे। जल जीवन मिशन का डाटा देखने के लिए jjm.up.gov.in पोर्टल खोलना होगा। इसके बाद ऑटोमेशन डिटेल फेज 1 विकल्प चुने, फिर डिस्ट्रिक्ट स्कीम नेम में योजना का चयन करें। इसके बाद OSD और व्यू डाटा पर क्लिक करते हुए गांव वार जलापूर्ति, पानी की मांग, सप्लाई की मात्रा, ओवरहेड टैंक में जल स्तर और पंप संचालन की पूरी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी।
2: अगर कोई विशेष कार्य हो तो ही आप इस समय आप बाहर निकले और जब भी खुले में निकले या कहीं भी जाए तो विशेष कर अपने साथ पानी की उचित व्यवस्था या इलेक्ट्रोलाइट या नींबू पानी इत्यादि इस तरीके का इसका ध्यान जरूर रखें।
0: चित्रकूट जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मैनपुरी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नीरज कुमार शर्मा का।
3: मैनपुरी जिले में मिशन समाधान अभियान चल रहा है। यह अभियान प्रत्येक गुरुवार को जिले की सभी तहसीलों में चलाया जाता है। इस अभियान में राजस्व विभाग के शासनादेश के निर्देशों के तहत राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीमें गांवों में जाकर भूमि संबंधी विवादित मामलों का निपटारा करती हैं। विकास विभाग की टीम भी सहयोग के लिए गांव में तैनात रहती है। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी के निर्देशन में प्रत्येक गुरुवार को आयोजित होने वाले मिशन समाधान का असर अब धरातल पर दिखाई दे रहा है। विगत दो मिशन समाधान दिवसों में ग्राम सभा की सैकड़ों बीघा भूमि खाली कराई गई। मिशन समाधान में अधिकांश प्रकरण दोनों पक्षों की मौजूदगी में दोनों की सहमति के आधार पर निस्तारित किए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा है कि मिशन समाधान का मुख्य उद्देश्य भूमि विवादों का स्थानीय स्तर पर दोनों पक्षों की उपस्थिति में निस्तारण कराना है। मिशन समाधान में जो भी प्रकरण निस्तारित किए जाएं, उन प्रकरणों में दोनों पक्षों की उपस्थिति अवश्य सुनिश्चित कराई जाए और कृत कार्रवाई पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर कराए जाएं। किसी प्रकार का पक्का निर्माण न हटाया जाए, उसे नियमानुसार ही हटाया जाए। स्पॉट मेमो पर दोनों पक्षों की नाप पर सहमति के हस्ताक्षर अवश्य कराए जाए। पट्टेदारों को कब्जा दिलाने पर दखलनामा अवश्य बनाया जाए। जन सुनवाई के प्रकरण जो मिशन समाधान में लगाए गए हैं, उनमें यदि कोई प्रकरण न्यायालय में संचालित हो तो उसी अनुसार निर्णय लिया जाए। जिन प्रकरणों में सुलह समझौता संभव न हो, उनमें विधिक प्रक्रिया के तहत अपेक्षित कार्रवाई की जाए। मैनपुरी जिले में पेट्रोलियम पदार्थों की नियमित आपूर्ति के लिए जिला प्रशासन ने सघन निगरानी की व्यवस्था की है। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने संबंधित अधिकारियों, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित करते हुए कहा है कि आम जन को समयबद्ध पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। सभी उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी समय से हो, ताकि उन्हें एजेंसियों के गोदाम कार्यालय के बार बार चक्कर न लगाने पड़े। उन्होंने कहा कि होम डिलीवरी व्यवस्था में किसी प्रकार की लापरवाही, अनावश्यक विलम्ब स्वीकार नहीं किया जाएगा। शिकायत मिलने पर संबंधित एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई उपभोक्ता विशेष परिस्थिति में स्वयं गोदाम से गैस सिलेंडर प्राप्त करता है तो नियमानुसार होम डिलीवरी शुल्क वापस किया जाए। उपभोक्ताओं के साथ किसी भी प्रकार का आर्थिक शोषण न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। गैस कंपनियों के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता है, जिस पर उन्होंने गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों, गैस एजेंसी स्वामियों को निर्देश दिए कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कॉमर्शियल गैस कनेक्शन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए तथा घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर प्रभावी रोक लगाई जाए। मैनपुरी में जनगणना का कार्य समयबद्ध हो, इसके लिए जिलाधिकारी द्वारा नियमित अनुश्रवण किया जा रहा है। जनगणना के कार्य में लगे प्रगणकों के कार्य की समीक्षा हो रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा संचालित जनगणना 2027 का प्रथम चरण 22 मई 2026 से प्रारंभ हो चुका है, जिसके अंतर्गत मकानों का सूचीकरण कार्य कराया जा रहा है। मैनपुरी में एक सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा बच्चों का एडमिशन न करने पर बच्चे जिलाधिकारी की जन सुनवाई में एडमिशन को फरियाद लेकर पहुंचे। जिलाधिकारी ने बच्चों का स्कूल में प्रवेश न किए जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है और किसी भी परिस्थिति में बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपद के प्रत्येक पात्र बच्चे को विद्यालय में प्रवेश मिले तथा उन्हें शासन द्वारा संचालित सभी शैक्षिक सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए। जिलाधिकारी के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने विद्यालय पहुंचकर बच्चों का नामांकन कराया। उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन एवं संस्कृत मंत्री जयवीर सिंह ने 23 मई को टानिस्ट हॉस्टल में आयोजित जन सुनवाई के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि संबंधी विवादों का मौके पर जाकर प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए और ऐसे मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। उन्होंने कहा कि मिन जुमला नंबर से जुड़े मामलों में सभी खातेदारों की मौजूदगी में पैमाइश कराकर प्रत्येक व्यक्ति को उसकी भूमि उपलब्ध कराई जाए। पर्यटन मंत्री ने कहा कि जनपद में भूमि विवादों के निस्तारण में तेजी आई है और राजस्व पुलिस विभाग संयुक्त रूप से बेहतर काम कर रहे हैं। पर्यटन मंत्री ने कहा कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुँचे, साथ ही गर्मी के मौसम में विद्युत आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था, साफ सफाई, एंटी लार्वा छिड़काव और कूड़ा उठान जैसी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हों।
0: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
4: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग। अकबर इलाहाबादी के जीवन के कुछ प्रेरक प्रसंग, प्रस्तुति असीम सक्सेना की है।

बात मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी के जीवन की है। उनके समकालीनों का कहना था कि उनमें जिंदा दिली इस कदर समाई हुई थी कि वो विकट परिस्थितियों में भी हास परिहास का वातावरण पैदा कर देते थे और अपने रंगों से सबको सराबोर कर देते थे। वृद्धावस्था थी, आंखों की रोशनी कुछ कमजोर हो चली थी तो उन्हें ऑपरेशन करवाना पड़ गया। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने आंखों पर पट्टी बांधी और अपनी फीस लेकर चलते बने। थोड़ी देर बाद उनके साहबजादे हसरत हुसैन कमरे में दाखिल हुए और अपने वालिद का हालचाल पूछा। ऐसे मौके पर भी अकबर इलाहाबादी परिहास करने से न चुके। उन्होंने जवाब देते हुए साहबजादे को ये शेर सुनाया, रोशनी आए तो हम देखें कहीं अपना हिसाब, वो तो 200 ले गए आंखों पे पट्टी बांध के। ऐसे जिंदा दिल शायर थे अकबर साहब, जो उदास दिलों को भी हंसा देने की कला जानते थे। अकबर इलाहाबादी हर दिल अजीज थे। हास्य व्यंग के जरिए समाज की उन्होंने खूब खबर ली। उनके व्यंग श्रेष्ठ होते थे, प्रभावपूर्ण होते थे और गाहे बगाहे वो महफिलों की जान बन जाते थे। 1911 की बात है, इलाहाबाद में एक प्रदर्शनी लगी थी। देश के कोने कोने से लोग उसे देखने आए थे। मशहूर गायिका और नर्तकी गौहर जान भी कलकत्ता से आई हुई थी। गौहर जान ने श्रोताओं से भरे हुए खचाखच हॉल में अकबर की एक गजल बड़े ही अनूठे अंदाज से सुनाई। श्रोता मंत्रमुग्ध हो उठे। अकबर साहब के एक दोस्त ने गौहर जान की गायकी की इस अदा पर अकबर की जब प्रतिक्रिया पूछी तो अकबर ने निराले ढंग का ये शेर कह सुनाया, खुश नसीब आज कौन यहाँ है गौहर के सिवा, सब कुछ अल्लाह ने दे रखा है शौहर के सिवा। शायर डॉक्टर इकबाल आमों के बहुत शौकीन थे, इसलिए उनके जिगरी दोस्त और चाहने वाले उन्हें यहाँ से अच्छे अच्छे आमों का पार्सल भेजा करते थे। एक बार जब वो लाहौर में थे तो बनारस के लंगड़ा आमों का पार्सल मिला, जिसे भेजा था मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी ने। डॉक्टर इकबाल ने उन्हें आमों के पार्सल के लिए शुक्रिया अदा किया, वो भी एक मजेदार शेर के रूप में, तेरे फैज मसीहाई का है ये सब असर, अकबर इलाहाबाद से लंगड़ा चला और लाहौर तक पहुंचा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग, अकबर इलाहाबादी के जीवन के कुछ प्रेरक प्रसंग, प्रस्तुति असीम सक्सेना की थी। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में 9:30 होने को हैं। अब उर्दू कार्यक्रम हमारे लखनऊ मरकज से नश्र किया जाएगा।

ಕಟ್ಟು ದೂರ ಇರಲಿ ರಾಯ ನಿನ್ನ ನನ್ನ ತಡಿಯಾ ಬಂದಿತ್ತ ದಾತ ದಾದಾ.

Dale, dale.

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उप शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पखावज वादन तीन ताल में लयबद्ध। कलाकार थे चित्रंजन देव शुक्ला। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।

कार्यक्रम आपके अनुरोध पर सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। स्वीकार कीजिए तरन्नुम का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मशहूर इंडियन प्लेबैक सिंगर सुमन कल्याणपुर का कल 31 मई की शाम को निधन हो गया है। आइए उनको याद करते हैं और उनकी ही आवाज में सुनते हैं कुछ फिल्मी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म ब्रह्मचारी से। गायक कलाकार हैं सुमन कल्याणपुरी, मोहम्मद रफी। संगीत शंकर जयकिशन का, फरमाइश आप सबकी। बेजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष, अंशिका, यूनुस खान, साथ में सोफिया खान की। बेरडी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची और तनु करमरकर की। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे की। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद की। यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार की। गोला बाजार लक्सर से श्रद्धानंदन आर्य, अभयनंद आर्य, प्रमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित व मोहित की। मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, शायना, काजल, असद भाई और फिरोजा मुस्कान की। लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर, कान्हा सफलता, कपिल, मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर भाई और प्रभुलाल बांगरी की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बेटा बेटी से सुमन कल्याण और मोहम्मद रफी की आवाज में शंकर जयकिशन के संगीत से सजे इस खूबसूरत से गीत को। फरमाइश आप सबकी। गौतम नगर जिला नादेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले की। पटेल नगर मलोड पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया, बेबी आरजू जाजौरिया की। बुलडाड़ा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमेधा कुमार दामोदर की। मोहल्ला थाना टीन रामपुर से इकराम अली, फैजान अली, शाह एहसान अली, शहनाज, गुलनाज, रूमा, गुड्डू, इमरान, जहीर और आसिफ भाई की। आदर्श नगर मलोड पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा, साथ में निवान शर्मा की। जातुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज। सिराजपुर गणेशपुर से कैसर आलम, हिना कौसर, मोहम्मद वकील राही, फिरोज आलम और नाज परवीन की। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके अनुरोध पर अपनी रेडियो साथी तरन्नुम के साथ। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं फिल्म दिल ने फिर याद किया से सुमन कल्याणपुरी और मोहम्मद रफी की आवाज में इस खूबसूरत से गीत को। फरमाइश आप सबकी, ग्राम घाटमपुर से राम भजन सैनी, हरप्यारी सैनी, राजीव, संजय, मुकेश, आशा, अंशिका और पूजा सैनी की। कस्बा बराडा, जिला अंबाला से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, प्रियंका, जयप्रकाश राहुल, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत और गुरुशब्द राहुल की। जिला अमरोहा, नई बस्ती, पते खालसा से बहरुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, बिटिया अलीशा सिद्दीकी, शकील, सलीम, फहीम, मोहम्मद यासीन अंसारी और सुदेश चौहान की। भटिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग की। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद जिला बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद तबरेज अंसारी, अबरार हुसैन, बबलू कैप्टन निसार और मस्तान बाबा की। दतरेंगी से भागवत वर्मा, लिवई से गुलाब दास मानिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, मवाली सिंगारपुर से सालिक पुजारी की। रहमानिया मोहल्ला महसूल सीतामढ़ी बिहार से तलत जहानाज, फरहत जहां, रिफत जहां, रूही नाज, वसीम अकरम, नदीम अकरम, शमीम अकरम और अमन अकरम की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, फिल्म अनजाना से सुमन कल्याणपुरी और मोहम्मद रफी की आवाज में फरमाइश आप सबकी। राजनाथ गांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान और इरफान आसमा की। जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, आबिदा तिवारी की। बोर खेड़ा पीतरामल जिला उज्जैन से विनोद मूरत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूरत, चेतन नहाटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश मूरत की। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार की। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहरा।

जहां की जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर से मुकेश कश्यप, सोनू, सुरेश राजपाल, काजल, सीमा, मानवी, तन्वीर, लक्ष्य सोनी, मोहिनी और ऋतिक की। चौधरी ढाबा बिलारी से रजा अहमद, इशरत जहां, जमाल कमाल, आयत और हमजा की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। साथ ही साथ नए महीने जून की आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: मौसम चाहे जैसा हो, मन में उम्मीद की धूप हमेशा खिली रहनी चाहिए। बहुत खूबसूरत विचार है, आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद।
3: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कोट कुटिया नायक, पद्मलोचन मोहंती, अभिराम साहू, सत्यजीत नायक और साई प्रसाद नायक जी का।
2: रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा।
3: और ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश, धर्मेंद्र और ममता बाई वर्मा जी ने लिखा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं जी? आशा करते हैं आप सकुशल होंगे। आज बहुत दिनों बाद आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र भेज रहे हैं। काम की कुछ व्यस्तताओं के कारण आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र नहीं भेज पा रहे थे, लेकिन हम लोग नियमित रूप से आपका उमंग कार्यक्रम सुन रहे थे। उमंग कार्यक्रम में इन दिनों राग रस बरसे कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। धन्यवाद इस कार्यक्रम को उमंग कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। आपने संगीत प्रेमियों की खुशी को दोगुना बढ़ा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जेल रोड कानपुर से फातिमा वली बेलदार, सरफुद्दीन वली बेलदार, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम बेलदार जी का।
2: खेरागढ़ राजलालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे।
3: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए।
3: और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ है?
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका का शीत मरुस्थल।
3: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
2: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में सकुरा कहते हैं।
3: और अब हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है?
2: ट्यूलिप फूल मूल रूप से कजाकिस्तान का है। यहाँ से ये तुर्की पहुँचा और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया।
3: और फिर हमने आपसे पूछा था श्रोताओ, रजनीगंधा फूल रात में ही अधिक खुशबू क्यों देता है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। प्रकृति ने रजनीगंधा फूलों को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए बनाया है। रात को इस फूल के अंदर का सुगंधित तेल बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण रात्रि बेला के कीट पतंगे इस फूल की ओर आकृष्ट होते हैं।
3: हमारा अंतिम प्रश्न था, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
2: इसका उत्तर है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
3: तो श्रोताओं ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था?
3: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
2: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आज का हमारा पहला कार्यक्रम है श्रोता संवाद। चर्चा का विषय है समावेशी शिक्षा।
3: ये कार्यक्रम उमंग प्रसारण का मासिक संस्करण है, जिसे हम CIET NCERT और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की जाने वाली डिजिटल व अन्य पहलों के बारे में जानकारी देते हैं। आज की चर्चा के विषय विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। श्रोता संवाद।
2: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने हमारा विशेष मासिक रेडियो संस्करण श्रोता संवाद प्रसारित होता है, जिसमें हम जानकारी देते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और CIET NCERT द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही विभिन्न पहलों पर। इस क्रम में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। आप CIET के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्ष हैं। तो प्रोफेसर कौशिक, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
4: धन्यवाद।
2: हमारे श्रोता ये जानने के लिए हमेशा बहुत उत्सुक रहते हैं कि श्रोता संवाद में हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा। तो आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं?
4: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो अक्सर आपको और मुझको छूता तो है, हम देखते तो हैं
2: जी,
4: लेकिन कहीं ना कहीं हम झिझक जाते हैं इस पर बातचीत करने में
2: जी।
4: आज हम बातचीत करेंगे समावेशी कक्षाओं की, समावेशी शिक्षा की।
2: क्या बात है। तो मेरा पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से ये है कि समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? क्या इसे हम समता मूलक शिक्षा भी कह सकते हैं?
4: इसको हम समता मूलक शिक्षा तो शायद नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी को सम दृष्टि से देखना
2: जी,
4: तभी तो वो समावेशी शिक्षा है, सबको साथ लेकर के चलना। लेकिन जहां हम बात करते हैं समता मूलक, मतलब हर एक की विशिष्टता को, हर एक की आवश्यकता को पहचान देना, हर एक की आवश्यकता को समझना और उसके अनुरूप उसकी पूर्ति करना
2: जी।
4: अब ये विद्यालयों में, हमारे कक्षा कक्ष में कैसे हो सकती है, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं
2: जी।
4: आप ये समझिए कि समावेशी कक्षा के या समावेशी शिक्षा के प्रावधानों में आता है कि सबको समान तरह की पुस्तकें देना, सबको समान तरह का खाना देना मिड डे मील के अंतर्गत, या सबको समान तरह की आप यूनिफॉर्म देते हैं, ठीक
2: जी,
4: है
2: जी।
4: अब अगर कोई विद्यार्थी मेरी कक्षा में ऐसा है जो देख नहीं सकता या जिसको देखने में दिक्कत है, तो क्या होगा? लेकिन मैं तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत काम कर रही हूँ, तो मुझे तो उसको मुद्रित या प्रकाशित या छपी हुई किताबें ही देनी है
2: जी।
4: लेकिन वो विद्यार्थी जो नहीं देख पा रहा, उसका क्या? उसके लिए तो वो किताबें किसी काम की नहीं है। यहाँ पर मुझे क्या करना है? यहाँ मुझे समता मूलक शिक्षा के सिद्धांतों का पालन करते हुए मैं उनके लिए ऐसी किताबें दूं जो या तो वो सुन लें, यानी ध्वनि के रूप में हो किताबें, रिकॉर्डेड हो
2: जी,
4: या मैं उन्हें ऐसी किताबें दूं जो ब्रेल में हो, जिनको वो छू करके पढ़ सकें, या एक तीसरा स्वरूप हो सकता है कि मैं उन्हें डेजी में भी किताबें दूं, जो भी ध्वनि आधारित किताबें होती
2: जी।
4: समता मूलक शिक्षा में हम क्या करते हैं? हम प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम तब उसको पूर्ति करते हैं। और समावेशी शिक्षा में हम क्या करते हैं? सबको सम दृष्टि, एक समान दृष्टि से देखते हैं। यानी अगर हम एक को अगर हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो पूरी कक्षा को हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो वहां व्यक्तिगत आवश्यकताओं का उतना ज्यादा ध्यान हम नहीं दे पाते हैं
2: जी। आपने बहुत ही विस्तार से हमें बताया कि समावेशी शिक्षा और समता मूलक शिक्षा में क्या अंतर है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके इतिहास की। प्रोफेसर भारती, हमें अब ये बताएं कि भारत में समावेशी शिक्षा की शुरुआत कब हुई?
4: सबसे पहला जिक्र विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा का आता है हमारे कोठारी कमीशन में, जो 1964 का जो शिक्षा आयोग है, जिसको हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं
2: जी।
4: इस कमीशन में बातचीत तो की गई थी कि हमें दिव्यांगजन विकलांगजनों को हमें शिक्षा देनी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी
2: जी।
4: क्या इन्हें सामान्य विद्यालयों में, मुख्य धारा विद्यालयों में बिठा करके पढ़ाना है, या इनके लिए अलग से कुछ हमें एक विद्यालय खोलने होंगे? लेकिन हाँ, जिक्र जरूर किया गया था। तो शुरुआत हमने किया कि ठीक है, इनके लिए हम कुछ अलग से विद्यालय बनाते हैं, वहां

0: हम इनको पढ़ाएंगे। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये विद्यार्थी भी अंततः हिस्सा तो हमारे ही समाज का बनेंगे। तो एक पहल छोटी सी ये की गई कि इन विद्यार्थियों को विशेष विद्यालयों से निकाल करके कुछ समय के लिए मुख्यधारा विद्यालयों में लाया गया, ताकि दोनों तरह के विद्यालयों के बच्चे आपस में बातचीत कर सकें और घुल मिल सकें और एक दूसरे को अजूबा न समझें। विशेष विद्यालयों में पाठ्यचर्या भी विशेष थी, शिक्षक भी विशेष थे और बच्चे भी हमारे विशेष आवश्यकता वाले थे। तो जब ये हम मुख्य धारा में इनको कुछ समय के लिए लेके आए तो ये हमारा एक प्रयोग कुछ आंशिक रूप से सफल हुआ
1: जी।
0: उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या किया, कुछ विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को हमने विद्यालय से पूर्व उनकी पूर्ति करने की कोशिश की और फिर उन्हें मुख्य धारा विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं से समावेश करना उनका शुरू किया। इसमें भी कुछ सफलताएं मिली, कुछ विफलताएं मिली, लेकिन सफलताओं से सीख करके आगे बढ़े और आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हम कहते हैं कि हर बच्चे को मुख्य धारा विद्यालय में दाखिला दे। इसीलिए हम जीरो रिजेक्शन पॉलिसी अपनाते हैं कि एडमिशन में हमें सभी को दाखिला देना ही है। इसीलिए आज हमारा हर एक विद्यालय समावेशी विद्यालय है।
1: जी प्रोफेसर भारती, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में पढ़ाने की बात की है। जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश की शिक्षा के पूरे परिदृश्य को बदल दिया है।
0: बिल्कुल।
1: आज हम विशेष रूप से आपसे ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा के मौलिक सिद्धांत क्या क्या हैं।
0: हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारे शिक्षा के परिदृश्य को बहुत अच्छी तरह से परिवर्तित किया
1: जी।
0: ठीक है। इसमें मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था में तो बहुत परिवर्तन किए ही हैं, साथ ही साथ जो समावेशी शिक्षा की हमारी परिकल्पना है
1: जी,
0: उसमें भी बहुत बदलाव किए हैं। जैसे अभी तक हम समझते थे कि समावेशी शिक्षा का मतलब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजन या विकलांग शिक्षार्थियों से जुड़ी हुई है या उन विद्यार्थियों से जुड़ी हुई है जो अलाभान्वित वर्गों या क्षेत्रों से आते हैं
1: जी।
0: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारी इस अवधारणा को और व्यापक और विस्तृत स्वरूप दिया है
1: जी।
0: इसने सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूहों की पहचान की है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। तो इसमें 5 उपसमूह आते हैं
1: जी।
0: सबसे पहला उपसमूह इसमें लिंग के आधार पर है, जिसमें हम जेंडर आधारित आवश्यकताओं को पहचानते हैं और उनकी पूर्ति विद्यालयों में कैसे की जाए इस पर सोच विचार करते हैं
1: जी।
0: दूसरा जो हमारा उपसमूह है वो ऐसा उपसमूह है जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों से आता है या वहां से संबंधित रखता है। विषम भौगोलिक परिस्थितियां जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से आता है, मरुभूमि से आता है या ऐसी जगहों से आता है जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, विद्यार्थियों को अपने विद्यालयों तक पहुंचने में अतिरिक्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है
1: जी।
0: तो वहां पर विद्यालय कैसे सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं, ये हमारा दूसरा उपसमूह है
1: जी।
0: तीसरा उपसमूह हमारा सांस्कृतिक परिवेश को लेकर के है
1: जी।
0: सांस्कृतिक परिवेश कैसे, इसमें हमारे ऐसे उपसमूह में लोग आते हैं जो जनजातीय क्षेत्रों से हैं, आदिवासी क्षेत्रों से हैं या अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित हैं
1: जी।
0: इन उपसमूहों के छात्रों को भी विशेष आवश्यकताएं हैं, उनकी पाठ्यचर्या से संबंधित, उनके दिनों दिन की आवश्यकताओं और रहन सहन से संबंधित, जिनका पाठ्यचर्या से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, तो इन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक चौथा उपसमूह है जो है हमारा आर्थिक रूप से कमजोर समूह, हमें दोनों ही जगहों पे मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलता है और शहरी क्षेत्रों में भी मिलता है, तो इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है
1: जी।
0: पांचवा उपसमूह इसमें आता है जो है विकलांगताओं का या विशेष आवश्यकताओं का, जिनको हम पहले से भी पहचानते हैं
1: जी।
0: इसमें NEP 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकलांग जन अधिकार अधिनियम 2016 को पूर्ण रूप से अपना समर्थन देती है और इस 2016 के अधिनियम में 21 तरह की विकलांगताओं या दिव्यांगताओं को पहचाना जाता है। तो हम इन पूरी 21 तरह की दिव्यांगताओं के सकारात्मक शैक्षिक समावेशन पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में
1: जी।
0: इसके अलावा राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है वो है भारतीय सांकेतिक भाषा
1: जी।
0: पहली बार एक सरकारी दस्तावेज में भारतीय सांकेतिक भाषा को भाषा का एक औपचारिक दर्जा दिया गया और ये भी कहा गया कि जो भी हमारे शिक्षण अधिगम सामग्री है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या राजकीय स्तर पर हो, दोनों ही स्तरों पर यह सामग्री सांकेतिक भाषा में भी उपलब्ध कराई जाए। तो ये बहुत दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हमारी दृष्टि को बहुत व्यापक किया है।
1: जी, आपने अभी सांकेतिक भाषा की बात की, तो हमारे श्रोता जरूर ये जानना चाहेंगे कि सांकेतिक भाषा क्या है और समावेशी शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है।
0: सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा जहां आप बोल करके नहीं बातचीत करते हैं
1: जी।
0: एक ऐसी भाषा जहां आप देख करके हाव भावों से, संकेतों से पहचानते
1: जी।
0: हैं। जैसे आपको प्यास लगी है लेकिन आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां बहुत शोर शराबा हो रहा है, आप चाहे जितना मर्जी चिल्ला करके बोले क्या होगा, कोई आपकी बात नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर आपने पानी पीने का इशारा किया
1: जी,
0: तो जो देख रहा है वो समझ जाएगा ना कि भाई आपको पानी पीना है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन ये तो बात हुई एक विशेष स्थिति की
1: जी।
0: आप सोचिए, आपके हमारे बीच में ऐसे लोग भी तो हैं जिनको सुनाई कम देता है
1: जी,
0: या जिनको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता, और ये स्थिति शायद उनकी जन्म से है
1: जी।
0: अच्छा, अब ये लोग क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि सुनाई नहीं देता तो वो बात नहीं करना चाहते, अपने विचार नहीं रखना चाहते, उनको समझ नहीं आ रहा है। तो उनके लिए जो भाषा है वो है संकेतों की भाषा
1: जी।
0: अब ये संकेत हर जगह के अलग हो सकते हैं। भारत में अगर सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो है भारतीय सांकेतिक भाषा
1: जी।
0: अगर आप अमेरिका में जाकर के कुछ सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो अमेरिकन सांकेतिक भाषा हो जाती है
1: जी।
0: दोनों भाषाओं में अंतर है, और ये अंतर उस तरीके से है जिस तरीके से आप अपने हाथों का, अपनी उंगलियों का या अपने हाव भावों का इस्तेमाल करते हैं। तो हर देश की अपनी एक सांकेतिक भाषा है। और आपको यहाँ ये जानकर आश्चर्य होगा, जैसे संज्ञा शब्द होते हैं हमारी बोलचाल की भाषा में, मौखिक भाषा में, बिल्कुल उसी तरह से, उदाहरण के लिए लेते हैं गणपति का संकेत
1: जी।
0: गणपति का संकेत मंगलवार को दर्शाता है महाराष्ट्र में
1: जी,
0: ठीक है। लेकिन मंगलवार को दर्शाएगा हनुमान जी की गदा का संकेत कहां? उत्तरी भारत में।
1: बिल्कुल।
0: तो ये संकेत भी हमारे अलग अलग जगह पे अलग अलग आते हैं
1: जी।
0: तो इसीलिए भारतीय सांकेतिक भाषा की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी उतनी ही विविधता है जितनी की किसी और मौखिक भाषा में है
1: जी। ये तो हुई हमारी सांकेतिक भाषा के बारे में जानकारी और समावेशी शिक्षा के बारे में जानकारी। तो अब हमारे श्रोता विशेष रूप से ये जानना चाहेंगे कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी यानी CIET NCERT द्वारा क्या क्या पहलें की गई हैं
0: जी। देखो, सांकेतिक भाषा में भी हम बहुत काम कर रहे हैं। जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिगम सामग्री बनेगी, तो हमारी जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं उनको हम सांकेतिक भाषा के वीडियोज में हम परिवर्तित कर रहे हैं
1: जी।
0: लेकिन इन वीडियोज में ऑडियो भी है
1: जी,
0: और इन वीडियोज में सांकेतिक भाषा तो है ही है, साथ के साथ आपकी पाठ्य पुस्तक का पेज भी है
1: जी,
0: ताकि कोई भी छात्र, चाहे उसे सांकेतिक भाषा आती हो या नहीं आती हो, अपने साथी के साथ बैठ करके वो वीडियो देख सके। इसके अलावा CIT NCERT सभी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप भी बना रही है, जो बहुत सरलता से CIT की वेबसाइट पर उपलब्ध है
1: जी।
0: इसके अलावा समावेशी कक्षाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर रोज दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक हमारा एक विशेष लाइव सत्र हर DTH चैनल पर प्रसारित होता है। इस लाइव सत्र में हम क्या करते हैं? इस लाइव सत्र में हम एक कक्षा, एक विषय, एक पाठ्य पुस्तक और एक पाठ लेकर के हम विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, इस पाठ की सहायता से आप ये बताइए कि आप कैसे इस पाठ को समावेशी कक्षाओं में सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए
1: जी
0: आप पढ़ा सकते हैं। और जब आप आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो समावेशी कक्षा है, लेकिन सिद्धांत आपको समतामूलक अपनाना है, यानी प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता को आपको ध्यान में रखना है। तो एक हमारी ये जाती है सीरीज
1: जी।
0: इसके अलावा अगर आप चाहे तो अपने विद्यालयों को किस तरह से अवरोध मुक्त बना सकते हैं
1: जी,
0: उसके लिए हमारे पास है प्रिया सुगम्यता योद्धा। अब ये प्रिया सुगम्यता योद्धा क्या है? ये एक छोटी सी कॉमिक बुक है जो बहुत सरलता से समझाती है कि सुगम्यता का

0: टाइलें कैसी हैं? उनकी विशेषता यह है कि आप अपने जूते पहने हुए भी उनको महसूस कर सकते हैं
1: जी,
0: उनके उभारों को महसूस कर सकते हैं, मतलब वो स्पर्शनीय टाइल हैं
1: जी।
0: ये स्पर्शनीय टाइल बताती हैं कि कहाँ रास्ता है, कहाँ इकट्ठा होना है हमें
1: जी।
0: तो उस तरह की टाइलें हमारे विद्यालयों की संरचना को भी बहुत सुगम्य बनाती हैं
1: जी।
0: इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल हमारी CIT NCERT की है, वो है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में पहचानी गई सभी 21 तरह की दिव्यांगताओं को विद्यालयी स्तर पर पहचानने के लिए एक जांच सूची बनाना, जिसको हम कहते हैं प्रशस्त। प्रशस्त हिंदुस्तान की पहली स्टैटिस्टिकली स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत जांच सूची है, जो 21 तरह की सभी दिव्यांगताओं को शिक्षकों, विशेष शिक्षकों की मदद से पहचानती है। और इसके लिए शिक्षकों का दिव्यांगताओं के बारे में विशेषज्ञ होना भी जरूरी नहीं है
1: जी।
0: तो ये भी एक हमारी पहल है
1: जी। प्रोफेसर भारती, अभी आपने ये जानकारी दी कि NCERT की बुक्स ऑडियो बुक्स के रूप में उपलब्ध हैं, तो ये किताबें हमें कहाँ से मिल सकती हैं?
0: ये किताबें आपको बहुत सरलता से CIET के वेब पेज से मिल सकती हैं। आप CIET के वेब पेज पे जाइए, वहां पे ऑडियो बुक्स लिखिए तो आपको वो मिल जाएंगी
1: जी।
0: और एक और सरल उपाय है
1: जी,
0: आजकल तो गूगल हम सब की मदद के लिए है ही है, गूगल पर जाइए, लिखिए ऑडियो बुक CIET NCERT, आपको सीधा वहां उसी पेज पे ले जाएगा और आप वहां से ले सकते हैं
1: जी।
0: एक चीज और भी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये किताबों के लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा तो ये बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है और CIT वेब पेज के साथ साथ आपको ये दीक्षा पर भी आराम से मिल सकती हैं
1: जी।
0: और यह किताबें आपको NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी आपको मिल जाएंगी। तो सरलता से आप हमारी ऑडियो बुक्स को CIT की वेबसाइट से, NCERT ऑफिशियल YouTube से और साथ ही साथ दीक्षा से बिल्कुल निःशुल्क बिना किसी शुल्क के प्राप्त कर सकते हैं
1: जी। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में आदिवासी समूहों और समाज के अन्य पिछड़े समूहों को भी शामिल करने की दिशा में NCERT की क्या पहल है?
0: बिल्कुल, आदिवासी जाति या अन्य पिछड़े समूहों को शिक्षा से जोड़ने के लिए NCERT की पहलों में सबसे मुख्य जो है वो यह है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं
1: जी,
0: अगर आप ध्यान से देखें तो वो पाठ्य पुस्तकें पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं
1: जी।
0: उनकी कहानियां, उनके पाठों की विषय वस्तु जनजाति समूहों, हमारे आदिवासी समूहों और अन्य पिछड़े वर्गों के परिवेश को भी दर्शाती हैं
1: जी,
0: जिससे ये पाठ्य पुस्तकें हर बच्चे को अपनी सी लगती हैं, उससे उनमें कोई अलगाव की भावना विकसित नहीं होती
1: जी।
0: तो सबसे बड़ी बात तो यही है और जब आप पाठ्य पुस्तकों से जुड़ते हैं तो फिर आप अपने विद्यालयों से भी जुड़ते हैं
1: जी।
0: ये पहल हमारी यहाँ से शुरू होती है लेकिन अंत यहाँ पर नहीं है
1: जी। बिल्कुल, तो अब आज का अंतिम प्रश्न, ये भी प्रश्न मेरा दिव्यांगों से ही जुड़ा हुआ है। मेरा प्रश्न है, दिव्यांगों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कुछ विशेष प्रयास किए जा रहे हैं?
0: दिव्यांगों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, जैसा हमने बीच में भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने तो बहुत सारे प्रावधानों की मांग की है, उसके दो प्रावधानों पर हमने चर्चा की कि सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूह कौन से हैं, उसमें कौन से बच्चे आते हैं और भारतीय सांकेतिक भाषा की। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि प्रत्येक बच्चे की भागीदारी और उसको अपनापन या जुड़ाव महसूस हो, इस पर बहुत ज्यादा काम करना जरूरी है। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी कहती है कि व्यक्तिगत सहयोग और समर्थन दिया जाए प्रत्येक बच्चे को, तभी हम समतामूलक शिक्षा की बात करते हैं समावेशी कक्षाओं या शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। तीसरी चीज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि आपको तकनीक और सहायक उपकरणों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ यह भी है बहुत सरल से शब्दों में कि आप दीक्षा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, आप ध्वनि पुस्तकों का इस्तेमाल कीजिए, साथ ही साथ अगर कोई बच्चा आकर के शिक्षक को कहता है कि जी मुझे आज की कक्षा रिकॉर्ड करनी है क्योंकि मैं सही से लिख नहीं पाता हूँ या समझ नहीं पाता हूँ या ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाता हूँ, तो शिक्षकों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह भी समावेशी कक्षा प्रणाली का ही एक भाग है और सहायक उपकरणों का प्रयोग है। एक और चीज भी है, इसी कड़ी में जुड़ता है शिक्षकों का संवेदीकरण

0: और उनकी तैयारी
1: जी,
0: मतलब शिक्षकों को आपको सेंसिटाइज करना भी जरूरी है विशेष आवश्यकताओं के प्रति, ताकि वो अपनी कक्षाओं को समतामूलक और समावेशी कक्षाओं में परिवर्तित कर सके
1: जी।
0: यह काम लेकिन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा शिक्षक और विद्यालय नहीं कर पाएगा, इस काम के लिए आपको परिवार और समुदाय का सहयोग भी लेना होगा
1: जी।
0: जब परिवार और समुदाय शिक्षा व्यवस्था प्रणाली से जुड़ते हैं तभी तो विद्यार्थियों का समग्र विकास हो पाएगा। तो बहुत सारी चीजें हम एक साथ शुरू कर रहे हैं
1: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर भारती इस उपयोगी जानकारी के लिए। इस आशा के साथ कि देश की शिक्षा व्यवस्था में समावेशी शिक्षा का भविष्य दिन प्रतिदिन उज्ज्वल होता जाएगा, हम आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप हमारे श्रोताओं को कोई विशेष संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहिए, ये आपके और हमारे आसपास ही हैं। कई बार हम इन्हें देख करके भी अनदेखा कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। याद रखिए, बूंद बूंद से ही सागर भरता है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्रोता संवाद। हमें इस कार्यक्रम पर आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।

0: तो हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए मुझे यानी अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: अतुलनीय है हमारा भारत देश।
1: हम भारतीयों में कदापि नहीं है
0: छल कपट दंभ और द्वेष।
1: सरल और सौम्य है हमारा वेश।
0: संपूर्ण जगत में एक ही है ऐसा देश
1: हमारा भारत।

0: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनते सुनाते 90 साल। आज इस कार्यक्रम की कड़ी संख्या 1 आपको सुनवा रहे हैं।
1: समय की धारा जो प्रवाहमान रहती है निरंतर, इस धारा में होती है कुछ ध्वनियां जो कभी पुरानी नहीं पड़ती। आकाशवाणी यानी भारत की आवाज, मधुर, प्रभावी और वक्त के साथ चलती आवाज, वह आवाज जो पीढ़ियों के दिलों में आज भी गूंजती है।
2: तरंगों ने छुआ एक नया आकाश, आकाश से निकली एक वाणी जिसका उद्घोष पहले सिर्फ देवता किया करते थे, देखते ही देखते वो हुई जनवाणी। बह निकली शब्द और संगीत की गंगा।

इस गंगा को केवल भागीरथ ने ही नहीं हर घर ने समेटा अपने रेडियो सेट में। आपकी अपनी आकाशवाणी।

जुलूस, जलसा, आंधी तूफान, कर्फ्यू, दंगा या हो अंधाधुंध बारिश का पानी, सदा समय के साथ चली, कभी न थमी, वो है आकाशवाणी।

सुनते सुनाते बीता है इन सुनहरे 90 वर्षों का सफर। केवल तकनीकी विकास की कहानी नहीं है, बल्कि ये संजोए है भावनाओं, यादों और आत्मीय जुड़ाव का अद्भुत इतिहास। गौरवशाली, गरिमामयी, लोकप्रियता के सर्वोच्च शिखर पर आवाजों का सफर पूरी कर रहा है अपने 90 साल। आज भी दिल में उभरता है ये एहसास कि अभी तो शुरू हुआ है ये सफर। एक छोटी सी ध्वनि, तरंगों के साथ मधुर लहर, गूंजी एक आवाज, ये आकाशवाणी है। सुनते सुनाते कब बीत गए 9 दशक, जैसे पलकों पर ठहरी हो कोई चमक। कभी खबरों की गंभीरता, कभी गीतों की मधुरता, हर धड़कन में बस गई इसकी झलक। गांव की चौपाल से शहर की राह, हर दिल में बसी थी बस इसकी चाह। किस्से, कहानियां, संगीत का साज जोड़ता रहा दिलों को बनकर हमराज। ये हमराज बन गया बेहद खास, जुड़ गया अपने पन का रिश्ता, दिखाई दिया एक अलग अंदाज। रेडियो पर ये आकाशवाणी है। ये वाक्य सुनते ही मन के किसी कोमल कोने में बीते दिनों की मधुर गूंज जाग उठती है।

0: याद आता है वो सुनहरा दौर जब घरों में सुबह की शुरुआत आकाशवाणी से प्रसारित मधुर धुनों से होती थी। दिन भर मन बहलता, यहां तक कि रात का सन्नाटा भी उसके साथ ही गहरा था। रेडियो पर गूंजती आकाशवाणी भावनाओं का सजीव साथी, जो बिना देखे दिलों को जोड़ता रहा, एकता के इंद्रधनुष के रंग बिखेरते हुए भारत भर के श्रोताओं को आपस में मिलवाते हुए 90 सालों से अनवरत लगातार सुनते सुनाते 90 साल। रिश्ते केवल खून से नहीं बनते, कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो आवाज की डोर से बंधे होते हैं। रेडियो और श्रोता का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है, न देखा न छुआ फिर भी दिल के बेहद करीब। एक ऐसा बंधन जो शब्दों और सुरों के सहारे रूह तक उतर जाता है। मिलते हैं और सुनते हैं भारत भर के आकाशवाणी श्रोताओं से, जो सुना रहे हैं रेडियो से अपने जुड़ाव की कहानी, अपनी सुपानी।
1: मैं नीलू मेघ नीलम राजधानी रायपुर से बोलती हूँ। ये मैं कहना चाहती हूँ, जैसे कि अभिमन्यु ने जो विद्या सीखी थी अपनी माँ के गर्भ में, वैसे ही मैंने अपनी माँ के गर्भ से जो है आकाशवाणी सुनना शुरू किया। मुझे मेरे नसों में, मेरी रगों में, मेरे कंकण में जो आकाशवाणी का इतना महत्व जो आगे चल के हो गया, वो यहीं से उसकी शुरुआत हुई। और मुझे इसमें बहुत ही दिलचस्पी हो गई थी। मैं सुनती थी, रात रात तक सुनती थी, कान के नीचे लगा के, ट्रांजिस्टर लगा के सुनती थी। मुझे शब्दों से इतना प्यार हो गया, क्योंकि मैं गाने सुनती थी, जब गाती थी तो मेरे अंदर में एक लय और शब्दों की जो एक पहचान थी वो बड़ी बहुत गहरे से हो रही थी। मैंने कॉपी करती थी मैं गानों को, और गानों को फिर दोबारा से सुनती थी, फिर मिलाती थी, फिर गाती थी। इस तरीके से मुझे यहाँ ये भी लगा कि मुझे लिखने का भी जो शऊर है मेरा, यहीं से शुरू हुआ। हमारे लोक संगीत में तो है ही है, कविताएं है ही है, लोक रंग में जितना आनंद है, जो लोक गीत होते हैं उनका भी देखिए आकाशवाणी से इतना प्रसार होता है। यानी एक तो मनोरंजन, फिर आप उससे समाज को कुछ दे पा रहे हैं। तो इतने बड़े बड़े साहित्यकार जो हुए हैं आज तक मैंने देखा है, तो वो सारे साहित्यकार कमोबेश यहाँ से जुड़े हुए हैं। उनकी कविताएं या तो कभी उनकी स्वयं यहाँ पर रिकॉर्ड हुई, या फिर वो बाहर किसी आयोजन से भी हुई, तो वो उनको हमको हर साहित्यकार को यहाँ सुनने का मौका मिला, चाहे वो कैफे आजमी हो, चाहे वो शकील बदायूनी हो, चाहे वो खुमार बाराबंकी साहब हो। खुमार बाराबंकी के साथ तो मैंने खुद ने कविताएं पढ़ी हुई है। आकाशवाणी से जुड़ने के बाद ही इन चीजों को समझ पाई और उनको आत्मसात कर पाई थी, तभी मैं उस क्षेत्र में आगे बढ़ पाई। मैंने अपने आप को ढाला और आज मैं इस क्षेत्र में हूँ, श्रोता भी हूँ, और उसके साथ में कवित्री तो खैर मैं हूँ ही, लेखिका हूँ, कहानियां लिखती हूँ, सब कुछ करती हूँ। लेकिन मैं आज भी इससे आनंदित रहती हूँ। अगर मुझे कोई साहित्यकार न भी कहे तो न कहे, लेकिन एक अच्छा श्रोता भी कहे तो मेरा मन बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि मुझे जो कुछ भी मिला है रेडियो से मिला है। रेडियो से मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ, वही मेरी लोरी है और वही मेरी सुबह की जो है ना अलार्म जो बजता है वही है रेडियो मेरा। तो मैं क्या कहूँ, मेरे जीवन में तो बहुत कुछ है रेडियो। हमारी परंपराओं को, हमारे संस्कार को, हमारे लोकगीतों को, यहाँ की छत्तीसगढ़ी भाषा की कविताओं को, हिंदी की कविताओं को जो स्थान आकाशवाणी ने दिया है वह कहीं और नहीं मिल सकता था। यहाँ तो कूटमंडू होकर ही रह जाते हम अगर आकाशवाणी नहीं होता। इन सब साहित्यकारों को, कवियों को, लेखकों को, कलाकारों को, लोक कलाकारों को अगर वो संवारता नहीं तो उनके बारे में हम कहाँ जान पाते, हम कहाँ जान पाते कि तीजन बाई कौन है, हम कहाँ जान पाते कि झाड़ूराम देवांगन कौन है, हम कहाँ जान पाते कि ममता चंद्राकर कौन पाते। लेकिन आकाशवाणी का माध्यम ऐसा है कि हर व्यक्ति जो हमारा गाँव का है वो सुबह से साइकिल में लेके निकलता है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो खेतीहर हो, कोई भी हो, तो अपने आकाशवाणी को सुनता हुआ ठहर जाते हैं। उनकी अच्छी अच्छी बातें हम अचानक से सुन लेते हैं, उनके लोकगीत को हम अचानक से सुन लेते हैं, उनकी चीजों को हम अचानक से सुन लेते हैं, मन प्रफुल्लित होता है और हमको एक दूसरे से जुड़ने का कितना मौका मिलता है। हम ऐसे नहीं मिल पाते, नहीं जुड़ पाते, लेकिन जब हम सुन लेते हैं कि बरेली से क्या आ रहा है, रामपुर से क्या आ रहा है, अचानक भयानक हम सुन लेते हैं, कभी सुन लेते हैं जबलपुर से क्या आ रहा है, कभी मंडला से क्या आ रहा है, यहाँ तो थोड़ी थोड़ी दूर में जो है बोली और भाषा बदल जाती, पानी बदल जाता है। तो हम यहाँ रायपुर में रहकर, हमारी भले ही छत्तीसगढ़ी भाषा है, आपके बिलासपुर में, लेकिन वहाँ की अलग है, उसको भी हम समझ पाते हैं। वहाँ के कलाकार जब आकाशवाणी से आते हैं तो हम उनकी भाषा को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। जगदलपुर की अलग है, उनको सुन लेते हैं, समझ लेते हैं कि हमारे ही प्रदेश में भाषाओं में कितना, बोलियों में कितना अंतर है, उनके उसमें टोन में कितना अंतर है। तो ये सब हमको ज्ञान जो मिल रहा है अपने प्रदेश को जानने का और दूसरे के प्रदेशों को भी जानने का, और उनके साथ कभी कभी कंपेयर करने का भी कि कहाँ का लोक संगीत, कहाँ की बातें, कहाँ की भाषा, कहाँ की क्या चीज जो है वो अच्छी है आकाशवाणियों के जरिए। तो मैं इसके लिए तो अपनी आकाशवाणी को और समस्त श्रोताओं को, समस्त उद्घोषकों को, इसको संवारने संवारने वाले लोगों को भी मैं बहुत बधाइयां देना चाहती हूँ, बहुत उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ।
2: गौरी शंकर गोपलान है सर मेरा नाम, भीलवाड़ा राजस्थान से हम रहने वाले हैं। आपके आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हम लोग आकाशवाणी से बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, बिना का गीतमाला और वो आते थे उस जमाने में। 1963 का वार भी याद हमको, जिसमें हमारे गणपत लाल जी डांगियर वो बोलते थे जयपुर से, जयपुर के पास है हम लोग। आकाशवाणी से तो हम रामचरित मानस भी खूब सुनते हैं, अभी 10-12 जगह से आते हैं सुबह, जिनके अलग अलग टाइम है, सबके 10-10 मिनट के आते हैं। और उसमें रामचरित मानस में 408 भाग है कुल, और 408 दिन में पूरी जाती है रामचरित मानस। रामचरित मानस में ऐसा साहब हमारे पिताजी ने बताया था कि इसको जो पढ़ते हैं ना उनकी हिंदी बहुत ही अच्छी हो जाती है। इसके बाद आपके ये 90 वर्ष के हुए हैं पूरे आकाशवाणी के सभी केंद्रों को तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं। ये आकाशवाणी से ये रामचरित मानस सुनाए जा रहे हैं, ये चलते रहे प्रोग्राम आपके बढ़िया टाइम टू टाइम।
3: मैं जय मंत्री केवट अनूपपुर मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। आकाशवाणी को यानी कि 90 वर्ष पूर्ण होने पर आप सभी को बधाई। इतने वर्षों से हम जुड़े हुए हैं, हमारे पूर्वज भी जुड़े थे, हमारे पिताजी जुड़े थे, सुन रहे थे, और मैं उनसे प्रेरणा लेकर रेडियो कभी कभी सुनने को मिल जाता था, तो उसमें मैं खेती के बारे में सुनती थी, तो ऐसा लगता था कि ये सब चीजें खेती करना और सरल है, ऐसे तो नहीं लगता था, फिर भी मैं सरल समझती थी क्योंकि मार्गदर्शन जो मिलते थे आकाशवाणी से। आकाशवाणी से प्रेरणा लेकर मैं भी कुछ कुछ खेती किसानी में ध्यान देती हूँ, अपने अपने घर की खेती किसानी में ध्यान देती हूँ। बागवानी भी मुझे बहुत पसंद है। किसानों के लिए तो कृषि जगत में मैं सुनती हूँ, तो जो शासन की योजनाएं हैं वो विस्तार से बताते हैं, फिर शासन की योजनाओं का लाभ भी कृषक भाई लेते हैं। आकाशवाणी से सुनकर ही मैं सब कुछ जाना। सिंचाई के बारे में जो स्प्रिंकलर सिंचाई मैं नहीं जानती थी, ये मैं शहरों में देखती थी, कभी मैं पढ़ाई के दौर पर टूर हुआ तो मैं देखती थी कि वहाँ फव्वारे कैसे चलते होंगे, लेकिन आज मेरा बेटा खुद स्प्रिंकलर लगाकर और इस साल खीरे के और करेला की खेती किया है, उसमें उसको बहुत लाभ हुआ है। मैं उसको एक दिन मैं बोली जैविक खेती करो, तो अभी वो इस साल शुरुआत किया है, तो उसमें स्प्रिंकलर सिंचाई मुझे बेहद गुणकारी लगा। खाद बीज के बारे में तो पहले नहीं मालूम था, लेकिन जब से हम रेडियो से जुड़े थे तो ये खाद बीज के बारे में और जितने भी पोषक तत्व हैं, जिंक है, ये सारे चीज हम लोग गांव में नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन रेडियो से सुन सुनकर हम जब बाजार जाते हैं ना तो दुकानों से जब खरीद कर अपने खेत में प्रयोग करते हैं तो हमें बेहद पैदावार मिलती है, तब अच्छा लगता है, हमारे दिल में बहुत खुशी होती है जब अनाज अधिक मात्रा में उत्पन्न। मनोरंजन के साथ साथ बहुत ऐसे परिवारों को भी शिक्षित किया है। और मैं एक बात बता दूं, मैं जब रेडियो सुनती थी तो मेरी बेटी रेडियो सुनते सुनते वो 12वीं परीक्षा दे रही थी, तो एक विषय था उनका आपदा प्रबंधन, तो आपदा प्रबंधन एक कार्यक्रम आता था रेडियो पर, जब वो पढ़ाई नहीं की थी लेकिन रेडियो में सुनती थी और वो आपदा प्रबंधन के बारे में लिख के आई, तो उसको बहुत अच्छे से नंबर मिला और बहुत नाम बोले। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नहीं जानते थे, तो ये इसे पूछा करते थे मेरी बेटी को कि तुमको कैसे मालूम, तो ये बोलती थी कि मैं रेडियो में सुन। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ आकाशवाणी के लिए, 90 वर्ष पूर्ण होने पर आकाशवाणी परिवार को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। आकाशवाणी ने बहुत कुछ सीख दिया, मैं हर मोड़ पर सीख ली उनसे, यानी कि आकाशवाणी सुनते हुए सीख ली, मुझे प्रेरणा भी मिली, खेती करने का भी प्रेरणा मिली और मुझे जीवन जीने की कला भी।

0: जब कोई श्रोता रेडियो का स्विच ऑन करता था या फिर ट्रांजिस्टर खोलता था तो वो केवल कार्यक्रम ही नहीं सुनता था, वो प्रवेश करता था अपने पन की दुनिया में। एक रिश्तेदारी हो जाती रेडियो और उसके सुनने वालों के बीच, खून से बढ़कर हो जाता आवाज का रिश्ता। माइक के उस पार बैठा उद्घोषक, जिसे उसने कभी देखा नहीं, फिर भी उद्घोषक की आवाज में श्रोता ने महसूस किया अपनापन, स्नेह और भरोसा। बन गया फिर एक अदृश्य सा रिश्ता। सुनते हैं अपने कुछ ऐसे ही रिश्तेदारों से।
1: मैं सलर पहलगाम कश्मीर से बोल रहा हूँ। मुझे रामपुर के प्रोग्राम तमाम पसंद है। इसके तमाम आदमी बहुत पसंद है, बहुत अच्छे प्रोग्राम पेश करते हैं। मेरी यही दुआ है कि रामपुर दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। और मेरी तरफ से आकाशवाणी के नमस्कार पूरे होने के लिए मेरी तरफ से तमाम मुबारक, बहुत बहुत मुबारक।
2: मैं रविंदर सिंह छावड़ा, पश्चिम बंगाल रानीगंज जो पहले रहता था ओला, फिलहाल मैं ये टैरो गार्डन नई दिल्ली से बिलोंग्स करता हूँ। यहीं आके फिर मैं आकाशवाणी से जुड़ा, और आकाशवाणी तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि देखिए अब मैं रिटायर्ड एज में एक आकाशवाणी है ही सहारा है जो हमारा टाइम पास हो जाता है। और इस आकाशवाणी के जरिए ही हमें बहुत लोगों से मिलाप हुआ है, मिलना जुलना हुआ है, मित्र बने हैं, और इस आकाशवाणी से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। ये 90 साल की यात्रा के लिए मैं आकाशवाणी परिवार को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आकाशवाणी रामपुर के प्रोग्रामों से मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि यहाँ हर दिन निरंतर प्रोग्राम विभिन्न तरह के होते हैं, जिससे कुछ ना कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती है। आज की डेट में जितने प्रोग्राम हो रहे हैं, पहले के मामले में तो बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि पहले इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। आजकल तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम प्रसारित हो रहे हैं। आकाशवाणी परिवार को इस गौरवशाली 90 साल की यात्रा पूर्ण करने के लिए बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं।
3: मैं गुजरात राजकोट से रश्मि बोल रही हूँ। बहुत पुरानी लिस्टर हूँ मैं आकाशवाणी भारत के, बहुत सारी रेडियो चैनल सुनती हूँ, जैसे की विविध भारती, FM बॉम्बे, फिर बरेली, अयोध्या, मथुरा, लखनऊ, बहुत सारी दिल्ली की भी FM गोल्ड चैनल, इंद्रप्रस्थ चैनल, बहुत सारे रेडियो चैनल मैं सुनती हूँ और बहुत बरसों से सुन रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और तो ये बात है कि काफी जानकारी मिलती है, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट एंजॉय करके रखते हैं, खुश रहते हैं, और बहुत सारी जानकारियाँ, अलग अलग विविध प्रकार के प्रोग्राम, एपिसोड, संगीत, तालीम संगीत की, बहुत सुबह से शाम तक प्रोग्राम जो प्रसारित होते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और बच्चों के लिए भी आते हैं, बुजुर्गों के लिए भी आते हैं प्रोग्राम। कोई कोई प्रोग्राम में बीमारियों का हल भी, डॉक्टरों के साथ बात करवाना फोन इन में, वो भी आता है। और सबसे अच्छा प्रोग्राम महिलाओं के लिए, जो महिलाओं को क्या क्या उनका अधिकार है, क्या क्या उनको राइट मिलता है, हक है उनका, उनके बारे में जो काफी जानकारी मिलती है, वो महिलाएं जागरूक हो जाती है, उनको जानकारी प्राप्त होती है, तो वो काफी खुश हो जाती है। तो वैसे ये प्रोग्राम महिलाओं के लिए जो रेडियो की चैनल ने शुरू किया है, आता है, प्रसारित होता है, वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये सुनकर प्रोग्राम महिलाएं जागरूक होती है, उनको पता चलता है कि उनको क्या क्या अधिकार मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम। बाकी मनोरंजन, फिल्म, गीत, फरमाइश वगैरह प्रोग्राम जो आता है, हम जितना भी समय के सुबह से शाम तक जितना भी समय मिलता है, वो रेडियो ऑन करके सुन लेते हैं प्रोग्राम, और कोई कोई बार समीक्षा भी प्रोग्राम के बारे में दे देते हैं। और एक वर्ग ऐसा है कि रेडियो सुनना ही उनके लिए संभव होता है, टीवी वगैरह का समय नहीं रहता, क्योंकि टीवी के सामने बैठना, समय रखना, मिलना, वो थोड़ा मुमकिन नहीं होता है। तो रेडियो हमारे लिए आशीर्वाद रूप है, बहुत खुश रखता है हमें। रेडियो के लिए हम जितना भी बोले तो अभिनंदन दे, वो कम है, बस हमें बहुत अच्छा लगता है। रेडियो हमारी आन बान शान और जान भी है। और आकाशवाणी प्रसारण के 90 साल पूरे होने के उपलक्ष में हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, और ऐसे ही कार्यक्रम हमें देते रहे, हमें खुश रखे, सुनाए, ऐसी भी हम कामना करते हैं और बहुत सारी आकाशवाणी के हर चैनल को शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से।

0: आकाशवाणी कोई एक संस्था मात्र नहीं, ये समन्वय है साहित्य, संस्कृति, कला, संगीत, सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का। इसकी हर प्रस्तुति में, हर कार्यक्रम में श्रोताओं के लिए एक आत्मीयता छुपी होती है। जब हम कहते हैं प्रिय श्रोताओं, तो ये केवल कोई औपचारिक संबोधन नहीं होता, दिल से निकला हुआ एक सच्चा जुड़ाव होता है। आकाशवाणी की सबसे बड़ी ताकत भी यही है कि बिना किसी दृश्य के, केवल आवाज के सहारे भावनाओं को जीवंत कर दे। एक गीत जब बजता है ना, तो न जाने कितने सुनने वाले यादों में खो जाते हैं, दिल की गहराइयों में हलचल सी होने लगती है। सुनने वाले को लगता है मानो आकाशवाणी कह रहा है उन्हीं के मन की बात।
1: नमस्कार, मैं राजेश सावले पाटिल छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। प्रथम मैं आकाशवाणी को 90 वर्ष पूरे हो चुके, इस अवसर पर सभी श्रोताओं को, सभी आकाशवाणी परिवार को तथा आकाशवाणी से जुड़े सभी कर्मियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। रेडियो बहुत महत्वपूर्ण हमारे जीवन में है, क्योंकि एकमात्र मनोरंजन का साधन जब था रेडियो, तब से हम रेडियो से जुड़े हुए हैं। रेडियो में हर विषय में वहां से ज्ञान मनोरंजन मिलता है, खेल, क्रीड़ा, खेती किसानी, महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम, ये सभी प्रकार के कार्यक्रम रेडियो से प्रसारित होती है, जिसे सुनकर सभी श्रोता उसका आनंद लेते हैं या फिर अपने जीवन में उसका उपयोग करते हैं। प्रातः समय जैसे भक्ति संगीत है, सुविचार, चिंतन आदि कार्यक्रम मन को प्रसन्न करते हैं। भोजन हिताय, भोजन सुखाय तथा ज्ञान और मनोरंजन की वाणी आकाशवाणी, यह वृद्धवाक्य वास्तव में अनुभव होता है। रेडियो के इस 90 वर्ष में बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं। रेडियो आकाशवाणी अब तो ग्लोबल हो चुका है, इसलिए प्रसारण की कोई सीमा नहीं है। विविध मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से हम कहीं भी, कभी भी, कोई भी रेडियो स्टेशन सुन सकते हैं। रेडियो का जीवन में बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि जब भी हम उदास होते हैं, कई काम से मायूस होते हैं, तो रेडियो लगाकर थोड़ा कुछ गीत संगीत सुनकर खुद को मतलब थोड़ा प्रसन्न करते हैं, हल्का करते हैं। मैं बचपन से मतलब जैसे समझ आए तब से रेडियो से जुड़ा हूँ। घर में रेडियो था, इसलिए रेडियो का बहुत लगाव था। जब मतलब कॉलेज के दिनों में रेडियो से मैं जुड़ भी चुका था। आकाशवाणी पहले छत्रपति संभाजीनगर का, पूर्व नाम औरंगाबाद था, तो औरंगाबाद आकाशवाणी से भी मैं जुड़ा था। युवावाणी में मैं प्रासंगिक उद्घोषक बल्कि भी मैंने वहां पे कुछ काम किया हुआ है। मेरी कथाएं, कुछ कविताएं भी आकाशवाणी से प्रसारित हो चुकी है। तो रेडियो से मेरा बहुत लगाव है। रेडियो एक तरफ से मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा, मेरे लिए एक आधार है। जब मैं नींद से जागता हूँ तो रेडियो सुनता हूँ, और रेडियो सुनते सुनते मतलब नींद लेता हूँ मैं। आकाशवाणी की इस गौरवशाली 90 वर्ष के अवसर पर सभी आकाशवाणी परिवार को, आकाशवाणी को जुड़े सभी कर्मियों को मैं पुनः एक बार हार्दिक बधाई देना चाहूंगा।
2: मैं इरफान खान, PWD वाले, थाना टी, निकट ऊंची नदी, रामपुर, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। आकाशवाणी के 90 साल पूर्ण होने पर आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद और हमारी तरफ से शुभकामनाएं। ये महिलाओं, युवाओं, किसानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बेरोजगारों के लिए, बच्चों के लिए अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। शिक्षा, सूचना, मनोरंजन, स्वास्थ्य, ज्ञान पर कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं, जो हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं। आकाशवाणी रामपुर में परिवार जगत कार्यक्रम।

हमें बहुत अच्छा लगता है, ये तो हमें सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। इसके पुरस्कर्ता को हम बधाई देना चाहते हैं। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, आकाशवाणी इसका प्रसारण समय समय पर होता रहा है, जागरूक करते रहे हैं। हथकरघा पीएम हथकरघा योजना, पीएम सुकन्या समृद्धि योजना, पीएम स्वामी योजना, पीएम विद्या लक्ष्मी रेल योजना, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दो योजनाएं, युवा रोजगार योजना, नंदिनी कृषि समृद्ध योजना, अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं और आकाशवाणी तरफ से इनका प्रसारण किया जा रहा है। मन की बात कार्यक्रम हर महीने के आखिर रविवार को आता है दिन में 11 बजे, वो बहुत ही हमें अच्छा लगता है और हमारा पूरा परिवार सुनता है। आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रम हमारे पास हाथ से लिखे हुए 10,000 से ज्यादा नोट हैं और इस संबंध में हमने प्रधानमंत्री कार्यालय को भी चिट्ठी लिखी है, प्रसार भारती को भी लिखी है, महानिदेशालय को भी लिखी है, पीएमओ कार्यालय प्रधानमंत्री जी कार्यालय की तरफ से हमारे पास 2-3 सर्टिफिकेट भी आ चुके हैं और उन्होंने हमें बधाई भी दी है और कहा है आप इतनी लगन के साथ आकाशवाणी रामपुर को सुनते हैं और डुप्लीकेट कापी भी अपने पास रखते हैं, ये सराहनीय कदम है। जय हिंद, जय भारत।

कार्यक्रम सुनने को आतुर श्रोता, दिल से प्रोग्राम प्रेजेंट करने की चाहत वाले प्रस्तुतकर्ता, एफएम का चुलबुलापन, खबरों की गंभीरता, आरजे का अपना अलग अंदाज, गीतों की मिठास, नई नई तकनीकों के समावेश से कार्यक्रम और प्रसारण को बेहतर करने के प्रयास आज भी दिलों पर असर डाल रहे हैं, दिलों को जोड़ रहे हैं। समय के बदलाव की बयार के बीच आकाशवाणी और उसके सुनने वाले एक दूजे का हाथ थाम निरंतर नई मंजिलों की तरफ गामसन है। सुनते सुनाते 90 वर्षों का यह सफर मुख्तसर वक्त में पूरा नहीं किया जा सकता, अभी बहुत कुछ सुनना सुनाना बाकी है। यादों का सिलसिला अधूरा सा ना काफी है। हम और आप फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में अगले पड़ाव पर, क्योंकि अभी दिलों की बातें और एहसासों का बहना बाकी है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में साथ साथ बांटेंगे सुनते सुनाते हुए 90 वर्षों की इस शानदार यात्रा की यादें।

0: अभी आप सुन रहे थे सुनते सुनाते 90 साल। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
1: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो ना जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो।
2: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 11:30 हुए, अब सुनिए कार्यक्रम मन भावन।

कार्यक्रम मन भावन में आज हम आपको सुनवा रहे हैं एक ही गायक के अंतर्गत जगजीत सिंह की आवाज में कुछ नगमे। आइए पहला नगमा सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन भावन, ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 12 बजने वाले हैं, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: बातमी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हो रही है। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए ये चर्चा हो रही है। म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में

0: आयोजित लाइट एंड लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार किया गया। राज्यपाल आर एन रवि ने मंत्रिपरिषद के 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह का आयोजन कोलकाता के लोक भवन में हुआ। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में घोषित किए जाने की संभावना है। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। इस महीने की 18 तारीख को मतदान होगा। मतगणना भी से दिन होगी। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यवसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपए से लेकर 53 रुपए 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इसके माध्यम से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए। शहरों और कस्बों में इस पहल के माध्यम से 75,00,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। योजना के अंतर्गत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण प्रदान किए जा चुके हैं। अफ्रीकी संघ ने इबोला से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आपातकालीन निदान, उपचार और चिकित्सा सामग्री का स्वागत किया है। संघ की स्वास्थ्य एजेंसी अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि ये सामान युगांडा में पूर्वी क्षेत्रीय समन्वय केंद्र के माध्यम से भेजा गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 41 अंक बढ़कर 74,816 पर था, जबकि निफ्टी में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अब से थोड़ी देर पहले ये 23,551 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 12:05 हुए हैं। अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना।

0: प्रभारी निरीक्षक थाना हजरत नगर गड़ी जनपद संभल हमें सूचित करते हैं कि सोनी पत्नी हरि सिंह निवासी रहटोल थाना हजरत नगर गड़ी जिला संभल विगत 9 मई 2026 से लापता हैं। सोनी की उम्र 21 वर्ष है। सोनी का रंग सांवला है। सोनी का कद 4 फीट 6 इंच है। चेहरा लंबा है और आंखें औसत हैं। सोनी ने हरे रंग का छापेदार सलवार सूट पहना हुआ है। यदि आप में से किसी को इनके बारे में कोई सूचना हो अथवा जानकारी हो तो कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। प्रभारी निरीक्षक थाना हजरत नगर गढ़ी जनपद संभल। सूचना समाप्त हुई। कोई व्यक्तियों के संबंध में एक और महत्वपूर्ण सूचना। प्रभारी निरीक्षक थाना असमौली जनपद संभल हमें सूचित करते हैं कि शायस्ता उर्फ नाजिश पत्नी मोहम्मद रफीक उर्फ वकार निवासी ग्राम ओबरी थाना असमौली जनपद संभल विगत 1 मई 2026 से लापता है। शायस्ता की उम्र 30 वर्ष है। शायस्ता का कद 5 फीट 4 इंच है। शरीर और चेहरा सामान्य है। शायस्ता की आंखें काले रंग की सामान्य है। शायस्ता साथ में अपनी 3 वर्षीय बच्ची सेहरा को लेकर गई है। साथ में शायस्ता के बाल काले रंग के सामान्य हैं और उन्होंने सुरमई रंग के शलवार सूट पहना हुआ है। पैरों में काली जूती पहने हुए है। यदि आप में से किसी को इनके बारे में कोई जानकारी हो अथवा सूचना प्राप्त हो तो कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। प्रभारी निरीक्षक थाना असमौली जनपद संभल। सूचना समाप्त हुई।
1: देश की शान जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आपकी गिनती देश की शान जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 12:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत आपके नाम।

गीत आपके नाम कार्यक्रम सुनने वालों को एमन तंजील का नमस्कार। श्रोता, आज के इस कार्यक्रम में पहला गीत

सुनना चाहा है आशा भोसले की आवाज में और फरमाइश है आप सबकी। वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख और अयूब खान। मंकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार, अमर सिंह, हितेश सागर उर्फ बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, ओमवती भारती, खनक, शगुन सारांश, अयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथव सिंह। ग्राम नागरकोरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू और इनके सभी साथी। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र जी शाह। रामपुर रोड हल्द्वानी से गंगा सिंह रावत और इनके सभी साथी। गंजरुणवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी। आप सबकी फरमाइश पर पेश है ये गीत।

कार्यक्रम गीत आपके नाम इस वक्त आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहा है मालियान सरदना मेरठ से अनिल जैन जैन साहब संयम जैन और मुस्कान जैन ने इनके साथ हैं मास्टर जीवियम जैन जिलमरोहा नई बस्ती पते खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी मोहम्मद आलम सिद्दीकी मोहम्मद सिफान सिद्दीकी मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी अनाबिया अलीशा शकीन सिद्दीकी फहीम सिद्दीकी मोहम्मद यासीन अंसारी और स्वदेश चौहान मोहल्ला हलवायान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी मोहम्मद इकबाल फरीदी सितारा बेगम नसरीन परवीन रोजी खान बिट्टू हिना कौसर और इनके परिवार के समस्त सदस्य अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयमंत्री केवट ग्राम नागरकोरा जिला राजदान गांव छत्तीसगढ़ से दुष्यंत प्रांजल समीक्षा पूजा प्रेम जामुन देवी और बबलू साहू जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी अतीक अहमद सिद्दीकी मोहम्मद दानिश सिद्दीकी हमजा सिद्दीकी और गुलशन साहिबा पागपड़ा जिला मुरादाबाद से मजाहिर हुसैन अंसारी बेगम रईजा नास बेटा मुजक्किर बाबू मजहर आसिम और सुमैया महक गांधी समाधि रोड रामपुर से गफार खान रजिया खान सिमरन खान और इनके सभी साथी पद्मा टॉकीज नेपानगर से सुदर्शन शाह प्रकर शाह नीति शाह मंगलाबेन सुरभि शाह अश्विन राजेंद्र कुशल और पल्लवी आप सबकी फरमाइश पर पेश है ये आई मिलन की बेला फिल्म से ये प्यारा सनामा

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहा है अलका याग्निक की आवाज में, और फरमाइश आई है आप सबकी। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया और सोनू भाटिया। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुलड़कर, रतन माला आरती गौरी और ओमकार सुलड़कर। दाऊद सराय सहारनपुर से अनवर साबरी, शन्नो साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी और जरीफ अंसारी। जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। शिवजी नगर देशमुख से राजेश, शिवसर, इंदिराबाई, दीपाली, सुनैना और इनके सभी साथी। आप सभी से हमारी एक बार फिर ये रिक्वेस्ट है कि आपने एक बार फरमाइश भेज दी है तो कृपया आप प्रतीक्षा कीजिए, आपका नाम आ जाएगा। लेकिन आप बार बार ईमेल भेजते रहते हैं तो एक ही नाम हमारी स्क्रीन पर आता है, जिससे हमें पढ़ने में भी दिक्कत होती है और बाकी लिसनर्स के नाम भी छूट जाते हैं। मारेरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, रशीद वारसी, अनम अब्बासी, यशफ अब्बासी और इनके सभी साथी। मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, फौजिया रोशनी, शाइना काजल, असद, फिरोजा मुस्कान और इनके सभी साथी। आप सबकी फरमाइश पर पेश है ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक की आवाज में ये गीत, और फरमाइश थी आप सबकी। मधुबनी बिहार से भाई नवीन सिंह, ज्योति सिंह, चुलबुल रानी, कपलेश्वर प्रसाद गुप्ता, भूलिया गुप्ता, बाबा गुरन, दुर्गा राय और जहूर मियां। सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम और इनके सभी साथी। ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेराज जहां की फरमाइश हमारे पास आई थी। और अब कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहा है अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में। फरमाइश है आप सबकी। जसपुर रोड, उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नज्म बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन, परवीन, माहिरा नूर। ग्राम व पोस्ट हररपुर, मटकली, जिला बरेली से शाहरून नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इद्रीसी, मुइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान। कमरिया, छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार। शिव मंदिर, हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना, पिंकी, आर्यन, कृष्णा और पीहू। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ, राज पैलेस, मऊनाथ भंजन, उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक, आर्यन वर्मा और इनके सभी साथी। सिद्धार्थनगर, दरियापुर बाबले से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले और सुशील येले। रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, अलीजा नायब और इनके सभी साथी। आप सबकी फरमाइश पर पेश है ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक को, फरमाइश थी आप सबकी। फातिमा कॉलोनी श्री रामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनैद मुजावर, सबिया मुजावर, मिखाइल मुजावर और जैनब मुजावर, करताल हैदराबाद तेलंगाना से कानूगुला गोपाल, महेश्वरी प्रविलिका, विष्णुवर्धन और विग्नेश, वाड़ी खामगांव से अनंता वाडे, रामेश्वर वाडे, शुभम, साक्षी, खुशी और इनका समस्त वाडे परिवार, मित्रनगर बीड शहर महाराष्ट्र से विकास बंसोडे, रेखा बंसोडे, अदिति बंसोडे, वैभव शिंदे, हिल स्टेशन खंडाला से आकाश सरोदे और प्रिया सदोरदे। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने वाले हमारे साथी हैं विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, डॉक्टर सहानुभूति चक्रधर, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। मनाली हिमाचल से हर्ष, विनय, विनीत और रोजस भाई। चंडीगढ़ से शेफाली, शेफी, डेविस, विमला और सतीश अनेजा। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह और जीएस रामगढ़िया। आप सबकी फरमाइश पर पेश है कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में ये गीत।

और अब कार्यक्रम गीत आपके नाम का अंतिम गीत सुनने वाले हैं आप सब। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना और इनके सभी साथी। चंद्रनगर सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु नारंग, सोनाली, शेख अल्लाह बख्श, अरविंद कुमार, संदीप मकड़ और एस के सरगम। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजु श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार। जिला मुरादाबाद ग्राम दोलापुर से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग। आप

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत आपके नाम। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। एक बजने वाला है, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हो रही है। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए ये चर्चा हो रही है। म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकन वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आर एन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित किए जाएंगे। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 सीट और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इसके माध्यम से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं। शहरों और कस्बों में इस पहल के माध्यम से 75,00,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए। योजना के अंतर्गत अब तक 17,800 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण प्रदान किए गए हैं। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यावसायिक LPG सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपए से लेकर 53 रुपए 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। बॉम्बे एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक दोपहर तक 84 अंक गिरकर 74,692 पर और निफ्टी 32 अंक गिरकर 23,516 पर आ गया। बिजली, पूंजीगत वस्तुएं, उपयोगिता और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के शेयरों में भी भारी गिरावट देखी गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 1:05 हुए हैं, अब सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ विशेष कार्यक्रमों की जानकारी। श्रोताओं से कुछ ही देर में यानी कि आज दोपहर 1:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम धरती गाती है। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे तेजराम गंगवार व साथियों की आवाजों में कुछ लोकगीत। शाम 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। दोपहर 1:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम आंचल। इसमें हम आपको सुनवाएंगे चर्चा, घर के कामकाज के संग संग कैसे अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करें। साथ ही आप सुनेंगे वार्ता, आत्मनिर्भर माँ तो आत्मनिर्भर हो बेटी। वार्ताकार होंगे श्रीमती गरिमा गंगवार।

0: शाम 6:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कृषि जगत। इसमें हम आपको सुनवाएंगे चर्चा प्रधानमंत्री कुसुम योजना पर, साथ ही आप सुनेंगे भेंट वार्ता पशुओं के लिए आहार की गुणवत्ता विषय पर। बातचीत होगी डॉक्टर अंशुल राहल से। इसके अलावा कृषि संकेत में इस पखवाड़े कृषि कार्य आप तक पहुंचेंगे। शाम 7:31 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। इसमें हम आपको सुनवाएंगे रूना लैला की आवाज में कुछ गजलें, साथ ही हरिहरन की आवाज में भी कुछ गजलें आप तक पहुंचेंगी शाम 7:31 पर। रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सबरस। इसमें हम आपको सुनवाएंगे श्याम मोहन के गाए कुछ लोकगीत और आप रुचि गुप्ता की आवाज में भी कुछ लोकगीत सुनेंगे। रात 10:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो रामपुर। श्रोताओं, ये थी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ विशेष कार्यक्रमों की जानकारी।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ, 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना, पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो न जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों की निगहबान को भी हो।
1: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं।
2: माँ की रक्षा में जीवन
3: रेडियो वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 1:10 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से।

0: अब आप शाइस्ता वानों से इलाकाई खबरें सुनिए। उत्तर प्रदेश के वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन के ऑडिटोरियम में मुनक़दा होनहार तलबा की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मैं पूरे नतायज को देख रहा हूं। खास तौर पर आज यहां मुनक़द तकरीब में जहां 223 तलबा को इजाज़त से नवाजा जा रहा है, जिनमें से 85 लड़के और 138 लड़कियां हैं। इसका मतलब है कि ज्यादा लड़कियों ने मैरिट हासिल की जबकि लड़कों ने कम मैरिट हासिल की है। ये नंबर बताते हैं कि लड़कियां ज्यादा मेहनत करती हैं और मेहनत के जरिए अच्छे नंबर हासिल करने की सलाहियत रखती हैं। ये लड़कियों के लिए भी एक तहरीक होना चाहिए कि लड़कियां घर में अपने खानदान की किफालत करते हुए भी अच्छे नंबर हासिल कर रही हैं।
1: यह समारोह इस बात का प्रतीक है कि परिश्रम, सार्थक दिशा में किए जाने वाले परिश्रम का परिणाम अवश्य प्राप्त होता है और परिणाम हमेशा सुखद होता है और सुखद होने की अनुभूति आज आपको यहाँ पर इस सम्मान समारोह के माध्यम से प्राप्त हो रहा होगा, जिसमें 223 छात्र छात्राओं का सम्मान किया जा रहा है। उन 223 में छात्रों की संख्या 85 है और छात्राओं की संख्या 138 है। बेटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी और देश और समाज को भी आगे बढ़ाएगी। इस रिजल्ट के माध्यम से एक संदेश हम सबके सामने है।
0: कई अजला में तूफान, बारिश और खराब मौसम के वाकयात के पेश नजर उत्तर प्रदेश के वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने जिला इंतजामिया, रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर, मुतालिका महकमों को मुसलसल चौकसी बरकरार रखने और किसी भी आफत की सूरत में फौरी कार्रवाई को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ महकमे शहरी दिफा के काम का जायजा लिया और मुतालिका अफसरान को जरूरी हिदायत जारी की। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिक सुरक्षा विभाग को जन सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मजबूत, आधुनिक और सक्षम संस्था के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में नागरिक सुरक्षा की भूमिका केवल युद्धकालीन परिस्थितियों तक सीमित नहीं है बल्कि आपदा प्रबंधन, राहत एवं बचाव, जन जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता तथा आपात परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा है कि राहत एवं बचाव, अग्निशमन, प्राथमिक चिकित्सा, खोज एवं बचाव तथा आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में विभाग की क्षमताओं को और मजबूत किया जाए। स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण आधुनिक सुविधाओं के अनुरूप किया जाए। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: दरियस्ता उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स डिपार्टमेंट की एक और मीटिंग में वज़ीर-आला ने कहा कि होमगार्ड्स तंजीम रियासत के दाखिली, सलामती, अमन व अमान, डिजास्टर मैनेजमेंट और अवामी खिदमात का एक अहम सतून है। बदलते वक्त और नए चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए इस तंजीम को ज्यादा काबिल, तरबियत याफ्ता, तकनीकी तौर पर माहिर और जदीद बनाया जाना चाहिए। 1991 बैच के सीनियर आईपीएस अफसर राजीव कृष्णा को रियासत का परमानेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुकर्रर किया गया है। जनाब कृष्णा पहले कारगुजार डीजीपी के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से मंजूरी के बाद महकमे दाखिला ने मिस्टर कृष्णा को तकरीरी का हुक्म जारी किया। वो जून 2029 तक इस ओहदे पर फायज रहेंगे। उत्तर प्रदेश के पुलिस कमिश्नर राजीव कृष्णा ने कल वक्ती पुलिस कमिश्नर के तौर पर तकरीरी पर कहा कि वज़ीर-आला की रहनुमाई में उत्तर प्रदेश पुलिस की और हुकूमत की तरजीहात को पूरा करने के लिए अंथक मेहनत कर रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के ताजा तरीन आदादोशुमार उत्तर प्रदेश में समाजी तरक्की की बदलती हुई तस्वीर को जाहिर करते हैं। 2015-16 और 2023-24 के दरमियान आदादोशुमार का मवाजना जाहिर करता है कि रियासत ने सेहत, तालीम, खवातीन को बाख्तियार बनाने, खानदानी मनसूबाबंदी, मां और बच्चे की सेहत और बुनियादी ढांचे में नुमाया पेशरफ्त की है। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ की क्यादत में गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान सेहत खिदमात की तौसी, समाजी तहफ़ की स्कीमों के वसी पैमाने पर निफाज, खवातीन के बहबूद के प्रोग्रामों, बुनियादी ढांचे की तरक्की का असर अब कौमी सतह के सर्वे में भी नजर आ रहा है। मरकजी हुकूमत ने आज से नाफिजुल अम्ल पेट्रोल, डीजल और एटीएफ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में कमी का ऐलान किया है। हुकूमत ने पेट्रोल के बरामदात पर विंड फॉल गेन टैक्स को आधा करके 1.50 रुपये फी लीटर कर दिया है। डीजल पर टैक्स कम करके 13.50 रुपये फी लीटर कर दिया गया है। महकमा मौसमियात ने आज रियासत में चंद मकामात पर बारिश और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने अलग थलग मकामात पर आसमानी बिजली गिरने और तेज हवाओं के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। दरियस्ता वज़ीर-आला ने रियासत के कई अजला के लिए वार्निंग जारी की है। उन्होंने अजला को हिदायत की है कि वह तूफान, बारिश, झालाबारी और आसमानी बिजली गिरने के मुतासरीन को फौरी इमदाद फराहम करें। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए और शहरियों की हिफाजत उसकी अवलियन तरजीह है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
3: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 1:15 हुए हैं, अब सुनिए कार्यक्रम धरती गाती है। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं तेज राम गंगवार व साथियों की आवाजों में कुछ लोकगीत।

নয়, রাম লখন কে জোড়িয়ে লিখ দেও জৌরে, রাম লখন কে।

अभी आप सुन रहे थे तेजराम गंगवार व साथियों की आवाजों में ये लोकगीत कार्यक्रम धरती गाती है। अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आंचल।

आंचल कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को गुंजन की राम राम। कैसी हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी ठीक ठाक होंगी और बढ़िया होंगी और घर में अपने बच्चों की जो है चहचहाट से इस टाइम आप जो है खुश हो रही होंगी कि बच्चों की छुट्टियां हो चुकी हैं, बच्चे हैं घर में और बच्चे कभी इधर से आवाज़ देना, कभी उधर से आवाज़ देना कि मम्मी पानी की, मम्मी आज कुछ ऐसा बना दो, हमेशा कुछ ना कुछ उनकी फरमाइश रहती है। तो हम लोग भी भला ये सोचते हैं कि कहाँ से छुट्टियाँ होंगी, इससे तो बच्चे स्कूल जाते तो ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन बच्चों का समय है, बच्चों के साथ अच्छे से मनाएं, उन्हें डांटें ना, उन्हें प्यार से समझाएं कि छुट्टियां हैं, छुट्टियों का सदुपयोग करें, उन्हें अच्छे से मनाएं। और कुछ बच्चे तो जो हैं वो नाना नानी के घर भी चले गए होंगे और कुछ अभी जाने की तैयारी में लगे होंगे। बहनें भी ये सोचती हैं कि छुट्टियां हो जाए जल्दी से, कब हमें मायके जाने को मिले और हम जो है थोड़े से पल सुकून के अपनी माँ के साथ बिता कर आएं। कहते हैं बहनों कि घर का काम काज, बच्चे, ये सारी जिम्मेदारियों के साथ साथ कभी कभी हमारे मन में ये विचार आ जाता है कि हम क्यों ना कुछ ऐसा काम करें जिससे कि हम आर्थिक रूप से भी मजबूत हो जाएं, कि बच्चों की जिम्मेदारियां भी है, घर है, ऐसा कौन सा काम करें जिससे कि घर पर बैठे बैठे हो जाए और बाहर जाने का हमारे पास बिल्कुल भी टाइम

0: हैं, तो ऐसे कौन कौन से काम है। बहुत सी हमारी जो बहनें हैं वो जो बात सोचती होंगी और सोचनो भी चाहिए, बहनों कुछ ना कुछ काम हमें ज़रूर करना चाहिए। और देखो भगवान ने ना औरत को कुछ ना कुछ हुनर जरूर दो है और वो हुनर उनके अंदर ही छुपू है, लेकिन ज़रूरत यही है कि बा हुनर को हमें पहचानने हैं। बहुत सी हमारी बहनें ऐसी हैं जिन्हें सिलाई कढ़ाई आती है, लेकिन घर के काम के काज के चक्कर में वे अपनों सूट तक टेलर से सिलवाती होंगे कि हमारे धोरे टाइम है ना है कि हम कैसे सिल लें भैया। तो आप अपने हुनर को जो है अपने व्यवसाय बना सकती हैं। अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो आप जो है ट्यूशन पढ़ा सकती हैं, आप बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाना जानती हैं तो आप बाकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल सकती हैं, वहाँ से भी पैसा कमा सकती हैं। साथ ही साथ आप टिफ़िन सर्विस को काम भी कर सकती हैं। आसपास में ऐसे अगर कोई लोग रहते हों जिनके यहाँ खाना बनाने की दिक्कत है या जिन लोग जो लोग काम काजी हैं तो उनको ज़रूरत है, तो उनके लिए भी आप खाना पीना बना कर टिफ़िन पैक करके दे सकती हैं। साथ ही साथ हमारी जो बहनें हैं वह घर में बागवानी कर सकती हैं, स्वयं सहायता समूह से जुड़ सकती हैं, डांस करना आते तो जा टाइम तो देखो छुट्टियाँ चल रही हैं और बच्चे जो हैं घर में ही है, अपने बच्चों से कहें कि अपने साथ के जो बच्चे हैं उनको जो है अपने बताएं कि हमारी मम्मी डांस सिखाती हैं या हमारी बुआ डांस सिखाती हैं तो आओ हम सब मिलकर उनसे डांस सीखते हैं। या कोई ऐसी कलाकृति आप जानती हैं बनानो जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं वो ड्राइंग कर लें, और मतलब बहुत से हुनर जो है ना हम महिलाओं के अंदर छुपे हैं, बस ज़रूरत यह है कि हम उन्हें पहचानने हैं, अब उस हुनर को व्यवसाय बनाने हैं, है ना। तो बाद में थोड़ा सा वक्त लगेगा, ज़रूरत यही है कि आप अपने अंदर आत्मविश्वास लेकर आए। जब तक हमारे अंदर आत्मविश्वास ना होगा तब तक हम कोई भी काम अच्छे ढंग से ना कर पाएंगे। तो ज़रूरत यही है कि बहनों हुनर कोई भी आपके अंदर है उसको बाहर लेकर आए, थोड़ा सा समय अपने ने निकाले का काम कैसे करने हैं इस बारे में सोचें, घर में बात करें, चार लोगों से बातें करेंगी तो उसमें हमें जो है नए नए आइडिया मिलेंगे, उस बारे में हम सोचेंगे। और आजकल तो सोशल मीडिया को जमानो है, एक झट में आप अगर मोबाइल पर कोई भी चीज़ डालती हैं वो तुरंत बाको सोल्यूशन जो हमें मिल जाता है, कौन सा व्यवसाय कैसे करने हैं, कैसे बाको हमें बाज़ार में लेकर आने हैं, सारी सुविधाएँ उपलब्ध है। बस ज़रूरत है तो अपने आप को काम करने के लिए प्रेरित कर लो, तो आप जो है अपने हुनर को व्यवसाय बना सकती हैं। एक अकेली भी काम कर सकती हैं, समूह में जुड़कर भी काम कर सकती हैं, जाके लिए आपको बैंक से लोन भी मिल जाएगा अगर आप समूह से जुड़ जाती हैं तो। समूह में जुड़न में यह है कि आप 10-12 जो हैं बहनें मिलेंगी आपस में, कोई भी व्यवसाय करना चाह रही हो अगर अलग अलग करना चाह रही तो अलग अलग कर लो, और सब मिलकर कोई एक बड़ो व्यवसाय करना चाह रही हो तो सब मिलकर बड़ो व्यवसाय कर लो, डेयरी उत्पादन कर लो, बागवानी कर लो, दुकान खोल लो, ब्यूटी पार्लर कर लो, सिलाई कढ़ाई को काम कर लो, जो काम आप करना चाह रही हो वो सब आप काम स्वयं सहायता समूह में जुड़कर भी कर सकती हैं। सरकार के द्वारा जहाँ में आपको लोन भी मिलेगा, सारी जानकारी आप जो हमारे गांव में समूह सखी होती हैं या समूह जो जो चलाने वाली है उनसे जाकर आप जब बारे में बात कर सकती हो, बैंक में जाकर पता कर सकती हैं, पोस्ट ऑफिस में जाकर पता कर सकती हैं, और सोशल मीडिया पर भी आप जब बारे में पता चल सकती हैं। तो बहनों हर काम करनो आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा आसान ही गया है, लेकिन ज़रूरत यही है कि हमें कब कितनों काम कैसे करने हैं ये सब हमें अपने आप मैनेज करने पड़ेगा। तो इसलिए जय है कि आप अगर चाहती हैं कि अपने आप से अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बना लो तो बहनों आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकती हैं, अपने हुनर को उड़ान दे सकती हैं और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकती हैं। तभी कहते कि आज की नारी काओ भी काम में पीछे ना है, घर जिम्मेदारी बच्चों के साथ साथ भी आप अपने आप को जो है आर्थिक रूप से मजबूत बना सकती हैं। आप अगर मजबूत होंगी, आप अगर आत्मनिर्भर होंगी तो कहीं ना कहीं आप अपनी बेटी को भी आत्मनिर्भर बना पाएंगी। कहते हैं कि जब आत्मनिर्भर माँ होती है तभी तो आत्मनिर्भर जो है वो बेटी भी आत्मनिर्भर बनती है, माँ से ही बेटी सब कुछ सीखती है। किस तरीका से आइए जानते हैं श्रीमती गरिमा गंगवार से, आत्मनिर्भर माँ तो आत्मनिर्भर हो बेटी।
1: ये कहावत है कि जब आत्मनिर्भर हो माँ तो आत्मनिर्भर हो बेटी। इसका मतलब है कि यदि माँ आत्मनिर्भर होती है तो उसे अपनी बेटी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आत्मनिर्भरता का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को दूसरों पर निर्भर ना रहना और अपनी खुद की जरूरतें और सपनों को स्वयं पूरा करना। एक बेटी अपनी माँ से ही सीखती है, बेटियाँ अपनी माँ की परछाइयाँ होती हैं। एक बेटी की सबसे पहली गुरु उसकी माँ होती है, बेटियाँ माँ के आंचल में बड़ी होकर माँ की ही परछाइयाँ होती हैं। सबसे ज्यादा बेटी के भविष्य के बारे में माँ ही सोचती है। एक माँ हमेशा चाहती है कि उसकी बेटी उससे भी ज्यादा उन्नति करे, उसका भविष्य उज्जवल हो, उसे आने वाले समय में कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, यदि कभी कोई भी परिस्थिति आए तो उसका सामना कर सके। एक माँ अपनी बेटी को मजबूत और साहसी बनाती है। जब बेटियाँ आत्मनिर्भर होती हैं तो वह किसी भी परेशानी का सामना डटकर कर सकती हैं। आत्मनिर्भर हो माँ तो आत्मनिर्भर हो बेटी, इस वाक्यांश में माँ की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का महत्व है, जो कि अपनी बेटी के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब बेटियां आत्मनिर्भर होती हैं तो वह अपने परिवार और समाज के लिए भी एक अच्छा उदाहरण बनती हैं। ये कहावत हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि माता पिता को अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि उनका जीवन खुशहाल हो सके, वह अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सके। एक माँ का आत्मनिर्भर होना बेटी को भी सशक्त बनाता है। जब माँ अपनी बेटी को सिखाती है कि वह अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़े और अपने जीवन में सफल हो, तो बेटी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार होती है। जब एक माँ सशक्त होती है और शिक्षित होती है और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती है, तो वह अपनी बेटी के लिए आदर्श बन जाती है। वह अपनी बेटी में आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के मूल भरती है। आत्मनिर्भर माँ बेटी को स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। एक सशक्त माँ अपनी बेटी को मजबूत, बहादुर और निर्भीक बनाना सिखाती है। वह अपनी बेटी को जोखिम उठाने, असफलताओं से सीखने के लिए प्रेरित करती है और अपने मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब आत्मनिर्भर माँ अपनी बेटी को हर मुसीबत से दूर रहने के प्रयास करती है, माँ चाहती है कि उसकी बेटी अपने सपनों की उड़ान भरे। माँ और बेटी की जोड़ी आत्मनिर्भरता की यात्रा में एक साथ चल सकती है। वे एक दूसरे का समर्थन कर सकती हैं, वह एक दूसरे को प्रोत्साहित भी कर सकती हैं और एक दूसरे के लिए आदर्श बन सकती हैं। जब एक स्त्री स्वयं शिक्षित और आत्मनिर्भर होती है तो वह चाहती है कि उसकी बेटी भी आत्मनिर्भर और शिक्षित बने। बेटी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक माँ को बेटी की उच्च शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शिक्षा से संबंधित हर प्रकार की सुविधा का विशेष ध्यान देना चाहिए। एक माँ को बेटी को शिक्षित होने के लाभों को बताना चाहिए कि कैसे व्यक्ति शिक्षा के बल पर ऊंचाइयों को छू सकता है। जो बेटियाँ शिक्षित नहीं हो पाती, वह स्वयं के लिए भी कुछ नहीं कर सकती हैं। उनका सारा जीवन दुख और परेशानियों में ही व्यतीत हो जाता है। वह स्वयं के लिए कुछ निर्णय नहीं ले सकती है, उनको दूसरों पर ही आश्रित रहना पड़ता है। उसको हर कार्य के लिए दूसरों की आज्ञा लेनी पड़ती है। वह स्वयं के लिए कुछ भी कदम नहीं उठा सकती, उसको अपनी हर इच्छा को दबाकर जीना पड़ता है। वह दूसरों पर ही निर्भर रहती है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। वह अपना सारा जीवन दूसरों पर न्यौछावर कर भी किसी के लिए कोई उदाहरण नहीं बन पाती है। जब वह स्वयं के लिए कुछ नहीं कर पाती तो वह अपने बच्चों के लिए भी कुछ अच्छा निर्णय नहीं ले पाती है। इसीलिए एक स्त्री के लिए शिक्षा जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। शिक्षा जीवन को संवारने के लिए बहुत ही जरूरी है। शिक्षा के बल पर एक स्त्री अपना और अपने आने वाली पीढ़ी का भी जीवन संवार सकती है। शिक्षित स्त्री अपने साथ साथ समाज में भी हो रहे हर गलत कार्य को रोक सकती है और उसका विरोध कर सकती है। वह शिक्षा के दम पर आत्मनिर्भर होने के साथ अपना सारा जीवन अकेले बिना किसी सहारे के व्यतीत कर सकती है। आधुनिक समय में हमारे समाज में दहेज एक अभिशाप बन गया है। दहेज की चपेट में आकर हमारा समाज दहेज लोभियों से भर गया है। जब एक बेटी शिक्षित नहीं होती तो उसकी शादी में दहेज की अधिक मांग की जाती है। माता पिता अपनी बेटी को खुशियों के लिए अपना सब कुछ देकर दहेज की मांग को पूरा करते हैं। फिर भी ना जाने कितने दहेज लोभियों द्वारा हमारी कितनी मासूम बेटियां दहेज की बलि चढ़ जाती हैं। इसीलिए बेटियों को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाना अति आवश्यक है। शिक्षित बेटियां ही समाज को दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों से बचा सकती हैं और अच्छे समाज का निर्माण कर सकती हैं। जब बेटी शिक्षित और आत्मनिर्भर होती है तो उसे दहेज नहीं देना पड़ता। वह अपने दम पर सब कुछ ले सकती है जो उसे चाहिए। इसीलिए बेटियों के जीवन को बचाने के लिए हमें बेटियों को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। जब एक स्त्री स्वयं शिक्षित होती है तो वह अपने आने वाली पीढ़ी को भी शिक्षित कर सकती है। बेटियों को शिक्षित करने के लिए सरकार ने भी कई योजनाएं बनाई हैं, जिनका हमारी बेटियां भरपूर लाभ ले सकती हैं। बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए हमें उनको शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाना होगा। बेटियों ने शिक्षा के बल पर जमीन से लेकर आसमान तक अपनी एक पहचान बनाई है। बेटियां कुदरत का अनमोल तोहफा है जो हमारे जीवन को स्वर्ग बनाती हैं। एक शिक्षित नारी ही अपने अधिकारों के लिए स्वयं लड़ सकती है और अपना हक पाने के लिए संघर्ष भी कर सकती है। एक शिक्षित स्त्री को अपने घर में समाज में इज्जत की नजर से देखा जाता है। एक शिक्षित स्त्री जब आत्मनिर्भर होती है तो वह अपनी बेटियों की नजर में रोल मॉडल होती है। आत्मनिर्भर बेटियां समाज में एक उदाहरण के रूप में देखी जाती हैं। हर बेटी का सपना होता है कि वह भी एक आत्मनिर्भर बेटी बने, जिससे वह अपने सपनों को नई उड़ान दे सके, वह अपने सपनों को पूरा अपने दम पर कर सके। जब एक बेटी अपनी माँ की इज्जत और सम्मान होते देखती है तो वह स्वयं को अपनी माँ से तुलना करती है। वह अपनी माँ की तरह आत्मनिर्भर बनना चाहती है। उसे भी जीवन में किसी भी सहारे की जरूरत ना पड़े, स्वयं वह सबका सहारा बन सके। एक माँ का कर्तव्य होता है कि वह अपनी बेटी को शिक्षा के लिए प्रेरित करे। आत्मनिर्भर माँ में आत्मविश्वास होता है, वह अपनी बेटी को भी दे सकती है। आत्मनिर्भर माँ चाहती है कि उसकी बेटी को भी समाज में एक अलग मुकाम हासिल हो। माँ और बेटी की जोड़ी आत्मनिर्भरता की यात्रा में एक साथ चल सकती है। वह एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकती हैं और एक दूसरे के लिए आदर्श बन सकती हैं। आत्मनिर्भर हो माँ तो आत्मनिर्भर हो बेटी, ये विचार न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि ये समाज के विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आत्मनिर्भर माँ अपनी बेटी को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर सकती है, जो उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। माँ द्वारा दी गई प्रेरणा से एक बेटी अपने और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए उन्नति के नए मार्ग खोल सकती है। माँ ही अपनी बेटियों की उड़ान में पंख का काम करती हैं। एक माँ को अपनी बेटी को सशक्त, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास वाली नारी बनाने के लिए उसका साथ अवश्य देना चाहिए। माँ को बेटी को आत्मनिर्भर बनाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए, जिससे उसकी बेटी और उसकी आने वाली पीढ़ी का जीवन सुखदायी हो। एक सफल माँ वही होती है जो अपनी बेटी को भी एक सफल नारी बना सके। देश की उन्नति के लिए हमें बेटियों को आत्मनिर्भर और शिक्षित अवश्य बनाना चाहिए।
0: आत्मनिर्भर माँ तो आत्मनिर्भर हो बेटी। जब इस पर बहनों अभी आपने सुनी श्रीमती गंगवार की जानकारी, और बिल्कुल जरूरी यही है कि जब तक माँ आत्मनिर्भर नहीं होगी तो वो किस तरीके से अपनी बेटी को आत्मनिर्भर बना सकती है। कहते हैं कि बच्चे चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, माँ बाप से ही सीखते हैं। जैसे माँ बाप करते हैं बच्चा भी वही सीखता है। तो जरूरत यही है कि हम खुद भी आत्मनिर्भर बने और अपने बच्चों को भी आत्मनिर्भर बनाएं और उन्हें खुले आकाश में उड़ने दें। बहनों बातों का सिलसिला हम आपसे यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन अब कार्यक्रम में जो वक्त है वो है मनोरंजन का। तो आइए सुन लेते हैं अनुकृति की आवाज में गाओ जो लोकगीत।

0: मैंने अभी आप में सुनो अनुकृति की आवाज में गाओ जो लोकगीत। तो जय लोकगीत के बाद अब चलते हैं कार्यक्रम के अगले पड़ाव में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं क्षेत्र संकलित कार्यक्रम गांव की बातें। जहां कार्यक्रम के अंतर्गत हमने आज एक बहन से बात करी और उनसे जाना कि हम बच्चों को किस तरीका से जो है वो संतुलित आहार दें, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो खाने पीने में बहुत ज्यादा नानुकुर करते हैं कि हमें तुरई ना खानी है, हमें लौकी ना खानी है, हमें तो बाहर का खाना है। और आजकल बच्चों का जो डाइजेशन है वो भी बहुत ज्यादा खराब चल रहा है और बच्चे जो है कुछ खाना नहीं चाह रहे हैं घर का खाना। अगर बाहर के खाने की बात कर लो तो तुरंत उनके मुंह से हाँ निकल जाती है। तो ऐसे में जरूरत है कि हम किस तरीका से अपने बच्चों को संतुलित आहार दें ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनको पोषण पूरी तरीका से मिल पाए। आइए सुन लेते हैं उनसे की गई जो बातचीत।
1: नमस्कार,

0: नाम?
1: मेरा नाम कल्पना गंगवार।
0: कल्पना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि संतुलित आहार क्या है।
1: संतुलित आहार ही है, क्योंकि जितने संतुलित आहार का मतलब ये होता है कि हमारे भोजन में सभी पोषक तत्वों की

0: खा ले, क्योंकि बच्चों की नानुखुर बहुत ज्यादा होती है और बड़ा मुश्किल काम हो जाता है कि हम किस तरीके से हम बच्चों को अपना संतुलित आहार दें। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, किस तरीके से अपने बच्चों को उनका ध्यान रखते हैं?
1: क्योंकि बच्चे हैं आजकल जो अच्छी चीज है वो नहीं खाना चाहते हैं, जैसे हरी सब्जियां हैं बच्चों को कम पसंद होती हैं, बच्चे आजकल फास्ट फूड ज्यादा पसंद करते हैं, घर का खाना कम पसंद करते हैं। तो बच्चों को क्या है, हरी सब्जियों का इस तरीके से बनाओ कि बच्चों को भी अच्छा लगे, प्रेजेंटेशन उनकी ऐसी होनी चाहिए बच्चे खा भी लें और ये भी बताना चले कि हमने क्या खाया है। जैसे हम लोग हरी सब्जियों में ये क्या है, खीरा ककड़ी ये सब चीजें है, और फास्ट फूड में बच्चे क्या करते हैं, बर्गर खाते हैं, उसमें यही चीजें होती हैं। तो हम उसे रोटी पे इस तरीके से प्रेजेंट करें जैसे वो बच्चों को लगे एज ए बर्गर, बच्चे खा भी ले उसे। अब जैसे उसमें खीरा है, एक हरी मिर्च है, प्याज है, टमाटर है, सब चीज, और पनीर का एक टुकड़ा डाल दीजिए जिसमें, इस तरीके से उसे तरीके से के देसी घी में अच्छे तरीके से खिलाएंगे तो उसकी प्रेजेंटेशन इतने अच्छे तरीके से हो जाएगी कि बच्चा खा लेगा। बच्चा दूध नहीं पीना चाहता है तो बच्चे को हम बनाना शेक बना के खिला दें, है ना, इस तरीके से बच्चे के पेट में चला जाएगा। बच्चा दलिया नहीं खाना चाहता तो बच्चे को, अगर मीठा दलिया नहीं पसंद है, बच्चों को खिचड़ी की तरह नमक का दलिया बना के खिला सकते हैं, है ना। शौक के जैसे बच्चे लगे कि हम चावल खा रहे हैं, चावल बच्चों को अच्छे लगते हैं और वो दलिया एक मतलब पीली खिचड़ी की तरह बच्चों को बना के खिला सकते हैं। देखो बच्चा इंटरेस्ट के साथ खाएगा तो उसका पेट भी भरेगा, इस हिसाब से उसके पेट में भी जाएगा, है ना।
0: बिल्कुल, ये तो रही कि हम बच्चों को किस तरीके से है उनको पोषक तत्वों को दे सकते हैं। बच्चों को मतलब खाना खिलाना है तो बच्चों को उनको उनके तरीके से उनको खिलाना पड़ेगा, क्योंकि हम ये माओ की जिम्मेदारी है। वही बात आती है, हम संतुलित आहार अपने बच्चों को दे रहे हैं, हर कोशिश कर रहे हैं कि हमारा बच्चा जो है वो संतुलित आहार अपने ले और एक स्वस्थ शरीर को पाए, लेकिन कहीं ना कहीं संतुलित आहार तो हम दे रहे हैं लेकिन साफ सफाई का हम ध्यान नहीं रख रहे हैं।
1: हाँ, साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें अगर कोई भी चीज हम बच्चों को दे रहे हैं, पहली बात जो हमने बनाया है उसे साफ सफाई से बनाना चाहिए, बनाने से पहले हाथ धोना चाहिए, साफ बर्तन होना चाहिए और जो भी चीज है उसे ढककर रखना चाहिए, और बच्चों को हाथ में देने से पहले बच्चे के हाथ साबुन से धुलवाना चाहिए, सूखी टॉवल से पोंछना चाहिए, उसके बाद ही बच्चे को खिलाएं। कोई उससे कोई भी चीज हो उसे ढकी हुई होना चाहिए, उबली हुई चीज बच्चों को न खिलाएं पिलाए, क्योंकि अगर उबली हुई चीज बच्चे खाएंगे तो बच्चों को नुकसान देगी।
0: देखिए, एक कहते हैं कि जो हमारा खाना बनाने का जो तरीका है वो भी हमारे जो पोषण से संबंधित है। होता क्या है कि अक्सर क्या करती हैं हम महिलाएं जो हैं, सब्जी में पानी ज्यादा लगा दिया या सब्जियों को हमने धोया नहीं पहले और काट लिया उनको, तो इन सब चीजों को हमें किस तरीके से ध्यान रखना है और किस तरीके से हमें जो है खाने को बनाना चाहिए जिससे कि उसके जो पोषक तत्व हैं वो नष्ट ना हो।
1: देखिए, सलाद में तो पहली बात जो है जो भी चीजें कच्ची होती है, खीरा ककड़ी मूली गाजर ये सब चीजें, पपीता वगैरह, ये चीजें तो हमें पहले धुलना चाहिए उसके बाद काटना चाहिए, धुलने के बाद नहीं काटना चाहिए। और रह रही सब्जियों को पहले अच्छी तरीके से धुल लेना चाहिए उसके बाद बनाना चाहिए। बनाने के बाद में पोषक तत्व कुछ नष्ट तो हो जाते हैं लेकिन खाना खाने के लिए बनाना भी जरूरी है ना,
0: उसका
1: तो
0: तरीका भी होता है। जैसे कि होता है कि हम सब्जी में पानी ज्यादा लगा देते हैं या हम सब्जियों को
1: ज्यादा
0: देर नहीं पकाना चाहिए।
1: कढ़ाई में बनाते हैं तो हम लोगों को आयरन मिलता है, कढ़ाई में सब्जियां ज्यादा पोषक तत्व मिलता है, आयरन मिलेगा तो बच्चे के पेट में जाएगा। और जो भी कोई खाया था, आयरन बहुत जरूरी होता है हमारी बॉडी के लिए, हरी पत्तेदार सब्जियां इन चीजों को खिलाना चाहिए, कुकर में जल्दी बन जाएगा लेकिन आयरन नहीं मिल पाएगा। कम मात्रा में पानी होना चाहिए, ज्यादा मात्रा में ज्यादा पकाएंगे तो बिल्कुल ही खराब हो जाएगी, वो सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे।
0: देखिए, ये छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर हम इनको ध्यान रखें तो हमारा जो आहार है वो संतुलित हो सकता है और एक हम स्वस्थ शरीर को पा सकते हैं। अपने आपको स्वस्थ रखने के लिए हमें और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: पर्सनल हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, घर पे परिवार में सभी को सबसे पहले सुबह उठ के सबसे पहले नहाना धोना चाहिए, हम लोगों को अपना घर साफ सुथरा करना चाहिए, है ना। जो हमारी दिनचर्या है उसका ध्यान रखना चाहिए, ब्रश वगैरह करना चाहिए हमें,
0: बिल्कुल
1: इन चीजों का तो बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल कल्पना जी, देखिए हम संतुलित आहार ले रहे हैं लेकिन हम अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, साफ सफाई नहीं रख रहे हैं अपने आसपास में, तो वो जो हमारा जो खान पान है वो कहीं ना कहीं हमारे सेहत पर बुरा असर डालेगा।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि जहाँ साफ सफाई है वहीं पर हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छे से रहेगा। हमारा खान पान साफ सुथरा हो, हमारा खान पान अच्छा हो, पोषण से युक्त हो, तभी हम एक सेहतमंद स्वास्थ्य को पा सकते हैं। कल्पना जी, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत।
2: बहनों, अभी आपने सुना क्षेत्र संकलित कार्यक्रम गांव की बात है, जब कार्यक्रम के अंतर्गत आपने जाना कि किस तरीका से हम बच्चों को संतुलित आहार दे सकते हैं। और जा टाइम तो बहनों बच्चों की

छुट्टियां चल रही है तो बच्चों की फरमाइशें भी अलग अलग होती हैं कि मम्मी आज हमें ये बना के खिलाओ, कि मम्मी आज हमें ये बना के खिलाओ, या आज हमें बाहर लेके चलो। तो ऐसी हर डिमांड को बच्चों की जो है वो पूरा करें, या कुछ ना कुछ इस तरीका से करें कि जो हमारे बच्चे हैं वो हरी सब्जियां भी खाएं। और गर्मियों को मौसम में जहाँ टाइम पर बच्चों से ये कहें कि जो पेय पदार्थ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लें, पानी ज़्यादा पिएं, साफ सफाई को विशेष ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि खान पान के चक्कर में या हम साफ सफाई को ध्यान ना रख रहे हैं, बच्चे जो हैं बीमार पड़ते जा रहे हैं, और जय ना समझ में आ रही है कि बच्चे को क्या कारण है कि बच्चे हमारे अच्छे से खा पी ना रहे हैं, डॉक्टर के थोड़े चक्कर लगाने पड़े। तो ज़रूरी है कि हम अपने खाने में मौसमी फल सब्जियों का प्रयोग करें, बच्चों को साफ सफाई के बारे में बताएं, हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखें, तभी जो है हमारे बच्चों की छुट्टियाँ हैं वो खुशहाल बीतेंगी और उनका बचपन भी खिलखिलाता रहेगा और हम भी खुश रहेंगे। जब हमारे बच्चे खुश होंगे तो हम भी खुश होंगे। तो ज़रूरत यही है कि हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखें, बच्चों के साथ घूमने जाएं तो वहाँ पर भी अच्छे से जो है वो ध्यान रखें, अपनी पानी की बॉटल अपने साथ लेकर जाएं, या छाता वगैरह धूप अगर तेज पड़ रही है तो वो भी अपने संग लेकर चलें, ज़रूरत का हर छोटा सामान अपने साथ लेकर जाएं। इससे क्या होता है कि एक तो हमारे पास सब सामान होते तो हम बाहर से खरीदेंगे ना, और हमारे जो पैसा की है वो बचत ही जाएगी, और बाहर की जो चीज़ें हैं खाने पीने वाली जो चीज़ें हैं उन पर देखते हैं मक्खी मच्छर सब तरीका के बैठ जाता है। अगर हम घर की बनी भी चीज़ें लेकर जाएंगे तो जो है वो हमारे सेहत के लिए अच्छी होंगी। बहनों, हम आपसे यही कहेंगे कि आप अपनों और अपने परिवार को अच्छे से ध्यान रखें। अगले कार्यक्रम तक अब अपनी बहन गुंजन को दो अनुमति। राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आंचल। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दो बजने वाले हैं। अब सुनिए अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: The Myanmar president arrived at Gaya in Bihar on Saturday on a five-day visit to India. The Myanmar president will also travel to Mumbai tomorrow for business and industry interactions and site visits. The India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, has come into force today. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the CEPA will deepen the economic and strategic ties between the two nations. In an article published in a national daily, Mr. Goyal said the Comprehensive Economic Partnership Agreement immediately gives Indian exporters 100% duty-free market access in Oman to 98% of tariff lines, covering 99.38% of exports. This marks a dramatic improvement over the pre-CEPA system that allowed only 15.3% of India's exports to enter Oman at zero duty. The minister said goods from India that currently face a 5% import duty in Oman will become more competitive. Mr. Goyal added that the agreement will significantly benefit the country's students, artisans, women, farmers, fishermen, and micro, small, and medium enterprises by opening new markets, boosting exports, attracting investments, and accelerating job creation. The second India-Australia Defence Ministers dialogue is underway in New Delhi. Defence Minister Rajnath Singh and Australian Deputy Prime Minister and Minister for Defence Richard Marles are co-chairing the dialogue. During the dialogue, both ministers will review the progress in bilateral defence cooperation and identify new avenues for collaboration. The meeting is expected to further strengthen bilateral defence relations, promote stability and security in the Indo-Pacific region, and identify new areas of collaboration in defence and security. In his opening remarks, Mr. Singh said the defence ties between India and Australia have strengthened significantly.
1: In the coming years, we work with a renewed momentum, effectively contributing to growth of bilateral defence relations. Excellency, today is the fifth anniversary of elevation of our relations to comprehensive strategic partnership. I appreciate the significant strides made in our bilateral relationship across a wide range of sectors, from political exchanges to defence partnership.
0: Mr. Marles said Australia and India are doing a lot of work in the maritime domain. He said both nations have never been more strategically aligned. Gross goods and services tax, GST, collections rose 3.2% to over 1,94,000 crore rupees last month on improved supplies of goods and services and continued expansion of collection from imports. The gross GST collection in May last year was 1,88,000 crore rupees. Gross central GST collection from domestic transactions last month stood at 37,397 crore rupees. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. The West Bengal cabinet headed by Chief Minister Shubhendu Adhikari was expanded today, with the induction of 35 new ministers, taking the strength of the Council of Ministers to 41. Governor R.N. Ravi administered the oath of office in secrecy to 35 BJP MLAs at a swearing-in ceremony held at Lok Bhavan in Kolkata. We have a report.
2: 13 cabinet ministers got birth in today's expansion. The members who sworn in today as the cabinet ministers include Swapan Dasgupta, Arjun Singh, Tapas Rai, Shankar Ghosh and others. The cabinet expansion is being seen as a significant step in strengthening the state government's administrative structure following the formation of the new government. The new ministers are representing different regions of the state and a mix of experienced legislators and first-time ministers. The allocation of portfolios among the newly inducted ministers is likely to be announced later. Sandeepan Dasgupta, Akashvani News, Kolkata.
0: Pradhan Mantri Street Vendors Atmanirbhar Nidhi PM Swanidhi scheme completed 6 years today. PM Swanidhi has enabled millions of street vendors to access easy credit and build sustainable livelihoods over the last 6 years. Since its launch in 2020, more than 1 crore 12 lakh loans have already been disbursed. Hailing the scheme, Prime Minister Narendra Modi in a social media post said PM Swanidhi has transformed the lives of countless street vendors by ensuring access to collateral-free credit, financial inclusion and new opportunities for growth. More from our correspondent.
3: Under the scheme, collateral-free loans of 15,000, 25,000 and 50,000 rupees are provided in three progressive tranches with interest subsidy and credit guarantee support. The initiative has benefited over 75 lakh beneficiaries across cities and towns. Loans worth over 17,800 crore rupees have been provided under the scheme. Over 55 lakh beneficiaries have been onboarded digitally under the scheme. Together, they have carried out over 841 crore digital transactions worth nearly 8.96 lakh crore rupees. Beneficiaries under PM Swanidhi have also received nearly 800 crore rupees through digital cashback incentives and interest subsidies. The scheme has been extended until March 2030. Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
0: Notification was issued today for biennial elections to 24 seats of the Rajya Sabha from 10 states. 4 seats each in Andhra Pradesh, Gujarat and Karnataka, 3 seats each in Rajasthan and Madhya Pradesh, 2 seats in Jharkhand and 1 seat each in Manipur, Meghalaya, Arunachal Pradesh and Mizoram will go to poll on the 18th of this month. Notification was also issued today for Rajya Sabha by-poll for 1 seat each in Maharashtra, Tamil Nadu and Odisha. The polling will be held on the 18th of this month. Counting of votes will take place on the same day. 5 new judges have been appointed to the Supreme Court, taking the apex court's working strength to 37, including the Chief Justice of India. The centre had last month promulgated an ordinance amending the law to raise the Supreme Court's sanctioned strength to 37 judges from 33, excluding the Chief Justice of India. The prices of 19-kilogram commercial LPG cylinder used by hotels, restaurants and other businesses has been hiked across the country. However, there has been no change in the rates of domestic cooking gas used by households. The price of commercial LPG cylinder has been hiked by 42 rupees in Delhi and it will now cost 3,113 rupees 50 paise. In Mumbai, it has been hiked by 43 rupees 50 paise and will now cost 3,067 rupees 50 paise. The latest increase in commercial LPG prices came in the backdrop of rising global energy costs triggered by escalation of tensions in West Asia. Tensions have flared up once again in West Asia after the United States carried out strikes on Iranian radar and drone-controlled sites. The strikes targeted facilities in Gorokh and Kashmir Island. The military action was conducted in response to shooting down of an American MQ-1 Predator drone by Tehran operating over international waters over the weekend. Meanwhile, Kuwait today said its air defenses were confronting hostile missile and drone attacks approaching the country. No group has claimed responsibility for the attacks on Kuwait. The recent attacks reflect the fragility of a ceasefire in the Iran war. Our West Asia correspondent has the details.
4: Against this backdrop of military exchanges, diplomatic channels remain cautiously open. United States President Donald Trump said he is close to reaching a very good deal with Iran, even though American media reports suggest he is pushing for significantly tougher terms than previously discussed. Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi confirmed that the exchanges of messages between Tehran and Washington is ongoing, but was careful to note that nothing can be considered final until a deal is formally concluded. Elsewhere, Israel's expanding ground invasion of Lebanon has drawn sharp international criticism. France has formally requested an emergency meeting of United Nations Security Council to address the situation. This is Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai.
0: Malaysia today began enforcing rules barring millions of children younger than 16 from owning social media accounts, joining a global effort to tighten online safety protections for young users. Other countries including Australia, Brazil and Indonesia have also announced age-based restrictions for children's access to social media. In Myanmar, the death toll from a powerful explosion in Kangtup village of Namkham township has risen to 55. More than 70 people were injured in the blast, which occurred yesterday following the accidental detonation of materials allegedly stored for mining purposes. The result of the joint entrance examination JEE Advanced 2026 has been declared for admission to the premier Indian Institutes of Technology IITs and other top institutions. Announcing the results, IIT Roorkee said, out of a total of 1,79,694 candidates who appeared for the exam on the 17th of last month, 56,880 candidates have qualified, including 10,107 females. Shubham Kumar from the IIT Delhi zone secured the first rank. On to sports. In the 22nd Asian Under-20 Athletics Championships, India delivered a historic campaign, finishing second in the standings with 19 medals comprising 10 gold, 5 silver and 4 bronze in Hong Kong. The runner-up finish marked India's best ever performance at the Continental Track and Field Championships outside home soil. A total of 48 Indian athletes, 30 men and 18 women competed in the tournament held from the 28th to the 31st of last month. The championships are serving as a qualifying event for the World Under-20 Athletics Championships scheduled to be held at Oregon in the United States in August. Prime Minister Narendra Modi has congratulated the Indian contingent of Asian Under-20 Athletics Championships on winning 19 medals. In a social media post, Mr. Modi said this outstanding performance reflects the determination and excellence of India's young athletes. In the Under-17 Asian Wrestling Championships, India's women grapplers delivered a strong performance, winning a total of 10 medals, including 2 gold, 3 silver and 5 bronze at Da Nang in Vietnam. Leading the charge, Deeksha in the 43-kilogram category and Garima in 73-kilogram category clinched gold medals. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Gujarat, Kerala, Mahe, Lakshadweep, Nagaland, Manipur, Tripura, Odisha, Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and West Madhya Pradesh today. The Met Department has predicted thunderstorms and lightning over Delhi, Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Rajasthan till tomorrow. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and Myanmar President U Myint Aung Hlaing hold bilateral talks in New Delhi. India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement comes into force, gives Indian exporters duty-free market access in Oman to 98% of tariff lines. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari expands cabinet with induction of 35 new ministers. Gross GST collection rises to over 1,94,000 crore rupees in May. PM Swanidhi scheme completes 6 years. Prime Minister Narendra Modi says scheme opened new growth opportunities for street vendors. And India ends impressive campaign at Asian Under-20 Athletics Championships with 19 medals, including 10 gold in Hong Kong. With that, we end for Midday News.
5: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Sir Firozi. मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिंट आउंग ह्लाइंग ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की. भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू. भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी. पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया. 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ. मई महीने में सकल जीएसटी संग्रह बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ. पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं. पश्चिम एशिया में तनाव फिर तेज. अमेरिका ने ईरान में रडार और ड्रोन प्रणालियों पर हमले किए. और हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण सहित 19 पदक जीते. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिंट आउंग ह्लाइंग के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई. दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई. बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई. हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे.
6: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकन वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित होंगे।
7: ये मंत्रिमंडल विस्तार राज्य सरकार की प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए मंत्री राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें अनुभवी विधायकों के साथ साथ पहली बार विधायक बने सदस्य भी शामिल है। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ राजनीतिक नेताए, सरकारी अधिकारियों और आमंत्रित अतिथियों उपस्थित थे। नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन बाद में घोषित किया जाएगा। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस राय, शंकर घोष और अन्य शामिल है। काशफीन नाहर, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
5: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय GST का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य GST का 45,143 करोड़ और एकीकृत GST का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। GST रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
8: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान एक महीने तक चलेगा।
9: एक महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
10: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
9: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
5: सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
11: विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 कर दी गई थी। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
5: होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू खाना पकाने की गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रुपए की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113 रुपए 50 पैसे होगी। मुंबई में 43 रुपए 50 पैसे की वृद्धि के साथ नई कीमत 3,067 रुपए 50 पैसे होगी। कोलकाता में 53 रुपए 50 पैसे की वृद्धि के साथ व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत अब 3,255 रुपए 50 पैसे होगी। चेन्नई में कीमतों में 42 रुपए की वृद्धि हुई है और अब नई कीमत 3,283 रुपए होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के ईरान में रडार और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की, जबकि कुवैत ने कहा कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। इसराइल द्वारा लिटानी नदी के पार लेबनान पर अपना कब्जा बढ़ाने के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट।
12: सैन्य टकरावों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ एक अच्छे समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्जी ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से समझौता होने तक किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर लेबनान पर इसराइल के बढ़ते जमीनी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस ने स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
5: भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
13: मैं आपकी सरकार को 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और एकीकृत निवेश कार्यक्रम की पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं। चर्चा के दौरान मैं इन नीतिगत दस्तावेजों और भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विकास के संभावित अवसरों पर आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूं।

0: ऑस्ट्रेलिया डिफेंस रिलेशंस।
1: श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा और सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। म्यांमार के नामकाम शहर में भीषण विस्फोट में 55 लोगों की मौत हो गई है। कल हुए इस विस्फोट में 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये घटना खनन के लिए रखे गए सामान में हुए विस्फोट के कारण हुई। स्थानीय अधिकारी प्रभावित निवासियों को राहत, चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास सहायता प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट में 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर 100 लाख रिंगिट तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और जैसी चीजों से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों ने भी बच्चों के सोशल मीडिया तक पहुंच पर आयु आधारित प्रतिबंधों की घोषणा की है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। घरेलू मोगली वेंकटराम ने कल पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड। आज इस कार्यक्रम में माफ कीजिएगा, कार्यक्रम सुनहरा दौर अब आपके रेडियो सेट्स पर।

कार्यक्रम सुनहरा दौर में आज हम आपको सुनवा रहे हैं 1960 के कुछ फिल्मी नगमे। आइए कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे आराधना फिल्म से ये गीत। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म पूर्णिमा से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की।

अभी आप सुन रहे थे पूर्णिमा फिल्म से ये गीत। आवाजें थी लता मंगेशकर और मुकेश की। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए फिल्म लीडर से, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत फिल्म असली नकली से। कार्यक्रम सुनहरा दौर इस वक्त आप सुन रहे हैं और हम आपको सुनवा रहे हैं 1960 के कुछ फिल्मी गीत। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म भरोसा से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की।

336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 3 बजे हैं मीडियम वेव पर। अब हमारी आज की सभा के प्रसारण यहीं संपन्न होते हैं, लेकिन अब से शाम 5 बजे तक FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम उपलब्ध होंगे। शाम 5 बजे हमारी दूसरी सभा मीडियम वेव और FM पर एक साथ आरंभ होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

0: की सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: कहिए कैसी है मंजरी जी आप?
2: बस यही कहेंगे ना कि हमेशा की तरह बिल्कुल मस्त अच्छी सी हूँ।
1: हाँ, जी वो तो आपको देखकर ही लग रहा है कि बिल्कुल जो है आप खुश लग रही हैं बहुत ज्यादा और फ्रेश लग रही हैं।
2: जी धन्यवाद।
1: और मुझे लगता है कि जब से मैं सुबह से आपको देख रही हूँ आप तरह तरह के गीत निकाल रही हैं, कभी किसी गाने को पसंद कर रही हैं कभी नहीं कर रही हैं, तो संगीत के बीच में रहकर भी आदमी जो है एकदम अपने आप को फ्रेश पाता है, ताजा महसूस करता है।
2: गीत संगीत तो की दुनिया ऐसी है कि आप कितने भी उदास हो आप गीत सुन लीजिए आप एकदम फ्रेश हो जाएंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि आपकी उदासी आपके पास से कब कहां किधर चली गई अगर आप बिल्कुल दिल से सुनते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा मंजरी। हाँ लेकिन एक उदासी का सबब आज तो हमारे मन में है।
2: बिल्कुल
1: है ना,
2: बिल्कुल वही हम कहने वाले थे कि जब हमारे बीच से कोई चला जाता है और जब

0: अच्छी अच्छे गायक गायिका चले जाते हैं, तो उनके ना जी उनके गाने हम सुनकर ही बड़े हुए हैं,
1: बिल्कुल
0: तो वो गाने हमेशा कानों में दस्तक देते रहते हैं, और जब वो व्यक्ति चला जाता है तो बहुत दुख होता है, आंखें भर
1: बिल्कुल
0: आती है, दिल भर आता
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल। कल मैं एक कार्यक्रम दे रही थी मंजरी, उसमें
0: जी
1: मैंने कहा कि किसी का जाना कैसा महसूस होता है हमें, जब हमारी जिंदगी से,
0: जी
1: विचारों से, हमारे दिल से, हमारे घर से कोई चला जाता है या दुनिया से
0: बिल्कुल
1: चला जाता है तो हम क्या महसूस करते हैं। और हमारे
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं ने इतने अच्छे विचार हम तक पहुंचाए थे कि मेरा गला भर आया था और आंखें नम हो गई
0: नहीं,
1: थी।
0: वो बात ही ऐसी है कि हम पढ़ते पढ़ते आज भी आंखें नम हो जाती है जब हम
1: हाँ
0: उन चीजों को याद करते हैं, और जो हमारे बीच से अब चले गए
1: जी
0: हैं, और हम सब उनके परिवार के ही सदस्य कहना चाहिए, वो गाने गाते हैं और हम लोग सुनते हैं ध्यान से, तो हम कहीं ना कहीं उनके साथ एकदम जुड़े होते
1: और
0: हैं।
1: इस कार्यक्रम या इस नौकरी में हमने न जाने कितनी बार इन गायक और गायिकाओं को
0: जी
1: बजाया और खुद गुना उनके गानों को गुनगुनाया, उनके
0: गुनगुनाया,
1: गानों को जिया हमने। मुझे याद
0: बिल्कुल
1: है रफी साहब के इतने सारे गाने हैं जो हमारी जिंदगी से जुड़े हुए लगते हैं, लता जी के,
0: जी
1: आशा जी के, और आज जो सुमन कल्याणपुर को हमने खो दिया है,
0: जी
1: उनके गाए गीत जब हम सुनते हैं तो लगता है कि हमारे ही गले का कोई सुर जैसे चला गया है,
0: बिल्कुल सही
1: ऐसा
0: बात है,
1: महसूस होता
0: बिल्कुल सही बात
1: है
0: है।
1: ना। इतनी महान गायिका, इतनी शानदार गायिका जिन्होंने बहुत सादगी से अपनी आवाज को पेश किया, आप तक पहुंचाया, और हर गीत को उतनी ही कोमलता के साथ, सादगी के साथ, उतार चढ़ाव के
0: जी,
1: साथ गाया।
0: और उतनी ही उनका स्वभाव भी सादगी भरा था, बहुत ही सरल स्वभाव की महिला हैं वो थी, और जो आज हमारे बीच नहीं है, तो उनको हम सभी लोग और सभी विद भारती परिवार की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: बिल्कुल।
0: और हमारी सखी ने भी
1: कुछ
0: एक
1: लिखा है
0: लिखा
1: बताइए,
0: है,
1: हमारी सखी ने क्या लिखा है।
0: इन्होंने गाने की एक लाइन लिखी है कि यूं ही दिल ने चाहा था रोना रुलाना, तेरी याद तो बन गई एक बहाना,
1: बहाना।
0: दुखद समाचार, दिग्गज गायिका सुमन कल्याणपुर अब इस दुनिया में नहीं है, आज 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाली दिग्गज प्लेबैक सिंगर सुमन कल्याणपुर का आज निधन हो गया है, और उन्होंने इतने साल उम्र मुंबई में स्थित अपने घर में उन्होंने अंतिम सांस ली है, और उन्होंने पहले सुमन हेमदी नाम से गाने गाए थे, हालांकि
1: हाँ
0: शादी के बाद उन्होंने सुमन कल्याणपुर के नाम से अपनी पहचान बनाई और गीतों को आवाज दी है।
1: आवाज थी बिल्कुल, और उनकी आवाज हमने जन जन तक पहुंचाई रेडियो के माध्यम से। तो
0: जी
1: विविध भारती परिवार की ओर से हम उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं,
0: जी
1: और सखी सहेली के इस मंच से, इस परिवार से
0: जी
1: उन्हें बहुत बहुत
0: बहुत
1: श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे
0: जी
1: हैं।

0: हाँ तो मंजरी, आज हम किन विषयों पर बात करने वाले हैं, हमारी सखियां और सखा जानना भी चाहते होंगे।
1: बिल्कुल, तो आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के व्यंजन बनारस का, मंगौड़ी वाला मटर का निमोना और धनिया की मट्टी, इसके बारे में बात करेंगे। और वैश्विक अभिभावक दिवस है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और विश्व दुग्ध दिवस भी आज है, तो दूध तो सभी जानते हैं कितना अच्छा होता है सभी के लिए पीना, बच्चों के लिए खासकर बहुत जरूरी है, तो इस पर चर्चा करेंगे। और कथा सुधा के अंतर्गत आभूषण भाग एक, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी ये आज सुनाई जाएगी और इसका भाग एक है, तो हम लोग इस कहानी का आनंद लेते हैं।
0: चलिए तो पहले ही कहानी सुन लेते
1: जी।
0: हैं।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण। आज सुनते हैं इस कहानी की पहली कड़ी।

0: आभूषणों की निंदा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम असहयोग का उत्पीड़न सह सकते हैं, पर ललनाओं के निर्दय घातक वाकवाणों को नहीं ओढ़ सकते। तो भी इतना अवश्य कहेंगे कि इस तृष्णा की पूर्ति के लिए जितना त्याग किया जाता है, उसका सदुपयोग करने से महान पद प्राप्त हो सकता है। यद्यपि हमने किसी रूपहीना महिला को आभूषणों की सजावट से रूपवती होते नहीं देखा, तथापि हम ये भी मान लेते हैं कि रूप के लिए आभूषणों की उतनी ही जरूरत है जितनी घर के लिए दीपक की। किंतु शारीरिक शोभा के लिए हम तन को कितना मलिन, चित्त को कितना अशांत और आत्मा को कितना कलुषित बना लेते हैं, इसका हमें कदाचित ज्ञान ही नहीं होता। इस दीपक की ज्योति में आंखें धुंधली हो जाती हैं। ये चमक दमक, कितनी ईर्ष्या, कितने द्वेष, कितनी प्रतिस्पर्धा, कितनी दुश्चिंता और कितनी दुराशा का कारण है, इसकी केवल कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन्हें भूषण नहीं, दूषण कहना अधिक उपयुक्त है। नहीं तो ये कब हो सकता था कि कोई नववधु पति के घर आने के तीसरे दिन अपने पति से कहती,
1: मेरे पिता ने तुम्हारे पल्ले बांधकर मुझे तो कुएं में ढकेल दिया है।
0: शीतला आज अपने गांव के तालुकेदार कुंवर सुरेश सिंह की नवविवाहिता वधू को देखने गई थी। उसके सामने ही वो मंत्रमुग्ध सी हो गई। बहू के रूप लावण्य पर नहीं, उसके आभूषणों की जगमगाहट पर उसकी टकटकी लगी रही। और वो जब से लौटकर घर आई, उसकी छाती पर सांप लौटता रहा। अंत को ज्यों ही उसका पति आया, वो उस पर बरस पड़ी और दिल में भरा हुआ गुबार पूर्वोक्त शब्दों में निकल पड़ा। शीतला के पति का नाम विमल सिंह था। उनके पुरखे किसी

0: जमाने में इलाकेदार थे। इस गांव पर भी उन्हीं का सोलहों आने अधिकार था, लेकिन अब इस घर की दशा हीन हो गई है। सुरेश सिंह के पिता जमींदार के काम में दक्ष थे। विमल सिंह का सब इलाका किसी न किसी प्रकार से उनके हाथ आ गया। विमल के पास सवारी का टट्टू भी न था, उसे दिन में दो बार भोजन भी मुश्किल से मिलता था। उधर सुरेश के पास हाथी, मोटर और कई घोड़े थे। 10-5 बाहर के आदमी नित्य द्वार पर पड़े रहते थे, पर इतनी विषमता होने पर भी दोनों में भाईचारा निभाया जाता था। शादी ब्याह में, मुंडन छेदन में परस्पर आना जाना होता रहता था। सुरेश विद्या प्रेमी थे। हिंदुस्तान में ऊंची शिक्षा प्राप्त करके वो यूरोप चले गए और सब लोगों की शंकाओं के विपरीत वहां से आर्य सभ्यता के परम भक्त बनकर लौटे। वहां के जड़वाद, कृत्रिम भोगलिप्सा और अमानुषिक मदांधता ने उनकी आंखें खोल दी थीं। पहले वो घर वालों के बहुत जोर देने पर भी विवाह करने को राजी नहीं हुए थे। लड़की से पूर्व परिचय हुए बिना प्रणय नहीं कर सकते थे, पर यूरोप से लौटने पर उनके वैवाहिक विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। उन्होंने उसी पहले की कन्या से बिना उसके आचार विचार जाने हुए विवाह कर लिया। अब वो विवाह को प्रेम का बंधन नहीं, धर्म का बंधन समझते थे। उसी सौभाग्यवती वधू को देखने के लिए आज शीतला अपनी सास के साथ सुरेश के घर गई थी। उसी के आभूषणों की छटा देखकर वो मर्माहत सी हो गई। विमल सिंह ने व्यथित होकर कहा,
1: तो माता पिता से कहा होता सुरेश से ब्याह कर देते और वो तुम्हें गहनों से लाद सकते थे।
2: तो गाली क्यों देते हो?
1: गाली नहीं देता, बात कहता हूं। तुम जैसी सुंदरी को उन्होंने नाहक मेरे साथ ब्याह।
2: लजाते तो नहीं, उल्टे और ताने देते हो।
1: भाग्य मेरे वश में नहीं है और इतना पढ़ा भी नहीं हूं कि कोई बड़ी नौकरी करके रुपए कमाऊं।
2: ये क्यों नहीं कहते कि प्रेम ही नहीं है? प्रेम हो तो कंचन बरसने लगे।
1: तुम्हें गहनों से बहुत प्रेम है।
2: सभी को होता है, मुझे भी है।
1: अपने को अभागिनी समझती हो?
2: हूं ही, समझना कैसा, नहीं तो क्या दूसरे को देखकर तरसना पड़ता।
1: गहने बनवा दूं तो अपने को भाग्यवती समझने लगोगी?
2: तुम तो इस तरह पूछ रहे हो जैसे सुनार दरवाजे पर ही बैठा है।
1: नहीं, सच कहता हूं, बनवा दूंगा, बनवा दूंगा, लेकिन कुछ दिन सबर करना पड़ेगा।
0: समर्थ पुरुषों को बात लग जाती है तो प्राण ले लेते हैं, सामर्थ्यहीन पुरुष अपनी ही जान पर खेल जाता है। विमल सिंह ने घर से निकल जाने की ठानी, निश्चय किया या तो इसे गहनों से ही लाद दूंगा या वैधव्य शोक से, या तो आभूषण ही पहनेगी या सिंदूर को भी तरसेगी। दिन भर वो चिंता में डूबा पड़ा रहा। शीतला को उसने प्रेम से संतुष्ट करना चाहा था। आज अनुभव हुआ कि नारी का हृदय प्रेम पाश से नहीं बंधता, कंचन के पाश ही से बंध सकता है। पहर रात जाते जाते वो घर से चल खड़ा हुआ, पीछे फिर कभी न देखा। ज्ञान से जागे हुए विराग में चाहे मोह का संस्कार हो, पर नैराश्य से जागा हुआ विराग अचल होता है। प्रकाश में इधर की वस्तुओं को देखकर मन विचलित हो सकता है, पर अंधकार में कितना साहस है जो लीक से जौबर हट सके। विमल के पास विद्या न थी, कला कौशल भी न था, उसे केवल अपने कठिन परिश्रम और कठिन आत्मत्याग ही का आधार था। वो पहले कलकत्ते गया, वहां कुछ दिन तक एक सेठ की अगवानी करता रहा। वहां जो सुन पाया कि रंगून में मजदूरी अच्छी मिलती है तो वो रंगून जा पहुंचा और बंदर पर माल चढ़ाने उतारने का काम करने लगा। कुछ तो कठिन श्रम, कुछ खाने पीने के असंयम और कुछ जलवायु की खराबी के कारण वो बीमार हो गया। शरीर दुर्बल हो गया, मुख की कांति जाती रही, फिर भी उससे ज्यादा मेहनती मजदूर बंदर पर दूसरा न था। और मजदूर थे, पर ये मजदूर तपस्वी था। मन में जो कुछ ठान लिया था उसे पूरा करना उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य।

0: उद्देश्य था। उसने घर को अपना कोई समाचार न भेजा। अपने मन से तर्क किया, घर में मेरा कौन हेतु है, गहनों के सामने मुझे कौन पूछता है। उसकी बुद्धि ये रहस्य समझने में असमर्थ थी कि आभूषणों की लालसा रहने पर भी प्रणय का पालन किया जा सकता है। और मजदूर प्रातः काल सेरों मिठाई खाकर जलपान करते थे। दिन भर दम दम भर पर गांजे चरस और तंबाकू के दम लगाते थे। अवकाश पाते तो बाजार की सैर करते थे। कितनों ही को शराब का भी शौक था। पैसों के बदले रुपए कमाते थे तो पैसों की जगह रुपए खर्च भी कर डालते थे। किसी के देह पर साबुत कपड़े न थे, पर विमल उन गिनती के दो चार मजदूरों में था जो संयम से रहते थे, जिनके जीवन का उद्देश्य खा पी कर मर जाने के सिवा कुछ और भी था। थोड़े ही दिनों में उसके पास थोड़ी सी संपत्ति हो गई। धन के साथ और मजदूरों पर दबाव भी बढ़ने लगा। ये प्रायः सभी जानते थे कि विमल जाति का कुलीन ठाकुर है। सब ठाकुर ही कहकर उसे पुकारते थे। संयम और आचार सम्मान सिद्धि के मंत्र हैं। विमल मजदूरों का नेता और महाजन हो गया। विमल को रंगून में काम करते हुए 3 वर्ष हो चुके थे। संध्या हो गई थी। वो कई मजदूरों के साथ समुद्र के किनारे बैठा बातें कर रहा था।
1: यहां की सभी स्त्रियां निष्ठुर होती हैं। बेचारा झिंगुर 10 बरस से उसी बर्मी स्त्री के साथ रहता था।
2: अच्छा,
1: कोई अपनी ब्याही जोरू से भी इतना प्रेम न करता होगा। उस पर इतना विश्वास करता था कि जो कुछ कमाता सो उसके हाथ में रख देता था। 3 लड़के थे, अभी कल तक दोनों साथ साथ खाकर लेटे थे। न कोई लड़ाई, न बात, न चीत। रात को औरत न जाने कहां चली गई, लड़कों को छोड़ गई। बेचारा झिंगुर रो रहा है। सबसे बड़ी मुश्किल तो छोटे बच्चे की है, अभी कुल 6 महीने का है। कैसे जिएगा भगवान ही जाने।
3: गहने बनवाता था कि नहीं?
1: रुपए पैसे तो औरत ही के हाथ में थे, गहने बनवाती उसका हाथ कौन पकड़ता। गहनों से तो लदी हुई थी, जिधर से निकल जाती थी छम छम छम की आवाज से कान भर जाते थे।
3: जब गहने बनवाने पर भी निठुराई की तो यही कहना पड़ेगा कि नारी ही बेवफा होती है।
0: इतने में एक आदमी आकर विमल सिंह से बोला,
2: चौधरी, अभी मुझे एक सिपाही मिला था। वह तुम्हारा नाम, गांव का नाम और बाप का नाम पूछ रहा था। कोई बाबू सुरेश सिंह है?
3: हाँ है, तो मेरे गांव के इलाकेदार और बिरादरी के भाई हैं।
2: उन्होंने थाने में कोई नोटिस छपवाया है कि जो विमल सिंह का पता लगावेगा उसे 1,000 रुपए का इनाम मिलेगा।
3: तो तुमने सिपाही को सब ठीक ठीक बता दिया?
2: चौधरी, मैं कोई गवार हूं क्या? समझ गया, कुछ दाल में काला है, नहीं तो कोई इतने रुपए क्यों खर्च करता। मैंने कह दिया कि उनका नाम विमल सिंह नहीं,
3: अच्छा,
2: जसोदा पांडे है, बाप का नाम सुखू बताया और घर जिला झांसी में। पूछने लगा यह कितने दिन से रहता है। मैंने कहा कोई 10 साल से। तब कुछ सोचकर चला गया। मुझसे कहता था कि ठीक ठीक बता दो तो 50 रुपए मैं तुम्हें दिला दूं। मैंने सोचा आप तो 1,000 की गठरी मारेगा और मुझे 50 रुपए दिलाने को कहता है। फटकार बता दी।
1: मगर जो 200 रुपए देने को कहता तो तुम सब ठीक ठाक नाम ठिकाना बता देते, क्यों धत तेरे लालची।
2: 200 रुपए नहीं, 2,000 भी देता तो ना बताता। मुझे ऐसा विश्वासघात करने वाला मत समझो, जब जी चाहे परख लो।
0: मजदूरों में यूं वाद विवाद चलता रहा। विमल आकर अपनी कोठरी में लेट गया। वो सोचने लगा,
3: अब क्या करो, जब सुरेश जैसे सज्जन की नीयत बदल गई तो अब मैं किसका भरोसा करूं। नहीं, अब बिना घर गए काम नहीं चलेगा। कुछ दिन और ना गया तो फिर कहीं का ना होगा। 2 साल और रह जाता तो पास में पूरे 5,000 हो जाते और शीतला की इच्छा भी पूरी हो जाती। अभी तो सब मिलाकर 3,000 ही होंगे, इतने में उसकी अभिलाषा ना पूरी होगी। खैर, अभी चलूं, 6 महीने में फिर लौट आऊंगा। अपनी जायदाद

0: तो बच जाएगी। नहीं, 6 महीने तक रहने का क्या है, आने जाने का 1 महीना लग जाएगा। घर में 15 दिन से ज्यादा न रहूंगा। वहां कौन पूछता है, आऊं या रहूं, मरूं या जीऊं, वहां तो गहनों से प्रेम है।
1: इस तरह मन में निश्चय करके वो दूसरे दिन रंगून से चल पड़ा। संसार कहता है कि गुण के सामने रूप की कोई हस्ती नहीं। हमारे नीति शास्त्र के आचार्यों का भी यही कथन है, पर वास्तव में ये कितना भ्रम मूलक है। कुंवर सुरेश सिंह की नववधु मंगला कुमारी गृह कार्य में निपुण, पति के इशारे पर प्राण देने वाली अत्यंत विचारशीला, मधुर भाषिणी और धर्म भीरु स्त्री थी, पर सौंदर्य विहीन होने के कारण पति की आंखों में कांटे के समान खटकती थी। सुरेश सिंह बात बात पर उस पर झुंझलाते, पर घड़ी भर में पश्चाताप के वशीभूत होकर उससे क्षमा मांगते, किंतु दूसरे ही दिन वही कुत्सित व्यापार शुरू हो जाता। विपत्ति ये थी कि उनके आचरण अन्य रईसों की भांति भ्रष्ट न थे। वो दाम्पत्य जीवन ही में आनंद, सुख, शांति, विश्वास, प्रायः सभी ऐहिक और पारमार्थिक उद्देश्य पूरा करना चाहते थे, और दाम्पत्य सुख से वंचित होकर उन्हें अपना समस्त जीवन नीरस, स्वादहीन और कुंठित जान पड़ता था। फल ये हुआ कि मंगला को अपने ऊपर विश्वास न रहा। वो अपने मन से कोई काम करते हुए डरती कि स्वामी नाराज होंगे। स्वामी को खुश करने के लिए अपनी भूलों को छिपाती, बहाने करती, झूठ बोलती, नौकरों को अपराध लगाकर आत्मरक्षा करना चाहती। पति को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने गुणों की, अपनी आत्मा की अवहेलना की, पर उठने के बदले वो पति की नजरों से गिरती ही गई। नित्य नए श्रृंगार करती, पर लक्ष्य से दूर होती जाती थी। पति की एक मधुर मुस्कान के लिए, उनके अधरों के एक मीठे शब्द के लिए उसका प्यासा हृदय तड़प तड़प कर रह जाता था। लावण्य विहीन स्त्री वो भिक्षुक नहीं है जो चंगुल भर आटे से संतुष्ट हो जाए। वो भी पति का संपूर्ण अखंड प्रेम चाहती है, और कदाचित सुंदरियों से अधिक, क्योंकि वो इसके लिए असाधारण प्रयत्न और अनुष्ठान करती है। मंगला इस प्रयत्न में निष्फल होकर और भी संतप्त होती थी। धीरे धीरे पति पर से उसकी श्रद्धा उठने लगी। उसने तर्क किया कि ऐसे क्रूर हृदय शून्य कल्पनाहीन मनुष्य से मैं भी उसी का सा व्यवहार करूंगी। जो पुरुष रूप का भक्त है वो प्रेम भक्ति के योग्य नहीं। इस प्रत्याघात ने समस्या और भी जटिल कर दी।
2: कथा सुधा में आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का पहला भाग। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रकर, मंगला, ममता सिंह, मजदूर राजेश झा और आदमी दीपक केसावलेकर। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। इस कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए सुनिए कहानी का दूसरा भाग अगले सोमवार कथा सुधा में।
3: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
4: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
3: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
5: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
3: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
5: जन्मदिन तुम्हारा मिले
3: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात। तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
6: हाँ तो मंजरी, कल सखी सहेली का जन्मदिन है और लड्डू तो हमको कल मिलने ही वाले हैं।
7: बिल्कुल मिलने वाले हैं।
6: और हिमानी शिवपुरी हमारी बतौर मेहमान कल आने वाली हैं और उनका सजीव प्रसारण कल
7: जी, और हम लोग मिलकर करेंगे उनका स्वागत और हमारे श्रोता साथ में मिलकर सुनेंगे प्रोग्राम और भेजेंगे बहुत सारी कमेंट्स, विचार,
6: शुभकामनाएं
7: भेजेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, सब मिल के एक समय पे इकट्ठे होंगे।
6: हाँ तो ये कार्यक्रम जो है 3 से लेकर 4 बजे के बीच में होगा। हिमानी शिवपुरी हमारी कल की मेहमान है, लाइव ब्रॉडकास्ट होगा। फेसबुक पेज पर आप बराबर बने रहें और अपने विचारों से अवगत करते रहें और आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है इसके बारे में बताएं और खासतौर से हमारे जो सखी सहेली की कल वर्षगांठ है उनको शुभकामनाएं देने के लिए आप लगातार हमसे बने रहें, सभी सखी और सखा तैयार होकर
7: क्योंकि हम लोग भी तैयार होकर कल आएंगे बर्थडे मनाने।
6: बिल्कुल, तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग तैयार रहेंगे कल। और अब तो समय हो गया है एक अंतराल लेने का। मंजरी पहले अंतराल लेते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं।

0: हाँ तो मंजरी बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना है,
1: जी
0: और जीवन में जब हम किसी सुंदर चीजों के
1: जी
0: आसपास होते हैं ना, तो जिंदगी थोड़ा आसान भी लगती है।
1: बिल्कुल। और बहुत ही खूबसूरत होते हैं हमारे वो रिश्ते भी जो हमें जन्म देते हैं, जिन्हें हम माता पिता के रूप में जानते हैं।
0: बिल्कुल
1: आंख खुलती है वो उंगली हम उनकी पकड़ते हैं, उनका स्पर्श सुख पाते हैं
0: जी
1: माता पिता के रूप में, तो वो हमारे लिए बहुत ही अजीज होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं। और इसीलिए उनको सम्मान देने के लिए वैश्विक अभिभावक दिवस ये जो है मनाया जा रहा है। 17 सितंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र ने 1 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस के रूप में घोषित किया। इस दिवस का उद्देश्य माता पिता होने के महत्व और बच्चों के सकारात्मक विकास के लिए आवश्यक सुरक्षा और साधन प्रदान करने में उनकी भूमिका में प्रगति जागरूकता बढ़ाना है। तो कहना चाहिए मंदाकिनी जी, आज के दिन हम अपने माता पिता के लिए एक जश्न जैसा घर में कुछ सेलिब्रेशन करें,
0: करना चाहिए ना।
1: और हाँ
0: हाँ
1: उनका सम्मान करें, उनके चरण छुएं, और आप जो भी उनके लिए
0: कर
1: पसंद
0: सकते
1: का
0: हैं।
1: खाना बना
0: हाँ
1: सकते हैं वो बनाए, उपहार में उन्हें चीजें दें, तो देखिए कितना अच्छा लगेगा,
0: बिल्कुल
1: है ना।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और जो माता पिता के सबसे करीब होते हैं वो हमारे माता पिता ही जो हमारे सबसे करीब
1: जी
0: होते हैं। और
1: जी
0: बच्चा जब घर से कई बातें सीखता है और जैसा अपने माता पिता को करते देखता है वैसा ही व्यवहार उनकी उसकी आदत में भी आता है। और कहना चाहिए कि माता पिता हमारे पहले शिक्षक होते हैं,
1: जी
0: हमारी पहली पाठशाला होते
1: बिल्कुल
0: हैं, और इसलिए बच्चों के सामने हमेशा कहा जाता है कि अच्छा आचरण करें ताकि आपके बच्चे भी जब आपको देखें तो वैसे ही बड़े होकर आगे अपना उदाहरण पेश करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और ये दिन माता पिता और अभिभावकों के प्रति सम्मान, प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए समर्पित है। बच्चे के जीवन में अभिभावकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती, केवल पालन पोषण ही नहीं करते बल्कि उनके जीवन जीने की सही दिशा, संस्कार, अनुशासन और नैतिक मूल्य भी सिखाते हैं। और वो अपने बच्चों के सुख दुख के साथ मंदाकिनी जी हमेशा खड़े रहते हैं, और एक बच्चे की सफलता के पीछे उसके अभिभावकों का त्याग, मेहनत और समर्पण छिपा होता है। वे अपनी इच्छाओं को पीछे रखकर अपने बच्चों के सपने को पूरा करने का प्रयास करते हैं।
0: हाँ बिल्कुल। और आज की अगर हम बात करें मंजरी, तो आज के आधुनिक समय में बच्चों और अभिभावकों के बीच थोड़ा संवाद कम हो रहा
1: जी,
0: है ना।
1: और उसका कारण भी है
0: मोबाइल
1: मोबाइल।
0: और सोशल मीडिया, ये
1: जी
0: हमारी जिंदगी बन गए
1: जी
0: हैं, है ना। तो रिश्तों में दूरी बढ़ गई है। ऐसे में क्या है कि वैश्विक जो अभिभावक दिवस हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपने माता पिता को समय देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी भावनाओं को समझना बेहद जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: और ये दिन आज का केवल ये नहीं कि आपने हमें जन्म दिया धन्यवाद कहकर हमने इतिश्री कर दी,
1: नहीं नहीं
0: ये
1: नहीं
0: वो दिन नहीं है, बल्कि अपने रिश्तों को और मजबूत बनाने का ये दिन हमें
1: जी
0: संदेश देता है। और हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका प्यार तो निस्वार्थ होता है और उनका स्थान जीवन में सबसे ऊंचा होना चाहिए।
1: बिल्कुल। और मंदाकिनी जी, हम कह सकते हैं कि माता पिता वो छांव है जिसके रहते जीवन की हर धूप हल्की लगती है। उन्हें सुरक्षा, स्नेह और अपनापन में उनसे मिलता है। जैसे तेज धूप में पेड़ की छाया राहत देती, वैसे ही जीवन की कठिनाइयों में माता पिता अपने बच्चों को संभालते हैं। उन्हें उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ही बच्चे सही राह पर चलना सीखते हैं। और मंदाकिनी जी, जब पुराने समय की हम बात करें तो उस समय ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, तो घर में सभी सदस्य होते थे, तो माता पिता तो अगर बच्चे की देखभाल करते थे, लेकिन दादा दादी हुए, नाना नानी या चाचा चाची, मामा मामी, सब लोग परिवार के जितने भी लोग होते थे, बुआ हो चाहे कोई भी हो, सब लोग बच्चे का ख्याल रखते थे। तो बच्चे कैसे पल जाते थे
0: पता ही नहीं
1: पता ही नहीं चलता था,
0: लगता था।
1: और बच्चों के अंदर सबके गुण आते थे। कोई कहानी सुनाता था, कोई उनको अलग तरीके बातें सिखाता था, कोई कर्तव्य करना सिखा रहा है तो कोई व्यायाम सिखा रहा है, कोई कह रहा सुबह जल्दी उठो। तो ये जो रोक टोक का टाकी बच्चों को होती थी सिखाने की, कहना चाहिए, और नियम अनुशासन सिखाने की,
0: बिल्कुल
1: तो उससे बच्चे सीखते थे, और सभी उनके माता पिता के ही समान थे उस समय।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि जब हम ज्वाइंट फैमिली में रहते थे तो सभी लोग हम बच्चे की कद्र करते थे, बच्चे का लालन पालन कैसे होता था माता पिता तक को पता नहीं चलता था।
1: जी
0: लेकिन मंजरी आज स्थिति बिल्कुल अलग है। आज हम ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहते हैं,
1: जी
0: जहां तक है एकल परिवार हो गए हैं। और ऐसे में बच्चे को जो

0: नौकरी करने वाले माता पिता हैं वो किसी केयर टेकर के उसमें छोड़ जाते हैं। और मुझे खुद भी याद है मेरे माता पिता दोनों सरकारी नौकर थे, सरकारी नौकरी करते थे और हमें किसी केयर टेकर के पास छोड़ जाते थे, वो किस तरह से हमारा लालन पालन करती थी ये तो भगवान ही जाने। और होता था कि जब माता पिता आते थे बड़े परेशान आते थे क्योंकि जो केयर टेकर है वो उस तरह से तो नहीं पाल सकती बच्चों को जैसे माता पिता या परिवार के सदस्य पालते हैं।
1: और देखिए हमारे बहुत सारे साथियों ने भी संदेश लिखकर भेजा है। एक लिखते हैं कि माता पिता सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता, वो हमारा पहला विद्यालय होते हैं जहां से हमारे संस्कारों की नींव गढ़ी जाती है। माँ अगर उंगली पकड़कर चलना सिखाती है तो पिता उंगली छोड़कर संभलना, दुनिया का हर रिश्ता कुछ ना कुछ मांगता है पर माता पिता वो होते हैं जो अपनी संतान के प्रति जीवन भर निस्वार्थ स्नेह रखते हैं। उनका प्रेम किसी पैमाने पर मापा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाना, जवानी में परछाई की तरह साथ रहना और वृद्धावस्था में भी संतान के प्रति चिंतित रहना ही उनके निस्वार्थ प्रेम को दिखाता है। बहुत प्यारी सी
0: बहुत सुंदर बात लिखी है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सखी सहेली मंच संभाल रही दोनों बहनों को बहुत सबसे नमस्कार लिखते हैं। आज अभिभावक दिवस है, इस दिन विशेष का बड़ा महत्व है। इस दिन का आज के दिन दुनिया के सभी माता पिता के साथ साथ सभी अभिभावकों को बच्चों के लालन पालन के साथ उनकी सुरक्षा और सर्वांगीण विकास के प्रति उनके निस्वार्थ समर्पण और बलिदान के लिए सम्मानित करना है। माता के लिए गुजराती मुहावरा है, माई माँ बाकी बगा वगड़ा नावा, मतलब माँ के बिना सब जग उजड़ा हुआ यानी वीराना सा लगता है।
1: बिल्कुल, बहुत सुंदर सी बात लिखी है। ऐसे ही हमारे साथी लिखते हैं कि आज अभिभावक दिवस पर विशेष बधाई। अभी तो कोई कलम नहीं बनी है जो माता पिता पर कुछ सर्वश्रेष्ठ लिख सके, ये तो ईश्वर के बस की भी बात नहीं। मेरी हर खुशी का रास्ता माँ से होकर जाता है और मुझे दुनियादारी का सबक मेरे माता पिता सिखाते हैं। माता पिता का प्यार इस दुनिया का सबसे निस्वार्थ पवित्र और अनमोल एहसास है। ये वो पूंजी है जो हमें जीवन के हर कदम पर हिम्मत, सुरक्षा और सही संस्कार देती है। इसके बिना जीवन की कल्पना करना भी असंभव है।
0: वही एक श्रोता लिखते हैं कि माता पिता का ही तो प्यार है जो कभी नहीं बढ़ता। जीवन रूपी खुले आकाश में उन्मुक्त पक्षियों के जैसे उड़ने की सीख और हौसला देने वाले वे ही हैं। रोते रोते हंसा देते हैं, दुनियादारी की बातें समझा देते हैं। उनकी ही दुआ से हम बड़ा नाम करते हैं और इस दुनिया पर राज करते हैं। असफलता में भी मुड़कर मत देखो पर अपनी गरिमा को भी संभाल कर रखो। ऐसी हिदायतें उनसे ही मिलती हैं, उनके आशीर्वाद से बिगड़े काम बन जाते हैं। उनकी सुनाई कहानियों की खुशबू पूरे जीवन भर महसूस करते हैं और वैश्विक अभिभावक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं ये हमें देते हैं। तो अब एक गीत सुन ले
1: जी।

0: हाँ
1: तो देखिए,
0: तो
1: अब हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। विश्व दुग्ध दिवस है और हम सभी जानते हैं कि बच्चों से लेकर बड़ों तक, बुजुर्गों तक, सभी के लिए, महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए, सभी के लिए दूध बहुत आवश्यक है। और विश्व दुग्ध दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, जिसका उद्देश्य वैश्विक खाद्य पदार्थ के रूप में दूध के महत्व को मान्यता देना है। ये दिवस 2001 से प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य डेयरी क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों पर ध्यान आकर्षित करने का अवसर प्रदान करता है।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और मंजरी, विश्व दुग्ध दिवस केवल हम इसे कोई उत्सव के रूप में नहीं मना रहे हैं, बल्कि एक आंदोलन है जो दूध को एक महत्वपूर्ण और सुलभ खाद्य स्रोत के रूप में उजागर करता है, जो अरबों लोगों का पोषण करता है। और यही दूध आवश्यक पोषक तत्व हमें प्रदान करता है, जो हमारी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए, विकास के लिए और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता भी है।
1: बिल्कुल। और विश्व दुग्ध दिवस की जो इस वर्ष की थीम है, महिला किसानों का सम्मान है। ये रोजाना दूध पीना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत फायदेमंद होता है, क्योंकि ये कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी और पोटेशियम जैसे आवश्यक पोषक तत्वों को एक बेहतरीन स्रोत है। और ये आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है, मांसपेशियों के विकास में मदद करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। कुछ मंदाकिनी जी, कुछ माता पिता ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कुछ बच्चे को परेशानी हुई तो, तबियत खराब हुई, तो सीधे वो दूध को ही बोल देते हैं, दूध बंद कर दो, इसका दूध नहीं पिलाना है। तो बच्चों के मुख से दूध छीनना बहुत गलत बात होती है। आप पहले उसका चिकित्सीय इलाज कीजिए, डॉक्टरी इलाज कीजिए कि उसको क्या समस्या है, तब आप सोचिए कि दूध
0: नुकसान कर रहा
1: नुकसान
0: है
1: दे।
0: या नहीं कर
1: हाँ,
0: रहा
1: कुछ
0: है।
1: समय तक तबियत खराब है तो दूध आप नहीं ना दें, लेकिन ये नहीं कि आप पूरा जीवन पर्यंत दूध बंद कर दें, ये गलत बात
0: हाँ
1: होती
0: ये
1: है।
0: बिल्कुल गलत है। और हमें डॉक्टर खुद नहीं बनना है ना, चाहे
1: जी,
0: कोई भी, अपना भी डॉक्टर हमें खुद नहीं
1: खुद
0: बनना
1: नहीं
0: चाहिए।
1: बनना है।
0: हमें चिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए कि क्या दूध हमें नुकसान कर रहा है। दूध हमारे लिए, कई बार ऐसा हो सकता है कि
1: हाँ, हो
0: हमारे
1: सकता
0: लिए
1: है,
0: कुछ लोगों को
1: लेकिन
0: दूध नहीं सूट करता तो वो नहीं पीते हैं, लेकिन उसके लिए साइंटिफिक कारण होने चाहिए।
1: बिल्कुल
0: केवल ये नहीं, वहम नहीं होना
1: वहम
0: चाहिए
1: नहीं
0: हमें।
1: होना चाहिए।
0: एक श्रोता लिखते हैं हमारे कि अभिभावक दिवस के साथ साथ आज विश्व दुग्ध दिवस हम मना रहे हैं। दूध एक ऐसी जरूरत है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए जरूरी है। वैश्विक आहार में दुग्ध का बड़ा महत्व रहा है। इसे संपूर्ण आहार माना जाता है, जिसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और पोटेशियम जैसे शरीर के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। और इसके बिना सुबह की चाय भी नहीं बनती है, आए हुए मेहमानों का स्वागत नहीं होता। और इसके विधिवत उत्पादन के लिए डेयरी उद्योग का एक बड़ा योगदान रहा है। अपनी हड्डियों के साथ साथ डेयरी उद्योग को भी हमें मजबूत बनाना चाहिए।
1: और एक साथी लिखते हैं, दूध भी हमारे जीवन का अभिन्न चीज है, खासकर के मेरे लिए तो है, क्योंकि दूध के बिना मेरी मन पसंद अदरक इलायची वाली चाय नहीं बनती है।
0: अरे हमारी
1: ये
0: तो ये
1: इन्होंने
0: भी चाय के शौकीन है
1: लिखा है।
0: मंजरी।
1: जी, और एक लिखते हैं, देश में दूध उत्पादन में गुजरात अग्रणी राज्य है, इन्होंने लिखा है। और एक लिखते हैं कि दूध को अक्सर प्रकृति का संपूर्ण भोजन माना जाता है, क्योंकि इसमें मानव के शरीर के लिए आवश्यक लगभग सभी प्रमुख पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और विटामिन का प्राकृतिक संतुलन होता है। दूध में मौजूद प्रमुख पोषक तत्व जो है प्रोटीन, शरीर की मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत के लिए, कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए, विटामिन ए, डी और B12 आंखों, त्वचा, तंत्रिका तंत्र और ऊर्जा स्तर को के लिए ये बेहतर है, वो
0: बिल्कुल
1: बेहतर रखता है कहना चाहिए।
0: बिल्कुल अच्छा लिखा है। और साथ ही एक श्रोता लिखते हैं कि जो दूध है वो भोजन में महत्वपूर्ण तो होता ही है, साथ ही हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि ये बात अलग है कि बहुत लोगों को दूध पसंद नहीं आता, लेकिन दूध को ठंडा पदार्थ के रूप में पीना बहुत लोगों को पसंद होता है, खासकर गर्मियों के दिनों में।
1: बिल्कुल। और मंदाकिनी जी, देखा जाए अगर बच्चे आपके सीधा डायरेक्ट दूध नहीं पी रहे हैं, तो आप सोचिए कि उसमें थोड़ी सी इलायची मिला के हम पिला दें, या फिर आप दूध को खीर में कन्वर्ट कर दें, या चावल की खीर या सूजी की खीर में भी आप कर सकते हैं, या ड्राई फ्रूट्स पीस करके मिला के कुछ चेंज कर करके, या ठंडे शरबत उसमें मिक्स करके भी, आप गुलाब का शरबत मिलाकर भी आप दूध किसी ना किसी रूप में आप बच्चों को दे
0: पिला
1: सकते
0: सकते हैं।
1: हैं।
0: खासतौर से छोटे बच्चे और किशोरावस्था वाले जो बच्चे
1: हाँ
0: हैं ना, ये थोड़ा परेशान करते हैं कि
1: जी,
0: मम्मी दूध नहीं पीना है, तो उन्हें दूध को तरह तरीके से करके आप पिला सकते हैं, ताकि फाइनली दूध तो बच्चे के पेट में जाना ही
1: जाए।
0: चाहिए।

0: तो भाई मंजरी दूध की हम बात कर रहे थे और हमारे जो चाय वाले श्रोता हैं जो हमारे ही जैसे हैं, चाय पसंद करते हैं, चाय मिल जाए और साथ में ये बनारस की मटर मुंगोड़ी वाला निमोना या नमकीन मिल जाए तो फिर कहने ही क्या होते हैं।
1: हमारी सखी ने ये रेसिपी लिखकर भेजी तो हम

0: तेल लगेगा। और इसको बनाने की विधि है कि मंगौड़ी को और आलू को भून लें, एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करें, मूंग की मंगौड़ियों को सुनहरा होने तक भूनें और निकाल कर रख लें। उसी तेल में कटे हुए आलू को भी फ्राई करें और अलग रखें। मटर भूनें, बचे हुए तेल में दरदरी पिसी हुई मटर डालें और मध्यम आंच पर 3 से 4 मिनट तक इसे भून लें ताकि मटर का कच्चापन दूर हो जाए। इसे एक प्लेट में निकाल कर लें। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालें जिसमें हींग इसमें हींग जीरा तड़का तड़का लगाएं। अब कटा बारीक प्याज, हरा धनिया, लहसुन वाला मसाला पेस्ट डालकर तब तक भूने जब तक तेल अलग ना होने लगे। भुनी हुई मटर, साबुत मटर, तले हुए आलू और मंगौड़ी डालें। सभी को अच्छी तरह मिला और इसमें आवश्यकता अनुसार गर्म पानी और नमक डालें। कढ़ाई को ढककर धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट तक पकने दें जब तक कि मंगौड़ी और आलू पूरी तरह से नरम ना हो जाए। अंत में ऊपर से गर्म मसाला छिड़कें। आपकी गर्मा गर्म यूपी स्पेशल मंगौड़ी और निमोना तैयार है।
1: क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने इसको तैयार किया है और मुझे लगता है कि बहुत ही स्वादिष्ट होता होगा मंजरी।
0: बिल्कुल, क्योंकि मटर और मंगौड़ी दोनों ही बहुत स्वाद से भरपूर होती है और मेरी तो बहुत फेवरेट है
1: बिल्कुल।
0: मंदाकिनी
1: और
0: जी।
1: मैं धनिया वाला जो मट्टी है ना, धनिया
0: जी
1: वाली मट्टी, उसके बारे में बताना चाहती हूँ। अगर हमारे श्रोता पसंद करती हैं सखिया, वैसे तो उन्हें बनाना आता होगा, पर मैंने भी इसको बना के देखा था। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कैसे बनेगी ये। आप मैदा ले लें 2 कप, हरा धनिया ले लें, कटा हुआ साबुत धनिया ले लें, और 2 चम्मच कुटी हुई साबुत धनिया ले सकते हैं, घी ले सकते हैं तेल मोयन के लिए, जीरा ले लें, छोटी चम्मच अजवाइन ले लें, और काली मिर्च ले लें, और दरदरी कुटी हुई नमक, और तेल तलने के लिए, और साथ में पानी। अब आप स्वादानुसार ये सब चीजें ले सकते हैं, कम या ज्यादा, क्योंकि मैं आपको जो बताऊंगी हो सकता है आप उससे ज्यादा पसंद करते हो।
0: बिल्कुल।
1: फिर आटा आटा को तैयार करें। बड़े बर्तन में मैदा ले लें, इसमें जीरा, अजवाइन, साबुत धनिया, कुटी हुई काली मिर्च, नमक और मोयन, और पिघला हुआ घी 1/4 कप डाल सकते हैं या तेल डालें। सभी चीजों को हाथों से अच्छी तरह से मिला लें ताकि मैदा में मोयन अच्छे से रच बस जाए, और उसके बाद बारीक कटी हुई हरी धनिया डालकर उसको मिला लें। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सख्त आटा आप गूंथ लें। आटे को 15 से 20 मिनट के लिए गीले कपड़े से ढककर आप रख दें। फिर आटे को थोड़ा मसल लें और फिर उसमें से छोटी छोटी लोइयां तोड़ लें। अब एक लोई को हथेली से दबाकर चपटा करना है, इसे ज्यादा नहीं पतला करना है, ना बेलना नहीं है। एक फिर दबाकर कांटे की मदद से मट्टी के दोनों तरफ थोड़ा छेद कर लें 5-6, और इसको गर्म गर्म तेल में तलें, और धीमी आंच में तलने के बाद जो कुरकुरी मटरी
0: जी,
1: निकल के आएगी ना,
0: चाय
1: वो
0: के साथ
1: गर्मा गर्म चाय के साथ तो
0: क्या
1: स्वाद
0: जी।
1: लें।
0: और गीत गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल, सुनते हैं।

0: और अब मंजरी सखी सहेली कार्यक्रम का वक्त तो खत्म हो चला है, इस कार्यक्रम से हम इजाजत लेते हैं। तो कार्यक्रम समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी और
1: मंजरी वर्मा को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
1: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं।
1: जाओ जाओ जल्दी जाओ डॉक्टर को बुलाओ, नब्ज दिखाओ मेरा हाल बताओ।
0: जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश घुगे।
2: दांतों का जमाना, प्यारे दांत बचाना, कोई तोड़ दे या टूटे तो पास हमारे आना।
0: इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने।
1: जाओ जाओ जाओ किसी वैद को बुलाओ।
0: सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। हाल ही में डेंटिस्ट डे मनाया गया और इस मौके पर आज हमारे साथ हैं मुंबई के डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश घुगे। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका।
3: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं अपनी तरफ से आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे यहाँ पे आज न्योता दिया गया। मुझे बहुत खुशी होगी कि आज मैं डेंटिस्ट्री के बारे में, दांतों के बारे में लोगों के साथ रूबरू हो पाऊंगा, बहुत सारी जो मिथ्स है उनके ऊपर से हम लोग पर्दा उठा पाएंगे।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, दांतों को लेकर बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे लोगों के मन में खाम ख्यालियां हैं, गलत मान्यताएं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बातचीत की शुरुआत हम करते हैं दूध के दांतों से।
3: ठीक है,
0: जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अपने दांत होते हैं जो बड़े मायने रखते हैं, लेकिन अमूमन परिवार में उनके टूटने का इंतजार किया जाता है कि ये दांत निकल जाएंगे।
3: हाँ जी,
0: तब
3: हाँ।
0: जो दांत आएंगे वो असली दांत होंगे।
3: सही है,
0: जरा इसके बारे में तफसील से बताइए।
3: जैसे आप जानते हैं कि बच्चा जब 2 साल का हो जाता है तब उसके दूध के दांत आने चालू हो जाते हैं। 2 से 2.5 साल तक दूध के दांतों की ग्रोथ पूरी हो जाती है। ठीक है, दूध के दांत होते हैं 20, टोटल मिला के 20 दांत होते हैं। दूध के दांतों का फंक्शन क्या होता है या फिर उनका काम क्या होता है? नॉर्मली लोगों का ये मानना होता है कि दूध के दांत हैं गिर जाएंगे तो वो सड़ जाए, गल जाए, और आजकल ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि जंक फूड बच्चों को इजीली अवेलेबल हो रहा है, प्लस बच्चों को पॉकेट मनी अच्छी मिलने लग गई है तो चॉकलेट्स वगैरह बच्चे इजीली खा लेते हैं, तो उनको सड़न वगैरह बाकी के इश्यूज दांतों के बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अभी दूध के दांतों का मेन फंक्शन क्या होता है कि अपने जबड़े की साइज मेंटेन रखना। जितना जबड़ा काम करेगा खाना चबाने के लिए उतने बाजू के मसल्स जो होते हैं वो काम करते हैं और उस तरीके से उसकी ग्रोथ होती है, जबड़े की हड्डी बढ़ती है, ताकि जो पक्के वाले दांत आएंगे तो वो बड़े साइज के होते हैं तो उनके लिए जगह बनाए, प्लस उनको डायरेक्शन दिखाए, जो दांत बनते हैं पक्के वाले नीचे वो एक सही तरीके से अपनी पोजीशन में आ जाए, उसको वो रास्ता दिखाने का काम जो है वो दूध के दांत करते हैं। तो इसके लिए दूध के दांत अगर खराब है आपके तो पक्के वाले दांत खराब होने की आपकी जो संभावना है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूध के दांत अगर जल्दी गिर जाए, इवन लेट भी गिर जाए, अगर उसमें टाइम लग जाए गिरने में, तो भी जो पक्के वाले दांत आएंगे, परमानेंट दांत आएंगे, वो आड़े टेढ़े ही आएंगे। दूध के दांतों में सबसे बड़ी चीज है कि नेचुरली दूध के दांतों में एक स्पेसिंग होता है जिसको टर्मिनल

0: अगर मैं डेंटल टर्मिनोलॉजी बताऊं तो उसको फिजियोलॉजिकल स्पेसिंग कहा जाता है। तो वो जरूरी है, और वो क्यों होती है, क्योंकि आने वाले दांत जो परमानेंट दांत आने वाले होते हैं वो सारे डायमेंशन में, चौड़ाई में, लंबाई में बड़े होते हैं। तो वो जगह जो फिजियोलॉजिकल स्पेसेस है, वो जगह उनकी चौड़ाई से भर दी जाती है।
1: अच्छा,
0: जिन बच्चों में या फिर जो दूध के दांत है उनके बीच में अगर उतनी जगह नहीं होगी, जबड़े की साइज अगर छोटी है पहले से ही, तो कुछ ट्रीटमेंट्स किए जा सकते हैं बचपन में ही ताकि जबड़े की साइज नॉर्मली बढ़े। घरेलू तौर पे हम लोग अगर कुछ कर सकते हैं तो नॉर्मली कड़क चीजें आजकल जो अवेलेबल होती है वो होती है कड़क चकली, सूप स्टिक्स, या फिर कड़क बूंदी के लड्डू। वो कड़क चीजें मायने नहीं रखती है। जैसे गाजर, जो अपनी पारंपरिक चीजें हैं, गाजर हो गया, मूली हो गया, ककड़ी हो गया, उसको बिना उबाले कच्चा खाओ, ताकि जो नेचुरल एक्सरसाइज है जबड़े की होनी चाहिए वो होती है और नेचुरल ग्रोथ अपने आप नॉर्मल रहती है। ये एक चीज है।
1: लेकिन बच्चे तो ये चीजें खाते ही नहीं है।
0: बच्चे बच्चे हैं, वो तो जिद करेंगे। उनको खिलाना, उनको उन चीजों का महत्व समझाना, वो पेरेंट्स
1: जी
0: का काम है।
1: जी
0: ठीक है, इसके लिए पेरेंट्स को थोड़ा सतर्क होना जरूरी है कि बच्चा अपना क्या खा रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी की पूरी डेवलपमेंट उसके न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है। एक चीज, अगर दांतों की बात करूं तो खाने की पाचन क्रिया जो है मुंह में चालू होती है। अगर मुंह में कैविटीज है, मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ है, कीटाणु मुंह में है, तो वो खाने के साथ मिक्स होंगे और वो कहां जाएंगे? पेट
1: पेट
0: में।
1: में।
0: पेट में जाएंगे तो पेट की बीमारियां, बार बार लूज मोशंस होना बच्चों को, कॉन्स्टिपेशंस होना, डाइजेशन के प्रॉब्लम्स, ना सिर्फ बच्चों में बड़ों में भी फ्रीक्वेंट एसिडिटी प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें हैं। इवन अगर जनरलाइज में बताऊं, ना सिर्फ बच्चों के केस में, लॉन्ग टर्म कैविटीज कैन कॉज यू हार्ट प्रॉब्लम्स ऑल्सो एंड ब्रेन प्रॉब्लम्स ऑल्सो। बैक्टीरियल डिसीजेस हार्ट के भी हो सकते हैं, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया हम लोग खा रहे हैं वो अपने खून में मिक्स होने वाले हैं। वो खून में मिक्स होंगे, वो कहीं ना कहीं पे तो जाके लॉज करेंगे और उस जगह की वो बीमारियां फैलाएंगे।
1: अच्छा, ये जो दूध के दांतों की आपने बात की, तो जब बच्चे अपने तरीके से ब्रश करने लायक हो जाते हैं, तब से माँ बाप को किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए और किस तरह की आदतें बच्चों में डालनी चाहिए?
0: सबसे पहली बात, ब्रशिंग कब चालू होना चाहिए ये लोगों को पता ही नहीं है। ब्रशिंग मुंह में जैसे ही पहला दांत दिखता है तब से चालू हो जानी चाहिए।
1: जी
0: उसके पहले, मतलब 6-8 महीने तक तो कोई दांत आते नहीं है, उसके बाद ही दांत आने चालू होते हैं। तो उसके पहले, मतलब दांत आने से पहले भी मसूड़े क्लीन करना जरूरी है, मसूड़ों की मसाज करना जरूरी है, ताकि आने वाले दांत जो है वो इजीली आए, बच्चों को तकलीफ ना हो। क्योंकि दांत जो आ रहा है हड्डी में से आ रहा है, वो हड्डी को सेपरेट कर रहा है, मसूड़ों को सेपरेट कर रहा है, तो वो सेपरेट करने के लिए मसूड़ों की अगर
1: रास्ता
0: मसाज,
1: निकालेगा।
0: हाँ मसाज होती रही तो वो इजीली सेपरेट होंगे, और उसको मसाज करने के लिए एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। अपनी उंगली से आप मसाज कर सकते हो बच्चे के मुंह में, और वो भी ज्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट दिन में 1 या 2 बार, ये बहुत है। दूसरी बात, जब माँ दूध पिलाती है बच्चे को तो उसके बाद उनका मुंह क्लीन करना जरूरी है, क्योंकि दूध में जो शुगर्स होती है वो जो दांत आते हैं उनको खराब कर सकती है। अभी उस मुद्दे पे मैं आ रहा हूं कि दांत आने के बाद कैसे ख्याल रखना है, कि जैसे ही पहला दांत मुंह में दिखना चालू हुआ, उंगली में पहनने वाले ब्रश आते हैं, आप वो यूज कर सकते हो, या फिर सिंपल एक गॉज होता है, गॉज पीस, कॉटन की तरह जो हम लोग नॉर्मली जख्मों पे पट्टी लगाते हैं जो बांधी जाती है, गॉज पीस बोला जाता है, वो स्टराइल गॉज पीसेस मिलते हैं मेडिकल शॉप में। अगर बच्चे का मुंह उतना नहीं खुल रहा या फिर बच्चा ब्रश को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो आप वो सिंपल गॉज पीस को पानी में डुबा के गीले गॉज पीस से दांत को साफ कर सकते हो उंगली से।
1: छोटे बच्चों के
0: छोटे
1: लिए ये भी
0: बच्चों के
1: तरीका
0: लिए
1: है।
0: एकदम, हाँ एकदम छोटे बच्चों के लिए, जिनके 1 या 2 दांत या 4 दांत आए हुए हैं। फिर धीरे धीरे दांत जैसे बढ़ते जाएंगे तो उंगली में ब्रश जो मैं बोल रहा हूं वो आप यूज कर सकते हो। अभी उसमें 0 to 3 years, मतलब बचपन, पैदा होने से लेके 3 साल तक एक अलग टूथपेस्ट आता है, जो बच्चे इंजेस्ट करे, खा ले, तो भी कोई उनको तकलीफ ना हो।
1: बिल्कुल।
0: उसके जो बनावट रहती है वो उस तरीके से की जाती है। 3 से 9 से 10 साल तक अलग टूथपेस्ट आती है, जिसमें फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है। फ्लोराइड की मात्रा क्यों जरूरी है? क्योंकि दांतों में बनने वाली कैविटीज को रोकना, दांतों की बेसिकली इम्यूनिटी अच्छी रखना फ्लोराइड करता है, दांतों की ग्रोथ अच्छी रखना फ्लोराइड करता है। तो इसके लिए 3 से 10 साल की उम्र तक एक अलग टूथपेस्ट आता है। 10 साल के बाद वो जो स्टेज होता है उसको बोलते हैं मिक्स डेंटिशन, जहां पे आधे दांत दूध के होते हैं आधे होते हैं परमानेंट के, तो मिक्स डेंटिशन बोला जाता है। तो वो स्टेज चलती है और परमानेंट दांतों का डेवलपमेंट लगभग चलता है 16 साल तक। तो 10 से 16 तक एक अलग टूथपेस्ट यूज किया जा सकता है या फिर होता है, और 16 के बाद आप कोई भी टूथपेस्ट पे शिफ्ट कर सकते हो। तो बेसिकली बच्चों में 2 टाइम ब्रशिंग, जैसे आपने सवाल पूछा अभी कि बच्चों को कैसे समझाया जाए, पहले तो उनको बचपन से ही ये उंगली वाले ब्रश से अगर आप ट्रेनिंग लगाओगे तो उनको आदत पड़ेगी कि ब्रशिंग करना जरूरी होता है, वो साइकोलॉजिकली उनमें वो डेवलपमेंट होगी कि हाँ ब्रशिंग इज मैंडेटरी, 2 टाइम ब्रशिंग इज मैंडेटरी। ठीक है, उसके बाद समझ लीजिए 3 से 4 मिनट ब्रशिंग करना होता है, उससे ज्यादा ब्रशिंग की जरूरत नहीं होती है। हाँ अभी मुद्दा निकला है तो मैं यहाँ पे ये भी बात क्लियर करना चाहूंगा कि एक टूथब्रश कितने दिन यूज करे।
1: ये हम सभी के मामले में करें,
0: हाँ,
1: चाहे बच्चे हो,
0: बच्चे
1: चाहे
0: हो,
1: बड़े हो।
0: बच्चे हो या बड़े हो, 1.5 से 2 महीने के बाद अपना टूथब्रश चेंज करना है। ठीक है, वो भले कितना भी अच्छा दिखे।

0: नॉर्मली अपना इंडियन मेंटेलिटी है, जब तक वो ब्रिसल्स है ब्रश के
1: टेढ़े मेढ़े ना हो जाए।
0: टेढ़े मेढ़े घस ना जाए या फिर वो अलग अलग आकार ना ले ले, तब तक हम लोग चेंज नहीं करते हैं। बट ऐसा नहीं होता है, माइक्रो ब्रिसल्स रहते हैं वो, उनमें माइक्रो क्रैक्स आ जाते हैं, उनकी एक लाइफ होती है। मतलब आपने कुछ टूथब्रश ऐसे सुने भी होंगे या देखे भी होंगे, उनके ऊपर कलर इंडिकेटर दिया जाता है अभी ब्रिसल्स में कि वो फेड हो जाए या फिर इसका कलर चेंज हो जाए, तो आपने ब्रश को चेंज करना है। तो उसका भी टाइम फ्रेम उतना ही होता है कि 1.5 से 2 महीने तक आपका वो उसका कलर चेंज हो जाता है या फेड हो जाता है, जो कुछ भी है, तो तब आपको वो चेंज करना होता है। अभी वापस बच्चों की बात करें तो 2 टाइम ब्रशिंग मैंडेटरी होता है। अभी बच्चों को जैसे हमने बात की कि जंक फूड इजीली मिल रहा है, क्रेविंग करते हैं बच्चे, स्कूल्स भी अभी ज्यादा पार्टीज होती है, बर्थडे पार्टीज होती है, तो वो चीजें खिलाए नहीं खिलाए, बच्चे हैं उनका खाना हक बनता है, लेकिन उसको खाने का एक तरीका होना चाहिए। ये जो खाना मैं बात कर रहा हूं वो सारा जंक फूड, स्टिकी फूड, फिर
1: चॉकलेट्स, बेकरी
0: चॉकलेट,
1: आइटम्स,
0: स्वीट्स, तो उनके लिए अगर आपके बच्चों के केस में नॉर्मली कैविटीज नहीं है तो हफ्ते में 3 से 4 दिन आप उनको दे सकते हो, लेकिन उसका एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, 15 मिनट का विंडो। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग की बात बता रहा हूं। आपके घर में जितनी बड़ी थाली हो, परात बोलते हैं कोई लोग, बड़ी से बड़ी थाली हो, वो थाली पूरी भर के सजा दो उनके सामने जो चीजें उनको पसंद है। उसमें बिस्किट्स आ गए, चॉकलेट्स आ गए, वेफर्स आ गए, 10 पैकेट आपके चिप्स के आ गए, कुछ भी, सब उसके सामने रख दो बच्चों के सामने, और उनको बोलो कि ये 15 मिनट है आपके पास, जैसे खाना है वैसे खाओ, फिर
1: अरे
0: दोनों
1: बाप रे,
0: हाथों से खाओ, दोनों पैरों से खाओ, थाली में बैठ के खाओ या थाली सर पे रख के खाओ,
1: ठीक है।
0: चलेगा।
1: हाँ
0: लेकिन 15 मिनट के बाद वो सब उठा के रखना है, 15 मिनट के बाद उनको इमीडिएटली ब्रश करवाना है।
1: ओके
0: सो नॉर्मल 2 टाइम ब्रशिंग प्लस ये तीसरा वाला ब्रशिंग जंक फूड के बाद, इससे कैविटीज नहीं होते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग बच्चों का ऐसे होता है कि हमें घर पे सारी चीजें मिल रही हैं,
1: तो हमको कहीं बाहर नहीं जाना
0: क्रेविंग
1: है।
0: नहीं होता है वो
1: यस
0: बाहर इजीली, जो बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर कोई देता है तो तुरंत खाने के लिए जिद करते हैं, तो वो क्रेविंग चली जाती है। हाँ, जब आप ये उठा के रख रहे हो तो ऐसी जगह पे रखना कि एक डब्बा रहे जो उनको दिखे, एक्सेसिबल ना हो, इजीली वो पहुंच ना पाए, नहीं तो आप सो जाओगे, वो वापस खाने बैठ जाएंगे।
1: बिल्कुल
0: तो ये चीज अपने को ध्यान देनी है।
1: डॉक्टर साहब, यहां एक गाने की बारी है, फिर आगे की बातें करते हैं।
0: हाँ जी,
1: तो बताइए, आपको कौन से गायक बहुत पसंद है?
0: मुझे पुराने गायक पसंद है, सबसे ज्यादा पसंद है मुझे किशोरदा जी, किशोर कुमार जी।
1: क्या बात है, तो पहला गाना कौन सा चुन रहे हैं आप?
0: पहला गाना मुझे अभी जो याद आ रहा है, ओ साथी रे, मुकद्दर का सिकंदर।
1: क्या बात है, सुनते हैं।

0: भी गाना हमने सुना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, ऐसा लग रहा था जैसे ये दांतों के लिए कहा जा रहा हो, क्योंकि क्योंकि दांत अगर नहीं हो तो जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाए। दांतों की समस्या लोगों को तब समझ में आती है जब समस्या सामने आती है, यानी जब दर्द होता है तब डॉक्टर नजर आता है। यहाँ हम बात करेंगे कैविटी की,
1: हाँ जी,
0: कि कैसे कैविटी बनती है और व्यक्ति को सावधान कब हो जाना चाहिए, तब नहीं जब असह्य दर्द हुआ और डॉक्टर साहब के पास गए कि डॉक्टर साहब जल्दी से ठीक कर दो।
1: तो ये समझने से पहले मैं आपको दांत का नेचुरल स्ट्रक्चर कैसे होता है ये थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। कुदरती तौर पे वैसे तो पूरी बॉडी ही इतनी खूबसूरती से बनाई गई है, तो दांतों के स्ट्रक्चर के बारे में मैं अगर बताऊं तो दांत में एक नस होती है। नस के ऊपर एक पार्शियली मिनरलाइज्ड 60% मिनरलाइज्ड लेयर होता है, उसको बोलते हैं डेंटिन। सबका डेंटिन का कलर येलोइश टू ब्राउनिश होता है।
0: अच्छा,
1: उसके ऊपर कोटिंग आती है एनामल की।
0: हाँ।
1: डेंटिन की थिकनेस होती है 4 से 6 mm तक।
0: हम्म।
1: उसके ऊपर रहती है 2 से 4-5 mm तक इनामल की थिकनेस।
0: ठीक है,
1: तो अभी जो नस है उसके जो सिरे हैं वो डेंटिन तक आए हुए रहते हैं, इनामल में कोई भी नस का सिरा नहीं आया है।
0: बिल्कुल।
1: इसके लिए कैविटी जब स्टार्ट होती है, बैक्टीरियल ग्रोथ जब स्टार्ट होती है, तब कभी दर्द नहीं होता है। दांतों में एक ब्राउनिश स्पॉट या फिर ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है।
0: ओके।
1: कभी कभार खाना फंसता है तो हम लोग उसको निकाल देते हैं, टूथपिक से, पिन से, जो कुछ भी मिले उससे निकाल देते
0: लेकिन
1: हैं।
0: नस तक,
1: नस तक अभी तक पहुंचा नहीं है।
0: जी
1: लेकिन धीरे धीरे वो बैक्टीरियाज अंदर बढ़ेंगे, जब डेंटिन तक पहुंचेंगे, नसों के एंड तक पहुंचेंगे, तब कभी कभार पानी पी लिया, ठंडे पानी पे झिंझिनाहट हो रही है, या फिर स्वीट खाया तो जब तक वो स्वीट का असर है तब तक झिंझिनाहट हुई, उसके बाद चला गया, तभी भी हम
0: बिल्कुल
1: लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं,
0: बिल्कुल
1: नजरअंदाज करते हैं। लेकिन वही चीज जब आगे बढ़ के नस तक पहुंच जाती है, तो नस एक ऐसा एरिया होता है कि दांतों की संवेदनाएं ब्रेन तक पहुंचाता है, और दांतों को खून का सप्लाई रखना, दांतों को न्यूट्रिशन देना नसों से ही होता है। तो जब वो नस तक पहुंच जाता है तब जाके असहनीय दर्द जो बोलते हैं वो तब होना चालू होता है।
0: जिसकी हमने चर्चा की,
1: एग्जैक्टली।
0: डॉक्टर साहब मर गए बचा लो।
1: हाँ जी, उसमें भी कुछ लोग काउंटर सेल पे जो मेडिसिन मिलते हैं, मेडिकल में जाके दर्द की दवाई ले लेते हैं, चला लेते हैं। अभी वो नस सड़ गई है।
0: हाँ।
1: नस सड़ने के बाद नीचे हड्डी के नीचे सेप्टिक जमना चालू होता है, उसको
0: अरे
1: डेंटल
0: बाप रे,
1: एब्सेस बोलते हैं।
0: ये बहुत खतरनाक है।
1: यस, फिर कोई दवाई भी असर नहीं करती है, तब जाके डॉक्टर को याद किया जाता है, और तब जाके लोगों की नींद खुलती है कि हमें दांतों की समस्या है या फिर दांतों का ध्यान हमें रखना चाहिए। यहाँ पे मैं और एक चीज कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों में ना एक मिथ है कि मुंह में जितना दांत दिखता है ना उतना ही दांत होता है।
0: अच्छा,
1: पर असलियत ऐसी नहीं है। असलियत जितना मुंह में दांत दिखता है उसका कम से कम 1.5 गुना दांत अंदर
0: नीचे की
1: होता
0: तरफ
1: हो,
0: होता है। हाँ।
1: हड्डी में बैठा होता है, जबड़े की हड्डी में, तभी हम लोग सारी चीजें चबा पाते हैं। नहीं तो अगर सिर्फ इतना सा दांत होता तो हम लोग जितनी चीजें खा रहे हैं आज, जिस तरीके की चीजें खा पी रहे हैं, वो जरा भी पॉसिबल नहीं था, मुमकिन ही नहीं था। तो ये मिथ लोगों ने थोड़ा तोड़ लेंगे अपना तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे, कि दांत मुंह में दिखता है उतना नहीं होता है, उससे 1.5 गुना दांत अंदर होता है। मतलब सिंपली अगर इस चीज को मैं समझाऊं तो बिल्डिंग जितनी बाहर दिखती है उसका पाया उतना नीचे गहरा होता है,
0: बिल्कुल
1: तब
0: बिल्कुल
1: जाके वो खड़ी रह पाती है।
0: सेम बात है,
1: सेम बात यहां पे है। फिजिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है कि बेस अगर स्ट्रांग रहेगा तो ऊपर का स्ट्रक्चर काम करेगा, वही प्रिंसिपल यहां पे लागू होता है। तो ये चीज है। तो ये कैविटीज जब नस तक पहुंच गई है, नीचे एब्सेस बना रही है, तब जाके दवाई असर नहीं कर रही, तब लोग जाते हैं डॉक्टर के पास। अभी जैसे मैंने बोला कि

0: कैविटी शुरुआत में स्टार्ट होती है बैक्टीरियाज की वजह से होती है। ये बैक्टीरियाज कहाँ से आते हैं? तो बॉडी में बहुत तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं, लेकिन अपने मुंह में और अतड़ियों में, इंटेस्टाइन्स में, बहुत सारे तरीके के, मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि दुनिया में जितने अवेलेबल बैक्टीरियाज है उतने सारे तरीके के बैक्टीरियाज अपने इंटेस्टाइन में और मुंह में अवेलेबल है। लेकिन उसमें से कुछ बैक्टीरियाज बेनिफिशियल होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज हार्मफुल होते हैं, मतलब नुकसानदायी होते हैं। तो जब ये हार्मफुल बैक्टीरियाज बढ़ जाते हैं तब सड़न बढ़नी चालू होती है, क्योंकि वो सर्वाइव करते हैं कैल्शियम पे एंड हाइड्रोक्सीएपेटाइट क्रिस्टल्स, जो इनामल का स्ट्रक्चर है, फाउंडेशन स्ट्रक्चर इनामल का, उसको गला के वो अपना कैल्शियम की नीड पूरी करते हैं। और ये कब होता है? दांतों पे चिपका हुआ कोई भी खाना कैविटी बना सकता है लंबे समय तक। हम लोग स्वीट्स को या चॉकलेट्स को जल्दी दोष दे देते हैं। हाँ, उसका कारण भी है वैसे, क्योंकि स्वीट्स खाने के बाद में नॉर्मली जो अपनी थूक है, सलाइवा है, उसका पीएच वो होता है 7.2 to 7.4, लेकिन जब हम लोग स्वीट्स खाते हैं तो इट ड्रॉप्स, वो कम हो जाता है इमीडिएटली विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर वो 4 से 5 के बीच में आ जाता है। मतलब न्यूट्रल रीडिंग होता है पीएच का 7, मतलब वो चीज ना एसिडिक है ना अल्कलाइन है। नॉर्मली सलाइवा अपना अल्कलाइन होता है, तो जब वो एसिडिक बन जाता है तो एसिडिक एटमोस्फियर में जो बैक्टीरियाज ग्रो होते हैं वो दांतों को गलाने के लिए, या फिर वो हार्मफुल बैक्टीरियाज है वो खुद को सर्वाइव करने के लिए दांतों को गलाना चालू कर देते हैं।
1: और ये हम खुद इस तरह का माहौल बनाते हैं दांतों में।
0: एग्जैक्टली। नॉर्मली ये तभी होता है जब आप ब्रश नहीं कर रहे हो, या फिर स्वीट्स खाए हैं, टेस्ट अच्छा लग रहा है तो बहुत देर तक उसको मुंह में ऐसे ही घोलते बैठे हो।
1: जी
0: रात में नॉर्मली जब हम लोग ब्रश नहीं करते हैं या फिर खाना खा के तुरंत सो जाते हैं तो अपना जो थूक है, सलाइवरी सिक्रीशन है, वो भी कम हो जाता है। नहीं तो सुबह तक, वो भी कुदरती देन है, वो फंक्शन वैसा है, नहीं तो सुबह तक अपना तकिया पूरा सलाइवा से भर जाएगा।
1: बिल्कुल।
0: ठीक है, तो वो सिक्रीशन कम होता है, तो इसकी वजह से जो सलाइवरी एंजाइम्स रहते हैं जो इम्यूनिटी का काम करते हैं वो भी कम हो गए। सलाइवा का दूसरा काम होता है कि वॉश आउट करना, नेचुरल रिंसिंग देना दांतों को, तो वो भी नहीं हो पाता है। इसके लिए रात में जो लंबा समय 8 से 10 घंटे हम लोग जब सोते हैं तब ये बैक्टीरिया जल्दी ग्रो करते हैं। इसके लिए रात में ब्रश करके सोना जरूरी होता है।
1: हाँ, बिल्कुल। और सुबह उठते ही ब्रश
0: ब्रश
1: करना
0: करना
1: बहुत
0: जरूरी
1: जरूरी है।
0: होता
1: डॉक्टर साहब, बातें ओरल हाइजीन की चल रही हैं और आपने बहुत सारी बातें बताई कि किस तरह से कैविटी पैदा होती है और बाकी तमाम चीजें हैं। आज हम देख रहे हैं कि पुरानी पीढ़ी के दांत बड़े मजबूत देखे गए हैं। हमारी दादी नानियां कड़क से कड़क चीज,
0: है।
1: मतलब आपने गाजर और ककड़ी को कड़क कहा, उससे कहीं ज्यादा कड़क चीजों को
0: अखरोट
1: मजे से,
0: जैसे,
1: अखरोट जैसी चीजों को, गन्ने को मजे से छील के खा ले रही।
0: हाँ जी,
1: आज के बच्चों में तो वो, उनके दांतों में वो दमखम दिख ही नहीं रहा है। तो मुद्दा ये है कि क्या आज का समाज दांतों को लेकर कम अवेयर है और हम कमजोर दांतों वाले जमाने में आ गए?
0: अभी इसका एक्सप्लेनेशन मैंने जैसे पहले भी बताया था वैसे ही आएगा यहाँ पे, कि प्रॉब्लम ये हो चुका है ना कि ज्यादा पका हुआ खाना खाने की आदत बन चुकी है, सॉफ्ट खाना खाने की आदत बन रही है लोगों की, जिसकी वजह से मसल्स और जॉ बोन, हड्डी जो होता है जबड़े का, उतना स्ट्रांग बन ही नहीं पा रहा
1: जैसे पहले के बुजुर्गों का है।
0: एग्जैक्टली। क्योंकि वो कच्चा खाना खाते थे, खेतों में चलते चलते उनका गन्ना चूसने का काम होता था, गन्ना दांतों से छील के खाने का काम होता था, उनका खाना उतना फाइबरस था, फाइबर्स बोलते खाने में, बेसिक है। मतलब जैसे जिम जाते हैं हम लोग मसल्स बढ़ाने के लिए, वहां क्या करते हैं हम लोग, मसल्स को एक्स्ट्रा ट्रेन करते हैं, एक्स्ट्रा उसकी काबिलियत से ज्यादा उसके ऊपर लोड डाला जाता है, तब जाके मसल एक्स्ट्रा बड़ा बनता है। सेम फेशियल मसल्स का होता है, जो चबाने वाले मसल्स है उनमें भी वही चीज है, जितना काम आप उनको दोगे उतना वो बनेंगी, और ये चीज अगर डेवलपमेंटल स्टेज में हो तो ज्यादा अच्छा है। बट हम लोग, मैं ये नहीं बोलूंगा कि लोगों का अवेयरनेस कम हो रहा है, पैम्परिंग ज्यादा बढ़ गया है, बच्चों का पैम्परिंग ज्यादा बढ़ गया है। मतलब अगर हमारे भी बचपन की बात करें तो पेरेंट्स, ये बना है ये खाना पड़ेगा,
1: बिल्कुल।
0: ये रूल होता था घर का, आज ऐसे होता है। मतलब मेरा बच्चा भी छोटा है अभी, तो हमारे घर पे भी ऐसा होता है बहुत बार, लेकिन मैं खुद वहां पे एक विलन का रोल ले लेता हूं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए।
1: ये तो खाना ही पड़ेगा।
0: हाँ जी, तो नॉर्मली आजकल खाना बनता है कि बच्चा तुझे क्या चाहिए, बच्चों को क्या चाहिए,
1: हाँ उनके मुताबिक बन रहा है।
0: हाँ, उनके मुताबिक बन रहा है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये चीज पूरी तरीके से गलत है, लेकिन एक लिमिट होना चाहिए। हम लोग वो लिमिट कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। भी इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, एक आध साल पहले की बात है, या फिर बहुत बार हुआ है वैसे, लेकिन ये एक एपिक पेशेंट मेरे क्लिनिक में आए थे जो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। 5 साल की बच्ची को लेकर आए थे, दांतों में कैविटीज थे, मसूड़ों में सूजन थी, मतलब उसका एब्सेस बन गया था अंदर, इतना उसका इन्फेक्शन फैला हुआ था। उसके पिताजी उसको लेके आए थे, मैंने देखा, चेक किया, ट्रीटमेंट बताया, उन्होंने सुना, सुनने के बाद उन्होंने बच्ची को पूछा, बेटा आपको करवाना है? अभी 5 साल की बच्ची को क्या पता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, जिसने पहली बार दांतों का दवाखाना देखा है। तो मैंने उनको पूछा कि आप उसे क्यों पूछ रहे हो, वो तो छोटी है, उसको क्या समझेगा क्या अच्छा क्या बुरा। लेकिन उनका जवाब बहुत यादगार था मेरे लिए, कि नहीं, आजकल

0: बच्चों को पूछना पड़ता है।
1: ओहो
0: अभी इतना बच्चों को पूछ के अगर आप जियोगे, तो मैंने उनको भी ये चीज हंसते हुए बोल दी थी कि ये थोड़े दिनों बाद आपको नहीं पूछेगी।
1: बहुत सही है, बहुत सही है।
0: तो ये जो दुलार है ना,
1: ये बहुत
0: इस
1: नुकसानदेह है।
0: हाँ मतलब एक लिमिट तक होना चाहिए। इसके लिए मैंने बोला ना कि पेरेंट्स को समझना चाहिए कि कहाँ प्यार करना है और कहाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट होना है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाने की बारी है, उसके बाद
0: अच्छा
1: हम रूट कैनाल की बात करेंगे।
0: श्योरली। सो अभी किशोर दा का ही गाना सुनेंगे, मेरे नैना सावन भादो,
1: क्या बात है, महबूबा
0: क्योंकि
1: फिल्म का
0: दांतों में
1: गाना।
0: दर्द होता है तो नैनों से तो सावन
1: हा
0: बरसना
1: हा
0: ही है।
1: हा सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, रूट कनाल ट्रीटमेंट आजकल बहुत लोगों को कराना पड़ता है और दांतों को लेकर एक जरूरी ट्रीटमेंट है जब सड़न हो जाती है। क्या इससे बचा जा सकता है? किन मामलों में, किन सावधानियों के जरिए और कब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है?
1: जैसे मैंने आपको दांत का स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि नस अंदर होती है, उसके ऊपर डेंटिन होता है, उसके ऊपर इनामल होता है, तो जब सड़न नस तक पहुंची है तब जाके रूट कैनाल करना पड़ता है। रूट कैनल में बेसिकली क्या किया जाता है कि जो आपकी नस सड़ रही है उसको साफ किया जाता है और उसकी जगह पे नकली नस बोल सकते हो आप उसको, या फिर आर्टिफिशियल मटेरियल का फिलिंग किया जाता है।
0: Yes.
1: जिसकी वजह से दांतों का सेंसेशन तो चला ही जाता है बट उसका ब्लड सप्लाई भी काफी हद तक कम हो जाता है।
0: Yes.
1: इसके लिए रूट कैनाल करने के बाद कैप लगाना मैंडेटरी हो जाता है।
0: जी
1: क्यों? क्योंकि एक तो दांत का स्ट्रक्चर कमजोर हो रहा है, ब्लड सप्लाई कमजोर हो रहा है, मतलब जो न्यूट्रिशन मिल रहा है दांतों को वो भी कम हो रहा है, और तीसरी बात, जितना बड़ा गड्ढा होता है उतना बड़ा सीमेंट वहां पे टिके रहना मुश्किल होता है।

0: चौथी बात यह है यहां पे कि नस तो चली गई,
1: बिल्कुल
0: सेंसेशन चली गई, तो जब वापस उसमें अगर कैविटी लगेगी तो पेशेंट को भी पता नहीं चलेगा और दांत टूट जाएगा। अभी दांतों के ट्रीटमेंट्स कैसे होते हैं और किस तरीके से किए जा सकते हैं, सबसे पहली बात तो होती है नॉर्मल सफाई करना। जब आपके दांतों में सड़न नहीं है लेकिन दांतों पर कुछ परत दिख रही है आपको, तो उसको साफ कर लो। उसके बाद आता है फिलिंग करना। जैसे मैंने बताया कि शुरुआती दौर में कैविटी दांतों में एक ब्राउन स्पॉट या काला स्पॉट की तरह दिखती है, या फिर कभी कभार थोड़ा बहुत खाना फंस रहा है, उसी वक्त अगर उसको ट्रीट किया जाए तो सिंपल ट्रीटमेंट होता है कि उसको साफ किया जाता है, फिर वो गड्ढा बनता है उसमें सीमेंट भरा जाता है। अभी ये दांतों के स्पेशल सीमेंट्स होते हैं, कुछ लोगों का मिथ यहां पे ये भी है, और ये मॉक डेंटिस्ट या फिर स्ट्रीट डेंटिस्ट जो होते हैं वो ये चीज करते भी है कि बहुत बार दांतों में एक्रेलिक भर के दे देते हैं।
1: अरे बाप रे,
0: एमसील भरे हुए दांत देखे हैं मैंने,
1: अरे बाप रे,
0: व्हाइट सीमेंट भरा हुआ देखा हुआ है, जिसकी वजह से फिर कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि वो दांत तो चला ही गया, जबड़े का हड्डी भी गल गया और उसकी वजह से आजू बाजू के भी दो दो तीन तीन दांत निकालने पड़े।
1: ओहो,
0: और ये होता है सस्ते के चक्कर में, जब लोग भागते हैं सस्ते में हमारा काम हो रहा है। सीधी सी बात है, दुनिया में आज हर कोई बिजनेस करने बैठा हुआ है। अगर कोई चीज 10 रुपए की बन रही है तो बनाने वाला उसको 15 रुपए की या 20 रुपए की बेचेगा,
1: बिल्कुल
0: वो डिस्ट्रीब्यूटर वहां से लेगा, वो अपना मार्जिन जोड़ेगा, और फिर उसके बाद वो डॉक्टर के पास आ रही है या फिर पेशेंट के पास जा रही है, तो हर एक का मार्जिन जुड़ के अगर वो 10 रुपए की चीज आपको कोई 9 रुपए में ऑफर करे, तो सीधी सी बात है उसकी बनावट में कुछ खोट है, खामियां है, कुछ भी है, मतलब बनावट खराब है। डेंटिस्ट्री मतलब बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं शरीर के मामले में कि जहां पे हम लोग शरीर में कुछ चीजें डाल रहे हैं जो एक्सटर्नल है, पर अगर वो शरीर से सुसंगत नहीं होंगी, शरीर के मुताबिक नहीं होंगी, तो शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा।
1: और लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि
0: एग्जैक्टली
1: दांतों में कितना ज्यादा प्रेशर पड़ता है, तो उस चीज का मजबूत होना कितना जरूरी है।
0: एग्जैक्टली मतलब अगर यहां पे नंबर वाइज मैं बताऊं
1: हाँ,
0: तो
1: वही
0: वन
1: मैं जानना
0: ट्वेंटी
1: चाहता हूं।
0: दांतों का जो नॉर्मल हमारा बाइटिंग फोर्स रहता है, इट इज रेंजिंग फ्रॉम 110 to 130 पास्कल, दैट इज न्यूटन सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर पे 130 न्यूटन का प्रेशर हम लोग डालते हैं, ये नंबर वाइज
1: ये बहुत ज्यादा
0: बहुत
1: है।
0: ज्यादा है। तो ट्रीटमेंट्स पे हम लोग थे, तो पहले तो फिलिंग हो गया, उसके बाद फिलिंग प्लस कैप होता है, ये बच्चों में भी होता है और बड़ों में भी होता है। ये कब किया जाता है, जब कैविटी से दांत का ऊपर का स्ट्रक्चर अच्छा खासा सड़ गया है लेकिन वो नस तक नहीं पहुंचा है, तो उतना बड़ा सीमेंट लोड नहीं ले पाएगा जितना हम लोग फोर्स की बात कर रहे थे अभी, तो वो सीमेंट को रिटेन करने के लिए, उसको एक स्ट्रक्चर रखने के लिए उसके ऊपर कैप लगाया जाता है। फिर तीसरा ट्रीटमेंट आता है रूट कैनाल, जब नस छू गई है, नस इन्फेक्ट हो गई है या फिर नस के नीचे इन्फेक्शन हुआ है, फिर उसमें दो तीन बार नस के एरिया की सफाई की जाती है, पूरी सड़न साफ करके नस तक एक्सेस लिया जाता है, नस के एरिया की सफाई की जाती है, दवाई डाली जाती है ताकि जो बैक्टीरियाज अंदर चले गए वो मर जाए, खत्म हो जाए और वो पूरा एरिया असेप्टिक बने, फिर उसको पूरा स्टराइल करके, मतलब फिलिंग करने से पहले भी अलग अलग दवाइयां डालते हैं हम लोग उसमें ताकि वो पूरा एरिया स्टराइल हो जाए, डिसइन्फेक्ट हो जाए, और फिर हम लोग फिलिंग करते हैं। फिलिंग करते वक्त हम लोग इन चीजों का भी ध्यान रखते हैं कि जो पहले वाला फिलिंग या फिर सीमेंट निकाला हुआ है वो कहीं पे भी टच ना हो, या फिर थूक भी अपनी टच ना हो उसको, क्योंकि थूक में भी बैक्टीरियाज
1: बैक्टीरिया
0: होते
1: होता है
0: हैं जैसे हमने
1: जी।
0: बात की, तो वो भी वहां पे टच ना हो, ये ध्यान हम लोग रखते हैं। फिर उसके बाद फिलिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर कैप लगाई जाती है, और आखिरी ट्रीटमेंट होता है दांत निकालना, जबकि पूरा ही दांत टूट चुका है या फिर बहुत ज्यादा सड़न बढ़ चुकी है। जैसे बड़ी चौबर होती है पीछे वाली, उनकी दो या तीन जड़ें होती है, वो जड़ों के बीच में क्रैक आने लग गया है, उस सिचुएशन में रूट कैनाल भी असर नहीं करता है, तब दांत निकालना पड़ता है। अभी यहां पे एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि दांत निकालने के बाद बच्चों में भी एक चीज होती है जिसको बोला जाता है स्पेस मेंटेनर, और बड़ों में एक चीज की जा सकती है, दांत बिठाने की जरूरत होती है। मुंह में एक इकलौता दांत ऐसा है जिसको बोलते हैं अक्कल दांत, विजडम टूथ, वो अगर निकाल दिया जाए और ना बिठाया जाए तो चलता है, क्योंकि नेचुरली भी जब हम लोग मुंह बंद करते हैं तो विजडम टूथ बहुत सारे केसेस में, मतलब मैक्सिमम केसेस में वो टच होता ही नहीं ऊपर नीचे, तो खाना चबाने का एज सच कुछ फंक्शन नहीं होता उसका, ना दिखने में वो काम में आता है, तो इसके लिए वो दांत ना बिठाए तो चलता है। लेकिन उसे छोड़ के बाकी कोई भी दांत अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो उसे बिठाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अभी ये क्यों होती है,
1: बिल्कुल
0: नॉर्मली लोगों का सवाल आता है कि क्यों बिठाना है, मैं तो खा
1: इसके
0: पा रहा
1: बिना भी
0: हूं,
1: चल सकता है।
0: इसके बिना भी मेरा चल रहा है, क्योंकि एक ही साइड का एक दांत निकाला हुआ, पीछे की चौबर तो है, आगे के दांत है, दूसरे साइड में मेरे सब फाइन है। सबसे पहली बात ये होती है कि नॉर्मली जब हम लोग दांतों पर प्रेशर देते हैं तो जैसे हमने बोला कि उसकी 1.5 गुना जड़ें अंदर होती है, वो जड़ों के द्वारा हड्डी में फोर्स पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो दांत के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है वो पूरे जबड़े के हड्डी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये उसका फंक्शन है। बॉडी की एक जनरल टेंडेंसी होती है कि जो भाग हम लोग यूज नहीं करते हैं बॉडी वहां पे न्यूट्रिशंस वेस्ट नहीं करती है। इसका एक क्लासिक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं यहाँ पे, तो किसी का हाथ अगर प्लास्टर में है, समझ लीजिए किसी वजह से फ्रैक्चर हुआ है प्लास्टर में, एक डेढ़ दो महीने बाद

0: प्लास्टर निकाला जाता है, तो आपने भी देखा होगा कि वो हाथ उतना मजबूत नहीं दिखता है जितना उसका पहले था। क्यों? क्योंकि उतना फंक्शन वो कर ही नहीं रहा था 1.5-2 महीने तक। वहां पे न्यूट्रिशन की सिर्फ जरूरत थी वो घाव भरने के लिए, वो हड्डी भरने के लिए उतने ही न्यूट्रिशन पहुंचाए जाते हैं। तो वही होता है जबड़े की हड्डी के मामले में।
1: अच्छा,
0: जब दांत निकल गया वो हड्डी का फंक्शन खत्म हो गया, तो हड्डी गलना चालू हो जाता है। वो गलते गलते इतना गल जाता है कि आजू बाजू के दांतों का भी हड्डी गल जाता है। एक चीज ये होती है। दूसरी चीज, आगे का दांत पीछे झुक जाता है, पीछे का दांत आगे झुक जाता है, ऊपर वाला दांत नीचे आता है या नीचे वाला दांत एंटी ग्रेविटी ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी ट्राइज टू रेस्टोर इट्स फंक्शन।
1: ओके,
0: खाना खाना तो चालू ही है, बॉडी को सिग्नल्स मिल ही रहे कि यहाँ पे खाना चबाया जा रहा है,
1: तो
0: वो बैलेंस करने के लिए जो दांत अवेलेबल है उनको वो एडजस्ट करने की कोशिश करती है।
1: ओके,
0: एक दो दिनों में ये चीज नहीं होती है, टाइम लगता है, लेकिन ये सब जब होता है और जब पेशेंट की नींद खुलती है तब उनके आजू बाजू के दांत भी खराब हो चुके होते हैं।
1: इसलिए डॉक्टर के पास जितने जल्दी हो सके, डेंटिस्ट के पास समस्या से पहले पहुंचना चाहिए।
0: सही बात है। और इसके लिए सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं करना है, डेली आप अगर ब्रश कर रहे हो ना तो उसी टाइम पे ब्रश होने के बाद मुंह में सिर्फ अपने झांकना है 1 मिनट के लिए कि कहीं कुछ गलत तो नहीं दिख रहा, कहीं कुछ और तो नहीं दिख रहा, और अगर दिख रहा है नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं निकल रहा वो चीज, तो एक बार डेंटिस्ट का ओपिनियन लिया जाए।
1: ठीक बात है।
0: इतनी सी बात होती है, पर हमारा अभी लाइफस्टाइल इतना स्पीड वाला हो गया ना कि उतना भी वक्त हमारे पास नहीं है, और जब तक प्यास लगती नहीं है हम लोग कुएं के पास जाते नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि आप गुनगुनाते भी हैं और गाने का शौक रखते हैं।
0: हाँ जी, शौकिया तौर पे रखता हूँ, मैं खुद को गायक नहीं मानता हूँ
1: जी,
0: बट हाँ कभी कभार छोटे मोटे घरेलू जो गेट टुगेदर होते हैं वहां पे हम लोग गा लेते हैं।
1: तो हमारे लिए भी गाइए।
0: ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ
1: जी।
0: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
1: क्या बात है, सुनते हैं ये गाना।

0: साहब जिंदगी एक सफर तो है, लेकिन जब दांतों का दर्द होता है तो इंसान बहुत सफर करता है। ये दूसरा वाला सफर जो है ये बड़ा खतरनाक है। माँ बाप दो बातों से परेशान रहते हैं, एक बच्चों के टेढ़े मेढ़े दांत और दूसरे बाहर निकले हुए दांत। इन दोनों के लिए कुछ ना कुछ उपाय करने की कोशिश करते हैं। मैं देखता हूँ चारों तरफ ब्रेसेस लगे हुए बच्चे नजर आते हैं, ये सब क्या मामला है?
1: जैसे हमने बात की कि जब जबड़े की ग्रोथ बराबर नहीं होती है तब दांतों को आने के लिए जगह नहीं होती है, परमानेंट दांत बड़े होते हैं तो वो जैसे जगह मिलती है वैसे अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, तब दांत आड़े टेढ़े हो जाते हैं।
0: अच्छा,
1: अभी आड़े टेढ़े दांत क्यों नहीं होने चाहिए? नॉर्मली लोग एक चीज समझते हैं कि एस्थेटिक वाइज दिखने के लिए वो ज्यादा अच्छा नहीं दिखता है, या फिर ज्यादा आगे है तो इसके लिए वो सोचते हैं कि हमें ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन इसका और एक प्रॉब्लम होता है आगे चल के, क्या होता है ना, दांतों के ऊपर ही नहीं दांतों के बीच में भी गैप्स होते हैं नॉर्मली। वो गैप्स में जब खाना फंसता है, और अगर आपके दांतों के अरेंजमेंट ठीक नहीं है तो आपको फंसा हुआ खाना समझ में भी नहीं आता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उसकी वजह से कैविटीज ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से दांतों के प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ते हैं और वो व्यक्ति परेशान रहता है जिंदगी भर कि मेरे दांतों में हमेशा प्रॉब्लम ही होती है। दूसरी बात, हाँ हमने ब्रशिंग की बात की, यहाँ पे एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि दांतों के बीच के एरिया को साफ करने के लिए कोई भी ब्रश आज तक बना नहीं है।
0: ओके,
1: उसके लिए बना है लेकिन जब गैप्स उतने बड़े हो, उसको प्रोक्सा ब्रशेस बोला जाता है, तो वो डिपेंड करता है कि गैप कितना है, बट नॉर्मली जो टचिंग होते हैं दांत या फिर जो नॉर्मल गैप्स होते हैं जहां पे खाना फंस रहा है वो नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं निकलता है, तो उसके लिए करना पड़ता है फ्लॉस।
0: फ्लॉस के लिए वो
1: धागा आता है, नायलॉन का धागा रहता है, इसको फ्लॉस ही बोला जाता है, अलग अलग कंपनियां बनाती है उसको, उसमें भी दो तीन टाइप के आते हैं, आपके लिए कंफर्टेबल रहे वो आप कीजिए, ये मेरी सलाह रहेगी यहाँ पे। अभी आड़े टेढ़े दांतों की बात करेंगे, आगे आए हैं एस्थेटिकली अच्छे नहीं दिखते हैं तो ब्रेसेस, यस इट इज द सोल्यूशन। अभी तो ब्रेसेस में बहुत सारे एडवांसमेंट्स आए हुए हैं, अलाइनर्स करके चीज आई हुई है जो पूरे ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस होते हैं कि पहना है व्यक्ति ने कुछ समझ में नहीं आता है, जिसको अलाइनर्स बोला जाता है। तो अभी उसमें भी कैसा है कि बनाने वाली कंपनीज बहुत है लेकिन अच्छा प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज बहुत कम है, और प्रोडक्ट जब तक अच्छा नहीं है तब तक रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा डिजिटल प्रोग्रामिंग होता है, स्कैन किया जाता है आपके जबड़े का पूरा
0: जी,
1: और वो प्रोग्राम बताता है कि वो सेट्स कितने लगेंगे अलाइनर्स के, फिर हर सेट आपको 15 से 20 दिन पहनना होता है, तब जाके कुछ चेंज होता है दांतों में अरेंजमेंट में, तब दूसरा सेट पहनना होता है। अभी ये निकालने पहनने वाली चीज है, इसकी सबसे बड़ी खामी भी ये है और अच्छाई भी यही है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि खामी मैं इसके लिए बोल रहा हूं क्योंकि नॉर्मली लोग निकाल के भूल जाते हैं वापस पहनना, वो भले निकालने पहनने वाली चीज हो लेकिन उसको दिन में 20 से 22 घंटे पहनना जरूरी होता है, वो सिर्फ ब्रशिंग के टाइम पे या खाना खाने के टाइम पे आप निकाल सकते हो, बाकी टाइम आपको पहन के रखना है, पहन के बात करनी है, पहन के सोना है, वैसे भी वो दिखता नहीं है, तो मोस्ट कंफर्टेबल थिंग। पर अभी भी कुछ चीजें हैं जो अलाइनर्स से नहीं की जा सकती, जैसे ज्यादा ही कॉम्प्लिकेशंस है, तो उसके लिए फिर हम लोग हाफ ब्रेसेस से करते हैं और हाफ अलाइनर्स से ट्रीटमेंट कर देते हैं कि हाँ नॉर्मल पे आ गया फिर हम लोग अलाइनर्स पे शिफ्ट करेंगे। इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन योर बजट, बाकी फाइनल रिजल्ट जो आपको चाहिए होता है वो सब में आता है।
0: ओके,
1: सेम ही आता है, ये डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है, आपकी चॉइस क्या है। जितनी एस्थेटिक चीजें आप लोगे जो ना दिखे या फिर दिखने में ज्यादा खूबसूरत हो तो वो थोड़ी महंगी जाती है, और जितना सिंपल लुकिंग चीज रहेगा या फिर थोड़ा और दिखने के लिए होगा, जैसे नॉर्मली आप मेटल के ब्रेसेस देखते हो स्टील के ब्रैकेट्स लगाए हुए होते हैं, वो एक सस्ता ऑप्शन है। क्योंकि मैं खुद पर्सनली पेशेंट्स को कभी सजेस्ट नहीं करता हूं कि महंगे वाली चीज के लिए जाइए आप, अनलेस एंड अंटिल उनका प्रोफेशन डिमांड ना कर रहा हो या फिर लेट वो ब्रेसेस कर रहे हैं, मतलब बड़े उम्र में कर रहे हैं, तब मैं सजेस्ट करता हूं कि आप इनविजिबल चीजों में जाइए। पर यंग बच्चा है जहां पे एस्थेटिक उसके कंसर्न नहीं है उतने, तब हम लोग नॉर्मली सस्ते वाले ब्रेसेस में भी जाने का ऑप्शन दे देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है दांतों की अरेंजमेंट ठीक हो जाती है, तो कहीं पे खाना फंस रहा है नहीं फंस रहा है वो सारी चीजें क्लीन रहती है और जबड़े की हड्डी की ग्रोथ अच्छी रहती है। लॉन्ग टर्म में अगर आपके दांत आड़े टेढ़े हैं, आड़ा टेढ़ा प्रेशर पड़ रहा है उनके ऊपर, भले आप नॉर्मल खाना पीना भी खा रहे हो और फिर भी आड़ा टेढ़ा प्रेशर पड़ रहा है, तो फिर भी आपका हड्डी कमजोर हो जाता है, हड्डी गल जाता है, उसको ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन बोला जाता है, मतलब नॉर्मल बाइट की वजह से ट्रॉमा हो रहा है दांतों पे और वो हड्डी गल रही है।
0: ओके,
1: तो ये सारी चीजें आप ब्रेसेस से ठीक कर सकते हो, ये चीज है।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, कई लोग होते हैं जिनके मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आती है, दांतों की बहुत सड़न होती है, पुराने जमाने से एक बहुत बड़ी समस्या पायरिया रही है।
1: हाँ जी,
0: इसकी बात करते हैं और उसके बाद उन मरीजों की बातें करेंगे जिनको पूरा डेंचर बदलने की जरूरत पड़ती है, एक्सट्रीम केसेस की बात उसके बाद करेंगे।
1: चलेगा। तो आपका पहला सवाल है पायरिया के बारे
0: पायरिया
1: में।
0: का।
1: पायरिया जो चीज होती है, एक्चुअली ये बीमारी है जबड़े की हड्डी और मसूड़ों की,
0: अच्छा वो दांतों की बीमारी नहीं
1: दांतों
0: है।
1: की बीमारी नहीं है। ये
0: ओहो
1: पहले समझने वाली बात है। सबसे बुरी बात पायरिया की ये है, स्पेशली इंडियन पॉपुलेशन के लिए, कि इसमें मैक्सिमम लोगों को दर्द होता ही नहीं है। बहुत सारे केसेस में तो एक्सट्रीम बुरा हो जाता है, तभी भी दर्द नहीं होता है। लोग सिर्फ इतना बोलते हैं कि दांत अपने आप हिलने लग गए और अपने आप गिर गए।
0: ओके
1: अपने आप कभी दांत नहीं हिलता है। आप खुद सोचिए कि जितना दांत मुंह में दिख रहा है उससे 1.5 गुना दांत अंदर हड्डी में बैठा हुआ है। वो हड्डी जब गलेगी तब
0: तब
1: उसका
0: तो
1: सपोर्ट
0: जाके
1: जाएगा,
0: यस
1: तब दांत हिलेगा।
0: ये
1: तो
0: लंबा
1: हड्डी
0: मामला है।
1: वो एक दिन में होता नहीं है। पायरिया का बीमारी एक दिन में होता नहीं, उसके भी 4 स्टेजेस है। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 बोलते हैं हम लोग, उसमें टेक्निकल चीजें हैं। लेकिन ये क्यों होता है, तो दांतों के ऊपर जो परत जमती है, अभी इसमें जो काम करते हैं वो बैक्टीरियाज अलग है, दांतों को सड़ाने वाले बैक्टीरियाज अलग है। उसके डिटेलिंग्स में मैं नहीं जाऊंगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी चीजें। पर ये जो परत जमती है दांतों के ऊपर, खाने की परत समझ लो या फिर कोई भी स्वीट की परत है, उसमें बैक्टीरियाज पनपने चालू हो जाते हैं। स्पेशली जहां पे आप ब्रश नहीं कर रहे हो, या फिर बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि नॉर्मली लोगों को एक ही साइड से खाना चबाने की आदत होती है, तो दूसरे साइड में सलाइवरी सिक्रेशन कम होता है, तो वहां पे भी ये परत जमना चालू हो जाता है। तो उस परत में जो बैक्टीरियाज जमते हैं उनका भी खाना होता है कैल्शियम, वो मसूड़ों में से अंदर जाके हड्डी से कैल्शियम लेना चालू करते हैं, तब जाके हड्डी गलती है। तो इसमें पायरिया जो बड़ा टर्म है उसको 2 टर्म्स में डिवाइड किया जाता है, एक जिंजिवाइटिस और फिर होता है पेरियोडोंटाइटिस। दांत और हड्डी इनके बीच में एक लिगामेंट होती है जिसको बोलते हैं पेरियोडोंटल लिगामेंट, वो लिगामेंट की बीमारी होती है पेरियोडोंटाइटिस। तो ये जो बैक्टीरियाज है वो कहां से जा रहे हैं, दांतों के ऊपर जमी हुई परत से ही जा रहे हैं। तो वही चीज यहां पे ध्यान रखनी जरूरी होती है, जैसे मैंने बोला कि जो चीज आपके ब्रश से साफ नहीं हो रही है तो उस चीज के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। उसको वक्त रहते ही आपने साफ कर लिया तो बहुत सारे केसेस में ग्रेड 1 वाली स्टेजेस में तो सेल्फ रिपेयरिंग चीज है, उसके लिए कोई ज्यादा मेडिसिन भी नहीं देने पड़ते, सिर्फ साफ करना पड़ता है और अपने आप बॉडी ठीक कर लेती है उसको। अभी पायरिया जब होता है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, एक मसूड़े में सूजन दिखना, अगर आप देखोगे तो समझ में आएगी, नॉर्मली लोगों के पास देखने के लिए वक्त है नहीं। वो आगे चल के मुंह से बदबू आना,
0: हाँ ये थोड़ा विजिबल साइन
1: एग्जैक्टली
0: है,
1: ये विजिबल साइन है, लेकिन इसको भी लोग नजरअंदाज करते हैं क्योंकि अपने मुंह की बदबू अपने आप को नहीं आती है,
0: लेकिन वो एक सोशल डिलेमा बन जाता है।
1: सोशल डिलेमा बन जाता है अगर खुद को आई तो, अगर आप उस बारे में अवेयर हो,
0: हाँ लोग आपसे दूर जाने लगते हैं,
1: हाँ नहीं तो आपको पता ही नहीं चलता। और नॉर्मली कोई आके खुल के आपसे ये बोलेगा नहीं कि भाई साहब आपके मुंह से बदबू आ रही है, इजीली बोलेगा नहीं, अनलेस एंड टिल आपका उस बंदे के साथ या बंदी के साथ उतना क्लोज रिलेशनशिप ना हो।
0: जी
1: ठीक है, फिर उसके बाद में आगे होता है कि कभी कभार ब्लीडिंग होना चालू होता है मसूड़ों में से,
0: हाँ जी,
1: ब्रश करते वक्त खून आ गया, फिर उसके बाद चालू होता है दांत हिलना। ये एक स्लो पॉइजन है बॉडी में, मतलब ये बहुत कॉमन है। अभी कल की बात है, मेरे एक दोस्त के पिताजी के 4 दांत गिर गए, बोले शुक्रवार को गिरे हैं, मुझे कल फोन आया तो मैंने पूछा कैसे गिरे, अपने आप गिर गए।
0: कितना नॉर्मल है ना,
1: कितना नॉर्मल है। आपको अभी जो आगे की चीज है कि पूरा डेंचर वगैरह, उसमें जब हम लोग जाएंगे तो मैं आपको समझा दूंगा कि कितनी महंगे दांत है
0: बिल्कुल,
1: जो हमें फ्री मिले हैं, इसके लिए हम लोग उसकी कदर नहीं कर रहे, ऐसा मुझे बहुत बार लगता है, जिसके लिए मुझे बुरा लगता है।
0: यस,
1: या फिर पूरे शरीर की ही कीमत आप लगा लो, रिपेयरिंग की कीमत लगा लो तो करोड़ों में जाती है, कई 100 करोड़ों में जाती है।
0: यस,
1: लेकिन हम लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि फ्री में मिला हुआ है।
0: बिल्कुल,
1: उल्टा उसको बर्बाद करने वाली चीजों पे हम लोग खर्चा करते हैं, फिर उसमें वो सुपारी आ गई, पान आ गया, अभी मुंह के बारे में बात कर रहे तो
0: वो सारी
1: चीजें,
0: तंबाकू,
1: तंबाकू,
0: स्मोकिंग,
1: और बहुत यंग एज में बहुत गंदी हालत देखी हुई है मैंने
0: दांतों की,
1: ओवरऑल मुंह की, मसूड़ों की, जबड़ों की। मतलब बहुत बार मैंने जो पेशेंट को लाइन बोली है, मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, 25-30 साल की उम्र है लेकिन उनका दांत का कंडीशन होता है 60-65 साल की उम्र के बुड्ढों की तरह।
0: अरे अरे,
1: तो उनको भी मैं ये समझा देता हूँ, और ये नॉर्मली हैबिट्स जब होती है तभी होता है।
0: बिल्कुल,
1: और जब ये पेशेंट मेरे पास ट्रीटमेंट मांगते हैं तो मैं उनसे एक ही चीज मांगता हूँ कि आप अपनी हैबिट बंद कर दो, मैं बाकी की सारी चीजें रिपेयर करने की जिम्मेदारी ले लेता हूँ। लेकिन अगर आप अपनी हैबिट चालू रखोगे तो कुछ भी आप कर लो, आप पूरा पैसा डाल के आप अपना भी वक्त खर्चा करोगे, मेरा भी करवाओगे, मेरी मेहनत भी लगवाओगे, लेकिन बाद में बर्बादी आप करोगे। तो इसके लिए जो फ्री मिला है उसकी थोड़ी वैल्यू कर लो।
0: बिल्कुल,
1: ये सजेशन मैं यहां दूंगा।
0: इसी हाँ। बात पर एक गाना सुनते हैं और उसके बाद वो डेंचर वाली बात करते हैं।
1: सही है, तो हम यहाँ पे सुनेंगे, यहाँ पे दांत बोलेंगे कि हम बेवफा हरगिज न थे।
0: वाह, पर हम वफा करना सीखे क्योंकि आप
1: क्योंकि आपने
0: करना सीखे।
1: एग्जैक्टली,
0: क्या बात है, सुनते
2: हम।

0: डॉक्टर साहब, बहुत एक्सट्रीम केसेस की अब हम बात करना चाहते हैं। जो आपने कहा कि इतने महंगे दांत हैं और फ्री में मिले हैं तो हम कदर नहीं करते, इसको जरा तफसील से बताइए कि कितने लाखों रुपए लोग खर्च करते हैं अपने दांतों को वापस लाने के लिए, जब पूरा डेंचर बदलना पड़ता है।
1: हाँ जी, अभी जैसे हमने बात की कि एक दांत भी अगर आपका निकला है तो उसको इमीडिएटली रिप्लेस करवाना चाहिए, क्योंकि उसका फंक्शन रेस्टोर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
0: बिल्कुल
1: ठीक है, तो वैसे ही ऑप्शन क्या क्या है उसके, पहले तो ये बताऊंगा कि वहां पे मुंह में दो ही कड़क स्ट्रक्चर है जिनके ऊपर हम लोग सपोर्ट लेके परमानेंट वाला फिक्स दांत दे सकते हैं। एक तो खुद दांत अपने, या फिर हड्डी जिसमें दांत बैठे हुए, जबड़े की हड्डी। तो दांतों के ऊपर सपोर्ट लेके जो चीज की जाती है उसको बोलते हैं ब्रिज। जैसे बीच में एक दांत नहीं है तो आगे के एक दांत को छोटा किया जाता है, पीछे के एक दांत को छोटा किया जाता है, और तीन दांत तीन
0: लेवल में लाए जाते
1: हैं। एग्जैक्टली, और तीन कैप एक साथ बिठाए जाते हैं, जिस चीज को बोलते हैं ब्रिज, क्योंकि जो बीच वाला है वो ब्रिज है।
0: करेक्ट,
1: दो दांतों के सपोर्ट पे। ये हो गया एक ऑप्शन। अभी उसमें भी अलग अलग टाइप के कैप्स आते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपके दांत कैसे हैं, कौन से तरीके का कैप आपके केस में बेटर रहेगा, या आपके डेंटिस्ट आपको अच्छे से सलाह दे सकते हैं।
0: इसमें दांतों का प्रेशर भी काम करता है।
1: एग्जैक्टली, आपका बाइट फोर्स कितना है,
0: जी,
1: आपके फूड हैबिट्स कैसे हैं, दांतों का अरेंजमेंट कैसा है।
0: यस,
1: क्योंकि जैसे लंबे स्पैन वाले ब्रिज होते हैं, तो अगर आपके अपोजिट साइड के दांत नीचे के जबड़े का कर रहे, तो ऊपर साइड के दांत अगर आपके आड़े टेढ़े हैं तो ब्रिज के ऊपर सीधा फोर्स नहीं पड़ने वाला है, आड़ा टेढ़ा फोर्स पड़ेगा। तो उसके लिए कौन सा मटेरियल ज्यादा सूटेबल रहेगा,
0: yes.
1: वो डिपेंड करता है आपके अरेंजमेंट के ऊपर, क्योंकि वो फोर्स जहां पे पड़ेगा वहां पे अगर टूटते रहेगा तो क्या होता है ना, ये भी एक चीज है कि एक दो बार टूटता है तो पेशेंट खुद ही गिवअप कर देते हैं और नहीं करना है बोल के छोड़ देते हैं। लेकिन यहां पे उनको ये चीज समझनी जरूरी है कि हर बार महंगी चीज ही अच्छी होगी जरूरी नहीं है, और हर बार सस्ती चीज ही आपके केस में काम करेगी वो भी जरूरी नहीं है। तो केस टू केस डिपेंड करता है कि क्या आपके केस में सबसे बेस्ट होगा, वो आपके डेंटिस्ट आपको बेस्ट तरीका बता सकते हैं। अभी दूसरा तरीका जो है रिप्लेसमेंट का, उसको बोलते हैं डेंटल इम्प्लांट्स, जहां पे हड्डी में एक इम्प्लांट डाला जाता है। एक स्क्रू जैसी चीज होती है, एक्चुअली उसका डिजाइन स्क्रू जैसा होता है, एक्चुअल में स्क्रू नहीं होता। वो डिजाइन स्क्रू की तरह देने का कारण ये होता है कि उतना ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल होता है हड्डी को उसके साथ पकड़ बनाने के लिए। तो इसके लिए वो इम्प्लांट जाता है हड्डी के अंदर, उसके ऊपर एक अटैचमेंट लगती है जिसको अबटमेंट बोलते हैं, और उसके ऊपर कैप लगाई जाती है। ये सबसे बेस्ट तरीका है आज की तारीख में दांत बिठाने का, क्योंकि इस तरीके में नेचुरली जैसे दांत फंक्शन करता है वैसे ही दांत हम लोग रिस्टोर कर रहे हैं। और अभी टेक्नोलॉजीज इतनी आ चुकी है, ये तो एक इम्प्लांट की मैं बात कर रहा हूं, अभी तो पूरे मुंह के इम्प्लांट्स 2 दिन में 3 दिन में हम लोग केसेस खत्म करते हैं। पूरे मुंह के दांत हम लोग इमीडिएट इम्प्लांट करके पेशेंट को 2 दिन में फाइनल दांत दे देते हैं।
0: बहुत जल्दी होने लगा ये,
1: बहुत जल्दी होने लगा है। हाँ, खर्चीली चीजें हैं। अभी इसका खर्चा अगर मैं बताऊं तो लाखों में जाता है
0: बाकायदा,
1: क्योंकि जो हड्डी में स्क्रू जा रहा है वो बना होता है टाइटेनियम से,

0: दादा दादी को वगैरह देखा होगा पहनते हुए, निकालते हुए, वो निकाल के डब्बे में रखते हैं दांत, तो वो चीज आज की तारीख में ज्यादातर आउटडेटेड हो चुकी है। वो चीज वही पुरानी जनरेशन ही पहनना चाहती है जो पहले से पहन रहे हैं, लेकिन वो चीज का ड्रॉबैक बहुत सारा है। एक, जैसे हमने दांतों के ऊपर फोर्स की बात की थी, 120 to 130 न्यूटन सेंटीमीटर का प्रेशर रहता है, डेंचर में आपको प्रेशर रेस्टोर होता है 5 से 15 का,
1: बहुत कम है।
0: बहुत कम है। वही हम लोग इम्प्लांट के साथ रेस्टोर कर पाते हैं 110 से 115 तक,
1: इक्विवेलेंट है,
0: ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट। तो इसके लिए डेंचर पे आप बहुत सारी चीजें नहीं खा पाते हो।
1: पर इम्प्लांट बहुत महंगा होता है।
0: इम्प्लांट
1: सॉरी
0: बहुत महंगा होता है,
1: जी।
0: डेंचर उसके मुकाबले काफी सस्ते होते हैं।
1: तो कुल मिलाकर डॉक्टर साहब, आज की इस पूरी बातचीत का जो सबक है वो ये है कि दांत बहुत बेशकीमती हैं, और जैसे कि आपने कहा कि चूंकि मुफ्त में मिले हैं तो लोग उनकी केयर, उनकी कदर नहीं करते, तो रोजमर्रा की स्थिति में इन दांतों को बचाकर रखना जरूरी है। अब अगर मैं आपको कहूं लास्ट में एक वन लाइनर दे दीजिए अपने मरीजों को, सुनने वालों को, तो आप वो दांतों की केयर के लिए क्या वन लाइनर देंगे?
0: स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज। क्यों? क्योंकि दांत अच्छे हैं तो आप खुल के स्माइल भी करोगे, और खुल के
1: बिल्कुल,
0: स्माइल करोगे तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी।
1: बहुत बहुत शुक्रिया,
0: थैंक यू सो मच सर।
1: ये थी जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश घुगे से यूनुस खान की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
5: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। अभी तक आप FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर विविध भारती के प्रसारण सुन रहे थे। संध्या के 5 बजे हैं। मीडियम वेव और FM पर हमारी दूसरी सभा अब एक साथ आरंभ हो रही है। इस सभा का आरंभ आज शाम के साथ।

सर्विसेज यानी आपके आवाज की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आज शाम में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कीजिए स्वीकार नमस्कार रेणु तिवारी की ओर से। घर अपना छोड़े हो गए हैं कई जमाने, अब हवाएं भी नापती है मेरे पैमाने। घर में बिखरे हैं कुछ अधूरे सपने, छोड़ आए हैं घर हम शहर में कमाने। खुद ही रूठे, खुद ही दिल को तसल्ली भी थी, अब जमाना नहीं रहा कि कोई आए हमें मनाने।

हम सबकी जिंदगी में कभी न कभी ऐसा मौका जरूर आता है जब हमें सपनों और अपनों में से किसी एक को चुनना पड़ता है। कभी सपनों का पीछा करते हुए तो कभी अपनों की जिम्मेदारी उठाने के लिए हमें परदेश जाना पड़ता है। एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले रास्ते पर ना जाने कितने ही लोग अपने सपनों को लेकर सफर पर निकलते हैं। पीछे रह जाते हैं वो अपने जो हमेशा हमारी सलामती और लौटने की दुआ करते हैं। कितनी अजीब कश्मकश है जिंदगी की। अगर सपनों का हाथ थामे तो अपनों का साथ छूट जाता है। इसलिए जरूरी है कि सुबह का गया मुसाफिर शाम को घर लौट आए, उस घर में जहां उसके अपने उसके लौटने का इंतजार कर रहे हैं। अगर प्यार से तुमने पुकारा ना होता, मेरा लौटना फिर दोबारा ना होता, गई डूब होती ये कश्ती हमारी, अगर अपनों की दुआओं का सहारा ना होता, न आते अगर तुम मेरी जिंदगी में, ये सुंदर जहां फिर हमारा ना होता।

जो रास्ते हमें घर से दूर लेकर जाते हैं, वही रास्ते अपने घर अपनों के पास लाते भी हैं। इन रास्तों पर जो गुजरे वो सुरक्षित रहें, हम सबका यही प्रयास हो। आप सुरक्षित रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ आज शाम रेणु तिवारी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है, मीडियम वेव और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 5:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है युवा साथियों के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने फेवरेट प्रोग्राम युवाणी में। मैं हूं आपकी पसंदीदा होस्ट और दोस्त इकरा शाहिद, और मेरे साथ हैं,
1: और मैं हूं आपकी रेडियो मेजबान हुमा सलीम आफाकी।
0: तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और शाम की चाय का मजा लेते हुए सुन रहे होंगे अपना फेवरेट प्रोग्राम युवाणी यानी हमें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं इन्हें आज का सवाल।
1: किस राज्य में भारत का पहला निजी मेडिकल म्यूजियम खुला है। साथियों, सवाल एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिएगा। किस राज्य में भारत का पहला निजी मेडिकल म्यूजियम खुला है।
0: और इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपको जाना है हमारे आकाशवाणी रामपुर के फेसबुक पेज की आज की अपडेटेड पोस्ट के कमेंट सेक्शन में, और अपना सही जवाब टाइप कर हमें शेयर कर दीजिए। सही जवाब देने वाले श्रोताओं के नाम हम बताएंगे प्रोग्राम की आखिर में।
1: दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है संयुक्त वायु रक्षा सिद्धांत। ये भारत की सुरक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है।
0: जी हाँ, सबसे पहले समझते हैं कि वायु रक्षा क्या होती है। वायु रक्षा का अर्थ है देश के आसमानों को दुश्मनों के विमान, मिसाइलों और ड्रोन जैसे खतरों से सुरक्षित रखना।
1: और संयुक्त का मतलब है मिलकर काम करना, यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना एक साथ समन्वय बनाकर देश की हवाई सुरक्षा को मजबूत करते हैं।
0: आज के समय में युद्ध के तरीके बदल रहे हैं। आधुनिक तकनीकें, ड्रोन और मिसाइल के बढ़ते उपयोग के कारण सुरक्षा व्यवस्था को भी आधुनिक बनाना आवश्यक हो गया है।
1: इसी उद्देश्य से संयुक्त वायु रक्षा सिद्धांत पर बल दिया जा रहा है, ताकि तीनों सेनाएं आपस में सूचनाएं साझा कर सकें और किसी भी खतरे का तेजी से दबाव दे सकें।
0: इस व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है, साथ ही संसाधनों का बेहतर उपयोग भी संभव हो पाता है।
1: दोस्तों, ये सिद्धांत हमें ये भी सिखाता है कि किसी भी बड़ी चुनौती का सामना मिलकर करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है।
0: युवाओं के लिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा देश के विकास का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आज रक्षा क्षेत्र की तकनीक, साइबर सुरक्षा, ड्रोन और आधुनिकता हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि हम अपने देश का हर तरीके से बचाव करें और हमेशा प्रिपेयर रहें।
1: दोस्तों, भारत लगातार अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे प्रयास देश को और अधिक सुरक्षित तथा मजबूत बनाते हैं।
0: और ये नीति सिर्फ हमारी देश की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए नहीं है, बल्कि हमें तकनीकी तौर से भी आत्मनिर्भर बनाने का एक प्रयास है।
1: साथियों, इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का।

होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बनें।

0: आवाज की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: सदैव ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम युववाणी में। सदैव बढ़ते हैं सेगमेंट कुछ खास है आज की तरफ और जानते हैं कि आज का दिन हमारे लिए क्या नया लाया है।
2: कुछ ख्वाबों की बात,
3: कुछ अपनों का साथ,
2: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
3: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
2: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
3: वाकई कुछ खास है आज,
2: कुछ खास है आज।
4: आप सभी का हमारी उस सेगमेंट में जो आप ही की तरह खास है, कुछ खास है आज।
1: दोस्तों, कुछ खास है आज की सेगमेंट में हम बात करेंगे दो ऐसे महत्वपूर्ण अवसरों की जो हमारे जीवन, स्वास्थ्य और संस्कारों से गहराई से जुड़े हुए हैं।
4: आज 1 जून है और आज पूरी दुनिया में हम मना रहे हैं विश्व दूध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे और वैश्विक अभिभावक दिवस यानी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स।
1: दोस्तों, एक ओर दूध हमें स्वस्थ और सशक्त बनाता है तो दूसरी ओर माता पिता हमारे व्यक्तित्व, चरित्र और भविष्य के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं।
4: तो आइए शुरुआत करते हैं विश्व दूध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे से।
1: दोस्तों, जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो अक्सर एक गिलास दूध, चाय या कॉफी के माध्यम से करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दूध को संपूर्ण आहार क्यों कहा जाता है?
4: दरअसल दूध प्रकृति के द्वारा दिया गया एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें शरीर के विकास के लिए आवश्यक लगभग सभी प्रमुख पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B12, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस की मात्रा भी पाई जाती है।
1: इसी अहमियत को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र की संस्था FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष 2001 में वर्ल्ड मिल्क डे की शुरुआत।
4: इस दिवस का उद्देश्य केवल दूध के पोषक संबंधों और लाभों के बारे में बताना नहीं है बल्कि डेयरी उद्योग, पशुपालकों और किसान के योगदान को भी सम्मानित करना है।
1: दोस्तों, भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। ये उपलब्धि लाखों पशुपालकों और ग्रामीण परिवारों की मेहनत का परिणाम है।
4: आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में दूध उत्पादन ने न केवल पोषण के क्षेत्र में बल्कि महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: कई ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं डेयरी गतिविधियों से जुड़कर परिवार की आय बढ़ा रही हैं। इस प्रकार दूध केवल भोजन नहीं बल्कि आजीविका का साधन भी है।
4: भारत में दूध क्रांति की बात करें तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन का नाम ना आए ऐसा संभव नहीं है।
1: डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। उनके प्रयासों से देश में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम शुरू हुआ जिसने भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया।
4: आज अमूल जैसी सहकारी संस्थाएं लाखों किसानों की आय बढ़ा रही है और भारत में डेयरी सफलता की कहानी पूरी दुनिया का उदाहरण बन चुकी है।
1: दोस्तों, युवा अवस्था शरीर और मस्तिष्क के तीव्र विकास का समय होती है, ऐसे में पोषण की आवश्यकता भी अधिक होती है।
4: दूध में मौजूद कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है, प्रोटीन मांसपेशियों का विकास में सहायता करता है और विटामिन शरीर को रोग मुक्त बनाते हैं।
1: आजकल कई युवा जंक फूड और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की ओर अधिक आकर्षित होते हैं जिससे पोषण असंतुलित हो सकता है।
4: ऐसे में दूध, दही, पनीर, छाछ और लस्सी जैसे विकल्प स्वास्थ्य के लिए कहीं अधिक लाभकारी हैं।
1: तो दोस्तों, विश्व दूध दिवस हमें केवल दूध पीने की सलाह नहीं देता बल्कि संतुलित पोषण, स्वस्थ जीवन शैली और किसानों के योगदान को समझने का अवसर भी देता है।
4: और हम इस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि एक स्वस्थ युवा ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकता है।
1: दोस्तों, अब बात करते हैं उस रिश्ते की जिसकी कोई तुलना नहीं, यानी माता पिता का रिश्ता।
4: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2012 में 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के रूप में मनाने का निर्णय लिया था।
1: इस दिवस का उद्देश्य बच्चों के जीवन में माता पिता और अभिभावकों की महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मान देना है।
4: हम चलना, बोलना, सीखना और जीवन के मूल्यों को समझना सबसे पहले अपने माता पिता से ही सीखते हैं।
1: किसी भी व्यक्ति की सफलता के पीछे उसके माता पिता के त्याग, संघर्ष और समर्पण की कहानी छिपी होती है।
4: वह केवल हमारी जरूरतों को ही पूरा नहीं करते बल्कि कठिन परिस्थितियों में हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ाते हैं।
1: दोस्तों, आज तकनीक और सोशल मीडिया के दौर में संवाद के तरीके भले ही बदल गए हों,
4: लेकिन परिवार का महत्व आज भी उतना ही है जितना पहले था। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का भी मानना है कि परिवार का सहयोग व्यक्ति के मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है।
1: एक ऐसा युवा जिसके परिवार से अच्छे संबंध हो, वे चुनौतियों का सामना अधिक सकारात्मक तरीके से कर पाता है।
4: कई बार हम सोचते हैं कि माता पिता के लिए कुछ बड़ा करना चाहिए, लेकिन वास्तव में छोटी छोटी बातें भी बहुत मायने रखती हैं।
1: जैसे कि उनके साथ समय बिताना, उनकी बातों को ध्यान से सुनना, घर के कामों में उनकी मदद करना और साथ ही उनकी सेहत का भरपूर ख्याल भी रखना।
4: आज जब अधिकांश युवा मोबाइल और इंटरनेट में व्यस्त रहते हैं, तब माता पिता के साथ कुछ समय बिताना उनके लिए सबसे बड़ा उपहार हो सकता है।
1: दोस्तों, किसी विचारक ने कहा है कि माता पिता वे जड़ हैं जिनसे हमारी पहचान का पेड़ खड़ा होता है।
4: वास्तव में माता पिता का प्रेम निस्वार्थ होता है। वे हमारी सफलता में खुश होते हैं और असफलता में हमारा सहारा बनते हैं।
1: आज के युवाओं के सामने करियर, शिक्षा और प्रतिस्पर्धा की कई चुनौतियां हैं।
4: लेकिन जितना महत्वपूर्ण अपने सपनों को पूरा करना है, उतना ही महत्वपूर्ण अपने माता पिता के प्रति कर्तव्यों को भी निभाना है।
1: सम्मान, संवाद और सहयोग, दोस्तों ये तीनों बातें परिवार को मजबूत बनाती हैं।
4: दोस्तों, अगर हम आज के दोनों विषयों पर ध्यान दें तो एक रोचक समानता दिखाई देती है।
1: दूध हमारे शरीर को पोषण देता है और माता पिता हमारे व्यक्तित्व को।
4: दूध शारीरिक विकास का आधार है और माता पिता नैतिक एवं भावनात्मक विकास का।
1: एक स्वस्थ शरीर और मजबूत संस्कार मिलकर एक सफल और जिम्मेदार नागरिक का निर्माण करते हैं।
4: दोस्तों, विश्व दूध दिवस के अवसर पर आइए संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने का संकल्प,
1: और वैश्विक अभिभावक दिवस पर अपने माता पिता तथा अभिभावकों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करें।
4: दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक छोटी सी इल्तिजा है। आज ही के दिन कुछ खास पल निकालिए, अपने माता पिता से बात कीजिए, उनका धन्यवाद कीजिए और उनके साथ कुछ समय बिताइए,
1: और साथ ही उन किसानों और पशुपालकों के प्रति भी आभार व्यक्त कीजिए जिनकी मेहनत से पोषण हमारे घर तक पहुंचता है।
4: दोस्तों, कुछ खास है आज में आज बस इतना ही।

0: कुछ ख्वाबों की बात,
1: कुछ अपनों का साथ,
0: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
1: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
0: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
1: वाकई कुछ खास है आज,
0: कुछ खास है आज।

बाघ को जन्म देने वाला बागवान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साय से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा।

0: श्रोताओं सही कहा है कि माँ बाप वो बागबान हैं जो आपको सींचते हैं, जो आपको पानी देते हैं, अपने आप को सैक्रिफाइस करते हैं और एक छोटे से पौधे की तरह आपको तैयार कर देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेड़ बनने के बाद हम अपने माँ बाप के संघर्ष, उनके सैक्रिफाइसेस को भूल जाते हैं। तो उन सभी औलादों से एक छोटी सी इल्तिजा है कि हर माँ बाप ने आपको बड़ा करने के लिए अपनी ज़िंदगी ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी है और क्या क्या संघर्ष किए हम उनका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो आज के दिन जाइए, अपने मम्मी पापा के साथ बैठिए, उन्हें हक कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए, आप देखेंगे कि आपको कितना सुकून मिलेगा और आपके इस छोटे से जेस्चर से उनका दिन बन जाएगा।
1: और साथियों, इसी के साथ अब वक्त हो गया है सेगमेंट आज की बातचीत का, जिसमें बात कर रही हैं इकरा डॉक्टर मुनज्जा आरिफ खान से।
2: श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आपकी और हमारी फेवरेट सेगमेंट आज की बात युवाओं के साथ में। और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास युवा साथी जुड़ी हैं, डॉक्टर मुनज्जा आरिफ खान। चलिए जानते हैं उनके बारे में कुछ।
3: हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मुनज्जा आरिफ और मैं यूपी रामपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरी स्कूलिंग मेरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई है और मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया है न्यू दिल्ली जामिया हमदर्द, एंड मैंने करा है बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी आज के ज़माने में लोगों को आज भी लगता है कि सिर्फ शायद मसाज है, इट इज ऑल अबाउट एक्सरसाइजेस एंड मेंटेनिंग योर लाइफ।
2: ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि वाकई में ये आपके लाइफस्टाइल को सुधारने का एक तरीका है। तो डॉक्टर मुनज्जा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी जर्नी की शुरुआत किस तरीके से हुई।
3: जब मैंने अपना 2016 में 12 पास आउट किया सेंगरी, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता था कि मुझे क्या करना है, किस फील्ड में जाना है, क्या चूज करना है। लेकिन मेरा मोटिव एक ही था कि मुझे MBBS करना है। जितने मेरे बैचमेट्स थे और हम सब ने साथ में AIIMT का एग्जाम दिया विद गॉट चांस, तब जब मुझे पता भी नहीं था कि मेरे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज वेट कर रही हैं। हम लोगों ने नीट के एग्जाम्स दिए जिसके लिए मैं बहुत लकी थी और मेरी अच्छी स्कोर आए। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो फिजियोथेरेपी कर लेते। फिजियोथेरेपी के लिए बहुत सारे कॉलेजेस थे लेकिन मुझे लगता था कि मैं फिजियोथेरेपी एक ऐसे कॉलेज से करूँ जहाँ मेरे लिए और न्यू

0: अपॉर्चुनिटीज खुल जाए, जहाँ से मुझे एक्सपोजर मिले, जहाँ मुझे लगे कि हाँ आगे मुझे अपनी लाइफ में जाके कैसे पेशेंट्स को हैंडल करना है, कैसे ट्रीट करना है. इसीलिए मैंने जामिया हमदर्द चूज करा. साइंस में मुझे हमेशा से इंटरेस्ट था और मुझे हमेशा से ये जानना था ह्यूमन बॉडी आखिर काम करती कैसे, और मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग लगता था ये सब कुछ. इसीलिए मैंने अपने 10th के बाद साइंस चूज करी. उसके बाद जामिया हमदर्द से जब मैंने बीपीटी किया, मुझे उसका एक्सपोजर बहुत ही अच्छा लगा. क्लिनिकल पोस्टिंग, न्यू पेशेंट, इंटर्नशिप के दौरान ही रियलाइज हुआ फिजियोथेरेपी सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, ये तो लोगों को लाइफ क्वालिटी वापस लाने का काम है.
1: जिस तरीके से आपने अपनी जर्नी की शुरुआत बताई है कि फर्स्ट चॉइस नहीं होकर भी आपके लिए बीपीटी एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन स्टार्ट हुआ, उसी तरीके से आजकल के जमाने में भी 12th पास स्टूडेंट काफी कंफ्यूज रहते हैं कि वो MBBS के लिए जाएं, नीट की प्रिपरेशन करें या किसी और कोर्स में जाएं. तो अगर वो आपके फुटस्टेप्स फॉलो करना चाहें तो वो किस तरीके से बीपीटी में अपना करियर बना सकते हैं?
0: मेरा तो एक ही मानना है कि जो भी आप फील्ड चूज करो उसको दिल से चूज करो. लाइफ आपको बहुत सारी चीजें सिखाती है. अगर अपने बारे में बात करूं कि मैंने फिजियोथेरेपी किस तरीके से स्टार्ट करी या क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले चीज है कि बहुत ही ज्यादा रिसर्च. सबसे पहले आप अपने कॉलेजेस का देख लो, आपकी रैंक क्या आती है. आप पहले नीट का एग्जाम दो, उसके बाद आप अपनी रैंक देख लो, कोर्स देखो, सारे कॉलेजेस के क्राइटेरिया के बारे में आप देखो, सर्च करो, अपने गाइड खुद से पूछो, आपके पेरेंट्स हैं, जो भी आपको लगता है कि कोई आपको इस चीज में सपोर्ट कर सकता है, क्या क्या फील्ड्स हैं. क्योंकि फिजियोथेरेपी सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने फिजियोथेरेपी कर ली उसके बाद कुछ नहीं, उसके आगे भी आपके लिए बहुत ज्यादा लाइन्स है. आप चाहो न्यूरो ले सकते हो, आप चाहो कार्डियो ले सकते हो, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी आप चाहो वो चूज कर सकते हो. और फिजियोथेरेपी के लिए हर जगह कॉलेजेस में,
1: जैसे कि अभी आपने स्कोप और चैलेंजेस हाईलाइट किए जो आपने खुद भी फेस किए थे, तो अगर कोई और स्टूडेंट है उसको समझ नहीं आ रहा है कि इंडिया में क्या उसका स्कोप है, उसने फिजियोथेरेपी कर ली लेकिन अब वो अब्रॉड जाना चाहता है या इंडिया में ही रुके, तो आपको क्या लगता है इस फील्ड का क्या स्कोप है? क्योंकि ज्यादातर लोग इस बारे में अवेयर नहीं है, उन्हें लगता है कि बस ये एक्सरसाइज कराने का प्रोफेशन है.
0: नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि स्कोप सिर्फ यहाँ पर ही है. अगर आप बाहर जा रहे हो, बाहर तो इसका बिल्कुल ही अलग स्कोप है, मतलब बहुत ज्यादा एक्सीलेंट. अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो बहुत सारी कंट्रीज हैं, हर कंट्री का अपना लाइसेंसिंग प्रोसीजर है, हर कंट्री का अपना लाइसेंसिंग एग्जाम है, उनके कुछ कुछ क्राइटेरियाज हैं. जॉब हंटिंग इज क्वाइट अ डिफिकल्ट पार्ट, लेकिन ऐसा नहीं है, इट इज जस्ट अबाउट पेशेंस. अगर आपके अंदर थोड़ा सा पेशेंस है, इट विल टेक 2 to 3 years, बिकॉज उन लोगों को थोड़ा एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गल्फ कंट्रीज में जाना चाहते हो तो ऑलमोस्ट ऑल द गल्फ कंट्रीज इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, दुबई, कतर, कुवैत, इन सबका एक ही प्रोसीजर है, इनका लाइसेंसिंग एग्जाम, इनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस. मेन है आपका वहाँ पे जॉब हंटिंग, लेकिन वहाँ पे बहुत ज्यादा स्कोप है, अच्छी सैलरीज प्रोवाइड करते हैं. कुछ कुछ गल्फ कंट्रीज इवन अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज वो लोग प्रोवाइड करते हैं. आप इतना वहाँ पे रह के अर्न कर सकते हो कि आप वहाँ पे इजिली सर्वाइव कर जाओ
1: जी.
0: और अगर हम अगर गल्फ कंट्रीज से हटकर बात करें, जैसे यूरोपियन कंट्रीज हो गई, यहाँ के लिए भी इनका ही लाइसेंसिंग एग्जाम है. ऐसा नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल आपने इस कंट्री के लिए भी आप अप्रोच कर रहे हो, इधर भी एक कंट्री टारगेट करो, वहाँ के लिए आप पूरा उसका रिसर्च करो कि कहाँ पे कितनी सैलरी है, कितने क्लिनिक, कौन कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजीज है वहाँ पे. क्योंकि फिजियोथेरेपी ऐसा नहीं है कि एक ऐसा प्रोफेशन है कि वो बस जिस ट्रैक से स्टार्ट हुआ तो आज उसी ट्रैक पर. नहीं, डे बाय डे एडवांस टेक्निक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, न्यू मशीन्स, न्यू मोडालिटी, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप अच्छे से वहाँ पे अर्न कर सकते हो, रह सकते हो. अगर आपको अपने घर पे पैसे भेजने हैं, आप अपने घर वालों को पैसे भेज सकते हो. होप तो बहुत ज्यादा है बाहर भी. और अगर आपको इंडिया में रहकर करना है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ बैचलर्स करने के बाद नहीं कमा सकते हो. बैचलर्स करने के बाद अच्छे पैसे हैं, लेकिन इफ यू आर प्लानिंग टू गो टू एकेडमी, देन यस, आप लोगों को उसके लिए मास्टर्स करना पड़ेगा, PhD करना पड़ेगा. इट इज ऑल अबाउट प्लानिंग एंड गुड रिसर्च.
1: तो जो यूथ हमारे अभी सुन रहे हैं और आपका पाथ फॉलो करना चाहते हैं या अभी प्लस टू में हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा?
0: माई मैसेज फॉर यूथ इज टोटली सिंपल, चूज योर फील्ड विद योर हार्ट, नॉट जस्ट बाय फॉलोइंग द क्राउड. भीड़ के साथ मत जाओ कि ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो हम वही कर लेते हैं. अपनी फील्ड है, जो आप चाहते हो उसी फील्ड में आप जाओ, पेशेंस रखो, हैंड्स ऑन स्किल्स रखो और कीप लर्निंग.
1: बहुत अच्छी बात कही आपने कि डीप लर्निंग और थोड़ा पेशेंस और वो करना चाहिए कि जिसमें आपका दिल खुश हो. तो ये थी हमारे साथ आज की हमारी स्पेशल गेस्ट डॉक्टर मनाजा, जिन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी फिजियोथेरेपी किस तरीके से एक बेटर करियर ऑप्शन हो सकता है. हमारी आज की सेगमेंट आज की बात युवाओं के साथ आज बस इतना ही.
2: साथियों, अभी आपने सुना सेगमेंट आज की बातचीत में डॉक्टर मुनज़्ज़ा आरिफ खान को, जिनसे बात कर रही थी इकरा. और कार्यक्रम में बढ़ेंगे आगे इस गीत को सुनते हुए.

साथियों, अब वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट करियर डायरी का, जहां हम बात करते हैं अलग अलग करियर विकल्पों की, उनसे जुड़ी संभावनाओं की और उन रास्तों की जो आपके सुनहरे भविष्य की ओर ले जाते हैं। तो तैयार हो जाइए अपने सपनों को नई उड़ान देने के लिए, क्योंकि शुरू होने जा रही है आपकी अपनी करियर डायरी। दोस्तों, करियर डायरी के स्टार्टअप सेगमेंट में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस की जो न सिर्फ आपकी आर्टिस्टिक स्किल्स को निखारता है, बल्कि आपको हाई एंड फैशन इंडस्ट्री में एक प्रोफेशनल ब्रांड बनाने का मौका भी देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आभूषण डिजाइनिंग बिजनेस की। क्या आपने कभी सोचा है कि गले का हार, कानों के झुमके या हाथों की खूबसूरत अंगूठियाँ केवल आभूषण ही नहीं, बल्कि किसी डिजाइनर की कल्पना और मेहनत का परिणाम होती है। आज आभूषण डिजाइनिंग युवाओं के लिए एक शानदार करियर और स्टार्टअप अवसर बनकर उभरा है। अगर आपके अंदर रचनात्मकता है, नए डिजाइन बनाने का शौक है और फैशन की अच्छी समझ है, तो ये क्षेत्र आपके लिए बेहतरीन साबित

0: हो सकता है। आप अपनी खुद की ज्वेलरी ब्रांड शुरू कर सकते हैं या फिर कस्टमाइज ज्वेलरी डिजाइन करके ऑनलाइन और ऑफलाइन ग्राहकों तक भी पहुंच सकते हैं। दोस्तों आजकल कस्टमाइज यूनिक और ट्रेंडी ज्वेलरी की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। शादियां, त्योहार, एंगेजमेंट या फिर प्रीमियम फैशन लुक के लिए लोग तैयार डिजाइन नहीं बल्कि पर्सनलाइज डिजाइन चाहते हैं। अगर आपको ड्रॉइंग, 3D मॉडलिंग या क्रिएटिव डिजाइन में रुचि है तो ये बिजनेस आपके लिए एकदम है। दोस्तों इस क्षेत्र में सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है रचनात्मक सोच, डिजाइनिंग कौशल और ग्राहकों की पसंद को समझने की क्षमता। यदि आप अपने हुनर को सही दिशा दें तो एक छोटा सा आइडिया भी बड़े स्टार्टअप का रूप ले सकता है। तो आइए जानते हैं कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए क्या चाहिए। सबसे पहले प्रोफेशनल ट्रेनिंग लें। बिना सॉलिड नॉलेज के मार्केट में टिकना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए आप देश के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे इग्नू, गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से ज्वेलरी डिजाइन में डिप्लोमा कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी यानी IIGJ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इंडियन डिप्लोमा इंस्टीट्यूट और ज्वेलरी डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री कोर्स कर सकते हैं। कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी ज्वेलरी डिजाइनिंग के शॉर्ट टर्म कोर्स उपलब्ध कराते हैं जिनसे घर बैठे प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि अपने बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करें। तो अब बारी है ग्राहकों को आकर्षित करने की। इसके लिए आप इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया हैंडल्स पर रील्स बनाकर अपलोड कर सकते हैं। जब आप ज्वेलरी डिजाइन बना रहे हो तो उसकी छोटी सी एस्थेटिक्स रील यानी मेकिंग वीडियो बनाए और इंस्टाग्राम पर सुंदर फोटोज वगैरह पोस्ट करें। साथियों अब बात करते हैं कि इस बिजनेस में आप कितना अर्न कर सकते हैं। शुरुआत में फ्रीलांस 25,000 से 60,000 प्रति माह आप अर्निंग कर सकते हैं। अपना ब्रांड चलाने पर महीने में 1.5 लाख से 5 लाख तक आप अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों आभूषण डिजाइनिंग सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि अपनी क्रिएटिविटी को गोल्ड में बदलने का हुनर है। अगर आपके अंदर डिजाइनिंग की आग है, अगर आप कुछ नया और रचनात्मक करना चाहते हैं तो आज ही किसी अच्छे कोर्स में एडमिशन लें, पोर्टफोलियो बनाएं और अपने ब्रांड की नींव रखें। क्योंकि ज्वेलरी डिजाइनिंग सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि अपने हुनर को दुनिया के सामने लाने का जरिया है, क्योंकि हुनर और मेहनत मिलकर सपनों को हकीकत में बदल देते हैं। सद्यो करियर डायरी के सब सेगमेंट स्टार्टअप में बस इतना ही।
1: दोस्तों स्वागत है आपका करियर डायरी के सब सेगमेंट में, जहां आज हम आपको बताने वाले हैं जॉब अपडेट्स, जहां हम लेकर चलते हैं आपके लिए ताज़ा जॉब अपडेट्स। चलिए बात करते हैं आज की हमारी सरकारी नौकरियों की जो आपकी ज़िंदगी को एक सुनहरा मौका देने वाली हैं। हमारी पहली जॉब अपडेट है अलाहाबाद हाई कोर्ट RO ARO CA नोटिफिकेशंस, जहां पर टोटल पदों की संख्या है 543, रिव्यू ऑफिसर के लिए 138 पोस्ट अवेलेबल हैं, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए 380 पोस्ट अवेलेबल हैं, कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए 25 पोस्ट हैं। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीमर हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश पे कंप्यूटर टाइपिंग की कमांड आपकी होनी चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट। मिनिमम एज क्राइटेरिया का बात करें तो 21 साल है और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 35 ईयर्स है। स्पेशल कैटेगरीज को एज रिलैक्सेशन भी मिल सकता है।

हमारी नेक्स्ट जॉब अपडेट है दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB की तरफ से, जहां पर टोटल पदों की संख्या लगभग 2000 है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है 16 जून से और लास्ट डेट अप्लाई करने की है 15 जुलाई। जनरल कैटेगरी के लिए और OBC और EWS कैटेगरी के लिए फ़ीस 100 रुपये है। ST SC और फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी के लिए कोई फ़ीस नहीं है। एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो 18 से 21 साल है पोस्ट वाइज और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 30 से 35 साल है। एज रिलैक्सेशन DSSB क्राइटेरिया के हिसाब से आप लोगों को मिल सकता है। इस पर अप्लाई करने के लिए आपको जाना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर और एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है 16 जून से।

श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जॉब अपडेट्स, तो कोशिश कीजिएगा कि आप इन्हें मिस नहीं किए और जल्दी से जाकर इन वेबसाइट्स पर अप्लाई कीजिए और अपनी नौकरी का अवसर अपने हाथों से मत गवाइए। चलिए बढ़ते हैं हमारे इस प्यारे से सॉन्ग की तरफ जो आपको मोटिवेट करेगा इन जॉब्स के लिए अप्लाई करने को।

0: ज़ाकिर मंसूरी, अल्ताफ़ हुजरे, नवी हसन अब्बासी, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, सुनील पाठक, रामाशरण, मिसबा शमसी, शमसुल कमर राही, राम कुमार रेवर, सदाशिव थोरात, अनोखे लाल, गंगा सिंह रावत, लालगिरी गोस्वामी, प्रवीण सोनी, फागुराम यादव, हीरामणि वर्मा, हाजी गफ्फार खान, नंदन कुमार, निसार सलमानी, विनोद मुनत, भवन प्रकाश, संजय ढींगिया, सुरेश जायसवाल, बी एल ढाकर, मोहम्मद फरमान, राष्ट्रपाल गज भैये, विजय सुरालकर, मोहम्मद आमिर अंसारी, विठल सुरोशे, अरविंद कुमार, मोहम्मद सईद अब्बासी, इरशाद अहमद, मोहम्मद जाहिद अली, अभिजीत गंगवार, मोहम्मद दानी सिद्दीकी, सत्येंद्र चंसोलिया पंजोलिया, शकील अहमद इदरीसी, लाल मोहम्मद अंसारी, रवि कुमार राहुल, बीपी गौतम, शाहरुन नूर अंसारी, मुजफ्फर अली खान, भाई रफत साहब, दुर्गा राम साहू और मुकेश कश्यप।
1: ये सभी थे वो श्रोता जिन्होंने दिए थे हमें सही जवाब। श्रोताओं, जैसे जैसे घड़ी की सुई 6 की तरफ बढ़ने लगती है, आपको छोड़ के जाने का दिल तो नहीं करता, पर वो कहते हैं ना कि दोबारा मिलने के लिए बिछड़ना तो पड़ता ही है। तो इसी वादे के साथ कि आप हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और सुनते रहेंगे अपना फेवरेट कार्यक्रम युवाणी, अपनी होस्ट इकरा और उमा को दीजिए इजाज़त ये कार्यक्रम समाप्त करने की। नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है, मीडियम वेव और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: कह रहे हैं बहुत कुछ आज,
2: वाकई कुछ खास है आज,
1: कुछ खास है आज।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क की कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की।

0: विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की।
1: Both sides underscored the
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि समझौते के लागू होने से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल वस्त्र, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता मिलेगी।
3: I am confident that this comprehensive agreement
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
3: Of our shared future.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, मुक्त, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं। LPG आपूर्ति के संबंध में उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिन में 1,21,00,000 से अधिक बुकिंग प्राप्त हुई, जबकि 1,22,00,000 से अधिक सिलेंडरों की डिलीवरी की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल RN रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। शपथ लेने वाले सदस्यों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस रॉय, शंकर घोष और अन्य शामिल हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। प्रख्यात पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का अंतिम संस्कार आज मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। उनका निधन कल रात मुंबई में हुआ था। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 19 पदक जीते हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है।

आवाज की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

आपके आवाज की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनिए सूचना गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में। थाना प्रभारी थाना माधोटांडा जनपद पीलीभीत से प्राप्त सूचना के अनुसार अर्जुन यादव पुत्र ब्रह्म अवतार यादव निवासी कलीनगर थाना माधोटांडा जनपद पीलीभीत विगत कुछ समय से लापता हैं। अर्जुन यादव की आयु 14 वर्ष, कद सामान्य, शरीर सामान्य, चेहरा गोल और रंग गेहुआ है। ये जीन्स की पैंट और शर्ट पहने हैं। अर्जुन यादव के विषय में सूचना देने के लिए संपर्क करें, टेलीफोन नंबर है 9759688643।

संजय कुमार पुत्र मूलचंद निवासी खपरेल गौटिया थाना कोतवाली जनपद पीलीभीत विगत कुछ समय से लापता हैं। संजय कुमार की आयु 38 वर्ष कद 5 फीट रंगे हुआ चेहरा लंबा आंखें काली हैं। ये हरे रंग की शर्ट और आसमानी पैंट पहने हैं, साथ ही हरे रंग का जूता पहना है। इनकी दिमागी हालत कमज़ोर है। इनके विषय में सूचना देने के लिए संपर्क करें मूलचंद पुत्र जगन्नाथ निवासी ग्राम खपरेल गोटिया थाना कोतवाली जनपद पीलीभीत।

अभी आप सुन रहे थे सूचना गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर 6:10 हुए हैं। अब आपके लिए प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। सबसे पहले ये गीत अलका याग्निक और शान की आवाज़ों में, फिल्म का नाम है हम तुम।

होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

चुरा लिया है तुमने। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना शान और सुनिधि चौहान की आवाजों में। इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है, मीडियम वेव और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय आप सुन रहे हैं हमारी दूसरी सभा के प्रसारण। संध्या के 6:20 हुए हैं। अब प्रस्तुत है किसान साथियों के लिए उनका कार्यक्रम कृषि जगत।

0: आवो आवो पंकज भैया, राम राम।
1: राम राम भैया, राम राम।
0: और काल चाले हैं, घर पर सब कुशल मंगल तो हैं?
1: हाँ भैया, सब कुशल मंगल है। और हमें उम्मीद है जो हमारे किसान साथी हैं उनको यहाँ पर सब कुशल मंगल होंगे।
0: हाँ दीपक भैया, सब कुशलता से होंगे तभी अपने सभी काम, चाहे वो खेती बाड़ी से संबंधित हों या पशुपालन से संबंधित हों, अन्य कोई काम हो, समय रहत और अच्छी तरीका से हमारे सभी किसान साथी कर पाएंगे।
1: बिल्कुल
0: और भैया क्या हाल चाल है, बाकी तुम्हारे यहाँ तो सब ठीक है?
1: हाँ, सब ठीक है भैया। और खेती बाड़ी के जो काम है हमारे किसान साथी, अब गर्मी का मौसम हो भैया, कुछ जगह बरसात भी अच्छी खासी हो गई है, तो भैया खेतन की जुताई है या धान की नर्सरी है, उनको समय रहते भी डाल दें भैया।
0: हाँ भैया, अपने खेती बाड़ी के कामों को सही से निपटाएं, और साथ ही जो है पशुपालन जो हमारे किसान साथी करते हैं ना, अपने पशुओं को ध्यान रखें। और आपको पता हो भैया आज का दिन है?
1: आज भैया है विश्व दुग्ध दिवस।
0: हाँ, जो कि प्रतिवर्ष 1 जून को मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा 2001 में स्थापित किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, एक वैश्विक आहार के रूप में दूध के महत्व को पहचानना और डेयरी उद्योग व इससे जुड़े किसानों के को योगदान में सम्मानित करना है।
1: बिल्कुल भैया, बहुत महत्वपूर्ण दिवस है जो, और इसकी जो पहली बार में जो है 2001 में मनाया गया हो जो, और इसको मुख्य लक्ष्य जो है दूध में जो मौजूद पोषक तत्व होते हैं जैसे कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन्स होती हैं, उन्हें संतुलित आहार में इसके महत्व के बारे में जागरूक कर हो जाता है।
0: हाँ भैया, और भारत में इसके योगदान की बात करें तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, जो वैश्विक उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा पैदा करता है। यह दिन भारत में पशुपालकों और डेयरी व्यवसाय से जुड़े लोग हैं ना, उनके लिए बहुत हर्ष और उल्लास और जश्न का दिन है।
1: बिल्कुल, देखो भैया पशुपालन तो हम करते ही हैं, और जो दूध हमें मिलता है ना, बाको जो है खुदों इस्तेमाल करता हूँ, और भैया दूसरी जगह हम बेच के अपने आय को जरियो बढ़ा लेते हैं।
0: हाँ भैया, और दुग्ध उत्पादन करने के लिए या दुग्ध व्यवसाय करने के लिए, डेयरी वगैरह खोलने के लिए हमारी सरकार की तरफ से बहुत सी योजनाएं चल रही हैं, उनका हमारे सभी किसान साथी लाभ उठा सकते हैं।
1: बिल्कुल भैया,
0: और भैया जब बात योजना की चली है तो एक योजना और है, पीएम किसुम योजना।
1: हाँ भैया, जय योजना में जो है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान जो भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसको मुख्य उद्देश्य किसानों की सौर ऊर्जा से जोड़कर उनकी आय को बढ़ाना है। जैसे सिंचाई को जो है रास्ता बन जाता है, और भैया डीजल है या बिजली को जो है बासा जो है हम बच जाते हैं, और हमें जो है सिंचाई जो है हमें बहुत सस्ती पड़ती है।
0: हाँ भैया, और इस योजना के अगर मुख्य लाभ की हम बात करें, यानी कि भारी सब्सिडी की, तो इस योजना के तहत किसानों को खेतों में सोलर पंप लगाने पर कुल खर्च का 90% तक सब्सिडी और अनुदान मिलता है। किसान आपको अपनी जेब से केवल 10% जो है खर्चा करना पड़ता है।
1: देखो सोलर पंप लग जाने से किसानों की बिजली और तो बची जाती है, जैसे और जैसे डीजल है, जैसे बिजली ख़राब हो गई और भैया डीजल पैसा ना आए तो बार बार वो कर संकट पड़ता है, इसलिए जो एक बार सोलर पंप लगवा लो भैया और सिंचाई आवाज आराम से होती है, और भैया हमारी खर्च बहुत कम आता फसल में।
0: हाँ भैया, और अतिरिक्त आय की अगर हम बात करें तो किसान अपनी बंजर या खाली ज़मीन पर सोलर पावर पॉइंट लगाकर अतिरिक्त बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। इससे अतिरिक्त बिजली की ग्रिड यानी कि जो यूनिट बनता है उसके आधार पर कंपनी को जो है बेच सकते हैं, और
1: बिल्कुल
0: बेचकर 25 वर्षों तक नियमित आय जो है वो कमा सकते हैं।
1: बिल्कुल, एक बार भैया पैसा लगा दो और फिर पैसा लगा दो फिर तो आमदनी होती ही रहती है, फिर कोई खर्चा वैसा ना
0: हाँ,
1: आता
0: कहन
1: है।
0: को मतलब जो है आम के आम और गुठलियन के दाम,
1: हाँ भैया,
0: मतलब यह योजना से हम अपने जो घर में बिजली, अपने खेती बाड़ी में बिजली से जो है काम कर सकते हैं, बाकी जो हमारे यूनिट बनते हैं वो हम सरकार को बेच सकते हैं।
1: हाँ भैया। और देखो अब बात कर रहे हैं, जैसे पशु तो पालते ही हैं, पशु उनको भैया चारा में आहार देते हैं, तो उस आहार को किस तरीका से खिलावें भैया?
0: हाँ भैया,
1: हाँ, कभी
0: क्योंकि
1: देखो भैया सूखो चारों खिलाना पड़ जाता है, कभी हरू चारे की व्यवस्था होती है।
0: हाँ, तो अपने पशुओं से अच्छो दुग्ध उत्पादन लेने के लिए ना, जो उनका आहार है उसकी गुणवत्ता का होना बहुत ही जरूरी है। अच्छी गुणवत्ता का आहार खिलाएंगे तो हम अपने पशुओं से अच्छा दुग्ध उत्पादन ले सकेंगे।
1: जी,
0: तो क्यों ना भैया, जाही संबंध में कहो तो अपने किसान साथियों के लिए एक भेंट वार्ता सुनवा दी है।
1: बिल्कुल भैया,
0: विषय है पशुओं के लिए आहार की गुणवत्ता। जय विषय पर बातचीत के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं आप हैं डॉक्टर अंशुल रहेल।
2: सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं डॉक्टर अंशुल राहल मैम, जो कि पशु पोषण विभाग में कार्यरत हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
3: नमस्कार
2: मैम, आज का जो हमारा विषय है वो है पशुओं के लिए आहार की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले मैम हम ये जानना चाहेंगे कि आहार की गुणवत्ता आखिरकार क्यों बढ़ाएं?
3: देखिए किसान भाइयों, आप लोग आम तौर पर अपने पशु को आहार में हरे चारे, सूखे चारे और दाने देते हैं
2: जी।
3: लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपके पास हरे चारे नहीं होते हैं और ऐसी अवस्था में आप

0: सूखे चारों का ही प्रयोग अपने पशु के आहार में करते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि जब कभी आप सिर्फ सूखे चारे अपने पशु को देते हैं तो उसे पशु की शारीरिक अवस्था भी आवश्यकता भी पूरी नहीं होती है और इस कारण पशु का शरीर गिरने लगता है और इसके प्रभाव से जो आपका उत्पादन होता है वो भी प्रभावित होता है और आगे का जो उत्पादन होता है वो भी बहुत ही इस पर असर डालता है
1: जी।
0: और इसीलिए का असली कारण ये है कि जो सूखे चारे होते हैं उनकी पाचकता कम होती है और जब कभी आप सूखे चारों के साथ दाना या हरा चारा नहीं देते हैं तो वो एक असंतुलित आहार बन जाता है
1: जी।
0: जो पशु के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और उसके स्वास्थ्य पे हानि पहुंचाता है
1: जी।
0: और जिसके परिणाम स्वरूप कई सारी बीमारियां हमारे पशुओं में हो जाती हैं। का पहला असर देखने को मिलेगा सबसे पहले तो ये है कि पशु का जो आहार ग्रहण क्षमता होती है वो कम हो जाती है
1: जी।
0: और इसके कारण जब पशु कम खाएगा तो वो उत्पादन भी कम ही देगा और इसके साथ ही जो प्रजनन समस्याएं हैं वो भी पशुओं में अधिक देखने को मिलती हैं।
1: जी मैम, जैसे कि आपने बताया कि सूखे चारे के विषय में, तो हम जानना चाहेंगे कि सूखे चारे को हमारे पशुपालक भाई कैसे प्रयोग करें।
0: हाँ जी, सूखे चारों को आमतौर पर या तो हरे चारों के साथ देना चाहिए और अगर आपके पास सिर्फ सूखा चारा है तो आप उसको एक तरह से मतलब उपचारित करके, यूरिया से उपचारित करके उसकी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं।
1: जी,
0: सूखे चारों में जैसे भूसा है, पुआल है, ग्वार की कड़वी है, तो इसको अगर आप यूरिया से उपचारित करते हैं तो इससे उसकी पाचकता बढ़ जाती है और पाचकता बढ़ने के कारण ऐसे चारे पशु अधिक ग्रहण करते हैं और जिसकी वजह से उनका उत्पादन में वृद्धि देखने को मिलती है। अब उपचारित कैसे करें, तो आप सबसे पहले ऐसा करिए कि 10 किलो यूरिया लीजिए और इसको 100 लीटर पानी में घोल लीजिए और इसको आप 250 किलो या सूखा चारा है उसके उपचारित करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं
1: जी।
0: या फिर आमतौर पर मैं बताऊं, आप ऐसा करिए 4 किलो आप यूरिया लीजिए और इसको 65 लीटर पानी में घोल के एक घोल तैयार कर लीजिए। सबसे पहले 25 किलो भूसे की परत, जैसे आपका कमरा है तो कोने में 25 किलो भूसे की परत बिछा दीजिए, उस पे इस जो घोल बनाया उसका छिड़काव कर दीजिए, जो पानी वाला फुव्वारा होता है उसके माध्यम से उसको हाथों से फिर मिला दीजिए। उसके बाद फिर एक परत बनाइए 25 किलो की और फिर उसको छिड़काव कर दीजिए। तो ऐसे करते करते पूरा आप 100 किलो जो भूसा है उसको 4 किलो यूरिया और 65 लीटर पानी के माध्यम से उपचारित कर लीजिए। उसके बाद उसके ऊपर पॉलीथिन से ढक दीजिए ताकि अंदर हवा ना जा सके
1: जी।
0: उसके बाद ऊपर से ईंटे लगा के आप उसको बंद कर सकते हैं ताकि जो अंदर की जो किण्वन क्रिया है उसके माध्यम से जो अंदर शर्करा है वो लैक्टिक एसिड में अमल बदल जाए, साथ ही जो आप जो चारा है वो भी थोड़ा सा मुलायम हो जाता है
1: जी।
0: और ऐसे चारों को पशु ज्यादा पसंद करते हैं। 21 दिन के बाद आप थोड़ा सा साइड से खोलिए और जो पहला चारा है उसको बाहर निकाल के फेंक दीजिए क्योंकि वो हवा के में कांटेक्ट में होता है तो खराब होता है और थोड़ा सा अंदर से निकाल के थोड़ा उसको हवा लगाइए क्योंकि उसमें अमोनिया की स्मेल आती है। अब जब अमोनिया की स्मेल उड़ जाए तब आप पशु को आधा किलो से शुरू करते हुए 2 किलो तक आप अपने पशुओं को खिला सकते हैं
1: जी।
0: इसके अलावा ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो यूरिया उपचारित चारे हैं उनको 6 महीने से जो छोटे पशु हैं उनको कभी भी खाने के लिए ना दें, साथ ही जो अजुगाली करने वाले पशु हैं उनको भी आप खाने के लिए आप नहीं देना चाहिए
1: जी।
0: इसके अलावा जो यूरिया उपचारित जो चारे होते हैं उनको हमेशा हरे चारे या राते मिश्रण के साथ मिलाकर ही देना चाहिए
1: जी।
0: इसके अलावा इनको 21 दिन बाद ही उपचारित चारे का खिलाने के लिए प्रयोग करें और करीब इसको मैंने कहा जैसे आधा घंटा थोड़ा खुले हवा में रखें और उसके बाद ही पशु को दें। अगर आपने एकदम दे दिया तो अमोनिया की जो गंध आती है उसकी वजह से पशु उसको खाएगा नहीं
1: जी।
0: और साथ ही ये भी ध्यान रखें कि हमेशा पानी की उपलब्धता बनी रहे क्योंकि कभी कभी यूरिया की विषाक्तता भी देखने को मिल सकती है
1: जी। मैम, जैसे कि आपने बताया संरक्षित चारे के विषय में, तो क्या संरक्षित चारे हम उपयोग कर सकते हैं अपने जानवरों के लिए?
0: हाँ जी, जैसे हम यूरिया उपचारित चारे हम आपातकालीन स्थिति के लिए प्रयोग कर सकते हैं
1: जी।
0: इसी प्रकार से हम हरे चारों को संरक्षित भी कर सकते हैं।

0: हे और साइलेज के रूप में,
1: जी
0: और ये संरक्षित चारे हे या साइलेज, आपके पास हरा चारा उपलब्ध नहीं होता है तो हरे चारे के तरह प्रयोग में कर सकते हैं, क्योंकि इनकी गुणवत्ता लगभग हरे चारे के बराबर ही होती है, थोड़ा ही फर्क पड़ता है। और इसको आप सूखे चारों के साथ मिलाकर आराम से अपने पशुओं को खाने को दे सकते हैं।
1: जी मैम, जैसे कि आपने बताया है कि चारे को, सूखे चारे को हम यूरिया से उपचारित करके अपने पशुओं को दे सकते हैं,
0: हाँ जी,
1: तो अगर हम यूरिया या शीरा खनिज ब्लॉक के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे अपने पशुपालक भाइयों के लिए।
0: अब देखिए, जो हम अपने पशुओं को आहार में सूखे चारे, हरे चारे और खनिज मिश्रण, दाना मिश्रण देते हैं,
1: जी
0: तो उनमें हमारा जो मुख्य हमारे पोषक तत्व हैं, उनके साथ साथ सूक्ष्म जो पोषक तत्व हैं वो भी उनके शरीर में पहुंचते हैं।
1: जी
0: लेकिन कभी कभी जब हम कुछ एक या दो प्रकार का ही खाद्य पदार्थ पशु के आहार में सम्मिलित करते हैं, तो ये सारी कमियां हमारे पशुओं में देखने को मिलती हैं
1: जी
0: बीमारी के रूप में। तो यूरिया शीरा खनिज ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक बनाया गया है जिसमें कि यूरिया नाइट्रोजन का स्रोत होता है, शीरा आपका शर्करा का,
1: जी
0: खनिज जो है जो हमारे मुख्य पोषक पदार्थ है उनका शरीर में उपापचय क्रिया होते हैं, उनको प्रभावित करते हैं।
1: जी
0: तो इस तरह का जो ब्लॉक होता है यूरिया शीरा खनिज ब्लॉक, इसको खिलाने का उद्देश्य मुख्यतः सूखे चारों की पाचकता को बढ़ाना होता है,
1: जी
0: जिससे कि पशु पर्याप्त शुष्क पदार्थ ग्रहण कर सके और वे अपना उत्पादन बढ़ा सके।
1: जी
0: ये ब्लॉक कभी भी हरे चारे की जगह, यानी हरे चारे को काट कर आप इनको कभी भी पशु को नहीं देना चाहिए। इस तरह के ब्लॉकों का इस्तेमाल पशु को, पशु के सामने थोड़ी देर के लिए डाल, ईंट के रूप में डाल दें, ताकि पशु उसको चाट ले,
1: जी
0: और चाटने के बाद जो उसको इससे पोषक पदार्थ मिलते हैं उसकी जो आहार ग्रहण क्षमता होती है अन्य चारों की वो बढ़ जाती है।
1: जी
0: ये इस तरह के जो ब्लॉक होते हैं जिन इलाकों में हरे चारों की बहुत कमी होती है वहाँ पे ये बहुत ही उपयोगी होते हैं, क्योंकि जब कभी हरे चारे नहीं होते हैं, सूखे चारों को पशु खाना नहीं चाहता, तो जब कभी आप ये ब्लॉक देंगे तो सूखे चारों को भी पशु ग्रहण कर लेता है,
1: जी
0: जिससे उसका जो उत्पादन होता है वो बढ़ जाता है। ब्लॉक द्वारा पशु को ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज की पूर्ति हो जाती है, साथ ही दूध उत्पादन और दूध में वसा की मात्रा भी बढ़ जाती है।
1: जी
0: पशुओं की शारीरिक और प्रजनन क्षमता जो है वो भी उसमें भी वृद्धि देखने को मिलती है, और साथ ही जो प्रजनन क्रिया है वो भी नियमित हो जाती है। हमेशा सूखे चारों के साथ ही हमको यूरिया शीरा खनिज ब्लॉक देना चाहिए, क्योंकि अगर आपने सिर्फ इसको ब्लॉक को खाने को पशु को दिया तो पशु में यूरिया विषाक्तता के लक्षण देखने को मिल सकते हैं।
1: जी
0: साथ ही ये भी है कि प्रारंभ में जो ब्लॉक है वो आहार के साथ कम मात्रा में ही चाटने के लिए देना चाहिए, और जब पशु इसे खुद खाने लगे तो चाटने लगे तो पूरी मात्रा में आप इसको दे सकते हैं।
1: जी
0: एक ब्लॉक जो होता है वो करीब 2 किलो का होता है, और ये 2 किलो का ब्लॉक पशु के लिए 7 दिन के लिए पर्याप्त होता है, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि जो वयस्क गाय भैंसे होती हैं वो करीब 150 से 200 ग्राम तक चाट लेती हैं एक दिन में, और
1: जी
0: जो छोटे पशु हैं जैसे भेड़ बकरी वो करीब 50 से 70 ग्राम प्रतिदिन इसका प्रयोग करते हैं। ब्लॉक को जब कभी आप बनाकर संरक्षित कर रहे हैं अपने भंडार के में, तो आप ये ध्यान रखें कि ब्लॉक को हमेशा सूखे स्थान पर ही रखें, और 6 माह से जो कम उम्र के पशु हैं उनको कभी भी इस तरह के ब्लॉक खाने के लिए नहीं देने चाहिए।
1: जी
0: साथ ही मैंने जैसे आपको बताया जो आरोमांती पशु हैं, बंदर, घोड़ा, गधा, कुत्ता, मुर्गी, सुअर या खरगोश, इनको भी कभी भी खाने के लिए नहीं देना चाहिए।
1: जी
0: साथ ही ब्लॉक को कभी भी आप काट कर या तोड़ कर पानी में घोल कर ना दें, क्योंकि इससे पशु में विषाक्तता के लक्षण देखने को मिल जाएंगे।
1: जी
0: साथ ही जब कभी इस के ब्लॉक आप पशु के लिए सामने छोड़ रहे हैं तो पीने का भी स्वच्छ पानी हर समय पशु के सामने उपलब्ध रहना चाहिए। ब्लॉक को हमेशा पानी, धूल, गोबर व मूत्र से बचाकर रखें, क्योंकि इसके भी जब कभी संपर्क में आएगा तो इसमें फंगस लगने का डर बना रहता है।
1: जी
0: और ब्लॉक कभी भी यूरिया उपचारित चारे के साथ पशु को नहीं खिलाना चाहिए। अब इसको बनाए कैसे यूरिया शीरा खनिज ब्लॉक को, तो जब कभी आपको बनाना हो, यदि 100 किलो आपको बनाना है तो 40 किलो राते मिश्रण लीजिए, 40 किलो आप शीरा लीजिए, 3 किलो यूरिया, 6 किलो खनिज मिश्रण और 4 किलो साधारण नमक और साथ ही 7 किलो बंधक पदार्थ जैसे गोंद है, बेंटोनाइट है, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं
1: जी।
0: और इसका घोल बना के आप सांचों में डाल दीजिए और जब वो सूख जाए तो सांचे से ईंट के रूप में आप इनको निकाल के आप सूखने के लिए छोड़ दें और फिर आप इसका प्रयोग पशुओं को चाटने के लिए दे सकते हैं
1: जी। मैम जैसा कि आपने बताया यूरिया, शीरा, खनिज ब्लॉक किस तरह से बनाते हैं,
0: हाँ
1: तो इसी तरीके से मैम जो भी खाद्य अवयव होते हैं जो हम अपने पशुओं के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको लेते समय हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए?
0: हाँ जी, जब भी देखिए आप जो भी अपने पशु का आहार बनाने के लिए खाद्य पदार्थ इस्तेमाल कर रहे हैं तो जब कभी आप इनको खरीदने जाएं तो इनके गुणों को आप परख कर ही खरीदें, क्योंकि अगर आपने शुरू में ही खाद्य पदार्थ खराब इस्तेमाल कर लिए मतलब खरीदे तो खर्चा तो आपका बढ़ेगा ही, साथ ही जो आपके आप उसे आहार तैयार करेंगे वो भी कम गुणवत्ता वाला बनेगा
1: जी।
0: तो इसीलिए सबसे पहले आप ये देखिए कि जो अनाज दालें होती हैं उनको कभी भी टूटी हुई या फिर जो छोटे दाने होते हैं या जले हुए होते हैं उनको पशु का आहार बनाने के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए
1: जी।
0: साथ ही ये भी देखें कि इन अवयवों में जो नमी की मात्रा होती है वो 10-11% से कम ही रहे, क्योंकि जब कभी नमी ज्यादा होती है तो ऐसे पदार्थ बहुत ही जल्दी फंगस से प्रभावित होते हैं और साथ ही उनमें दुर्गंध सी आने लगती है। उसके अलावा रंग जो होता है इनका थोड़ा चमकीले रंग का होना चाहिए, जो चमकीले रंग होता है उसमें अक्सर देख ये पाया गया है कि ऐसे दाने स्वस्थ होते हैं
1: जी।
0: साथ ही आप ये भी देखें कि जो आप पदार्थ खरीद रहे हैं वो वाकई स्टैंडर्ड के हिसाब से है कि नहीं, उसमें कहीं बाह्य पदार्थों की मिलावट तो नहीं है, क्योंकि अगर बाह्य पदार्थ की मिलावट है तो वो सब स्टैंडर्ड के हो जाएंगे
1: जी।
0: और इस तरह से जिस जो आप असली दाना खरीदना चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिल पाएगा
1: जी।
0: साथ ही कीड़ों व फफूंदी की उपस्थिति का भी आपको पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि खाद्य अवयव कीड़े या फफूंदी हमेशा रहित होने चाहिए ये, क्योंकि दाना जो भी आप पशु को बनाते उसको तो खराब करते ही हैं, साथ ही पशु के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालते हैं
1: जी।
0: जब कभी आप क्षेत्र परीक्षण करने के लिए जाते हैं आहार के खाद्य पदार्थों का तो आमतौर पर देखा गया है कि मुख्य रूप से आप ऑर्गेनोलेप्टिक आंकलन करते हैं और इसमें आप जो ये दाने वगैरह होते हैं इनका स्पर्श, स्वाद, गंध और देखकर ही उनकी गुणवत्ता का ज्ञान करते हैं
1: जी।
0: और ये बहुत ही लाभदायक है क्योंकि इस जांच द्वारा आप खाद का खट्टापन, कीड़ों की उपस्थिति, फफूंदी आदि के संक्रमण का तुरंत पता लगा सकते हैं
1: जी।
0: इसके अलावा जब कभी आप खलियां आप खरीदने जा रहे हैं और खासकर निष्कर्षित खली जो है उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सरसों की खली है वो भौतिक रूप से आमतौर पर हरी, भूरी या फिर गाढ़े हरे रंग की होनी चाहिए, तेल की खली काले रंग की होनी चाहिए। साथ ही अगर गंध से आप देखें तो मूंगफली की खली जो होती है जब कभी आप उसको तोड़ के चखने की कोशिश करेंगे तो आपको मीठी लगनी चाहिए
1: जी।
0: और जो सरसों की खली है क्योंकि उसमें एक इरुसिक अम्ल होता है जिसकी वजह से उसमें आपने देखा होगा तेलों की जब आप कढ़ाई में सरसों का तेल डालते हैं तो झले आती हैं, तो इसकी वजह से एक तीक्ष्ण गंध आती है
1: जी।
0: साथ ही बनावट का भी आप ध्यान रखें क्योंकि घानी या मशीन के द्वारा जो बनी खली होती है वो हमेशा चमकदार होती है क्योंकि उसमें थोड़ा तेल रह जाता है
1: जी।
0: जबकि विलायक वाली जो खली होती है वो मटमैली और धुंधली होती है
1: जी।
0: जो आहारे अम्ल है उनको लंबे समय के लिए अगर हम इस प्रकार से रखेंगे तो उसके भौतिक बनावट, रासायनिक संगठन में बदलाव यदि आपको देखने को मिलता है तो ये समझ लीजिए कि आपके जो खाद्य पदार्थ है उसकी गुणवत्ता गिर रही है
1: जी।
0: और यही गुणवत्ता अगर आपने ध्यान में नहीं रखी, ऐसे खाद्य पदार्थ को जब कभी आप आहार बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वे ज्यादा दिन तक इस आप प्रयोग नहीं कर सकते
1: जी,
0: क्योंकि इससे पशु में विषाक्तता तक देखने को मिल सकती है
1: जी।
0: और ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने इन खाद्य पदार्थों का उचित भंडारण किया हुआ है और भंडारण में आपने सावधानियां नियमित रूप से उनका आप पालन कर रहे हैं
1: जी। तो मैम आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे पशुपालक भाइयों को और आपने बताया कि पशुओं के लिए आहार की गुणवत्ता को हम किस प्रकार से बना सकते हैं और किस तरह से हम अपने सूखे चारे या गीले चारे को लंबे समय तक रख सकते हैं। तो आपने इतना अमूल्य समय हमारे श्रोताओं के लिए निकाला, हमारे किसान भाइयों के लिए निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी हमारी किसान साथी सुन रहे थे भेंट वार्ता, जिसका विषय था पशुओं के लिए

0: आहार की गुणवत्ता, जिस पर जानकारी दे रही डॉक्टर अंशुल रहेल।
1: और हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी हमारे सभी किसान साथी ने बहुत अच्छी तरीका से और बहुत ध्यान से सुनी होगी और अपने पशुओं को अच्छा आहार खिला के, अच्छी गुणवत्ता का आहार खिला के अच्छा दुग्ध उत्पादन लेंगे और लाभ प्राप्त करेंगे।
0: बिल्कुल भैया।
1: और भैया जब बात लाभ की आते हैं ना, तो मन करता है कि कुछ गान बजान हो जाए।
0: हाँ बिल्कुल,
1: क्योंकि भैया जो हमारे कार्यक्रम को समय है वो शाम को समय है, जहाँ समय लगभग हमारे सभी किसान साथी अपने कामन को निपटा के घर पर बैठे आराम कर रहे होते हैं या खानों खा रहे होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: ऐसे में भैया गानों बजानों हो जाए तो सोने पे सुहागा बारी बात है।
0: बिल्कुल।
1: तो देर न करते हुए अपने किसान साथियों के लिए सुनवाते हैं बढ़िया सो लोकगीत। बोल हैं घूंघर वाले बाल, स्वर है श्वेता सक्सेना के। लेकिन लोकगीत सुनने से पहले हमारे किसान साथी सुन लें कुछ संदेश।

0: सेंसस यानी आपके आवाज की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

सर्विसेज यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: अभी हमारे किसान साथियों ने सुना लोकगीत, जिसके बोले मेरे घुघरेले बाल और जिसे आवाज़ दई स्वतः सक्सेना ने। अब भैया कार्यक्रम में क्षेत्र संकलित को समय है, तो बामें हमारे प्रगतिशील कृषक से भेंट हुई, श्री निजाम हुसैन से बातचीत करी हमारे अखिलेश भैया ने, जो हैं ग्राम घुसीपुरा ब्लॉक सावाद और जिला रामपुर के। आपो किसान साथियों सुन लेते हैं जो क्षेत्र संकलित कार्यक्रम।
1: जी आपका परिचय?
2: निजाम हुसैन।
1: आप कहाँ के रहने वाले हैं जी?
2: ग्राम घोसीपुरा।
1: अच्छा, तहसील?
2: सावाद।
1: और ब्लॉक भी सावाद ही लगता होगा?
2: ब्लॉक ही सावाद लगता है।
1: अच्छा, तो अगर बात करें पढ़ाई लिखाई की, तो आपने कहाँ तक पढ़ाई लिखाई कर रखी है?
2: पढ़ाई लिखाई तो साहब 8 में किया।
1: अच्छा, तो उसके आगे आपने पढ़ने का विचार नहीं बनाया? यहाँ मन नहीं था पढ़ने में, रुचि नहीं थी?
2: मन ही नहीं था, बात ये थी बिजनेस में पढ़ गए फिर।
1: अच्छा अच्छा, तो इस समय आप क्या कर रहे हैं?
2: इस समय तो हम दूध ला रहे हैं।
1: अच्छा, और खेती बाड़ी
2: करते हैं।
1: खेती बाड़ी में क्या क्या फसलें उगाते हैं आप?
2: फसल हमारे धान और गेहूं होता है साहब।
1: धान और गेहूं, तो गेहूं की तो कटाई आपने कर ली होगी, कैसी आपके यहाँ गेहूं की पैदावार रही?
2: पैदावार इस समय पर रही 2.5 क्विंटल की।
1: अच्छा जी,
2: अपने कम रहती थी, नहीं तो और साल तो 3-3.5 का पहुंचता था।
1: हाँ, इस बार जो गेहूं की फसल जो है मौसम से काफी प्रभावित हुई है, सभी जगह पैदावार पे जो है फर्क पड़ा है, सभी जगह कम हुई है, करीब 25% पैदावार कम सभी जगह हुई है।
2: जी सर।
1: अच्छा, तो अब आगे को आपकी जो खाली खेत है इनमें धान लगाने की प्लानिंग है?
2: जी सर।
1: अच्छा, तो कौन सा धान आप लगाते हैं?
2: धान लगाते हैं 1509।
1: बस यही वैरायटी लगाते हैं, इसके अलावा और
2: भी लगा लेते हैं, और लाभ नहीं मिला था। इस बार लगाई थी 26, तो 26 में आपका नुकसान रहा था।
1: अच्छा, तो अगर हम अच्छी पैदावार धान के लेना चाहें, तो किस तरीके से हम खेत की तैयारी करें और क्या क्या उसमें कृषि कार्य करें जो हम अपनी धान की फसल से अच्छी पैदावार मिल सके?
2: धान की पैदावार अच्छी थी, ये भी टाइम से उसको बोना है और जोतना है खेत के लिए, बढ़िया करके उसकी सफाई करना है, और यह है उसमें गोबर की खाद डालना चाहिए।
1: अच्छा अच्छा, नहीं जैसे अभी धान की बुवाई में समय है, तो जो खाली खेत पड़े हैं
2: जी,
1: तो उनकी जुताई वगैरह करने से क्या लाभ है आगे वो फसल में?
2: जुताई करने से खेत जो बढ़िया हो जाते हैं, इस समय जुताई हो जाएगी पहले तब।
1: अच्छा,
2: मतलब उसमें अगर आपका विचार है तो उसमें वो खाद डाल दें आप गोबर वाली।
1: अच्छा अच्छा हाँ, और एक ऑप्शन और है, अगर मिट्टी की जाँच कराना चाहें तो समय पर्याप्त रहता है, मिट्टी की जाँच भी करा सकते हैं।
2: जी जी, और जो समय है।
1: हाँ, तो आप किस तरीके से बुवाई करते हैं धान की?
2: किस तरीके से? पहले तो उसमें पॉट डालते हैं।
1: अच्छा अच्छा,
2: करीब 20-25 दिन पहले के लिए।
1: अच्छा अच्छा हाँ, ना जैसे कि अब इस समय वो भी आ गया ना, ये वो मशीन आती है उससे सीधी बुवाई, जैसे गेहूँ की बुवाई करते हैं?
2: ना ना, उससे नहीं करते साहब, हम यही पॉट डालने के बाद में फिर उसको लगवाते हैं, 25 दिन के बाद तैयार करते हैं पानी भर के खेत में, तभी उसको बच्चों में लगवाते हैं।
1: जैसे आप 1509 लगाएंगे, तो उसकी अब पौध किस समय डालेंगे? डाल चुके हैं अभी? डालेंगे
2: ना, पौध अभी पड़ेगी सब,
1: तो 21-25 दिन में ये पौध तैयार हो जाती है।
2: हाँ।
1: अच्छा, तो ये जैसे हमें 1 एकड़ की बुआई करनी है, तो उसके लिए हम कितने उसकी पौध डालें, कितने धान की?
2: 1 एकड़ के लिए तो 6, तो वो तो वही किलो बीघा का लगता है।
1: अच्छा, किलो बीघा, यानी कि 6-7 किलो की?
2: 8 किलो भी डालनी है?
1: 8 किलो की डालनी है। हाँ, क्योंकि बहुत खराब भी हो जाती है।
2: हाँ, बहुत खराब हो जाती है, बच्चा मारा जाता है, पैदावार कम देता है। तो इसलिए 2 किलो की प्रति एकड़ डालें आप।
1: अच्छा अच्छा, और बाकी खाद उर्वरक क्या डालते हैं जब धान की रोपाई करते हैं आप, पौध की रोपाई करते हैं खेत में?
2: पौध की रोपाई करते हैं तो पौध में तो यूरिया लगा देते हैं हल्का।
1: अच्छा अच्छा,
2: ताकि वो थोड़ी बढ़ जाए धान को लगाने के बाद में।
1: जी जी जी,
2: फिर उसमें एनपीके लगाते हैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे घास के लिए आप क्या करते हैं, और उसका पौध की रोपाई के कई दिन बाद उसका वो दवाई डालते हैं?
2: वो धान में तुरंत लगती है, धान लगा के तो पानी भर दो, पानी भर के दवाई भिड़ दो।
1: अच्छा, मतलब जब जिस समय हम दवाई डाल रहे हैं उस समय खेत में जो है पानी भरा हुआ होना चाहिए?
2: हाँ, पानी भरा हुआ होना चाहिए।
1: अच्छा, तो जैसे आप दूध का काम करते हैं, तो अपनी डेयरी है या गांव में दुलाते हैं?
2: सब गांव में दुलवाते हैं।
1: अच्छा, आपने पशु नहीं पाल रखे?
2: अपने पशु नहीं है इस समय, पहले थे।
1: अच्छा, पहले थे। तो फिर देसी खाद वगैरह खेतों में डालने के लिए आपको जो है मोल लेना पड़ता होगा?
2: हाँ, ये मोल लेते हैं।
1: अच्छा, तो मतलब आपने छोड़ दिया है पशुपालन करना है, या मतलब अभी छोड़ दिया है कुछ दिनों के लिए?
2: अभी छोड़ दिया, थोड़ी दिक्कत होने लगी ना, घर में भाई सब अलग अलग हो गए और कोई है नहीं।
1: अच्छा अच्छा, आप अकेले ही हैं करने वाले? अच्छा,
2: तो सारा टाइम इसी में लग जाता है, फिर टाइम कहाँ रहता है? और पशु के लिए यही बहुत देखभाल।
1: तो जैसे हमारे सभी किसान साथी आपको सुन रहे हैं, तो आप जो है किसान साथियों से अच्छी पैदावार लेने के लिए क्या क्या काम करने चाहिए, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
2: अच्छी पैदावार के लिए यही है कि समय से उसको लगाना चाहिए, समय से उसमें खाद डालना चाहिए, पानी डालना चाहिए और समय पे उसको अच्छी तरीके से देखभाल करनी चाहिए उसकी, उसकी नराई भी होती है धान की।
1: अच्छा अच्छा।
2: यदि घास हो जाएगी तो फिर पैदावार कम देगा, घास जोर करती धान थोड़ा नीचे रह जाता है।
1: अच्छा अच्छा। जैसे मतलब हमने वो अगर हमने घास की दवा डाल दी उसके बाद भी घास उग जाती है तो उसको नराई गुराई करके
2: जी
1: उसको निकाल दें।
2: जी
1: अच्छा, यहीं पे रोग और कीटों की बात करें तो जैसे कि 15-09 है, 16-09 में इनमें सुना है कि काफी बीमारियां लगती हैं।
2: हाँ, इसमें बीमारी काफी लगती है, कीटनाशक ज्यादा होती है।
1: तो कौन कौन सी बीमारी इसमें लगती है?
2: बीमारी इसमें यही लगती है कि उसके पौधे में सुड़ी हो जाती है, थोड़ा बढ़ने के बाद में उसको और दोबारा सुड़ी लगती है, पत्ता सूखने लगता है उसका, पीला पड़ने लगता है, तो सब ये दवाइयाँ लगाई जाती है।
1: अच्छा,
2: 20 से 25 दिन के अंदर अंदर उसमें सारी दवाई लग जाती है।
1: अच्छा, मतलब पौध की रुपाई के बाद जब आपने रुपाई कर दी तो 20 से 25 दिन में सारी दवाइयाँ जो लगानी है आपको, फफूंदी नाशक और तुम्हारी ये सुड़ी वगैरह की, सब दवाई 25 दिन के अंदर आप लगा देते हैं।
2: लगा देते हैं और 3 खाद लग जाती है इसके अंदर।
1: अच्छा, मतलब पहला तो एनपीके वगैरह लगाया, जब आप रुपाई करेंगे फिर यूरिया।
2: जी,
1: ये जो बाकी जो खाद है रुपाई के बाद में वो कितने दिन के अंतराल से लगाते हैं?
2: 8 दिन के अंतर से लगा देते हैं सब।
1: अच्छा,
2: 8 दिन के अंदर से।
1: अच्छा, ये भी काम आप 25 दिन के अंदर पौध रुपाएंगे?
2: हाँ, ये सारे हो जाते हैं।
1: अच्छा अच्छा, फिर 25 दिन के बाद क्या देखभाल रखनी होती है?
2: फिर तो बस उसकी पानी की देखभाल है, यदि और बाद में कोई बीमारी यदि लगती है ना पकने पे, ये बाली निकलने पे भी लगती है एक बीमारी, तब भी इसकी स्प्रे होती है।
1: मतलब सब काम करने के बाद भी समय समय पर अपनी फसल की देखभाल करना,
2: देखभाल करनी पड़ती है।
1: चलिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी।
0: क्षेत्र संकलित कार्यक्रम के अंतर्गत प्रगतिशील कृषक से भेंट, श्री निजाम हुसैन से बातचीत कर जानकारी जुटाई हमारे अखिलेश भैया ने।
3: हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी हमारे किसान साथी ने बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ध्यान से सुनी होगी और यह जानकारी को पूरा हमारे सभी किसान साथी लाभ उठाएंगे।
0: बिल्कुल भैया।
3: और भैया, अब समय हो चला है कार्यक्रम कृषि संकेत का।
0: हाँ,
3: तो कृषि संकेत में इस पखवाड़े के कृषि कार्य क्या क्या हमारे किसान साथी करें, जब इस समय थोड़ी सी हम अपने किसान साथी को जानकारी देंगे।
0: देखो भैया, जून को प्रथम पखवाड़ो है जिसमें खरीफ फसलों को लगाते हैं, जैसे धान है, मक्का, बाजरा, ज्वार की बुवाई करी जाती है और खेतों की जुताई कर लें भैया, और जो खेत हैं उनको लेवल अवश्य कर लें।
3: हाँ भैया,
0: और जल निकासी की व्यवस्था जो है बहुत अच्छे से होनी चाहिए।
3: हाँ, क्योंकि भैया जो हमारी धान की फसल है वो ज्यादा पानी चाहने वाली फसल है।
0: हाँ,
3: और अगर हमारे खेत लेवल ना होंगे ना, तो कहूँ पानी ज्यादा होगा हमारी धान की फसल में तो कहूँ कम, बात से क्या होगा कि हमारी जो धान की फसल जो है वो प्रभावित होगी, बात से इकसार और अच्छी पैदावार हमें ना मिल पाएगी, और जो पानी हम लगाते हैं बाग में हमारा खर्चा ज्यादा होगा। तो जल खेतन को समतलीकरण करना बहुत ही जरूरी है, अच्छी जल निकास की व्यवस्था हो।

0: का से हमारे किसान सादी खुदाई करें और बाकी जो उर्वरकन की मात्रा है सिंचाई करते रहें और उर्वरक देते रहें।
1: और देखो भैया, कृषि यंत्रण में जैसे पंप सेट है जो भैया सिंचाई को साधन है वो हर को, बाकी समय से पहले ही मरम्मत वगैरह करवा लें अगर खराब है तो। हाँ, और बाकी तैयारी पूरी रखें।
0: और भैया साथ ही जैसे हमने खेत के समतलीकरण की बात करी ना, तो एक मुख्य बंधु और है जाको हमारे किसान साथी बहुत ध्यान रखें। भैया गर्मी की जुताई के बाद खेतों की मेड़बंदी अच्छी तरीके से जरूर कर दें।
1: हाँ,
0: ताकि भैया जो बरसात को पानी है ना वो हमारे खेतन में रुको रहे और जो हमारी मिट्टी है वो इधर उधर ना बह पाए।
1: और जो हमारी कुछ किसान साथी नहीं जैसे फसल भैया इस समय लगी भी है, तो बामे जो कीट रोग हैं उनको नियमित रूप से देखभाल करें और समय रहते भी जो है उनमें छिड़काव करें, और जिससे जो है हमारी फसल में जो है कोई हानि ना हो भाई और हमें उपज में जो है अच्छी बढ़ोतरी मिले।
0: हाँ भैया, तो इन तमाम बातों को हमारे किसान साथी अपनी खेती बाड़ी में ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही जो है वो अपनी फसल से अच्छी पैदावार लेंगे और समय से अपनी बुवाई को काम और जुताई को काम कर पाएंगे।
1: हाँ भैया,
0: तो भैया जे तो थे इस पखवाड़े के कृषि कार्य, और भैया कल के कृषि जगत कार्यक्रम में अपने किसान साथियों के लिए का सुनवाओगे?
1: कल भैया चर्चा हुई नंदनी कृषक समृद्धि योजना और भेंट वार्ता हुई खरीफ दलहनी फसलों में रोग व कीट नियंत्रण, जिस पर डॉक्टर KPS कुशवाहा से जानकारी दिलवाएंगे राजेंद्र भट्टी जी, और एक लोकगीत होगा और कृषि संकेत में होगा ग्रामीण महिलाओं से हेतु कुटीर उद्योग, उसी के साथ एक क्षेत्र संकलित कार्यक्रम और मौसम की जानकारी दिलवाई जाएगी।
0: तो भैया जब बात जैसे आपने मौसम की करी, तो मौसम के आधार पर अगर हमारे किसान साथी खेती करेंगे ना,
1: हाँ,
0: तो उन्हें कई तरह की कोई समस्या ना होगी।
1: हाँ,
0: क्योंकि खेती बाड़ी के जो काम है ज़्यादातर मौसम पर ही आधारित हैं।
1: हाँ,
0: तो कल अपने आसपास के क्षेत्रों में मौसम कैसो रहे वो तो थोड़ा सो किसान साथी इनके लिए जाऊ संबंध में बता दो जाए। अगर हम बात करें तापमान की, तो अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड व न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। अगर हम वायुमंडलीय नमी की बात करें, तो 50% वायुमंडलीय नमी रहेगी। हवा की गति की अगर हम बात करें, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा बहने की संभावना है। साथ ही अगर हम वर्षा की बात करें, तो वर्षा होने की संभावना ना है, बाकी आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। तो भैया ये तो थी मौसम की जानकारी। अब आप देख रहे हो समय कहीं इजाजत ना जरूर अपने किसान साथियों से और आगे ज़्यादा बातचीत कर सकें।
1: हाँ,
0: तो क्यों ना कार्यक्रम समाप्त करने से पहले किसान साथियों को बता दो जाए अपने कार्यक्रम को पतो।
1: बिल्कुल भैया,
0: हमारा पतो है कार्यक्रम कृषि जगत
1: द्वारा केंद्र निदेशक
0: आकाशवाणी रामपुर पिन 244901। और अब अगले कार्यक्रम तक अपने भैया अखिलेश
1: और दीपक को दो अनुमति।
0: राम राम।

0: अभी किसान साथी सुन रहे थे कृषि जगत, आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर 7 बजे है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। विविधा के अंतर्गत आज सुनिए वार्ता, शिक्षण में माध्यम की चुनौतियाँ। वार्ताकार हैं सना विनिश।
1: शिक्षा ही वह साधन है जो मनुष्य को एक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी में बदलकर उसे प्राणी जगत के अन्य जीवों से अलग करती है। शिक्षा को मुख्य तौर पर 2 अर्थों में देखा जा सकता है, शिक्षा का व्यापक अर्थ तथा शिक्षा का संकोचित अर्थ। व्यापक अर्थ में देखा जाए तो शिक्षा किसी भी समाज में सदैव चलने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है, जिससे मनुष्य एक सभ्य, योग्य एवं सुसंस्कृति नागरिक बनता है। शिक्षा उन सभी अनुभवों का समावेश है जो व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करती है। वहीं संकोचित अर्थ में स्कूल में दिए जाने वाले निर्देशों को शिक्षा कहा जाता है, जिसके द्वारा व्यक्ति निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़कर तथा परीक्षा सफल करके आगे बढ़ते हैं। आज समाज शिक्षा को संकोचित अर्थ वाले दृष्टिकोण से ही जानता है। शिक्षा पाने और

अच्छे इंसान बनने से ज्यादा नंबर, प्रतियोगिता और पैसे कमाने की प्रक्रिया मानता है। शिक्षा का आज व्यवसायीकरण कर दिया गया है। अफसोस, इससे शिक्षा में गुणवत्ता से ज्यादा आकर्षण और बाजार की मांग को महत्व देना शुरू हो गया। अंग्रेजी माध्यम को ज्यादा बढ़ावा मिला क्योंकि इसे बेहतर करियर और प्रतिष्ठा से जोड़ा गया। शिक्षा के माध्यम को अंग्रेजी करने पर बच्चे की सीखने की गति धीमी पड़ गई, परंतु आज लोग शिक्षण के माध्यम पर ध्यान नहीं देते, उसकी अहमियत नहीं समझते, क्योंकि अधिकांश लोगों का ध्यान अंक, प्रतियोगिता, परीक्षाओं, नौकरी और अंग्रेजी को सफलता का साधन मानने पर चला गया। शिक्षण पाने का माध्यम अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि विद्यार्थी जिस मातृभाषा में पलता बढ़ता है उसी में वह सहज होता है। विभिन्न अध्ययनों से भी सिद्ध हो चुका है कि वह बच्चे जिनकी शुरुआती शिक्षा मातृभाषा में होती है, वे उन बच्चों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं जिनकी प्राथमिक शिक्षा अन्य भाषा में हुई है। मातृभाषा में बच्चा विषय को गहराई से समझ पाता है, बेहतर ढंग से सोच पाता है, सवाल पूछ पाता है, अपने विचार व्यक्त कर पाता है और उसका बौद्धिक विकास तेजी से होता है। वहीं यदि शिक्षा पाने का माध्यम बच्चे के लिए कठिन हो, तो विद्यार्थी विषय के मूल भावों को समझने में कठिनाई महसूस करता है और उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। बच्चे के पैदा होने से लेके 3-4 साल की अवधि तक वह घर पर मातृभाषा सीखता है। यदि हम शिक्षा को व्यापक दृष्टिकोण से देखें, तो बच्चा पैदा होने के बाद से ही शिक्षा प्राप्त करना शुरू कर देता है। घर के सदस्य, उसका वातावरण, ये सब उसके शिक्षक होते हैं। मातृभाषा उसकी शिक्षा का माध्यम और पाठ्यक्रम जीवन की मूल बातें सीखना होता है। इस समय हर बच्चा ये पाठ्यक्रम अच्छे से सीख लेता है। अंकों का, न नौकरी का, न प्रतियोगिता का दबाव। हर बच्चा इस शिक्षा में सफल होता है, कोई बच्चा फेल नहीं होता। क्या कारण है? कारण है मातृभाषा उसकी शिक्षण का माध्यम होना, अंकों का कोई दबाव नहीं और घर के हर सदस्य का सहयोग। लेकिन 3-4 साल के बाद, अब जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, तब विद्यालय में वह सुनता है कि अध्यापिका बैठ जाओ को सिट डाउन और खड़े हो जाओ को स्टैंड अप बोल रही हैं, तो वो भाषा की उलझन में पड़ जाता है। वो कभी सिट डाउन पर खड़ा होता है तो कभी बैठता है। गलत करने पर उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। वह देखता है कि क्लास में जो बच्चे अंग्रेजी के शब्द बोल रहे हैं, सेब को एप्पल, केले को बनाना, मैम उसके लिए तालियां बजवा रही हैं। वहीं जो बच्चा अंग्रेजी के शब्द नहीं बोल रहा है, मैम उसको बोलने पर दबाव डाल रही हैं। वह बच्चा अंदर अंदर डरने लगता है। ये उम्र उसकी जिज्ञासा और मानसिक विकास से भरी होती है, पर बच्चे की जिज्ञासा भाषा के चक्कर में दब जाती है। वह अपने विचारों को सही से व्यक्त नहीं कर पाता। वह समझ जाता है कि जितनी अंग्रेजी बोलूंगा अच्छा विद्यार्थी कहलाऊंगा। यहाँ पर मूल्य शिक्षा की जगह किताबी शिक्षा ले लेती है। वह सीखने से ज्यादा अंग्रेजी में बोलने पर ध्यान देता है। वह अंग्रेजी बोलने लिखने को सफलता की कुंजी मान लेता है। अगर किसी कारणवश वो अंग्रेजी सही से नहीं समझ पाया, तो वह विद्यालय में वीक चाइल्ड घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि वह अपने विचारों को अंग्रेजी में नहीं लिख पा रहा, नहीं बोल पा रहा, नहीं समझा पा रहा। उसके आत्मविश्वास की धज्जियां उड़ जाती हैं। परिणाम स्वरूप वह पढ़ाई से भागने लगता है। ऐसा नहीं है कि उसमें क्षमता नहीं थी, सिर्फ उसकी गलती ये थी कि वो अपने विचारों को अंग्रेजी के माध्यम में नहीं समझा पाया, नहीं लिख पाया, नहीं बता पाया। शिक्षण का माध्यम उसकी प्रगति में रोड़ी बन गया। ऐसा कितना बच्चों के साथ हो रहा है। जो बच्चे वीक घोषित कर दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि उनमें पढ़ने की क्षमता नहीं है। कहीं ना कहीं शिक्षण का माध्यम उनकी प्रगति का रोड़ी बन जाता है। शिक्षण के माध्यम की चुनौतियाँ गंभीर हैं, लेकिन सही योजना, ट्रेन शिक्षक और संतुलित शिक्षा व्यवस्था से इसका समाधान किया जा सकता है। शिक्षण का सही माध्यम बच्चे के बेहतर भविष्य की कुंजी है। भारत में सबसे बड़ी चुनौती मातृभाषा और अंग्रेजी के बीच संतुलन स्थापित करना है। शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी तब से ही हो गया जब से अंग्रेजों के आने के बाद उन्होंने हमारे स्वदेशी शिक्षा प्रणाली को हटाकर अपनी अलग शैक्षिक व्यवस्था स्थापित की। सन 1835 में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी करा दिया गया। वुड डिस्पैच ने इसे
और मजबूत किया और स्कूल कॉलेज में अंग्रेजी शिक्षा

0: का विस्तार हुआ। अंग्रेजों का उद्देश्य सिर्फ सिखाना नहीं था भारतीयों को, वे ऐसे भारतीय तैयार करना चाहते थे जो प्रशासनिक काम कर सकें और अंग्रेजी शासन को चलाने में मदद करें। इसी कारण अंग्रेजी धीरे धीरे भारत की उच्च शिक्षा की मुख्य भाषा बन गई। प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सीवी रमन ने कहा कि हमें विज्ञान को मातृभाषा में नहीं पढ़ना चाहिए, अन्यथा वह एक गर्व और घमंड का विषय बन जाएगा। वह ऐसा विषय नहीं बन सकेगा जिसमें हर कोई भागीदारी कर सके। आज उनका ये कथन बिल्कुल सही साबित हो रहा है। बहुत से देशों में शिक्षा वहाँ के मुख्य भाषा में ही दी जाती है। अधिकांश देशों में अत्याधुनिक विश्वविद्यालय हैं जहां उनके नागरिकों को देश की मुख्य भाषा में शिक्षा प्रदान की जा रही है। हमारे देश भारत में भाषाई विविधता है जो कि सबसे बड़ी शिक्षण के माध्यम की चुनौती है। मातृभाषा और अंग्रेजी में संतुलन बनाना एक चुनौती हो जाता है। भारत के हर राज्य की अलग भाषा है, हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी, उर्दू आदि। भारत में शिक्षण के माध्यम की चुनौतियां केवल भाषा की नहीं हैं, बल्कि समझ, समान अवसर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की भी हैं। जितने अवसर अंग्रेजी में हैं, उतने अवसर मातृभाषा में प्राप्त नहीं हैं। नौकरी के जितने अवसर आपको अंग्रेजी भाषा वालों को मिल जाएंगे, उतने मातृभाषा वालों को नहीं मिलेंगे। इसीलिए अभिभावक भी अंग्रेजी को ही जोर देते हैं। उनके बच्चे अंग्रेजी माध्यम से विषय तो रट लेते हैं, पर उसकी गहराई नहीं समझ पाते। इसका समाधान यह हो सकता है कि प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाए और धीरे धीरे अंग्रेजी से जोड़ा जाए। जैसे कि हमारी नई शिक्षा नीति प्राथमिक विद्यालय से ही शिक्षा को मातृभाषा में ही दिए जाने का निर्णय लिया गया। ये एक सराहनीय कदम है। इसके परिणाम स्वरूप बच्चा जब प्राथमिक शिक्षा अपनी मातृभाषा में लेगा तो उसकी पढ़ाई में रुचि रहेगी, बचपन से ही उसका पढ़ाई में लगाव रहेगा, उसको ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उसमें क्रिएटिव स्किल्स डेवलप होंगी। फिर धीरे धीरे कक्षा 5 के बाद विषय अंग्रेजी में कर दिए जाएं। जब तक बच्चा अंग्रेजी से भली भांति रूबरू हो चुकेगा, वो अंग्रेजी को समझने लगेगा, वो अंग्रेजी को सीख चुका होगा। अब अन्य विषय अंग्रेजी में पढ़ने से उसको कठिनाई नहीं होगी। मातृभाषा बनाम अंग्रेजी के बजाय मातृभाषा के साथ अंग्रेजी शिक्षा पर विचार किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को यथासंभव अधिक से अधिक भाषाएं सीखनी चाहिए, लेकिन आवश्यकता है मजबूत नींव मातृभाषा में ही पढ़े। शिक्षा के माध्यम की चुनौतियां गंभीर हैं, लेकिन सही योजना, ट्रेन शिक्षक और संतुलित शिक्षा व्यवस्था से इनका समाधान किया जा सकता है। शिक्षण का माध्यम बच्चे के बेहतर भविष्य की कुंजी है।
1: शिक्षण में माध्यम की चुनौतियां, अभी आपने सना विनिश से उनकी ये वार्ता सुनी। विविधा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है।

के आवाज की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनिए सूचना कार्यक्रम के संबंध में। सात बजकर 31 मिनट पर सुगम संगीत में आज आप सुनेंगे रूना लैला और हरिहरन की आवाजों में कुछ गजलें। गीत गाता चल व्हाट्सएप पर आधारित फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आप तक पहुंचेगा 8 बजे। सबरस ये कार्यक्रम प्रसारित होगा 9:30 पर। इसमें आज कलाकार होंगे श्याम मोहन और रुचि गुप्ता।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित कर रहा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार शौर्य, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला और संस्कृति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 18 वर्ष से कम आयु तक के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है। नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किए जा सकते हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। सूचना समाप्त हुई।

हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 7:18 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से होगा।

0: अरे आ गया ना गिड़ बैंक।
1: आरबीआई कहता है
2: पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन।
3: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10वीं और 12वीं के मेधावियों समेत उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को किया सम्मानित, कहा प्रदेश में नकलविहीन ढंग से हो रही हैं परीक्षाएं। मुख्यमंत्री ने बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1,645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीज धारकों को सौंपे भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र, कहा सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है सरकार। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा की तारीखें घोषित, 32,000 से अधिक पदों के लिए 8, 9 और 10 जून को दो पालियों में होगी परीक्षा। और प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने से लोगों को गर्मी से मिली राहत, मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी हिस्से में बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रदेश के विभिन्न शिक्षा बोर्डों में 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं, मेधावी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को सम्मानित किया। इनमें प्रदेश स्तर पर शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 1,00,000 रूपये, टैबलेट, प्रशस्ति पत्र और

0: मेडल प्रदान किए गए। वहीं जनपद स्तर पर टॉप 10 में स्थान बनाने वाले विद्यार्थियों को 21,000 रूपये, प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्षों में प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं और परीक्षाएं नकल विहीन ढंग से सम्पन्न हो रही हैं। श्री योगी ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर प्रदेश में अनेक नवाचार किए गए हैं।
1: प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर छात्र छात्राओं को तकनीकी दिशा से सक्षम बनाने के लिए अनेक अभियान प्रारंभ करवाए हैं। अटल टिंकरिंग लैब भी उसी का एक उदाहरण है। डिजिटल लाइब्रेरी बन रही है, ये उसी क्रम का हिस्सा है। अनेक ऐसे कदम उठाए गए हैं जो छात्र छात्राओं को उन नवाचारों के साथ जुड़ने के लिए, जो उसकी शिक्षा के लिए आवश्यक है, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक है, उस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
0: मुख्यमंत्री ने आज बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1,645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीज धारकों को भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र सौंपे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में प्रदेश के विकास को गति मिली है और बिजनौर भी उस विकास से अछूता नहीं रहा है।
2: बिजनौर के बारे में लोग सोचते भी नहीं थे यहाँ मेडिकल कॉलेज खुलेगा। आज तो बिजनौर में अपना मेडिकल कॉलेज हो गया और महात्मा विदुर के नाम पर हो गया। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की नई नई सुविधाएं विकसित हो रही हैं और अभी गंगा एक्सप्रेसवे को भी हम इधर से ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये विकास, यही परिवर्तन लाएगा। हर एक तबके के लोगों को नई सुविधाएं दी जा रही है।
0: बिजनौर के बाद मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में विकास कार्यों और माता शाकंभरी देवी कॉरिडोर के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बीते दिनों आंधी बारिश के चलते जनपद में हुए नुकसान के बारे में भी जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा 8, 9 और 10 जून को विभिन्न जिलों में निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अपर सचिव भर्ती सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया है कि ये परीक्षाएं दो पालियों में होंगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। 32,000 से अधिक पदों के लिए होने वाली इस भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कहा है कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते राज्य में अपराधों में काफी कमी आई है। 31 मई 2025 से कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर कार्यरत राजीव कृष्ण को कल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के तौर पर नियुक्ति दी गई है, जिसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा और साइबर अपराधियों के प्रति कठोर कार्रवाई पुलिस विभाग की प्राथमिकता है।
3: माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनकी और शासन की प्राथमिकताओं के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार काम कर रही है, जिसमें अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, महिलाओं की सुरक्षा, व्यापारियों की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा, साइबर अपराधियों के प्रति कठोर कार्रवाई, कानून व्यवस्था लगातार अक्षुण रहे उसके लिए लगातार चलने वाली कार्रवाई, जितने भी मेले पर्व त्यौहार हैं उसमें एक शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाए इसके लिए लगातार सतत बंदोबस्त की अरेंजमेंट, ये सभी प्राथमिकताएं हैं जिन प्राथमिकताओं के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार कार्य रही है और आगे भी करती रहेगी।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
4: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6

0: हजार रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
1: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
0: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। इसके अलावा भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग में फेरबदल करते हुए प्रभारी बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल को प्रभारी माध्यमिक शिक्षा निदेशक बनाया है। वहीं प्रभारी निदेशक वैकल्पिक व साक्षरता शिक्षा उत्तर प्रदेश अनिल भूषण चतुर्वेदी को प्रभारी बेसिक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया है। शासन के विशेष सचिव के गुप्ता की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार संबंधित अधिकारियों को तत्काल नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है। विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में आज से 7 जून तक गौशालाओं में विशेष जागरूकता अभियान संचालित किया जाएगा। प्रदेश के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने निर्देश दिए हैं कि अभियान के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला दुग्ध उत्पादकों को सम्मानित किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं डेयरी गतिविधियों से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकें। इसके साथ ही प्रदेश की सभी गौशालाओं में स्वच्छता, पशु कल्याण, गो संवर्धन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पशुधन मंत्री ने कहा कि अभियान के तहत राज्य सरकार मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत 4 निराश्रित गोवंश लेने वाले किसानों और पशुपालकों को 72,000 रूपये की सहायता भी प्रदान करेगी। प्रदेश के कई जिलों में आज मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है। हमीरपुर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जौनपुर में भी तेज हवाओं के साथ आसमान में बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी हिस्से में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10वीं और 12वीं के मेधावियों समेत उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को किया सम्मानित। कहा, प्रदेश में नकल विहीन ढंग से हो रही हैं परीक्षाएं। मुख्यमंत्री ने बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1,645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीज धारकों को सौंपे भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र। कहा, सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है सरकार। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा की तारीखें घोषित। 32,000 से अधिक पदों के लिए 8, 9 और 10 जून को 2 पालियों में होगी परीक्षा। और प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी हिस्से में बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
3: Hey guys! Hey, congratulations!
4: आज तो पार्टी चाहिए।
5: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
6: आइडिया, यहीं करते हैं पार्टी।
4: पिज्जा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
7: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी।
8: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
4: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
8: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रामपुर की दूसरी सभा के प्रसारण। 7:31 हुए हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज कलाकार हैं रूना लैला और हरिहरन। सबसे पहले रूना लैला की आवाज़ में आइए सुनते हैं ये गीत।

0: रूना लैला की आवाज में भी आप सुन रहे थे गीत। सुगम संगीत इस समय आप आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से सुन रहे हैं।
1: देश की शान जनगणना से जन कल्याण
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: सुगम संगीत में अब सुनिए हरिहरन की आवाज में ये गजल।

सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे रुगना लैला और हरिहन की आवाज़ में गीत और गज़ल। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है, मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय आप सुन रहे हैं हमारी दूसरी सभा के प्रसारण। अब प्रस्तुत है व्हाट्सएप पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गाता चल।

गीत गाता चल कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को रेणु तिवारी का नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत कल हो ना हो फिल्म से गीत को अपनी आवाजें दी हैं अलका याग्निक और शान ने। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी। जतुका किशनपुर से आलम दिलकश शबाना नाज रिजवान राही इमरान राजा आलम शेख फिरोज आलम और चांदनी नास। पप्पू श्रोता क्लब मेन रोड फारबिसगंज बिहार से प्रकाश कुमार पप्पू नैतिक पीहू कुमार विमल। नवरतन हटा बाड़ीहाट पूर्णिया बिहार से ममता रानी छवि अनोखी अर्पिता लाडो दीक्षा देव देवांशु और डब्लू जी। चकला बाजार समाना शहर से पप्पू राजा खुशदिल संगीता रानी पप्पू महक खुशदिल सुनीता रानी आरजू पप्पू हसमुख लाल जिंदल बुलबुल शक्ति खुशदिल संजीव बंटी और पूरा ही खुशदिल परिवार। बहुनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा प्रीति वर्मा कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार पिंकी आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये राधिका बीबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। गांव खावरी अव्वल से चौधरी राजवीर सिंह और चौधरी अभियाना

पंचव खुर्जा से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा, बरबट वक्काल बुढ़ाना से नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या हागे और जय हागे, वैष्णो कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ शादाब खत्री, जामा मस्जिद रोड गोगामासी हाजी इखास इसहाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी और हाजी अयूब शेरी, कोल सिटी बरकाना काना से अफजाल ताज शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम कमल कुमार और मोहम्मद अफजल मलिक, उत्तम नगर दिल्ली से बुधराज खोलवाल, कमला रानी भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल, लाल माता सुदामा नगर रटलाई झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर मीनाक्षी मनोहर बाई और प्रभुलाल बागरी, बागरी मोहल्ला रटलाई झालावाड़ से मनभावन शोभा कपिल नैना सत्यनारायण फुंदीबाई बागरी, स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया, करगेना बरेली से पेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, ओमवती भारती, खनक, शगुन, सारांश, अयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और पृथव सिंह, ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निकहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अरजान, अबान अब्बासी और पूरा अब्बासी परिवार, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नमाला आरती गौरी और ओमकार सुरलकर, आप सभी के अनुरोध पर ये गीत, फिल्म का नाम है कल होना हो।

0: होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: गीत गाता चल कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन श्रोताओं के अनुरोध पर पद्मपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति और भूमिका अरोड़ा, मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदारानी और हिना कौसर, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडके, नंदा बोडके, हनुमान बोडके, अम्बेडकर चौक पाकुड़ी से उत्तम जमदाड़े और स्वराज जमदाड़े, ये श्रोता हैं बटिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, पैराडाइज कॉलोनी अमरावती महाराष्ट्र से सईद भाई, सूफियान अनस, आयजा और सैफ, अल्फिया और सदफ, नाज मंजिल महसूल से अक्रम हुसैन, बेगम इशरत अक्रम, वसीम अक्रम, रुवीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अक्रम, शमीम अक्रम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान और निखत परवीन, बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, जयदेव तामुरिया, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका प्रभा देवी तामुरिया और अल कबीर, कुमार हेड़ा हसनपुर से, सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा नाजिया, आफिया इब्राहिम, सद्दाम और अदीब, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शायना शर्मा और निवान शर्मा, बेड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमने, वैष्णवी डोमने, चंचल, अर्जुन गवनेकर और धीरज सभ्यशेरे, अनारकली बाजार जगराव से कमल पाठक, सुनील पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी और जयपाल यादव, लदावली मुरादाबाद से अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना,

चंद्रनगर सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु नारंग, सोनाली, शेख अल्लाह बख्श, अरविंद कुमार और संदीप मक्कड़। छत्रपति शंभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। ये श्रोता है अमरावती से कमरुल्ला नसीम बेगम, शोएब खान, सलीम खान, मुस्तफा खान, आफिया खान, शाहिद भाई और राहु भाई। शहबाजपुर कला कस्बा पाकबड़ा मुरादाबाद से मजाहिर हुसैन अंसारी, बेगम रईसा नाज, मुजक्कर बाबू, मजहर आसिम और सुमैया नूर। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी। आप सभी के पसंद पर ये गीत सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में। फिल्म का नाम है कभी खुशी कभी गम।

गीत गाता चल कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के अनुरोध पर पॉड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगड़कर दिशांत कुमार और अर्पिता सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेबाड़ और चंद्रकला रेबाड़ गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खट्टक विमला देवी अमरजीत सुंदरलाल खट्टक योगेश कुमार दीपक कुमार और पूजा खट्टक गोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन से विनोद मूड़त नेहा जैन दीपक मयंक मूड़त चेतन नाहटा दीक्षा और कुश मूड़त सांगली जिले से अल्ताफ हुजरे सैफुल्ला सबाहत किरत हुजरे और रेहान शेख गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खान राजिया खान सिमरन खान संदीप सक्सेना शहनाज बाबू अंसारी हबीब अहमद इदरीसी और इरफान खान रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला हैप्पी डागला जेएस नायक शोभा नायक और समस्त डागला परिवार गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी प्रमोद कुमार डूडी पुष्पेंद्र कुमार डूडी मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर राही सरिता गवाणकर प्रिंस एकांश गवाणकर बदलापुर मुंबई से प्रणीता गवाणकर सिद्धांत गवाणकर और टुकटुक गवाणकर आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवाणकर सुमित गवाणकर और ध्वनि गवाणकर परी करणवीर हाउस भूचुकेचिया बठिंडा से प्रेम सिंह चौड़ा मनजीत कौर करणवीर करण दपिंदर वरिंदर कुलदीप सिंधु एकम दमन और अभिजोत नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी गोस्वामी जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी आसमान अंसारी और शबनम बानो जेल रोड बक्सर से राज एस डी अंसारी फातमा नाज चवन पार्क दिल्ली से सोनम और अदीबा मोहल्ला चौलादा बागपत से संजय ढींगिया नमन ढींगिया और अपार ढींगिया गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जसवीर जस्सी सीता और गीता जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा पूनम विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा मास्टर राधेश्याम शाके कासगंज से आप सभी की फरमाइश पर ये गीत सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म का नाम है चल मेरे भाई

गीत गाता चल। ये कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहा है हमारे इन सभी श्रोताओं ने दंत्रेगी भट्टापारा छत्तीसगढ़ से ही रमणी वर्मा पारसमणि वर्मा

வேந்திரமணி வர்மா ஆர் நோகேலால் வர்மா, कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर से रमेश चंद चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बीबी गर्वी और हिमाक्ष। चूड़ी लाइन मुंगेली छत्तीसगढ़ से मोहम्मद ऐसा, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा। वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज से जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शेब खान। ग्राम राजापुर सूरजपुर छत्तीसगढ़ से माणिक राम प्रजापति, सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत प्रजापति। गांव कालापारा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम रजवाड़े। ग्राम महेशपुर खेम जिला मुरादाबाद से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमजा सिद्दीकी और गुलशन साहिबा। अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयवंत्री केवट, अंजलि रुद्राणी और कृष्णा केवट। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय दुबे है। नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। सीतामढ़ी बिहार से मुसरत जहानाज, तलत जहानाज, फरत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, शाजिया शाइन नाज और नाजिया नूरी नाज। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजयलक्ष्मी सावनकर। पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायल, कुमार सरवद देशमुख, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सानवी देशमुख और कल्पना देशमुख। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। बटिंडा रोड मंडी डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी, तानिया नारंग। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार। छत्रपति शिवाजी नगर खंडवासी राजेश सेन और सुरेखा सेन। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़। सरगुजा मिनपाट से प्रभा डोमिन, प्रमेला, आशा, निशा और पूरा डोमिन परिवार। तख्तपुर छत्तीसगढ़ से रमेश कुमार साहू, मीरा देवी, गंगा देवी, मिश्री देवी साहू। इंदिरा विहार दिल्ली से बीबी अंसारी, डब्ल्यू अंसारी और दानिश अंसारी। बक्सर विहार से राज डी एस अंसारी, फातिमा राज अंसारी, डुमराव से वलीउल्ला अंसारी। ये श्रोता है खुर्जा से तिलक राज अरोड़ा। रेशमी नगरी से जावेद अख्तर राही, शमसुल कुमार राही, बेगम रुखसार, रकीबा शाहीन, तूबा शमीम अख्तर अंसारी। सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण और प्रतीक चौहान। मोहल्ला बारादरी महमूद खान, रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, फिरोजा मुस्कान, अफसर अली और नगमा नाज मंसूरी। आप सभी के अनुरोध पर ये गीत सोनू निगम और क्षमा कीजिए उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में, फिल्म का नाम है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।

और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख नाजिया नासिर, साजिद शाहिद गोविंदपुरा अहमदनगर से, जुनेद मुजावर सभी है मुजावर।

मिखाइल और जैनब मुजावर, जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े, पटेल नगर मलोट से रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू जाजौरिया और गुड्डू, गांव कलाना तहसील भादरा हनुमानगढ़ से विक्रम, सचिन, सतीश और योगेश, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, मेघा राशि, माधुरी और किरण, खंडवा से विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, सपना, शिवी, सलोनी और पेंटर बाबू, कोल्हापुर से तुषार, कुरणे, प्रशिक, कामले, एकता, मेघना, उत्कर्षा, कामले और अरुण, बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या, निवेश और नियति, नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, पिंकी साहनी, अफजल मलिक और संदीप, रामगढ़ कैंट से निप्पी साहनी और सुनीता साहनी, ये श्रोता है हिंगोली महाराष्ट्र से रामचंद्र इंगोले, एयरपोर्ट रोड बंदानगर इंदौर से गणेश खर्चे, कार्तिक परी, स्वाति प्रयाग चौधरी, ईदगाह गेट मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी, रईस दूल्हा अंसारी, आजाद रोड सनावत से मोहम्मद असलम खत्री, फारूक खत्री, मोहम्मद सिद्दीकी खत्री, आफिया, सफिया और अदनान खत्री, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, रेहान, समरीन, परवीन और माहिरा नूर। आप सभी के अनुरोध पर ये गीत फिल्म रॉन्ग नंबर से।

अनुराधा पौडवाल को भी आपने सुना फिल्म रॉन्ग नंबर में। इसी गीत के साथ आज का गीत का तचल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। रेणु तिवारी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे व्हाट्सएप पर आधारित फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम गीत गाता चल। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से रिले होगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालाधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमा के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
3: I am confident that this comprehensive agreement
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
3: Of our shared future.
1: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA, यूरोपीय औषध एजेंसी या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री मार्ल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
2: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले तीन दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
1: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpg वितरक चयन पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने दो विधायकों संदीप अंसाहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा

0: पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
3: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही है वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही है, किसान के हित में रही है। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए के इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया किस टाइम की जो एज के हिसाब से।
1: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में इस दौरान 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल

0: चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-233-10481 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
1: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुँच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar Aung San Suu Kyi Aung Lyan hold talks in New Delhi, emphasize upon preventing misuse of their territory against each other's security interests. India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement becomes effective, giving duty-free access to Indian exporters on 98% of Oman's tariff lines. India and Australia to enhance defense industrial collaboration in futuristic technology research. Malaysia joins countries banning social media use by children below 16. And orange alert for thunder squall issued for Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh till tomorrow. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar Aung San Suu Kyi Aung Lyan held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defense, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development, cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
3: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
2: Mr. Misri said both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards the completion of Kaladan Multimodal Transit Transport Project.
3: Both sides expressed an interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, in development cooperation, in health, in education, in energy. Both sides underlined the importance of connectivity for people-to-people contacts and agreed to work as quickly as possible towards the completion of the Kaladan Multimodal Transit Transport Project, as well as the Kalewa-Yaji segment of the India-Myanmar-Thailand Transit.

0: श्यामोहन के स्वर में भी आप सुन रहे थे लोकगीत। सबरस कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: आकाशवाणी रामपुर से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस। अब आइए सुनते हैं रुचि गुप्ता के स्वर में कुछ लोकगीत।

रुचि गुप्ता के स्वर में भी आप सुन रहे थे लोकगीत। सबरस कार्यक्रम अब समाप्त होता है। सबरस कार्यक्रम में आज कलाकार थे श्याम मोहन और रुचि गुप्ता।

0: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो रामपुर। हेलो रामपुर कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कीजिए स्वीकार नमस्कार रेणु तिवारी की ओर से। अगर आप हमसे करना चाहते हैं कोई बात और सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो डायल करें। हमारा फ़ोन नंबर है 0595-2324-326। हम कर रहे हैं आपकी कॉल्स का इंतज़ार और अब हमारे पहले श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो।
1: ऐसा नहीं कि दिन नहीं निकलता या रात नहीं होती, मगर सब अधूरा सा लगता है जब तुमसे दिल की बात नहीं हेलो बरेली में होती तो हेलो रामपुर में होती। नमस्कार मैम जी।
0: नमस्कार, हमारे कौन से साथी बोल रहे हैं?
1: राजेंद्र गंगवार, कस्बा करोड़िया, तहसील नवाबगंज, झुमका सती, बरेली से बोल रहे हैं मैम जी। यार कैसे हैं आप?
0: हम अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: हम भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं मैम जी, अच्छा लग रहा है
0: जी। हमें लगता है कि आप आकाशवाणी के नियमित श्रोता हैं और विभिन्न केंद्रों से जुड़े रहते हैं। आकाशवाणी अपनी यात्रा के 90 वर्ष पूरे कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे?
1: हाँ जी, क्योंकि हम तो रेडियो 1997-96 से सुन रहे हैं। आकाशवाणी तो 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसके लिए जितने आकाशवाणी है सभी के लिए शुभकामनाएं हैं जो इतने इतने अच्छी जानकारी और ज्ञान वर्ष मिलती है और गाने भी मिलते हैं सुनने को, खेती बाड़ी में जानकारी भी मिलती है और बच्चों के कार्यक्रम भी आते हैं तो अच्छे लगते हैं मैम जी।
0: आज हेलो रामपुर में आपका फोन लगा है, कौन सा गीत सुनवा दें आपको?
1: हाँ जी, सबसे प्यारा तो हमें ये हेलो रामपुर ही लगता है जो सभी श्रोताओं के दूर दूर से कॉल आते हैं तो जानकारी भी मिलती है तो अच्छा लगता है मैम जी।
0: कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: हाँ जी, मूवी का नाम रहेगा दीवाना, गाने के बोल रहेंगे पायलिया हो, कुछ दोस्तों के नाम दे सकते हैं मैम जी।
0: बिल्कुल।
1: हाँ जी, सबसे पहले तो हमारे भगवान सिंह परमार जी हैं, सारुण संसारी जी हैं, गंगा सावंकर जी हैं और सोनू जी हैं, लोकेंद्र ब्रह्मा जी हैं, गौतम राय जी हैं, प्रेम सिंह सिसोदिया जी हैं और केसरी सिंह राजपूत जी हैं। जितने लाइव श्रोता सुन रहे हैं सभी गैर रहेगा, साथ में आपको मैम जी।
0: आप सभी की पसंद पर हम सुनवा रहे हैं ये गीत, लीजिए सुनिए।

0: हेलो हेलो हेलो
1: हेलो
0: रामपुर,
1: जी नमस्ते। मैं
0: नमस्ते
1: दीदी पक्का से पम्मी बोल रहा हूँ।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: हम ठीक है, आप बताइए। ठीक है आप?
0: जी हम ठीक हैं।
1: मैं आपके सुबह से प्रोग्राम सुन रहा हूँ मैं आपके मोबाइल पे। हाँ।
0: अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: पक्का पक्का बाग।
0: पक्का बाग। ओके
1: जी,
0: जी, आज आपका फोन लगाया हेलो रामपुर में। कौन सा गीत सुनवा दें आपको?
1: बोल शादी आंटी में गाना।
0: आंटी नंबर वन का गाना सुनना है आपको?
1: और आपके प्रोग्राम में सुबह सुनता हूँ आपका प्रोग्राम सुबह
0: जी। आज
1: और
0: लेकिन
1: अगर
0: शायद पहली बार आपने कॉल किया है।
1: नहीं, आपसे वो बात हुई थी अभी 1 महीने पहले। मैं
0: अच्छा, चलिए
1: आपको
0: ठीक
1: सुबह,
0: है।
1: मैं कुछ लोग नाम ले लूँ दीदी?
0: हाँ जी,
1: नाम ले लूँ, कुछ लोग नाम ले लूँ
0: हाँ बिल्कुल, नाम लीजिए।
1: जी। गानी साहब, गानी साहब हाजी गप्पार जी हैं, करोड़ा साहब परवीन हैं, इस्लाम है, नहारी वाले पक्का से, नब्बुआ है, चा वाले, और जाहिद भाई होटल वाले हैं, और रिक्शे वाले हैं जवेद भाई, और मदन माए झंडे पे से, और बाबू भाई पान वाले। ठीक
0: सभी की पसंद पर हम सुनवा रहे हैं ये गीत, लीजिए सुनिए।
1: है, नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते।

0: हेलो हेलो रामपुर में हमारा अपने सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि जिन श्रोताओं की कॉल लग रही है कृपया वो अपने पीछे जो रेडियो बज रहा है उसकी वॉल्यूम कम कर दें, हमें आपकी कॉल सुनने में परेशानी हो रही है। और अब हमारे एक और श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो
1: हेलो रामपुर।
0: हेलो रामपुर,
1: मैं जिला मुरादाबाद ग्राम मेरा भूजपुरा था बड़ी मस्जिद के पास से रजा हुसैन बोल रहा हूँ। मैम
0: रजा हुसैन जी, कैसे हैं आप?
1: हम ठीक है मैम, आप सुनाइए आप कैसी हो?
0: हम भी अच्छे हैं। और आप आकाशवाणी के नियमित श्रोता हैं?
1: जी बिल्कुल, मेरे पत्र आप पढ़ती हैं ये मालूम है, मैं सुनता हूँ आपको
0: जी। कौन कौन से प्रोग्राम ऐसे हैं जो आपको बहुत पसंद आते हैं?
1: सबसे पहला प्रोग्राम तो मुझे लगता है सुबह को सुबह सवेरे बहुत अच्छा लगता है
0: जी,
1: और धर्मास कार्यक्रम में सुनते हैं हम डेली के, हम पुराने में सोता हूँ, सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं रामपुर के मैम।
0: आज हेलो रामपुर में आपका फोन लगा है, कौन सा गीत सुनवा दें आपको?
1: गाने बोल रहे हैं तेरी गली में न रखेंगे कदम, इस तरह से बोल रहे हैं, कुछ नाम बोलूं मैम?
0: बिल्कुल बोलिए।
1: मेरा भाई साहिद हुसैन है, छोटा भाई आदिल हुसैन है, मकसूद हुसैन है, लाल मोहम्मद अंसारी है और मेरा जानसर है दोस्त आप और हम।
0: सभी की पसंद पर हम सुनवा रहे हैं ये गीत, लीजिए सुनिए।
1: थैंक यू।

0: हेलो
1: हेलो रामपुर
0: हेलो रामपुर,
1: मैम जी, आदाब।
0: आदाब।
1: मैं जिला रामपुर ग्राम खेड़ा से मोहम्मद कामिल बात कर रहा हूँ।
0: कमल भाई कैसे हैं?
1: एकदम अच्छे हैं मैम। आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं और कॉल लगा रहे थे, कॉल लग गई, आपसे बात हो रही है मैम, काफी अच्छा लग रहा है।
0: जी, हमें भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। ये बताइए, क्या चल रहा है आजकल?
1: मैम आजकल तो कुछ नहीं, घर पे थे, ईद पर आए हुए थे घर पे।
0: कहीं बाहर काम करते हैं आप?
1: जी मैम, रेस्टोरेंट है अपना गुड़गांव में, तो वहीं पर रहना रहता ज्यादातर अक्सर।
0: घर से दूर रहते हैं, कितनी याद आती है घर वालों की।
1: मैम जो फैमिली के साथ में अच्छा लगता है, वो बाहर कहाँ मजा आता है इतना, मगर रहना पड़ता है मैम।
0: बिल्कुल, मजबूरियां होती हैं कि जब आपको कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो घर छोड़ना ही पड़ता है। गुड़गांव में आप हमारे प्रोग्राम से जुड़े रहते हैं? कैसे जुड़ते हैं?
1: मैम मोबाइल ऐप के जरिए सुनते रहते हैं मैम।
0: बिल्कुल, आज हेलो रामपुर में आपका फोन लगा है, कौन सा गीत सुनवा दें आपको?
1: मैम एक फिल्म का नाम है अंदाज,
0: जी
1: और गाने के बोल हैं, आज कहना जरूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है, इसी तरह के गाने के बोल हैं मैम। एक सॉन्ग सुनवा देना, और कुछ सुनने वाले हैं मेरे साथ में,
0: बिल्कुल।
1: मोहम्मद तालिब परवेज, वसीम अकरम, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, अनीसुर रहमान, यही सब सुनना चाहेंगे मैम।
0: आप सभी की पसंद पर हम सुनवा रहे हैं अंदाज फिल्म का ये गीत, लीजिए सुनिए।
1: थैंक यू मैम।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: रामपुर,
0: रामपुर
1: हेलो रामपुर,
0: जी। हेलो रामपुर,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: मैं गांधी समाधि रोड रामपुर से गफ्फार खान आपसे बात कर रहा हूँ।
0: गफ्फार भाई, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक बात माननी पड़ेगी कि आपकी मोहब्बत आकाशवाणी रामपुर से इतनी गहरी है कि लगभग हर फोन इन प्रोग्राम में आपकी कॉल हमें मिल जाती है।
1: फोनिंग प्रोग्राम क्या, मैं सुबह से लेकर शाम तक आकाशवाणी रामपुर सुनता ही रहता हूँ।
0: जी, आप हमारे बिल्कुल नियमित श्रोता हैं और सचमुच ऐसे जो हमारे श्रोता हैं वो हमारी धरोहर हैं। गफार भाई, आज हेलो रामपुर में आपका फोन लगा है, कौन सा गीत सुनवा दें आपको?
1: मेरी कॉल मुरादाबाद में भी लगी थी और यही गाना सुना था, एक मुसाफिर एक हसीना का। रफी
0: जी
1: साहब की आवाज है और आशा भोसले की और रूपी नैयर का संगीत है। और गाने के बोल हैं, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। और कुछ सुनने वालों के नाम है
0: हाँ जी, बिल्कुल।
1: जी, राजिया खान है, सिमरन खान है, इरफान खान, शानूर अंसारी, शबनम अब्बासी, मसरूर हुसैन, रीना तमान, गुलाबशाह, आकाश रस्तोगी, नासिर भाई रिक्शावाले, पम्मी पत्रेबाग से, हबीब अहमद जिसी, यही सब सुनना चाहेंगे।
0: आप सभी की पसंद पर हम सुनवा रहे हैं ये गीत, लीजिए सुनिए।

0: हेलो रामपुर,
1: हेलो हेलो रामपुर
0: हेलो रामपुर,
1: जी, मैं अनूप कुमार भट्टाचार्य बात कर रहा हूँ।
0: अनूप जी, हेलो रामपुर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी आपको भी, और सुर के जो संगीत के यहाँ आसमान के एक उज्जवल जगमग सितारा इन स्वर्गवास हो गए जी, जिन जिनका नाम है सुमन कल्याणपुर जी, है
0: जी
1: ना।
0: जी
1: और ढेर सारे नमन श्रद्धा सुमन में अर्पित करता हूँ। तो दर्द एक संकेत है कि तुम जिंदा हो, दर्द एक संकेत है कि तुम जिंदा हो, समस्या एक संकेत है कि तुम मजबूत हो, दोस्त एक संकेत है कि तुम अकेले नहीं हो, है ना
0: बहुत अच्छी बात कही आपने।
1: जी। और आकाशवाणी रामपुर के सब दीवाने और दीवानियों को, यानी कि अनूप कुमार भट्टाचार्य का सब प्रेम नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, राधे राधे। तो
0: हमारा भी
1: आज
0: आपको नमस्कार।
1: जी, तो आज इसी प्लेटफॉर्म में गाने का लुत्फ उठाना चाहता हूँ। इस गाने से, फिल्म का नाम है दीवाना मस्ताना और गाने का बोल ऐसे, ओ मम्मी मम्मी, ओ डैडी डैडी, ओ मम्मी डैडी, हो जाओ रेडी, जिससे मेरी शादी होगी, आज मैंने वो लड़की ढूंढ लिया, ऐसे करके गाने हैं। कुछ दोस्तों को मैं डेडिकेट कर रहा हूँ। पहले सतीश भाई के लिए, बसंतीलाल सूर्यवंशी जी, कश्मीर से पुरुषोत्तम कुमार जी, ओम प्रकाश नेवा जी, विजय सिंह लखेरा जी, अनवर भाई, श्रीकांत जोशी जी फ्रॉम महाराष्ट्र, और प्रेमजीत चक्रवर्ती जी के लिए।
0: आप सभी की पसंद पर हम सुनवा रहे हैं ये गीत, लीजिए सुनिए।
1: जी

0: हेलो रामपुर।
1: हेलो
0: हेलो रामपुर।
1: जी मैम, बोलिए मैम। हमें राज फिल्म वगैरह सुनना था।
0: गीत हम आपको सुनवाएंगे। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे कौन से साथी हमसे बात कर रहे हैं।
1: मैम, हम राम प्रजापति पक्का बाग
0: पक्का बाग से बोल रहे हैं। क्या करते हैं आप?
1: मैम, अपना जरिया काम है।

0: अच्छा, आज आपका फोन लगा है हेलो रामपुर में। तो राज फिल्म
1: जी
0: का कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: मैम सुना दीजिए, आपके प्यार में समझने लगे।
0: ठीक है, आप अकेले ये गीत सुनेंगे कि आपके कुछ साथी भी हैं?
1: मैम हमारा बेटा है अमन प्रजापति, और हमारा दूसरा बेटा है अनुज प्रजापति, और हमारा ये भतीजा है शुभम प्रजापति, और बेटी हमारी नेहा प्रजापति।
0: ठीक है, आप सभी की पसंद पर हम सुनवा रहे हैं ये गीत, लीजिए सुनिए।

0: हेलो,
1: तुम्हारा प्यार भरा नमस्कार।
0: आपको भी नमस्कार। और हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे अपने किस साथी से बात हो रही है।
1: जी मैम, बिल्कुल बताऊंगा। सबसे पहले जो लाइन आपको फेस करना चाहता हूँ,
0: जी
1: हमने भी कभी किसी से बे इंतहा मोहब्बत की थी। हमने भी कभी किसी से बे इंतहा मोहब्बत की थी। हर दुआ में बस उसकी हिफाजत की थी। आज वो हमें अजनबी समझते हैं। हर दुआ में उनकी ही हिफाजत की दुआ की थी।
0: लाइनें तो आपने सुना दी हैं, बहुत अच्छी सुनाई हैं। अब अपना परिचय भी दे दीजिए।
1: बिल्कुल, मैं ग्राम बा पोस्ट बक्सेना डिस्ट्रिक्ट बदायूं तहसील दातागंज से विमल ठाकुर बात कर रहा हूं मैम।
0: विमल, क्या चल रहा है आजकल?
1: बस आप लोगों के प्रोग्राम सुने जा रहे हैं और साथ में बैठा वो कर रहे हैं।
0: क्या काम करते हैं आप?
1: इस समय तो मैम धान के हमने पौध डाल दिए हैं। कुछ दिनों में धान की जब पौध हो जाएगी तो हम धान की मतलब करेंगे रुपाई वगैरह।
0: धान की पौध अभी से?
1: हाँ जी बिल्कुल मैम, आगाही डालिए थोड़ी।
0: जहां तक हमें पता है कि जब बारिश हो जाती है, थोड़ा पानी भर जाता है खेतों में, उस वक्त धान की पौध लगाई जाती है।
1: जी बिल्कुल हाँ, पति करीब अभी जून चल रहा है तो जुलाई में समझ लेने लगेगी। तो अभी हमने पौध डाली है तो अब से करीब 20-25 दिन में तो वैसे भी पौध होती है।
0: जी
1: हाँ तो उसके पश्चात समझो बारिश ही आ जाती है जुलाई के लगभग, तो उसी के समय में हम ये धान की रोपाई करें। और थोड़ा अधिक पहले से हम इस साल धान लगा रहे हैं क्योंकि बारिश कुछ देर पहले ही होने लगती है। तो जब तक बारिश का ठीक समय आएगा तब तक हमें धान लग चुके होंगे तो उन्हें भरपूर मात्रा में पानी मिल सकेगा ऊपर वाले का। तो उस पानी से कुछ फसलों में और ही बरकत होती है मैम।
0: बिल्कुल, अभी जैसा कि मौसम कभी ठंडा हो रहा है, कभी गर्म हो रहा है, आंधी पानी ओले पड़ रहे हैं, तो इसका खेती पर क्या असर पड़ रहा है? इस समय जो फसल चल
1: जी
0: रही है
1: मैम,
0: उसका?
1: इस समय तो जैसे कि हमने मक्का लगाई थी कुछ दिन पहले, हमने जो मक्का लगाई थी उसमें मक्के के बिल्कुल पत्ते अत्ते फट गए थे और काफी नुकसान भी हुआ था। पर ऊपर वाले की कहर को कोई नहीं रोक सकता है। बस ऊपर वाले से हमारी प्रार्थना है कि सभी लोग अच्छे से रहें और जो कुछ चल रहा है जिंदगी में अच्छे अच्छे चलता रहे। हम तो सोच रहे हैं हर कोई मेहनत कर रहा है उसकी मेहनत सफल रहे मैम।
0: बहुत अच्छी बात कही आपने कि जो लोग भी मेहनत कर रहे हैं, सबकी मेहनत सफल हो, सब सुखी हो।
1: जी
0: आज हेलो रामपुर में आपका फोन लगा है, कौन सा गीत सुनवा दें आपको?
1: जब आपकी खूबसूरत आवाज हमारे डिस्ट्रिक्ट बदायूं में गूंजी और लगातार श्रोताओं के बीच में एक अलग छाप छोड़ जाती है तो मूवी का नाम रहेगा सड़क। और इसमें बेहतरीन सड़क बात जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा हुआ, कुछ हमारे मित्र रहेंगे
0: बिल्कुल, नाम लीजिए।
1: और से साथ में हमारी वाइफ सरता शुभ लव गुनगुन और हमारे साले राजवान, इन सभी को गाना डेडिकेट रहेगा। नमस्ते बाय।

0: हेलो रामपुर,
1: बिखर जाते हैं ख्वाब जब जिंदगी टूट जाती है, ये रंगीन दुनिया भी एक दिन छूट जाती है, समझ में कुछ नहीं आता कि अब किधर जाएं, महलों के अंदर रहने वालों की भी किस्मत कभी कभी फूट जाती है। नमस्कार मैम।
0: नमस्कार,
1: मकसूद हुसैन, जिला मुरादाबाद, ग्राम बीबीपुर से बात कर रहा हूँ मैम।
0: मकसूद हुसैन जी, आज हमारी आपकी बहुत दिनों के बाद बात हो रही है।
1: हाँ मैम, दरअसल सिम आइडिया में करा लिया, पहले एयरटेल में था, बड़ी दिक्कत आती है मैम, और कॉल तो इस प्रोग्राम में भी दूसरी लग गई थी, रिंग पर ही कट गई थी, मेरे ही हाथ से कट गई थी मैम। तो मैम, मैंने जैसे 6 बजे रेडियो खोला, समाचारों के बाद में आप जो है खोए हुए व्यक्तियों के बारे में बता रही, तो मैं चौंक गया मैम। रात की सभा में मैडम है, आज इनकी सभा में आती है, आज बड़ा बड़ा परिवर्तन हुआ मैम।
0: जी ऐसा कुछ नहीं होता है, जैसी भी जैसे हमें याद किया जाता है उसी के अनुसार हम ड्यूटी पर आते हैं।
1: हाँ तो मुझे सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज तो रेणु तिवारी जी प्रोग्राम में सभा में है, आज शाम की सभा में है, नहीं तो दिन की सभा में सुबह की सभा में ज्यादातर आती है मैम।
0: जी आज हमारी आपसे बात हो रही है, तो क्या कुछ खास कहना चाहेंगे
1: मैम? देखिए, सुमन कल्याणपुर एक लता जी गायक कलाकार हैं, बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हैं, तो उनका भी निधन 2-3 साल पहले हो गया, और सुमन कल्याणपुर का जो है कल रात निधन हो गया। तो मैम वो ढाका में पैदा हुई 1937 में, और 89 साल की उनकी उम्र थी, 1950 में उन्होंने फिल्मों पे कदम रखा। उनके गाने मैम लता मंगेशकर से मिलते जुलते हैं, पहचान नहीं पड़ती कौन है, तो मैम उन्हें मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ मैम, और उन्हीं की फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ, ममता फिल्म से, रहे ना रहे हम मैका करेंगे। और मैं सुनने वाले हैं डॉक्टर अख्तर हुसैन, मोहम्मद दानी सिद्दी की, रजा हुसैन, गफ्फार हाजी जी, इशरत अली, मुकेश भाई, और साथ में आप भी हो मैम, सभी सुनने वाले।
0: सभी की पसंद पर हम सुनवा रहे हैं ममता फिल्म का ये गीत, लीजिए सुनिए।
1: प्रोग्राम का लास्ट गीत होगा मैम
0: जी, ये इस प्रोग्राम का लास्ट गीत है, आप सभी की पसंद पर सुनवा रहे हैं गीत, लीजिए सुनिए है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने आज नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयी बैठक को संबोधित करते हुए उपभोक्ता मामलों के विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में मजबूत स्थिति में है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सभी तेल विपणन कंपनियां सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिसमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpgvitarakchayan.in पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन नवी ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृहमंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण

0: West Madhya Pradesh, Odisha, and coastal Andhra Pradesh till tomorrow. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब संपन्न होती है। इन्हीं मीटर्स पर प्रातः 5:52 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें